नमस्कार, सुप्रभात। FM 103 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आज बुधवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास के 28वें तिथि, तदनुसार 19 अगस्त सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में बजे हैं इस समय सुबह के 5:59 और 6 सेकंड। इसी के साथ ही आरंभ होती है हमारी आज की पहली सभा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल किया है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4 स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। एनटीए के कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। एनटीए ने यह निर्णय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश के बाद लिया। इसमें परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी उपाय करने को कहा गया था। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण 44 भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार ने 8 अधिसूचनाएं जारी की। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। रद्द परीक्षाओं में औषधि निरीक्षक, सहायक प्रोफेसर, डिप्टी कलेक्टर, दंत चिकित्सक, सहायक अभियंता, सिविल जज, अपर लोक अभियोजक और वन अधिकारी समेत कई पदों की भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं। सरकारी पॉलिटेक्निक में व्याख्याता, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, सहायक वन संरक्षक और अन्य प्रशासनिक तथा तकनीकी पदों की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। अधिसूचनाओं में कहा गया है कि जेपीएससी और जेएसएससी में अनियमितताओं से जुड़े मामलों की

0: सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय से त्वरित अदालत गठित करने का भी अनुरोध किया जाएगा। सरकार ने पाइप से रसोई गैस पीएनजी कनेक्शन घर घर पहुंचाने की योजना को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। ये योजना 1 सितंबर से 2 चरणों में लागू की जाएगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य अधिक परिवारों तक पाइप से रसोई गैस पहुंचाना है। वर्तमान में देश में 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन हैं। निर्वाचन आयोग ने देश की चुनाव व्यवस्था पर एक फैक्ट शीट जारी की है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य विधानसभा तथा विधान परिषदों के चुनाव स्वतंत्र वैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग कराता है। आयोग ने बताया कि लगभग 1 अरब मतदाताओं को फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र जारी किए गए हैं। ये फैक्ट शीट अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनावी प्रक्रिया का जिक्र किए जाने के बाद जारी की गई। गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर आज शाम चेन्नई पहुंचेंगे। श्री शाह कल चेन्नई के पास कोवलम में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। भारत ने पर्यावरण से जुड़े प्रयासों को जन केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने पर बल दिया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में ये बात कही। श्री यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों की चुनौतियों का उल्लेख किया।
1: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
2: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और जापान की प्रगाढ़ साझेदारी और उनके रणनीतिक महत्व पर बल दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश और साझेदारी बढ़ाने के लिए भी आमंत्रित किया। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कल जापानी प्रतिनिधिमंडल से कहा कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को बमबारी की धमकी दी है। 2 क्षेत्रीय अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ओमान के ईरान के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही को लेकर समझौते के करीब पहुंचने से नाराज हैं। नीदरलैंड्स के एम्स्टलफेन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। अगले दौर में जगह बनाने के लिए दोनों टीमों के लिए मुकाबला काफी प्रमुख है। भारत के 2 मैचों में 3 अंक हैं और अगले दौर में पहुंचने के लिए उसे कम से कम ड्रॉ की जरूरत है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी डाल्टनगंज है। खेती की बातें, कृषि संबंधी कुछ जानकारी, आइए इस कार्यक्रम में जानें जैविक खाद और इसके फायदे। संकलन और वाचन स्वर है प्रतिमा वर्मा का। पूर्व प्रसारित यह जानकारी है।
4: किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम खेती की बातें में। किसान भाइयों, रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग से मिट्टी की संरचना और बनावट में काफी बदलाव आया है। इस बदलाव के कारण मिट्टी नमी रहित और सख्त हो गई है। वर्षा आश्रित क्षेत्र में नमी संरक्षण हेतु जैविक खाद का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। इसके प्रयोग से कृषि योग्य भूमि में आवश्यकतानुसार सस्ते दर पर पोषक तत्वों की पूर्ति कर कृषि उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। रासायनिक खाद की तुलना में इसके प्रयोग से फसल और मिट्टी को कोई हानि नहीं पहुंचती। जैविक खाद के प्रयोग से मिट्टी के आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति के साथ साथ उसके भौतिक और जैविक गुणों में वृद्धि होती है। अतः यह आवश्यक है कि अधिक कृषि उत्पादन प्राप्त करने के लिए मिट्टी परीक्षण के साथ साथ फसलों की आवश्यकता अनुसार रासायनिक खाद के बदले जैविक खाद के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए। प्राचीन काल में मानव स्वास्थ्य के अनुकूल और प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप खेती की जाती थी, जिससे जैविक और अजैविक पदार्थों के बीच आदान प्रदान का चक्र यानी पारिस्थितिकी तंत्र निरंतर चलता रहा था, जिसके फलस्वरूप जल, भूमि, वायु और वातावरण प्रदूषित नहीं होता था। भारतवर्ष में प्राचीन काल से कृषि के साथ साथ गौ पालन

0: किया जाता रहा है। हम रासायनिक खादों, जहरीले कीटनाशकों के उपयोग के स्थान पर जैविक खादों और दवाइयों का उपयोग कर अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे भूमि, जल और वातावरण शुद्ध रहेगा और मनुष्य और प्रत्येक जीवधारी स्वस्थ रहेंगे। जैविक खाद के प्रयोग से गुणवत्ता में बढ़ोतरी हो रही है और जैविक खाद का प्रयोग रासायनिक खाद के प्रयोग की अपेक्षा अधिक पैदावार ली जा सकती है और यह मानव स्वास्थ्य के लिए लाभकारी भी है। जैविक खाद के प्रयोग से होने वाले कई लाभ हैं किसान भाइयों, जैसे भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि, सिंचाई अंतराल में वृद्धि, रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है, बाजार में जैविक उत्पादों की मांग बढ़ने से किसानों की आय में भी वृद्धि होती है, जैविक खाद का उपयोग करने से भूमि की गुणवत्ता में सुधार आता है, भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है, भूमि से पानी का वाष्पीकरण कम होगा, भूमि के जलस्तर में वृद्धि होती है, मिट्टी, खाद्य पदार्थ और जमीन में पानी के माध्यम से होने वाले प्रदूषण में कमी आती है, कचरे का उपयोग खाद बनाने में होने से बीमारियों में कमी आती है, फसल उत्पादन की लागत में कमी और आय में वृद्धि होती है। जैविक खादें सड़ने पर कार्बनिक अम्ल देती हैं, जो भूमि के अघुलनशील तत्वों को घुलनशील अवस्था में परिवर्तित कर देती हैं, जिससे मिट्टी का पीएच मान 7 से कम हो जाता है, इसलिए इससे सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है। यह तत्व फसल उत्पादन में आवश्यक है। इन खादों के प्रयोग से पोषक तत्व पौधों को काफी समय तक मिलते हैं। यह खादें अपना अवशिष्ट गुण मृदा में छोड़ती हैं, इसलिए यह एक फसल में इन खादों के प्रयोग से दूसरी फसल को लाभ मिलता है। इससे मृदा उर्वरता का संतुलन ठीक रहता है। जैविक खाद रासायनिक खाद की तुलना में बराबर या अधिक उत्पादन देती है, अर्थात जैविक खाद मृदा की उर्वरता और कृषकों की उत्पादकता बढ़ाने में पूर्णतः सहायक है। वर्षा आधारित क्षेत्रों में जैविक खेती की विधि और भी अधिक लाभदायक है। जैविक विधि द्वारा खेती करने से उत्पादन की लागत तो कम होती ही है, इसके साथ ही कृषक भाइयों को आय अधिक प्राप्त होती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्पर्धा में जैविक उत्पाद अधिक खरे उतरते हैं, जिसके फलस्वरूप सामान्य उत्पादन की अपेक्षा कृषक भाई अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आधुनिक समय में निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि की उर्वरा शक्ति का संरक्षण और मानव स्वास्थ्य के लिए जैविक खेती की राह अत्यंत लाभदायक है। मानव जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए नितांत आवश्यक है कि प्राकृतिक संसाधन प्रदूषित ना हो, शुद्ध वातावरण रहे और पौष्टिक आहार मिलता रहे। इसके लिए हमें जैविक खेती की कृषि पद्धतियों को अपनाना होगा, जो कि हमारे नैसर्गिक संसाधनों और मानवीय पर्यावरण को प्रदूषित किए बगैर समस्त जनमानस को खाद्य सामग्री उपलब्ध करा सकेगी और हमें खुशहाल जीवन जीने की राह दिखा सकेगी। किसान भाइयों, कार्यक्रम खेती की बातें में आज बस यहीं तक। दीजिए हमें अनुमति।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती की बातें कार्यक्रम में जैविक खाद और उसके फायदे पर जानकारी, प्रतिमा वर्मा का संकलन और वाचन स्वर था। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास से कृत रामचरित मानस गान का पाठ आइए अब सुनते हैं।

किंतु कहीं भी उसे शरण नहीं मिली। जयंत की दशा देख देवर्षि नारद को दया आई और उन्होंने उसे श्री राम की ही शरण जाने को कहा। जयंत को तब तक प्रभु की शक्ति का पूरा आभास मिल चुका था। उनसे उसने अपने प्राणों की भीख मांगी। पार्वती को प्रभु महिमा की कथा सुनाते हुए भगवान शंकर कहते हैं, ऐसे दयालु हैं प्रभु कि प्राणों की भिक्षा मांगते कौवे की आर्तवाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। चित्रकूट में निवास करते हुए कुछ काल बीत जाने पर एक दिन श्रीराम के मन में ये विचार आया कि बहुत लोगों को उनके निवास स्थान की सूचना मिल चुकी है, फलस्वरूप उनके दर्शनों को आने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जाएगी। अतः अपने वन प्रवास को अज्ञात रखने के लिए किसी अन्य स्थान के लिए प्रस्थान करना चाहिए। समय उपयुक्त जान वहां के निवासी मुनिगण आदि से विदा लेकर श्रीराम अनुज लक्ष्मण तथा पत्नी सीता को लेकर गहन वन की ओर अग्रसर हुए। राह में ऋषि अत्रि का आश्रम पड़ता था। श्री राम के आगमन का समाचार पाकर ऋषिवर उनकी अगवानी के लिए दौड़ते हुए आए।

अभी आप सुन रहे थे गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरित मानस गान। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है आज का चिंतन।

एक मशहूर गाना है, मन की गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ। गीतकार शैलेंद्र ने इस गाने को लिखा। गाने को लिखते समय उनके क्या भाव थे यह तो नहीं पता, लेकिन यह सही है, मन की गिरह खोल दो, यानी मन के अंदर दबी हुई कोई भावना है तो उसे खोलकर बह जाने देना चाहिए, क्योंकि मन की यह दबी भावना, चाहे वह क्रोध हो, चिंता हो, दुख हो, यदि वह अंदर रह गया तो धीरे धीरे गांठ बनकर टीस पैदा करता है, जो जख्म बनकर नासूर बन जाता है। जैसे शरीर में गांठ उसे कैंसर की तरफ ढकेलती है, वैसे ही मन की गांठ जीवन के रस, स्नेह, आत्मीयता को सोख कर हमें दुखी, नीरस बना देती है। जिंदगी में हम अक्सर एक तरफा सोचते रहते हैं, क्योंकि हमें दूसरे पक्ष के बारे में बहुत ही कम पता होता है। अपनी उलझनों में हम उलझ कर रह गए हैं।

तनाव इतना ज्यादा होता है कि कुछ भी सोच पाना मुश्किल है। कुंठा अवसाद से घिरा हुआ मन अंदर ही अंदर उलझता जाता है और फिर वह कुछ अच्छा सोच ही नहीं पाता है। हम अपने मन पर दूसरों के कचरे को जमा करते रहते हैं और व्यर्थ ही परेशान होते रहते हैं। दर्द में हम डूबे रहते हैं। मन के दर्द को परत दर परत धीरे धीरे साफ करते रहना चाहिए, जिस तरह हम मोबाइल को साफ करते हैं ताकि उसमें फालतू के संदेश ना रहें और मोबाइल की मेमोरी ठीक ठाक रहे। मन के अंदर बैठे व्यर्थ की गांठों को भी खोलकर मन को हल्का रखना चाहिए ताकि मन मस्तिष्क स्वस्थ रहे। मन की गांठ कैंसर से कम नहीं है। अगर कैंसर सही समय पर नहीं पकड़ा गया तो वह जीवन को खतरे में डाल देता है। वैसे ही मन की गांठ यदि ना खोली जाए तो यह भी मानव को मानसिक रोगी बना देती है। बेचैनी, घबराहट, नींद ना आना, गुस्सा आना, चिड़चिड़ाहट, ये सभी मन के विकार हैं। मनोचिकित्सक इस विषय में कहते हैं कि मन की गांठ को खोलें, क्योंकि यह गांठ जब टीसती है तो आक्रोश, गुस्सा दिलाती है, रुलाती है। यह गांठ कभी बदला लेने के लिए आक्रोशित होकर ज्वालामुखी तरह धधक उठती है तो कभी असहाय होने के एहसास की पीड़ा बनकर छटपटाती रहती है। जापानी चिकित्सा शास्त्री के कुरोकावा के अनुसार मन की यह पीड़ा तन में उतरे बिना नहीं रहती है। उनके शोध निष्कर्ष बताते हैं कि मन की परेशानी ज्यों ज्यों गहरी होती है वैसे वैसे तन की बीमारी का रूप लेती जाती है। यानी नकारात्मक भावनाएं न केवल मन को पीड़ा देती हैं बल्कि तन भी हर पल बीमारी से ग्रसित होता चला जाता है। इसलिए मन में किसी भी प्रकार का विकार न पड़ने दें। मन के अंदर क्रोध बीमारी पनपने ना दें। मन में जो कुछ भी है उसे दूर झटक देना चाहिए। अच्छा सोचें, सकारात्मक सोचें। नकारात्मक विचारों को कभी भी घर नहीं बनाने देना चाहिए। और जो लोग सकारात्मक दिशा में बढ़ते हैं वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं। इसीलिए कहा गया है, मन की गिरह खोल दो, चुप ना बैठो, कोई गीत गाओ। जी हाँ, गीत संगीत एक अच्छा टॉनिक है शरीर के लिए। इसलिए जब मन बेचैन हो, संगीत का आनंद लें, स्वस्थ रहें।

जी हाँ श्रोताओं, मन में किसी भी प्रकार का विकार नहीं होना चाहिए। ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष, ये सब कुछ यदि मन में पनपते रहते हैं तो फिर ये धीरे धीरे धीरे धीरे कुंठित भावना को जन्म देते हैं और अवसाद में व्यक्ति घिर जाता है, तनावग्रस्त रहता है, हमेशा वह नकारात्मक सोच में भरा रहता है। इसलिए अपने विचारों को हमेशा स्वस्थ रखें। किसने क्या किया, किसने क्या कहा, किसने कब कहा, इन सब बातों को भूलकर आप क्या कर रहे हैं, आप क्या करेंगे, और अच्छी दिशा में आगे बढ़ते रहिए सकारात्मक सोच के साथ। बस आप स्वस्थ रहेंगे, तन मन दोनों ही स्वस्थ रहेगा। अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन मन की गाठ, आलेख और वाचन स्वर था निर्मला तिवारी का। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है और अब समय हो चला है मित्रों भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना का। और जो ये सुबह का समय होता है बड़ा शांतिपूर्ण होता है और मौसम भी बड़ा अच्छा है। ऐसे में यदि अच्छे अच्छे भजन सुनने को मिलें तो मन और तन दोनों ही प्रफुल्लित हो जाते हैं। तो आइए सुनते हैं कुछ भजन।

0: मोहम्मद रफ़ी के गाए इसी भजन के साथ ही भक्ति संगीत का आराधना कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आइए, योग करें, स्वस्थ रहें, इस पर ले गई भेंटवार्ता सुनते हैं। भेंटवार्ता कर रहे हैं डॉक्टर अर्चना कुमारी, बातचीत कर रहे हैं संजीव कुमार लाल।
1: दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, शरीर, मन और आत्मा को नियंत्रित करने में योग बहुत ही सहायक है। तो यदि हम प्रातःकाल योग का सहारा लेते हैं, कुछ योग क्रियाएं करते हैं, तो हमारा मन स्वस्थ रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, चित्त शांत रहेगा। तो कैसे योग को आत्मसात करें, योग के द्वारा कैसे हम स्वस्थ रहें, इस विषय पर आज हम बात करेंगे। आज हमारे साथ आमंत्रित हैं राज्य योगा केंद्र के योग प्रशिक्षक डॉक्टर अर्चना कुमारी। अर्चना जी स्वागत है। अर्चना जी, आज के समय में योग का कितना महत्व बढ़ गया है?
2: अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में योग को देखें तो सबसे ज़्यादा महत्व है इसका, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो लोगों की शारीरिक और मानसिक जो समस्याएं हैं वो घटने के बजाय बढ़ती ही चली जा रही, क्योंकि वो दिन

प्रतिदिन की जो दिनचर्या में उन्होंने अब तनाव को अपने जीवन में सम्मिलित कर लिया है, उसको अगर वो धीरे धीरे धीरे धीरे हटाते नहीं चले जाएंगे तो ये बढ़ते चली जाएगी। और उसको हटाने का, अपने शरीर और मन को शांत, शिथिल और स्थिर करने का एकमात्र उपाय योग है। अगर हम बात करें बीमारियों से लेके, तो आप देखेंगे आजकल की जो बीमारियाँ हो गई हैं वो मनोदैहिक हो गई हैं। मन से बीमारियाँ शुरू होती हैं और तब वो आपके शरीर में पहुँचती हैं। पहले के जीवन में था कि संयुक्त परिवार होता था, कोई भी हमारा खुशी वाला पल होता था या दुखी वाला पल होता था, हम घर में सबके साथ शेयर करते थे और वो वहीं पर ख़त्म हो जाता था। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में वैसा नहीं है। लोग अपनी बुरी समस्या हो वो कुछ भी बताना नहीं चाहते लोगों को, जिसके कारण वो तनावग्रस्त होते चले जा रहे हैं। तो योग जो हमारी भारतीय संस्कृति का भी हिस्सा रहा है, अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज के परिप्रेक्ष्य में महर्षि पतंजलि के द्वारा दिया गया है अष्टांग योग, मतलब तो योग के आठ अंग जो आज के परिप्रेक्ष्य में कारगर सिद्ध हो रहे हैं, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आती है। तो सामान्य भाषा में अगर हम इसको समझाना चाहें तो यम का मतलब होता है मन की शुद्धिकरण। मन का शुद्धिकरण कैसे होगा? नेगेटिव अगर हम सोचते रहेंगे तो उससे नहीं होगा ना? मतलब नेगेटिव विचारों को, नकारात्मक विचारों को आपको हटाना है और सकारात्मक विचारों को अपने अंदर प्रवेश करना। जैसे सकारात्मक विचार आपके अंदर प्रवेश होंगे, आपके हार्मोन चेंज होने लगेंगे। तो ये हो गया मतलब कि आपके मन का शुद्धिकरण। नियम, दिन की जो क्रियाएं हैं जो शरीर के द्वारा की जाती हैं, जैसे मल का त्याग करना और भी छोटी छोटी चीज़ें। अगर छोटी सी चीज़ें हैं कि सुबह हमारा पेट साफ़ हो जाता है तो हम अपने शरीर और मन दोनों से फ्री हो जाते हैं। अगर पेट साफ़ नहीं होता है तो हम अपने आप को अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। तो नित्य कर्म की जो क्रियाएँ हैं वो प्रॉपर वे में होनी चाहिए। जैसे ही आप यम और नियम का पालन करने लगेंगे, आपका शरीर और मन दोनों आसन के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। मतलब फिजिकल जो भी प्रैक्टिस आप करेंगे वो इजी वे में होने लगेगा आपसे। और जैसे ही आप आसन करेंगे, आसन से आपका जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो प्रॉपर होगा। तो आपके जो इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन का जो फ्लक्चुएशन है वो कंट्रोल होता है, वो नियंत्रित होता है आपके आसन और प्राणायाम से। जैसे आप आसन प्राणायाम की क्रियाएँ कंप्लीट करते हैं, प्रत्याहार के लिए आपका मन पूरी तरह से तैयार हो जाता है। आज के समय में आप कहीं भी चलते हैं, कोई भी चीज़ आपको अट्रैक्ट कर सकती है तुरंत, लेकिन जब प्रत्याहार जैसी चीज़ें आपके अंदर होंगी तो आप अपने मन को बाहरी वातावरण से आंतरिक वातावरण में इजीली प्रवेश करवा सकते हैं। तब आपको कोई भी चीज़ अट्रैक्ट नहीं करेगी। आपके लिए क्या सही है, आपके शरीर और मन के लिए, आप सोचने में सक्षम होंगे और उस चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। क्योंकि जब तक विचारों में चीज़ें नहीं आती हैं तब तक हम उन सब चीज़ों को नहीं कर पाते हैं। तो जैसे ही प्रत्याहार के लिए हम तैयार होंगे तो हमारा जो शरीर और मन है वो आंतरिक चीज़ों के लिए तैयार हो जाएगा। मतलब धारणा, ध्यान, समाधि। और इसको भी मैं बहुत सामान्य भाषा में बताना चाहूँगी। धारणा मतलब पर्टिकुलर किसी चीज़ पर फोकस करना, धारणा। ध्यान मतलब उस फोकस जहां हमने किया है उस पर कंटिन्यूटी को बनाए रखना। क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो लोगों के बीच पेशेंस नहीं रह गया है, तो उस पेशेंस का ही नाम समझिए तो एक तरफ से ध्यान है। मतलब उसमें कंटिन्यूटी को आप बनाए रख रहे हैं, और समाधि आप उसमें इंक्लूड हो जा रहे हैं, उस चीज को पा ले रहे हैं। तो ये धारणा, ध्यान, समाधि जब आप इस चीज़ को करने लगेंगे तो हर छोटे छोटे वर्क में आपका जो छोटा छोटा डे टू डे लाइफ का नित्य प्रतिदिन का जो एक एम है आप उसको फुलफिल करेंगे। तब देखिएगा आप कैसे स्ट्रेस से, मतलब स्ट्रेस तक आप पहुंच ही नहीं पाएंगे, आप स्ट्रेस से निकलते चले जाएंगे। और दिन प्रतिदिन आप अपने बॉडी और माइंड की टॉक्सिसिटी को अगर रिमूव करते हैं तो आप देखेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट ईजली हो जाता है आपके लिए। क्योंकि स्ट्रेस अगर जीरो होगा तब भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, स्ट्रेस अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब भी कुछ नहीं पाएंगे। मतलब उसको बैलेंस में रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए अष्टांग योग बहुत हेल्पफुल है। आप देखेंगे नित्य प्रतिदिन की क्रियाएं में, मतलब 24 घंटे में अगर आप एक घंटा बहुत अच्छा योगा करते हैं जिसमें आसन, प्राणायाम, आप YouTube देख रहे हैं, Google देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप कर रहे हैं और एक घंटा बहुत अच्छा योगा करेंगे, लेकिन 23 घंटे ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जी। आप दूसरों के बारे में टॉक कर रहे हैं बार बार, जो खान पान का जो आपका तरीका है उस पर चेंजेस ला रहे हैं, जिस समय उठना है उस समय नहीं उठ के आप उस समय सो रहे हैं। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके लिए समस्या का कारण बनती हैं। तो आप दिन में अगर 5 या 10 मिनट का टाइम निकालें और बीच बीच में कुछ ऐसी चीज़ों को, टेक्निक को फॉलो करें जिससे आपका शरीर और मन दोनों बैलेंस में रहे। तो इसके लिए कुछ कुछ बीच में आपको योगा ब्रेक सेशन लेने होते हैं। तो योगा ब्रेक सेशन में जैसे कि कभी थकान होती है तो चाय पीने की इच्छा होती है, आप चाय पिए फिर फ्रेश हो गए, तो बीच बीच में योगा ब्रेक सेशन। तो योगा ब्रेक सेशन का मैं बहुत सारे उसके टेक्निक्स हैं कि कैसे करना है, लेकिन जो छोटी छोटी टेक्निक्स जो डे टू डे लाइफ में आप कर सकते हैं, जैसे जम्हाई लेना। आजकल के
अगर हम सोसाइटी में कहीं बैठे होते हैं, जमाई आती

यार हम रोक लेते हैं वहीं पे। अगर जम्हाई आ रही है प्रॉपर वे में जम्हाई ले लीजिए, अंगड़ाई आपको लेना है आप प्रॉपर वे में अंगड़ाई ले लीजिए। ये छोटी छोटी स्ट्रेचिंग टेक्निक्स हैं हमारी, अगर स्ट्रेचिंग टेक्निक्स आप फॉलो करेंगे कुछ कुछ समय पे, अगर आप कंप्यूटर में वर्क कर रहे हैं डाउन हो के, तो थोड़ा पीछे आप स्ट्रेच कर लीजिए बॉडी को, फुल बॉडी को आपको ताड़ासन की मुद्रा में मतलब अंगड़ाई जैसे लेते हैं वैसे आप स्ट्रेच कीजिए, तो बॉडी आपकी फ्री होती है। उसके बाद कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स, ब्रीदिंग मतलब आपको स्लोली इनहेल करना है फुल्ली एक्सहेल करना है। आप देखेंगे आप बैठे बैठे एक लंबी गहरी सांस भरते हैं तो आप क्या फील करते हैं, रिलैक्स करते हैं। अगर कंटिन्यूटी में 5 to 10 राउंड उसी समय कर लिया जाए तो आप बॉडी और माइंड से फुल्ली फ्री फील करेंगे। स्ट्रेस, डे टू डे लाइफ में स्ट्रेस होना जेन्यून है, क्योंकि आजकल का लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है, खान पान ऐसा हो गया है, तो आप उसमें कुछ चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे ओम का उच्चारण, ओम में 3 वर्ड्स इंक्लूड होते हैं, अ उ म, और तीनों के बॉडी के अलग अलग सिस्टम पे इम्पैक्ट आता है। जैसे अ का है आपके एब्डोमिनल रीजन में, आपका पूरा पेट वाला जो भाग है उसमें उसका इम्पैक्ट आता है। उ से आपका थोरेसिक रीजन, जहाँ से आप सांस लेते हैं छोड़ते हैं, आपका पूरा छाती वाला भाग। और म के उच्चारण में पूरा नर्वस सिस्टम, आपका ब्रेन एक्टिव होता है। तो जैसे आप ओम का उच्चारण कर ले 5 बार बीच बीच में। दो चीज़ें हैं, एक तो ओम का उच्चारण हम भ्रामरी प्राणायाम में यूज कर सकते हैं, जिसमें मुंह बंद किया जाता है, जिसमें भौरे का गुंजन आता है। एक ओम का उच्चारण में आपको प्रॉपर साउंड क्रिएट करना होता है। तो मैं दोनों चीज़ें आपको बता रही हूँ, आप बीच बीच में इसको कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेचिंग सीरीज करने के बाद हम इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे। जैसे है आपका भ्रामरी प्राणायाम, जैसे इसमें लंबी गहरी सांस भरते हैं हम लोग, और सांस छोड़ते हुए भौरे का

इसको ध्यान ही रखना कि खींचना नहीं है। आपकी ब्रीदिंग जितनी है, अगर आपकी ब्रीदिंग शॉर्ट है तो शॉर्ट पीरियड में कंप्लीट होगी, आपकी ब्रीदिंग अगर लॉन्ग है तो वो लॉन्ग पीरियड में कंप्लीट होगी। रिदमिक वे में कंप्लीट करना है 5 to 10 राउंड करना है, और आफ्टर जैसे कंप्लीट हो जाए तो आपको वो जो वाइब्रेशन आपके मन मस्तिष्क में क्रिएट हुआ है, उत्पन्न हुआ है, उसको आपको फील करना है कुछ सेकेंड के लिए। उसी प्रकार ओम का उच्चारण करते हैं हम लोग, इसमें भी एक लंबी गहरी सांस भरते हैं

0: आप जैसे ही ओम का उच्चारण करेंगे, आपके देखेंगे, आप खुद देखिएगा कैसे आपका जो अनवांटेड थिंकिंग है वो कैसे कंट्रोल होना स्टार्ट करती है, माइंड और बॉडी आपकी शांत शिथिल और स्थिर होना स्टार्ट करती है। आप इसको 5 to 10 राउंड में ही फील कर सकते हैं, बजाबते इसको प्रॉपर वे में किया जाए। और करने के बाद सडन आपको उठना नहीं है, सडन थोड़ी देर आपको फील करना है जो भी वाइब्रेशन आपका क्रिएट हुआ है, इससे आप फ्लक्चुएशन कम करने में हेल्पफुल होगा। प्लस ये स्ट्रेस को रिलीज करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो कोशिश करना है हमें कि इनको डे टू डे लाइफ में, बीच बीच में जैसा हमारा वर्क पीरियड होता है, बीच बीच में हम एक योगा ब्रेक सेशंस लें और उसको करें। ध्यान ये रखना है कि खाना खाने के तुरंत बाद चीज़ों को ना करें।
1: योग करें, स्वस्थ रहें। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अर्चना कुमारी से ले गई भेंटवार्ता। इसी के साथ ही स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। बस कुछ ही पलों में सुनेंगे आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। उसके बाद अपने स्टूडियो में हम पुनः हाजिर होंगे आपकी सेवा में।
2: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा।

0: नाम अथ वनक्षेत्राधिकारिणां च नियुक्त्यर्थम् आयोजिताः परीक्षाः अन्याश्च परीक्षाः सम्मिलिताः सन्ति। अन्यासु प्रमुखासु निरस्तासु परीक्षासु प्रशासकीय पॉलिटेक्निक संस्थासु व्याख्यातॄणां वरिष्ठ वैज्ञानिकाधिकारिणां सहायक वन संरक्षकाणां अथ अन्येषां प्रशासनिक प्राविधिक पदानां च नियुक्त्यर्थं परीक्षाः सम्मिलिताः सन्ति। अधिसूचनासु उक्तं यत् जीपीएससी जेएसएससी इत्येतयोः अनियमितता सम्बद्धानां प्रकरणानां शीघ्र विचारणाय उच्च न्यायालयं प्रति द्रुत न्यायालयस्य निर्माणाय अनुरोधः करिष्यते। तदतिरिक्तं जेपीएससी जेएसएससी इत्येतयोः आन्तरिक सतर्कता प्रकोष्ठस्य निर्माणमपि करिष्यते। ब्रिक्स देशैः पर्यावरण संरक्षण सतत विकासस्य क्षेत्रे सहयोगं सुदृढीकर्तुं स्वप्रतिबद्धता पुनः प्रकटिता। नवदिल्ल्यां ह्यः सम्पन्नस्य द्वादश ब्रिक्स पर्यावरण मन्त्रिणाम् उपवेशनस्य अनन्तरं संयुक्त मन्त्रिस्तरीये वक्तव्ये उक्तं यत् ब्रिक्स देशैः सतत विकासस्य 30+ वर्षस्य कार्यविधेः जलवायु परिवर्तन सम्बन्धिनः संयुक्त राष्ट्रसंघस्य रूपरेखा प्रबन्धस्य अथ पेरिस सन्धेः च पूर्व पूर्ण प्रभाविरूपेण कार्यान्वयनं प्रगतिशीलं कर्तुं स्वप्रतिबद्धता पुनः दृढीकृता। देशैः बलं प्रदत्तं यत् विकसित देशेभ्यः वित्तीय सहायतायः उपलब्धतया सह अन्ताराष्ट्रिय सहयोगं सुदृढीकर्तुं विकासशील देशानां पर्यावरण सम्बद्धानां जलवायु सम्बन्धानां च आह्वानानां प्रभाविरूपेण समाधानम् आवश्यकमस्ति। भारतम् अस्मिन् वर्षे सहनशीलतायै नवोन्मेषायै सहयोगायै सतत विकासाय च निर्माणम् इति विषय वस्तुना ब्रिक्स संघस्य अध्यक्षतां करोति। ब्रिक्स देशानां मन्त्रिभिः सतत विकासस्य साधनरूपां चक्रीयार्थव्यवस्थां प्रवर्धयितुं भारतस्य नेतृत्वस्य अपि प्रशंसा कृता। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य सायं तमिलनाडुराज्यस्य द्विदिवसीय यात्रायै चेन्नई नगरं प्राप्स्यति। असौ श्वः चेन्नई नगरस्य समीपे कोवलम् इत्यत्र आयोज्यमाने दक्षिण भारतस्य मुख्यमन्त्रिणां सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति। सम्मेलने तमिलनाडु केरल आन्ध्रप्रदेश तेलंगाना पुडुचेरी चेत्येतेषां प्रदेशानां मुख्यमन्त्रिणः भागं ग्रहीष्यन्ति। राष्ट्रिय परीक्षणाभिकरणेन स्वस्य परीक्षादलस्य व्यापकं पुनर्निर्माणं कृत्वा 600 पुरातनान् विशेषज्ञान् निष्कास्य तेषां स्थाने नूतनाः विशारदाः सङ्गृहीताः। शिक्षामन्त्रालयेन सामाजिकान्तर्जालीय पटले संसूचितं यत् परीक्षापत्राणां सूक्ष्मपरीक्षणं सुदृढं विधातुं एनटीए संस्थया चतुःस्तरीय प्रश्नपत्र परीक्षण प्रणाली कार्यान्विता भविष्यति। वित्तमन्त्रालयेन संसूचितं यत् क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक संघैः प्रवर्तमान वित्तवर्षस्य ऋण प्रदान क्षेत्रे तीव्रवृद्धिः अंकिता। मन्त्रालयानुसारं भारतीय रिजर्व बैंकस्य प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रणाल्याः अन्तर्गतं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकानां प्रदर्शनम् अतीव उत्कृष्टमासीत्। भारते तु विज्ञान विभागेन अद्य पूर्व पश्चिमोत्तर प्रदेशेषु पूर्व मध्य प्रदेशे तथा उत्तराखण्ड राज्ये कतिपयेषु स्थानेषु अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने पाइप से रसोई गैस पीएनजी कनेक्शन घर घर पहुंचाने की योजना को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। ये योजना 1 सितंबर से 2 चरणों में लागू की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार योजना के माध्यम से मौजूदा पीएनजी कनेक्शनों को अपने रसोई घरों में पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल शुरू कर सकेंगे। वर्तमान में देश भर में करीब 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन है। मंत्रालय ने बताया कि योजना के अंतर्गत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सीजीडी कंपनियों को बिना बिल वाले कनेक्शनों को सक्रिय करने और पीएनजी नेटवर्क का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत पात्र सीजीडी कंपनियों को प्रदर्शन अवधि के दौरान जोड़े गए हर अतिरिक्त घरेलू पीएनजी कनेक्शन के लिए 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर अतिरिक्त घरेलू स्तर पर उत्पादित कम कीमत वाली गैस आवंटित की जाएगी।

0: और शिवांगी रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल किया है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4 स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। एनटीए के कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। एनटीए ने यह निर्णय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश के बाद लिया है। इसमें परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी उपाय करने को कहा गया था। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी कर दी है। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। रद्द परीक्षाओं में औषधि निरीक्षक, सहायक प्रोफेसर, उप जिलाधिकारी, दंत चिकित्सक, सहायक अभियंता, सिविल जज, अपर लोक अभियोजक और वन अधिकारी की भर्ती के लिए ली गई परीक्षाएं शामिल हैं। वहीं सरकारी पॉलिटेक्निक में व्याख्याता, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, सहायक वन संरक्षक और अन्य प्रशासनिक तथा तकनीकी पदों की परीक्षाएं भी रद्द की गई हैं। झारखंड सरकार की अधिसूचनाओं में कहा गया है कि अनियमितता से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय से त्वरित अदालत गठित करने का अनुरोध किया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और जापान की प्रगाढ़ साझेदारी और उनके रणनीतिक महत्व पर बल दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश और साझेदारी बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल से कहा है कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, प्रगति और समृद्धि की साझा आकांक्षाओं पर आधारित है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था के लिए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। हालांकि एजेंसी ने यह भी कहा है कि अलनीनो और भौगोलिक राजनीतिक चुनौतियों से आर्थिक रफ्तार धीमी पड़ सकती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्त वर्ष 2026 में वृद्धि दर 7.6% रहने का अनुमान लगाया है। निर्वाचन आयोग ने देश की चुनाव व्यवस्था पर एक फैक्ट शीट जारी की है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं तथा परिषदों के चुनाव भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं, जो एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। आयोग ने बताया कि लगभग 1 अरब मतदाताओं को फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र जारी किए गए हैं। ये फैक्ट शीट अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनावी प्रक्रिया का उल्लेख किए जाने के बाद जारी की गई है। गृहमंत्री अमित शाह तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर आज शाम चेन्नई पहुंचेंगे। श्री शाह कल चेन्नई के पास कोवलम में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में तमिलनाडु, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत तब तक के लिए रोकने को कहा है जब तक ईरान किसी समझौते के लिए तैयार न हो जाए। अमेरिकी प्रशासन ने यह फैसला तब लिया है जब होर्मोज जलडमरू मध्य की स्थिति और दोनों देशों के बीच जारी तनाव को लेकर अमेरिका और ईरान के द्वारा परस्पर विरोधाभासी बयान जारी किए जा रहे हैं। नीदरलैंड्स के एम्स्टरडैम में एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। अगले दौर में जगह बनाने के लिए दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला महत्वपूर्ण है। भारत ने अब तक 2 मैचों से 3 अंक हासिल किए हैं और उसे अगले दौर में पहुंचने के लिए आज का मैच कम से कम ड्रॉ खेलना होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. The government has approved an incentive scheme for promotion of domestic PNG connections aimed at bringing clean, safe and affordable piped cooking gas to households across the country. The scheme will be effective from the 1st of next month. The Minister of Petroleum and Natural Gas said that the scheme is designed to fast-track the expansion of active PNG connections, ensuring that more families can start using piped natural gas in their kitchens at the earliest. Currently, there are 1.74 crore domestic PNG connections across the country. The Ministry added the new scheme directly incentivizes the city gas distribution companies to actively convert unbilled connections into working gas connections and expand the PNG network to new areas. It said that piped natural gas offers households a safer, cleaner and more convenient alternative to LPG cylinders and traditional cooking.

अभी से थोड़ी देर बाद यानी कि 7:15 पर पलाश कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे कुछ भोजपुरी लोकगीत। गायक कलाकार होंगे भरत से भारती और साथी। सुगम संगीत के कार्यक्रम स्वर सरिता के तहत सुनवाएंगे चंदा घोंसले गुलाम अली की गाई हुई 7:45 पर। सुबह 8 बजे शामिल होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में समाचारों के लिए। हिंदी अंग्रेजी समाचार सुनेंगे आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से 8:30 सुन सकते हैं। 8:45 पर हम अपने केंद्र से प्रस्तुत करेंगे गीत गुंजन कार्यक्रम के तहत कुछ फिल्मी गाने। जोहार पलामू हमारे यह कार्यक्रम सुनेंगे आप सुबह 9 बजे। प्रस्तुति स्वर होगा निर्मला तिवारी।

सुबह 10 बजे एक बार पुनः शामिल होंगे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में हिंदी अंग्रेजी समाचारों के लिए। 10:10 पर ले चलेंगे आप सभी को आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के विभिन्न कार्यक्रम। सेल्यूलाइट के सितारे 10:10 पर, रंग तरंग 11 बजे और यादों के महफिल सजेगी 12 बजे। 1 बजे हिंदी समाचार, अंग्रेजी समाचार 1:05 पर, 1:10 पर प्रादेशिक समाचार सुन सकेंगे आप। 1:20 पर पुनः सुनेंगे आप विविध भारती के तहत सुरीला सफर कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। 2 बजे पुनः आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार, 2:15 पर हिंदी समाचार और 2:30 सुनेंगे विविध भारती के तहत सदाबहार नगमे। प्रादेशिक समाचार 2:55 पर सुनेंगे आप आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 3 बजे पुनः विविध भारती के तहत सुनेंगे सखी सहेली कार्यक्रम। 4 बजे प्रादेशिक समाचार 4:02 से आज के मेहमान विविध भारती के तहत सुनेंगे आप यह कार्यक्रम। प्रादेशिक समाचार शाम 5 बजे और 5:02 से पुनः सुनेंगे विविध भारती के तहत छाया गीत। 5:30 हम एक बार फिर से जानकारी देंगे आप सभी को सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों की अपने स्टूडियो से।

शाम 5:35 पर घर आंगन कार्यक्रम के तहत सुनेंगे आप फोटोग्राफी के क्षेत्र में अवसर, विश्व फोटोग्राफी दिवस पर ये चर्चा और मानवता का अर्थ दया, करुणा और प्रेम, विश्व मानवता दिवस पर ये चर्चा भी सुनेंगे आप। माया पंडित की वार्ता सुनेंगे आप हिंदी साहित्य के महान संत गोस्वामी तुलसीदास। प्रादेशिक समाचार शाम 6:00 आकाशवाणी के रांची केंद्र से और 6:02 से खेती बाड़ी कार्यक्रम के तहत चर्चा की जाएगी खेतों को परती न छोड़ें किसान और कम पूंजी में सागों की खेती। सुरेश प्रसाद प्रजापति चोरकट पलामू से ले गई आप भेंटवार्ता सुनेंगे एक केचुआ पालक, केचुआ पालन और औषधीय पौधों की खेती पर बातचीत होगी, बातचीत करेंगे संतोष कुमार। कृषक महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम शाम 6:30 ग्रामीण सभा कार्यक्रम के तहत चर्चा होगी। इस कार्यक्रम में महिलाओं के लिए उन्नत कृषि यंत्र पर आज की बात होगी। दीदीबाड़ी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य और मृदा अपरदन से बचाव एवं जल संरक्षण पर ली गई भेंटवार्ता सुनेंगे आप। भेंटवार्ताकार होंगे डॉक्टर विनोद कुमार पांडे, कृषि विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र चियाकी पलामू। बातचीत करेंगे संतोष कुमार। पूर्व प्रसारित भेंटवार्ता होगी। मौसम विभाग से प्राप्त मौसम की जानकारी और पलामू की मंडी से प्राप्त आज का बाजार भाव भी आप जानेंगे इसी कार्यक्रम में और आज की नसीहत प्राकृतिक खेती पर शाम 6:55 पर शामिल होंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र में। 7:00 सुन पाएंगे आप प्रादेशिक समाचार जिले में आजकल 7:10 पर। फिल्म संगीत के कार्यक्रम एक रंग के तहत सुनेंगे कुछ फिल्मी गाने शाम 7:45 पर हमारे स्टूडियो से। कल्याणी कार्यक्रम सुनेंगे आप 7:45 पर। स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा से ली गई भेंटवार्ता, सफ़ेद दाग घबराए नहीं। बातचीत करेंगे संजय कुमार लाल। पूर्व प्रसारित ये भेंटवार्ता होगी। फिल्म संगीत के कार्यक्रम चित्रपट से के तहत सुनवाएंगे हम सभी आप सुन पाएंगे रात्रि 8:00 कुछ फिल्मी गाने और 8:45 पर शामिल होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू समाचारों के लिए। छाया गीत सुनेंगे आप विविध भारती के तहत 9:30 आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। रात्रि 10:00 रजनीगंधा कार्यक्रम के तहत सुनवाएंगे कुछ फिल्मी गाने अपने स्टूडियो से और हिंदी, अंग्रेजी समाचारों के लिए एक बार पुनः 11:00 शामिल होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में और रात्रि के 11:10 पर करेंगे हम सभा समापन। तो यह थी जानकारी कार्यक्रमों से संबंधित हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। अब समय हो चला है लोकगीतों के कार्यक्रम पलाश का, तो सुनवाते हैं आपको कुछ भोजपुरी लोकगीत। गायक कलाकार हैं भरत सिंह भारती और साथी।

भरत सिंह भारती और साथियों से अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी लोकगीत पलाश कार्यक्रम के तहत। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। सुगम संगीत के कार्यक्रम स्वर सरिता में आइए सुनते हैं गुलाम अली को।

सरकार ने घरेलू पाइपलाइन गैस कनेक्शन को घर घर पहुंचाने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 600 पुराने विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए। झारखंड सरकार ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बीच अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की। दिल्ली जल बोर्ड रिश्वत मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और 5 अन्य गिरफ्तार। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर मिसाइल हमले का आरोप लगाते हुए व्यापारिक और वित्तीय लेनदेन स्थगित किए। और नीदरलैंड्स में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पाइप से रसोई गैस पीएनजी कनेक्शन घर घर पहुंचाने की प्रक्रिया तेज करने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। ये योजना पहली सितंबर से 2 चरणों में लागू की जाएगी। एक रिपोर्ट। पेट्रोलियम

0: प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार योजना के माध्यम से मौजूदा पीएनजी कनेक्शनों को अपने रसोई घरों में पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल शुरू कर सकेंगे। वर्तमान में देश भर में करीब 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन है। मंत्रालय ने बताया कि योजना के अंतर्गत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सीजीडी कंपनियों को बिना बिल वाले कनेक्शनों को सक्रिय करने और पीएनजी नेटवर्क का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत पात्र सीजीडी कंपनियों को प्रदर्शन अवधि के दौरान जोड़े गए हर अतिरिक्त घरेलू पीएनजी कनेक्शन के लिए 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर अतिरिक्त घरेलू स्तर पर उत्पादित कम कीमत वाली गैस आवंटित की जाएगी। आनंद और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4-स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। एनटीए के कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। परीक्षा एजेंसी ने यह निर्णय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश के बाद लिया है। इसमें परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी उपाय करने को कहा गया था। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी कर दी है। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं।
2: सरकार ने उन परीक्षाओं के परिणाम भी रद्द कर दिए हैं जिनकी प्रारंभिक प्रक्रिया टीडीपीएल द्वारा कराई गई थी। अधिसूचनाओं के अनुसार कथित अनियमितताओं को लेकर एसआईटी की जांच और जारी सीआईडी जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द की गई है। सरकार ने 6 परीक्षाओं को स्थगित करने और 17 परीक्षाओं की सीआईडी जांच कराने का भी फैसला लिया है। दोनों आयोगों में आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, जबकि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता वाली समिति परीक्षा प्रणाली में सुधार के सुझाव देगी। मैं विश्व रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदित प्रकाश राय और 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को उन्नत बनाने की टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी के मामले में हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: सतर्कता निदेशालय की शिकायत पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान सामने आया कि निविदा प्रक्रिया में कथित तौर पर ऐसी तकनीकी विशिष्टताएं और शर्तें शामिल की गई थीं जो एक विशेष प्रौद्योगिकी प्रदाता के पक्ष में थीं। इससे प्रतिस्पर्धा सीमित हुई और एक चयनित निजी इकाई को अनुचित लाभ पहुँचा। जाँच में यह भी सामने आया है कि निजी व्यक्ति कथित तौर पर कुछ सरकारी अधिकारियों और बिचौलियों के साथ संपर्क में थे ताकि निविदा प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सके। एसीबी के अनुसार इससे विशेष प्रौद्योगिकी प्रदाता के पक्ष में निविदा की शर्तों को प्रभावित करने के लिए निजी व्यक्तियों और सरकारी अधिकारियों के बीच कथित साठगांठ के संकेत मिलते हैं। जांच में पूरे धन के लेन देन और कथित अपराध से अर्जित आय की भी जाँच की जा रही है। अनुपम और आनंद के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और जापान की प्रगाढ़ होती साझेदारी और उनके रणनीतिक महत्व पर बल दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश और साझेदारी बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल से कहा कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, प्रगति और समृद्धि की साझा आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने कहा कि यामानाशी प्रांत के प्रतिनिधियों की मौजूदगी ये दिखाती है कि इस साझेदारी का भारत के राज्यों और क्षेत्रों तक तेजी से विस्तार हो रहा है।
4: जापान के निवेशक और वहाँ पे नवाचार से जुड़े हुए लोग उत्तर प्रदेश के दौरे पे आए हैं। यामाची और उत्तर प्रदेश के बीच ये जो साझेदारी है इससे बड़े पैमाने पे निवेश आएगा, ढेर सारे लोगों को रोजगार और व्यापार के अवसर मिलेंगे।
1: इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। हालांकि एजेंसी ने यह भी कहा है कि अलनीनो और भौगोलिक राजनीतिक चुनौतियों से आर्थिक रफ्तार धीमी पड़ सकती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्त वर्ष 2026 में वृद्धि दर 7.6% रहने का अनुमान लगाया है।

0: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वित्त वर्ष 2025-26 में ऋण देने के मामले में जबरदस्त बढ़ोतरी की है। इस दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के प्राथमिक क्षेत्र ऋण फ्रेमवर्क के अंतर्गत इन बैंकों का प्रदर्शन मजबूत रहा। हालांकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कुल बकाया ऋण में 2024-25 के मुकाबले 10.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो गत वित्त वर्ष में 5,78,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का था। गृहमंत्री अमित शाह तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर आज शाम चेन्नई पहुंचेंगे। श्री शाह कल चेन्नई के पास कोवलम में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में तमिलनाडु, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर मलेशिया से एक कुख्यात गिरोह के 3 आरोपियों को भारत लाने में सफलता हासिल की है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि इन आरोपियों के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से संबंध थे। हत्या, जबरन वसूली, विस्फोटक रखने तथा हाल में लुधियाना में हैंड ग्रेनेड विस्फोट की साजिश से जुड़े कई मामलों में इनकी तलाश थी। हरियाणा पुलिस ने पंजाब के एक परिवार और उसके सहयोगियों से जुड़े अंतर्राज्यीय बाल तस्कर गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना परगट सिंह को पंजाब के मुक्तसर से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरोह ने अब तक देश भर में 50 नवजात बेचे हैं। बहादुरगढ़ के पुलिस उपायुक्त मयंक मिश्रा ने आकाशवाणी को बताया कि अब तक गिरोह से जुड़े 21 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज तड़के न्यू मार्केट इलाके में एक होटल में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि होटल में आग से बचाव और अग्निशमन की व्यवस्था नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मानव जीवन की सार्थकता अन्य प्रणालियों के कल्याण और भलाई के लिए अनवरत काम करने में ही है। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपनी शारीरिक क्षमताओं, धन, बुद्धि और वाणी का इस्तेमाल परहित और कल्याणकारी कार्यों के लिए करना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर शर्मा प्रसिद्ध शिक्षाविद, कानूनविद और कुशल राजनेता थे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्वी हिस्सों, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश हो सकती है। उधर उत्तरी उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नदियों में उफान से 6 जिलों के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और लगभग 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं।
1: भद्रक में भंडारी पोखरी और तिहिड़ी ब्लॉक सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से है, जहां बाढ़ का पानी गांव में घुस गया है और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जाजपुर, केंद्रापड़ा, बालेश्वर, केओंझर और मरभज में भी बाढ़ जैसा हालत है। ब्राह्मणी और सालंदी नदियों का जलस्तर बढ़ने से संकट और गहरा हो गया है, जबकि अखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एहतियात के तौर पर कई स्कूल बंद रखे गए हैं। राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों और किसानों के लिए 1,000 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: संयुक्त अरब अमीरात ने इलाके में बढ़ते तनाव और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे को देखते हुए ईरान के साथ सभी प्रकार के व्यापारिक और वाणिज्यिक लेनदेन को स्थगित कर दिया है। अमीरात के विदेश मंत्रालय की संचार निदेशक अफरा अल हामिली ने बताया कि इस फैसले का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता और वित्तीय व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाए रखना है। अमीरात ने यह घोषणा ईरान की ओर से खाड़ी में 2 बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के दागे जाने के बाद की। हालांकि अमीरात ने यह भी कहा कि वो शांति और स्थिरता के बीच बातचीत, सहयोग और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति संकल्पित है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
2: नीदरलैंड्स में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। दोनों टीमों के लिए अगले दौर में जगह बनाने के लिए ये मुकाबला महत्वपूर्ण है। भारत ने अब तक 2 मैचों से 3 अंक हासिल किए हैं और उसे अगले दौर में पहुंचने के लिए आज का मैच कम से कम ड्रॉ खेलना होगा। भारत ने वेल्स को हराया है और इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा है। श्रीलंका में गोल क्रिकेट टेस्ट के 5वें और आखिरी दिन आज श्रीलंका की टीम अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट पर 84 रन से आगे खेलेगी। भारत ने श्रीलंका को 372 रन का लक्ष्य दिया है। श्रीलंका को जीत के लिए अभी 288 रन की जरूरत है, जबकि भारत श्रृंखला की जीत से केवल 6 विकेट दूर है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कल नई दिल्ली में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार जीत दर्ज की। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने

0: पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कॉलिन फिलिमोन को हराया, वहीं त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।

0: जंतर मंतर पर पुलिस सख्ती के आरोपियों की जांच सर्वोच्च न्यायालय की उच्च स्तरीय समिति से कराए जाने का फैसला कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने दिल्ली पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से इनकार करने का भी समाचार दिया है। 2 अक्टूबर से बैंकिंग फॉर यूथ अभियान दैनिक जागरण के आर्थिक पन्ने की खबर है। पत्र लिखता है, युवाओं को बैंकिंग सुविधा की जानकारी देने के लिए युवा कियोस्क और युवा बैंकिंग मित्र बनाएंगे सभी बैंक। 16 साल बाद भारत और पाकिस्तान आमने सामने, पुरुष हॉकी विश्व कप में शीर्ष 2 में जगह बनाने पर नजरें, अमर उजाला की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पन्ने पर विश्वविद्यालयों में भारतीय ज्ञान पर शोध की प्रक्रिया शुरू होने पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, भारतीय ज्ञान परंपरा को मिली महत्ता, भारतीय ज्ञान की खोज हमें औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त कराने के लिए, विकसित भारत के लिए ज्ञान लोग गढ़ने वाली भी है। अंतरिक्ष में उगाई सरसों से बनाई सबसे स्वादिष्ट स्पेस डिश, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन और उनकी साथी जेसिका विट ने किया कारनामा, बीज और खेती की सामग्री पृथ्वी से पहले ही भेजी गई थी। राजस्थान पत्रिका ने आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर दुनिया के पुरस्कृत फोटोग्राफ को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। पत्र लिखता है, अंधेरे में शिकार को झपटने को तत्पर बार्न उल्लू, ये तस्वीर इंग्लैंड के नॉरफॉक की है और तस्वीर ली है विंस बर्टन ने। पत्र ने आइसलैंड में डेनियल विने गार्सिया द्वारा क्लिक की गई तस्वीर भी साझा की है, जो ज्वालामुखी से बहते गर्म लावा का विहंगम चित्र है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने घरेलू पाइपलाइन गैस कनेक्शन को घर घर पहुंचाने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 600 पुराने विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए। झारखंड सरकार ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बीच अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की। दिल्ली जल बोर्ड रिश्वत मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और 5 अन्य गिरफ्तार। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर मिसाइल हमले का आरोप लगाते हुए व्यापारिक और वित्तीय लेन देन स्थगित किए। और नीदरलैंड्स में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Government approves incentive scheme to accelerate domestic PNG connections. National Testing Agency revamps its examination team by removing 600 experts and onboarding new ones. Jharkhand government releases list of 44 recruitment exams cancelled due to irregularities amid students' protest. Anti-corruption branch of Delhi government arrests former minister and AAP leader Satyendra Jain and 5 others in Jal Board bribery case. UAE suspends all trade and financial dealings with Iran after accusing it of missile threat. And India to take on Pakistan in the crucial Pool D match of the FIH Men's Hockey World Cup in Amstelveen, Netherlands today. The government has approved the incentive scheme for promotion of domestic PNG connections aimed at bringing clean, safe and affordable piped cooking gas to households across the country. The scheme will be effective from the 1st of next month. The Ministry of Petroleum and Natural Gas said that the scheme is designed to fast-track the expansion of active PNG connections, ensuring that more families can start using piped natural gas in the kitchens at the earliest. Currently, there are 1.74 crore domestic PNG connections across the country. The ministry added the new scheme directly incentivizes the city gas distribution companies to actively convert unbilled connections into working gas connections and expand the PNG network to new areas. It said that piped natural gas offers households a safer, cleaner and more convenient alternative to LPG cylinders and traditional cooking fuels. The scheme will be implemented over 2 tranches spanning 6 months. The National Testing Agency NTA has revamped its examination team by removing 600 experts and onboarding new experts. In a social media post, Ministry of Education said that a 4-tier question paper checking system will be put in place by NTA to strengthen the scrutiny of the examination papers. The NTA will also induct 20 to 25 officials.

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने रद्द और सीआईडी जांच वाली 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की। मामलों की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट से फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का किया जाएगा अनुरोध। राज्य में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग पर राजनीतिक बयानबाजी तेज। मगध और आम्रपाली कोल परियोजना से जुड़े टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने 12 दोषियों को 5 से 10 साल तक की सजा सुनाई। संसद की औद्योगिक स्थायी समिति की 6 सदस्यीय टीम एचईसी प्लांट के दौरे पर आज पहुंचेगी रांची। और राज्य में पिछले 36 घंटों से बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण रद्द और सीआईडी जांच वाली कुल 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की है। रद्द परीक्षाओं में जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षाएं, सीडीपीओ, ड्रग

0: इंस्पेक्टर, सिविल जज, सहायक वन संरक्षक, सहायक प्राध्यापक और अन्य भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं। कल देर रात जारी 8 अधिसूचनाओं में कई परीक्षाओं को रद्द करने के साथ जांच और परीक्षा सुधार से जुड़े फैसलों की जानकारी दी गई। पेश है एक रिपोर्ट।
1: झारखंड सरकार ने जीपीएससी, जेएसएससी और आउटसोर्स एजेंसियों द्वारा आयोजित 44 भर्ती परीक्षाओं को रद्द कर दिया है, जिसमें जेएसएससी, सीजीएल और टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाएं भी शामिल हैं। सरकार ने उन परीक्षाओं के परिणाम भी रद्द कर दिए हैं जिनकी प्रारंभिक प्रक्रिया टीडीपीएल द्वारा कराई गई थी। अधिसूचनाओं के अनुसार कथित अनियमितताओं को लेकर एसआईटी की जांच और जारी सीआईडी जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर जेएसएससी, सीजीएल परीक्षा रद्द की गई है। सरकार ने 6 परीक्षाओं को स्थगित करने और 17 परीक्षाओं की सीआईडी जांच कराने का भी फैसला लिया है। दोनों आयोगों में आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, जबकि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता वाली समिति परीक्षा प्रणाली में सुधार के सुझाव देगी। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की पूरी प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई है। साथ ही बाहरी परीक्षा एजेंसी टीडीपीएल पर भी कड़ी कार्रवाई का फैसला लिया गया है। सरकार ने परीक्षा एजेंसी को भविष्य में राज्य की किसी भी परीक्षा का संचालन करने से प्रतिबंधित करते हुए ब्लैकलिस्ट करने का आदेश दिया गया है। राज्य में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने आरोप लगाया कि छात्र आंदोलन के पीछे भाजपा का हाथ है। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग पर कहा कि राज्य सरकार की भी एजेंसियां हैं, प्रदर्शनकारी छात्रों को भरोसा करना चाहिए।
2: भाजपा नहीं चाहती है कि छात्रों का आंदोलन समाप्त हो। छात्रों के हित से उनको कोई लेना देना। भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि आंदोलन कंटिन्यू करे ताकि उन्हें कांग्रेस के ऊपर अटैक करने का अवसर। सीआईडी में ताला लगा दे, एसीबी को बंद कर दे, स्पेशल ब्रांच को बंद कर, हमारी भी एजेंसी है, और क्राइम हो चाहे इकोनॉमिकल क्राइम, वो राज्य का सब्जेक्ट।
0: वहीं भाजपा सांसद बीडी राम ने कल गढ़वा में कहा कि सीबीआई में जो दक्षता है वह सीआईडी में नहीं है, इसलिए प्रदर्शनकारी छात्रों की जो मांग है राज्य सरकार उसे माने।
3: छात्रों की मुख्य मांग है इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए, उस मांग को सरकार ने अभी तक नहीं माना। क्या सरकार स्वयं इस बात से डरी हुई है कि सीबीआई की जांच हो जाती है बहुत सारे नामी गिरामी लोगों की गिरफ्तारियां होने लगी? क्या पहले एसीबी, सीआईडी के रहते हुए सीबीआई की जांच नहीं होती?
0: जेपीएससी, जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी मामले में आंदोलन आज 26वें दिन भी जारी है। जेपीएससी, जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ परीक्षाएं रद्द करने से आंदोलन समाप्त नहीं होगा। मंच ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग दोहराई। राज्य सरकार की ओर से जेएसएससी, सीजीएल परीक्षा रद्द किए जाने के फैसले के खिलाफ सफल अभ्यर्थियों ने कहा कि वे लोग सरकार के फैसले को कोर्ट में चुनौती देंगे। मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन के बाहर जुटे आक्रोशित अभ्यर्थियों ने कल रात आक्रोश मार्च निकाला और अपना कड़ा विरोध दर्ज किया। संसद की औद्योगिक स्थायी समिति की 6 सदस्यीय टीम हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC के दौरे पर आज रांची पहुंचेगी। समिति कल HEC के FFP, HMBP और HMTP प्लांट का निरीक्षण करेगी। टीम के दौरे को लेकर लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रहे HEC के कर्मचारियों में उम्मीद जगी है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कल नाला और जामताड़ा विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर SIR प्रक्रिया की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम नहीं होने वाले पात्र भारतीय नागरिक फॉर्म 6 और घोषणा पत्र भरकर BLO को जमा करें। CEO ने BLO को निर्देश दिया कि कोई भी पात्र मतदाता जानकारी के अभाव में सूची से ना छूटे, इसके लिए घर घर संपर्क करें। चतरा के

0: कांडवा स्थित मगध और आम्रपाली कोल परियोजना से जुड़े टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने 12 दोषियों को 5 से 10 साल तक की सजा सुनाई है। 5 दोषियों को अधिकतम 10 वर्ष, 6 दोषियों को अधिकतम 8 वर्ष और 1 को 5 वर्ष की सजा सुनाई गई है। साथ ही उन पर 40,000 से लेकर 90,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया गया है। कोडरमा पुलिस ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र की कोडरमा शाखा में लूट की योजना बना रहे 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि पुलिस की कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। इस घटना में तिलैया थाना प्रभारी समेत कुछ पुलिस कर्मियों को मामूली चोट भी आई है।
1: कुछ लड़के हथियार के साथ और एक बैंक डकैती की तैयारी कर रहे हैं। वहां में 5 से 6 लोग दिखाई दिए, जिनके द्वारा पुलिस की टीम को देखने के बाद फायरिंग करनी शुरू कर दी गई। सेल्फ डिफेंस में हमने फायरिंग की, उसमें एक युवक से गोली लग गई है पैर में, और इसके अलावा 3 और लोग डिटेन किया अभी तक केस में। इनके पास सामान मिले, उसमें 3 पिस्टल है, 15 गोलियां हैं और 5 मैगजीन है। इनके पास जो मोबाइल्स मिले हैं उसमें प्रॉपर रेकी के वीडियोज मिले।
0: बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर झारखंड में हो रहा है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 36 घंटों से रुक रुक कर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है, जबकि कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इधर मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज भी राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। महिला हॉकी विश्व कप 2026 के मुकाबले में कल भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 6-1 से हरा दिया। इस शानदार जीत पर झारखंड हॉकी ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने रद्द की गई और सीआईडी जांच वाली 44 भर्ती परीक्षाओं की जारी सूची की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर ने लिखा है सीजीएल और सिविल सेवा समेत 22 परीक्षाएं रद्द। प्रभात खबर ने अगले सत्र से बीआईटी मिश्रा में राज्य के विद्यार्थियों के लिए सीटें आरक्षित कराने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने आम्रपाली मगध कोल परियोजना में टेरर फंडिंग के मामले में एनआईए की विशेष अदालत से 12 आरोपियों को सजा सुनाए जाने की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने लिखा है अभी थमने वाला नहीं है सीजीएल परीक्षा विवाद। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने रद्द और सीआईडी जांच वाली 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की। मामलों की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट से फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का किया जाएगा अनुरोध। राज्य में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग पर राजनीतिक बयानबाजी तेज। मगध और आम्रपाली कोल परियोजना से जुड़े टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने 12 दोषियों को 5 से 10 साल तक की सजा सुनाई। संसद की औद्योगिक स्थायी समिति की 6 सदस्यीय टीम एचईसी प्लांट के दौरे पर आज पहुंचेगी रांची। और राज्य में पिछले 36 घंटों से बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब समय हो चला है फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीत गुंजन का, तो आइए शुरू करते हैं यह कार्यक्रम। आप तमाम साथियों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त निर्मला का नमस्कार। और दोस्तों, आज हमने गीतों की महफिल सजाई है भारतीय सिनेमा के मशहूर संगीतकार खयाम के संगीतबद्ध कुछ चुनिंदा गानों से। उनके साजों की आवाज़ लोगों के दिलों में सदियों तक झंकृत होती रहेगी, बिल्कुल। और प्रस्तुत है उनके संगीत से सजे हुए सदाबहार गाने।

अभी आप सुन रहे थे कभी कभी हलम का गाना। लता मंगेशकर की आवाज़ और साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ गाना खयाम का संगीतबद्ध किया हुआ। आइए सुनवाते हैं अगला गाना।

अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले को, फिल्म थी उमराव जान, गीत के बोल शहरयार के थे, धुन बनाई थी खयाम ने। दोस्तों आज हास्य और चरित्र अभिनेता उत्पल दत्त जी, जिन्होंने हिंदी बंगाली फिल्मों में अपने अभिनय से काफ़ी प्रसिद्धि पाई, आज हम उन्हें भी याद कर रहे हैं। और उत्पल जी एक बड़े मंझे हुए कलाकार थे जो हर किरदार में बिल्कुल फिट हो जाते थे। उन्होंने नकारात्मक भूमिकाएं भी निभाई, लोगों को हंसाया, गुदगुदाया, यानी जिस भी किरदार में वो रहे बिल्कुल वैसे ही बन गए। उनका संजीदा अभिनय, हाव भाव दर्शकों को काफ़ी भाता था। हिंदी फिल्में तो उन्होंने कम ही की, लेकिन वो अपनी छाप छोड़ गए। बंगाली फिल्मों में उन्होंने काफ़ी काम किया और निर्देशन भी किया, कुछ फिल्मों का अभिनय तो किया ही। तो आइए सुनवाते हैं आपको एक गाना गोलमाल फिल्म से, किशोर कुमार का गाया हुआ।

तुम कहाँ हम कहाँ ताल कहाँ सम कहाँ तुम कहाँ हम कहाँ तेरे कर तुम तो?

0: अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार अमित कुमार की आवाज़ों में गोलमाल फिल्म का गाना, और इसी के साथ ही फिल्म संगीत का गीत गुंजन कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। समय हो गया है जोहार पलामू कार्यक्रम का। आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम। प्रस्तुति स्वर है निर्मला तिवारी का, संयोजन करता है श्री प्रशांत गौरव।
1: जोहार पलामू।

जोहार नमस्कार। ऊंचाई पर वे ही पहुंचते हैं जो बदला नहीं बदलाव लाने की सोच रखते हैं। इन्हीं सुविचारों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं आप तमाम साथियों का हमारे इस कार्यक्रम में। मित्रों, आज है संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती। मान्यता अनुसार श्रावण मास की सप्तमी तिथि को उनका जन्म हुआ था एक ब्राह्मण परिवार में। कहा जाता है कि जन्म से ही उनके 32 दांत थे और जन्म लेते ही उन्होंने राम राम नाम का उच्चारण किया, जिस कारण उनका नाम रखा गया राम बोला। लेकिन उनका जन्म हुआ था नक्षत्र अशुभ नक्षत्रों में, जिसके कारण उनके माता पिता डर गए थे और उन्होंने उनका त्याग कर दिया था। वो बालक अनाथों की तरह इधर उधर रहने लगे। बाद में संत नरसिम्हानंद दास ने उन्हें अपना शिष्य बनाया। संत नरहरि नंद दास ने उन्हें अपना शिष्य बनाया और नाम रखा तुलसीदास। बाद में एक विदुषी कन्या से उनका विवाह संपन्न हुआ। वो अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करते थे। उनकी प्रेम की अधिकता के कारण एक बार उनकी पत्नी ने उन्हें तिरस्कृत करते हुए कहा

कि जितना प्रेम आप मुझसे करते हैं, यदि उतना ही प्रेम आप ईश्वर से करें तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और यह बात उनके दिल में लग गई और फिर वो ईश्वर की तलाश में घर से निकल पड़े। घर बार छोड़ दिया, सन्यासी का वेश धारण कर लिया और राम की खोज में वो इधर उधर चले गए। चित्रकूट पहुँचे तो वहाँ उन्हें हनुमान जी के दर्शन हुए और उन्होंने ही श्री राम जी से मिलन का मार्ग बताया। बाद में प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ उन्हें दर्शन दिए बालक रूप में और उन्होंने बाद में महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की। इसके साथ ही अन्य कई रचनाएं भी उन्होंने की, कई ग्रंथों की रचना की। तो ऐसे संत शिरोमणि का धरती पर आना किसी कार्य विशेष के लिए ही होता है मित्रों। उनके चरणों में हम बार बार नमन करते हैं और सुनते हैं एक श्री राम भजन।

चलिए अब मौसम की भी बातें कर लेते हैं। मौसम की बातें करें तो झमाझम बारिश होने से नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। राज्य के कई ज़िलों में लगातार वर्षा होने से लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है और कई ज़िलों में अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। जान माल की भी हानि हो रही है क्योंकि बारिश के पानी से नदी नाले सब उफान पर हैं। आज भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, संभावनाएं बनी हुई हैं, ऐसे में सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है मौसम विभाग के अनुसार। तो ऐसा कुछ रहने वाला है मौसम, सतर्क रहें, लापरवाही ना करें, बच्चों को नदी नालों से दूर रखें और स्वयं भी वहां जाने से बचें क्योंकि ऐसे में दुर्घटनाएँ हो जाती हैं अक्सर और हम अभी के दौर में ऐसी घटनाएँ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं समाचारों के माध्यम से जो काफ़ी दुखद होती हैं। दोस्तों आज है विश्व फोटोग्राफी दिवस। जी, स्मृतियों को संजोए रखने का खूबसूरत पल जो होता है उसे हम कैद कर सकते हैं फोटोग्राफी के माध्यम से। कहा जाता है कि सन 1839 में सर्वप्रथम फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुइस जेकस तथा मेंडे डाग्यूरे ने फोटो तत्व को खोजने का दावा किया। ब्रिटिश वैज्ञानिक विलियम हेनरी फास टेलबोट ने नेगेटिव पॉजिटिव प्रोसेस को ढूंढा था और सन 1834 में टेलबोट ने लाइट सेंसिटिव पेपर का आविष्कार किया जिससे खींचे चित्र को अस्थायी रूप में रखने की सुविधा प्राप्त हुई। फ्रांसीसी वैज्ञानिक आर्गो ने 7 जनवरी सन 1839 को फ्रेंच अकेडमी ऑफ साइंस के लिए एक रिपोर्ट तैयार की थी। फ्रांस सरकार ने यह प्रोसेस रिपोर्ट खरीदकर उसे आम लोगों के लिए 19 अगस्त सन 1939 को फ्री घोषित किया। यही कारण है कि 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। इस संसार में प्रकृति ने प्रत्येक प्राणी को, यदि हम कहें तो, जन्म के साथ ही एक कैमरा भी दिया है। जी हाँ दोस्तों, जिससे वह संसार के प्रत्येक वस्तु की छवि अपने दिमाग में अंकित कर लेता है और यह कैमरा है हमारी आँखें। इस दृष्टि से देखा जाए तो प्रत्येक प्राणी एक फोटोग्राफर तो है ही। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिक तरक्की के साथ साथ मनुष्य ने अपने साधन बढ़ाना प्रारंभ कर दिए और अनेक आविष्कारों के साथ साथ कृत्रिम लेंस का भी आविष्कार हुआ। समय के साथ आगे बढ़ते गए और इस लेंस से प्राप्त छवि को स्थायी रूप से सहेजने का प्रयास किया गया। इसी प्रयास की सफलता वाले दिन को अब हम विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में मनाते हैं, याद करते हैं। और फोटोग्राफी का आविष्कार जहां संसार को एक दूसरे के करीब लाने में मददगार साबित हुआ, वहीं एक दूसरे को जानने, उनकी संस्कृति को समझने, इतिहास को समृद्ध बनाने में भी बहुत बड़ी मदद की है। आज हमें संसार के किसी दूरस्थ कोने में स्थित द्वीप के जनजीवन की सचित्र जानकारी बड़ी ही आसानी से प्राप्त हो जाती है, तो इसमें फोटोग्राफी का योगदान कम नहीं कहा जा सकता है। वैज्ञानिक और तकनीकी सफलता के साथ साथ फोटोग्राफी ने भी आज बहुत तरक्की की है। आज व्यक्ति के पास ऐसे ऐसे संसाधन मौजूद हैं जिसमें सिर्फ बटन दबाने की देर है और मिनटों में अच्छी से अच्छी तस्वीर हाथों में आ जाती है। किंतु सिर्फ अच्छे साधन ही अच्छी तस्वीर प्राप्त करने की गारंटी दे सकते हैं तो ये नहीं है, क्योंकि मानव दिमाग उपयोग करता है, क्योंकि मानव दिमाग का ही उपयोग है

कि हम इन सब बातों को सहेज पाते हैं और इतनी तरक्की कर पाते हैं। तकनीकी चाहे जैसी तरक्की करे, उसके पीछे कहीं ना कहीं मानव दिमाग ही इस्तेमाल आता है, और यही फ़र्क है मानव में अन्य प्राणियों में। तो

की एक पहली शर्त होती है, और यही कारण है कि आज सभी घरों में एक कैमरा होने के बाद भी अच्छे फोटोग्राफर गिनती के हैं, क्योंकि सब हैं तो सही लेकिन बहुत कम चुनिंदा ऐसे फोटोग्राफर होते हैं जिनकी तकनीकी उनके फ़ोटो निकालने की जो स्टाइल होती है या क्षमता होती है वो बिल्कुल अलग ही होती है। एक बारीक से बारीक चीज़ भी वो अपने फ़ोटो में कैद कर लेते हैं, तो ये होती है अच्छे फोटोग्राफर की निशानी। खैर जो भी हो, हम तो यही कहेंगे दोस्तों कि इसने हमें बहुत कुछ दिया, क्योंकि यदि फोटोग्राफी न होती तो हम अच्छे अच्छे पलों को या जगहों को कैसे समेट पाते, कैसे कैद कर पाते। तो ये तो आज का दिवस जो है इसलिए मनाया जाता है, और प्रयास यही करना चाहिए कि हम अच्छी फोटोग्राफी, अच्छी अच्छी तस्वीरों को संजो कर रखें, जो अच्छे दृश्य होते हैं, अच्छे पल होते हैं, उन्हें हम यादगार के रूप में संजो कर रखें, जिससे आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और इसके साथ ही आज है विश्व मानवता दिवस, पर इस पर कुछ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं एक गाना।

आसमान निखरा हुआ क्यों है? हवाएं क्यों झूमती हैं? लहरें बार बार किनारे को क्यों चूमती हैं?

0: चाहिए, वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: जी हाँ, जानकार बनिए और सतर्क रहिए। चलिए अब पलटते हैं इतिहास के पन्ने और आज की तारीख में दर्ज हम कुछ प्रमुख घटनाओं पर डालते हैं नजर। 19 अगस्त का इतिहास देश और दुनिया की कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी है। इसमें सन 1666 की बातें करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज का औरंगजेब की कैद से आसानी से निकल जाना, और सन 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पहला 1 रुपये का सिक्का ढालना, और सन 1949 में भुवनेश्वर का ओडिशा की राजधानी बनना, ये सब कुछ इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और इसके साथ ही अन्य बहुत सारी घटनाएं हैं। सन 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने आज ही के दिन भारत में पहला 1 रुपये का सिक्का, जी हाँ, पहला 1 रुपये का सिक्का ढाला था ईस्ट इंडिया कंपनी ने आज ही की तारीख को सन 1757 में। और जैसा कि अभी हमने आपसे कहा कि मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा में फलों की टोकरी में छिपकर मुगल शासक औरंगजेब के खत से सुरक्षित बाहर निकल गए थे। अफगानिस्तान ने ब्रिटेन से अपनी पूरी स्वतंत्रता की घोषणा की थी आज ही की तारीख को सन 1919 में, और आज की तारीख को विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में फोटोग्राफी के कलाकारों और इतिहास को याद करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही दुनिया भर में मानवीय संकटों और सहायता कर्मियों के सम्मान में यह दिवस विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसके साथ ही अन्य बहुत सारी घटनाएं हैं जो आज की तारीख में इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, लेकिन कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में हमने आपको बताया। और चलिए बढ़ते हैं एक बार फिर गीत संगीत की ओर, सुनवाते हैं आपको एक प्यारा सा गाना।

दोस्तों, बातों ही बातों में अब इस कार्यक्रम का समय धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है और आइए अब हम बातें कर लेते हैं विश्व मानवता दिवस की। आज विश्व भर में मानवता दिवस के रूप में मनाया जाता है आज की तारीख को, और यह दिन उन लोगों की स्मृति में मनाया जाता है जिन्होंने विश्व स्तर पर मानवतावादी संकट में अपनी जान गंवाई या मानवीय उद्देश्यों के कारण दूसरों की सहायता हेतु अपने प्राणों को उन्होंने आहुत कर दिया, न्यौछावर कर दिया। वर्ष 2008 में एक प्रस्ताव पारित कर विश्व मानवता दिवस पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मनाया गया था। इस प्रस्ताव को स्वीडन ने प्रायोजित किया था। दरअसल आज से 17 साल पहले इराक की राजधानी बगदाद में आज के ही दिन यानी कि आज की तारीख 19 अगस्त सन 2003 को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर हमला किया गया था। इस हमले में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के 22 सहकर्मी मारे गए थे, जिनमें इराक में यूएनओ महासचिव के विशेष प्रतिनिधि सर्जियो वियेरा डी मेलो की भी बम विस्फोट के कारण मृत्यु हो गई। उसके बाद 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया। बगदाद की त्रासदी के बाद अब तक 4,000 से अधिक राहत कर्मियों को निशाना बनाया गया है। अनेक मृत्यु के शिकार हुए, अनेक घायल हो गए, कईयों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार हर साल औसत 300 राहत कर्मियों को निशाना बनाया जाता है। संघर्षरत क्षेत्रों में नागरिक भी मृत्यु का शिकार होते हैं या घायल हो जाते हैं, या विशेष रूप से लोगों को निशाना बनाकर मार दिया जाता है, या अंधाधुंध हमले किए जाते हैं। पिछले वर्ष संयुक्त कई वर्ष पहले मतलब कि संयुक्त राष्ट्र में केवल 6 देशों अफगानिस्तान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य इराक, सोमालिया, यमन में हुए हमलों में 26,000 से अधिक नागरिकों की मौत हो गई थी या उसके घायल होने की घटनाएँ दर्ज की गई थी। तो ये कई वर्षों से इस तरह की घटनाएं होती आ रही हैं और विश्व भर में फैली अशांति संघर्ष में लाखों लोग अपनी इस ज़मीन से विस्थापित हो जाते हैं, उन्हें छोड़कर भागना पड़ता है। ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। बच्चों को भी, छोटे छोटे बच्चों को भी लड़ाइयों में झोंक दिया जाता है। महिलाओं का उत्पीड़न अपमान किया जाता है। चूंकि राहत कर्मी मदद करते हैं, चिकित्सा कर्मी ज़रूरतमंदों को राहत पहुंचाते हैं, इसलिए उन्हें भी निशाना बना दिया जाता है। तो विश्व मानवता दिवस पर यही इसका उद्देश्य होता है कि हम ऐसे लोगों

की याद में, और वैसे लोगों के लिए कर्तव्य, अपने कर्तव्य को हम समझें, अधिकारों को समझें, और इस दिवस का क्या उद्देश्य है, इसका महत्व क्या है, इसके बारे में सभी को जानना चाहिए। तो ये तो हुई विश्व मानवता दिवस की कुछ बातें, और घड़ी की टिक टिक करती हुई सुई बढ़ती जा रही है आगे। तो चलते चलते बस गाने का मुखड़ा सुन लेते हैं।

0: इसी के साथ ही जोहार पलामू कार्यक्रम से दीजिए विदा, नमस्कार।
1: जोहार पलामू।
0: आप सुन रहे थे जोहार पलामू कार्यक्रम, प्रस्तुति स्वर निर्मला तिवारी का था, संयोजनकर्ता थे श्री प्रशांत गौरव।

0: लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।
1: प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा
2: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से हमारे चिर परिचित श्रोता योगेश ठाकुर जी,
1: सभी श्रोताओं को उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम उमंग से।
2: श्रोताओं एक बार फिर से करते हैं आपका बहुत बहुत स्वागत हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
1: जी
2: श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी कुछ ऐसे शब्दों की जो हैं तो हिंदी, संस्कृत और उर्दू के, लेकिन अब वे विश्व की कई भाषाओं में विशेषकर अंग्रेजी में इस्तेमाल किए जाते हैं।
1: आज एक बार फिर से हम लेकर आए हैं कुछ और शब्दों को जो हिंदी, संस्कृत, उर्दू और क्षेत्रीय भाषाओं से आए हैं, लेकिन अब दुनिया भर में प्रयोग में लाए जाते हैं। श्रोताओं, आपने बंगलो यानी बंगला शब्द अवश्य सुना होगा। शायद ही कोई सोचे कि ये शब्द भारतीय है, अक्सर ऐसा लगता है कि ये शब्द अंग्रेजी का है, लेकिन तथ्य कुछ और है।
2: जी श्रोताओं, तथ्य ये है कि अंग्रेजी का बंगलो शब्द बंगला या बांग्ला से निकला है।
1: जी।
2: इसका अर्थ था बंगाल शैली का मकान। ब्रिटिश अधिकारियों ने भारत में जब देखा कि भारत के बंगाल क्षेत्र में एक मंजिला चौड़े बरामदे वाले घर गर्मी के मौसम के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं,
1: जी,
2: तो उन्होंने भी अपने रहने के लिए इसी प्रकार के मकान बनवाए और उन मकानों को उन्होंने बंगलो कहना शुरू किया।
1: जी।
2: धीरे धीरे ये शब्द पूरे ब्रिटिश साम्राज्य और फिर पूरी दुनिया में फैल गया। तो श्रोताओं, जानकारी ये थी कि बंगला शब्द बांग्ला शब्द से निकला है।
1: जी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अनेक देशों में आज भी जहाँ जहाँ ब्रिटेन का प्रभाव रहा, एक मंजिला स्वतंत्र मकान को बंगलो ही कहा जाता है।
2: आशा है श्रोताओं कि आपको हमारी आज की जानकारी जरूर बड़ी रोचक लग रही होगी, है ना? आइए अब सुनते हैं एक और नया शब्द और वो शब्द है खाकी। श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि पुलिस और सेना की वर्दी का प्रसिद्ध रंग खाकी कहाँ से आया?
1: तो हम आपको बता देते हैं, ये शब्द फारसी उर्दू के खाक शब्द से निकला है जिसका अर्थ है धूल, मिट्टी या राख। तो जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा में खाकी शब्द कहाँ से आया।
2: होता ये था कि भारत में अंग्रेज सैनिकों की सफेद वर्दी बहुत जल्दी गंदी हो जाती थी।
1: जी,
2: इसीलिए उन्होंने धूल जैसे भूरे रंग की वर्दी पहननी शुरू की। ये रंग इतना उपयोगी सिद्ध हुआ कि बाद में पूरी ब्रिटिश सेना और फिर अनेक देशों की सेनाओं तथा पुलिस ने भी इसे अपना लिया।
1: जी,
2: इसलिए आज खाकी केवल एक रंग ही नहीं बल्कि अनुशासन और सेवा का प्रतीक भी माना जाता है।
1: और अब बात करते हैं एक और बहुत प्रचलित शब्द की। शब्द है लूट। अंग्रेजी का लूट शब्द भी भारत से गया है। ये शब्द

0: हिंदी के लूट या संस्कृत के लुंट शब्द से संबंधित है। इसका अर्थ है छीन लेना या लूट लेना।
1: श्रोताओ, अंग्रेजी शासन काल में अंग्रेज लोग अधिकतर जज, सैनिक या प्रशासनिक अधिकारी होते थे।
0: जी।
1: न्याय करने की प्रक्रिया में या प्रशासनिक मसलों में अंग्रेज अक्सर ये शब्द भारतीयों द्वारा सुनते थे।
0: जी।
1: उन्होंने इस शब्द को यानी लूट शब्द को अपनी भाषा में अपना लिया।
0: जी।
1: आज अंग्रेजी समाचारों, फिल्मों और पुस्तकों में लूट शब्द का प्रयोग पूरी दुनिया में होता है।
0: और अब लेते हैं दो और शब्द जिनसे सभी परिचित हैं। वो शब्द हैं योग और गुरु। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जहाँ योग शब्द न सुना हो। योग शब्द संस्कृत धातु युज से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना या मिलाना।
1: श्रोताओ, योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा के संतुलन की जीवन पद्धति है। संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया, जिसके बाद ये शब्द पूरी दुनिया में और अधिक लोकप्रिय हो गया। इसी प्रकार से गुरु शब्द भी संस्कृत से आया है।
0: आज भारतीय अंग्रेजी में ये प्रचलन हो चला है कि किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञ के लिए गुरु शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे टेक्नोलॉजी गुरु,
1: मार्केटिंग गुरु
0: या म्यूजिक गुरु।
1: श्रोताओ, दूसरी भाषाओं में शब्दों का यह स्थानांतरण भारत की ज्ञान परंपरा का विश्व पर गहरा प्रभाव दर्शाता है।
0: जी, तो प्रिय श्रोताओ, भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं होती बल्कि संस्कृति की वाहक भी होती है। जब किसी देश के शब्द दुनिया की दूसरी भाषाओं में पहुंचते हैं तो वे अपने साथ उस देश का इतिहास, संस्कृति और जीवन दर्शन भी लेकर जाते हैं। जिस भाषा के शब्द दुनिया अपनाने लगे, समझिए उस संस्कृति ने दुनिया को कुछ अमूल्य दिया है।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी। तो अब हो जाइए तैयार आज के प्रश्न के लिए। हमारा आज का प्रश्न है, खाकी शब्द किस मूल भाषा से आया है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: खाकी शब्द किस मूल भाषा से आया है।
1: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो जरूर करें। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: और इन्हीं पुस्तकों को आप ऑडियो बुक प्रारूप में भी NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर भी सुन सकते हैं।
0: जी
1: श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम, नदी का सफर।
0: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में नदी की यात्रा के बारे में बताते हुए उसके उद्गम, प्रवाहित होने के क्षेत्रों, जल प्रपात बनने और अंततः समुद्र में मिल जाने के बारे में रोचक ढंग से बताया गया है।
2: नमस्कार साथियों, कलकल करती नदियाँ धरती की नसों में बहता हुआ जीवन है जो हर प्राणी को जीवन दान देती हैं।
3: नदियाँ प्रकृति का अमूल्य उपहार हैं, जिनकी गोद में न जाने कितनी मानव सभ्यताएं पनपी, फूली फली और विकसित हुई। नदियाँ न केवल जल का स्रोत हैं बल्कि जीवन, संस्कृति और सभ्यताओं की आधारशिला है। अक्सर एक जिज्ञासा हमारे मन में उठती है कि नदियों का उद्भव कैसे हुआ। तो आइए सुनते हैं एक रोचक कहानी, नदी का सफर।
2: एक समय था जब पृथ्वी पर चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। ये लगभग 20 लाख वर्ष पहले की बात है। इस काल को हिमयुग यानी आइस एज कहते थे। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान बढ़ा, बर्फ पिघलने लगी थी और पेड़ पौधे भी उगने लगे थे।
3: इस तरह से हजारों वर्ष बीत गए। हिमालय पर्वत पर कहीं एक बर्फ की चोटी थी और वहीं रहती थी एक चंचल और चमकदार बर्फ की बेटी, नाम था हिमशिला। वो बहुत बड़े ग्लेशियर यानी हिमनद में रहती थी।
2: एक दिन सूरज ने मुस्कुरा कर कहा,
4: पुत्री हिमशिला, अब तुम्हें धरती पर उतरना होगा। वहां नीचे बहुत से जीव हैं,

0: पेड़ पौधे हैं, उन्हें तुम्हारे जल की आवश्यकता है।
1: क्यों, मैं क्यों नीचे जाऊं? मैं तो यहाँ ऊपर बहुत खुश हूँ। बादल मेरे साथ आंख में चौली खेलते हैं। यहाँ सब कुछ कितना शांत है, मैं नीचे क्यों जाऊं?
0: पुत्री, ऊपर रहोगी तो केवल ठंडी बर्फ बनकर यहीं पड़ी रह जाओगी। हमें यूं ही पड़े नहीं रहना चाहिए, किसी के काम भी तो आना चाहिए।
1: अच्छा, वो सोच में पड़ गई। फिर सूरज ने अपना ताप और बढ़ाया। फिर धीरे धीरे हिमशिला ने मन बना ही लिया पर्वत से उतरकर नीचे जाने का। वो एक छोटी सी धार बन गई और बहने लगी तीव्र गति से ढलान की ओर।
2: रास्ते में कई भूमिगत जलधाराओं ने भी यात्रा में उसका साथ दिया। उसकी गति और बढ़ गई। अचानक उसने महसूस किया, कोई उसे खींच रहा है। वो डर गई और बोली,
1: अरे ये कौन मुझे नीचे खींच रहा है? पर्वत पर तपस्या करने वाले एक बूढ़े साधु ने हंसकर कहा,
0: पुत्री, ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है जो तुम्हें नीचे खींच रहा है। डरो नहीं, धरती माँ तुम्हें अपने पास नीचे बुला रही है ताकि उसे जीवन मिल सके।
2: वो खुशी खुशी बहने लगी।
1: देखो देखो देखो देखो, जरा देखो, अरे ये क्या, और भी इतनी सारी छोटी छोटी धाराएं बहती हुई आ रही हैं मेरी तरफ। हाँ देखो ना, मेरी तरफ।
2: ये सभी आपस में मिल गईं और सभी मिलकर बहने लगी। अब उन्होंने नदी का रूप धारण कर लिया था। कहने लगी,
1: सखी, अब हम सब मिलकर बहेंगी, हम सब एक दूसरे की सहायक हैं।
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम सब मिलकर बहेंगी।
1: हाँ।
2: अब मिलकर बहने के कारण उनकी बहने की ऊर्जा और बढ़ गई। फिर क्या था, छोटी सी जलधारा ने अब एक विशाल नदी का रूप धारण कर लिया। मार्ग में कई पत्थर मिले, चट्टाने मिली, मार्ग रोकने की भी कोशिश की, लेकिन नदी को तो अब बस एक ही धुन थी,
1: मुझे तो बस आगे बढ़ना है, आगे और आगे।
2: एक दिन की बात है, बहते बहते नदी एक बहुत ऊंची चट्टान के पास आ गई। नीचे देखा तो बहुत गहराई थी, उसे बहुत डर लगा। क्षण भर के लिए वो रुक गई और सोचने लगी,
1: हाँ अब क्या करूं, मैं क्या करूं?
2: उसने दाएं बाएं देखा, तब पर्वत ने कहा,
0: कूद जाओ ना।
1: कूद जाऊं?
0: डरो मत।
1: हाँ?
0: धरती माता तुम्हें अपनी बाहों में ले लेंगी।
1: अच्छा, तो कूद जाती हूँ। कूद गई।
2: लोगों को खुश देखकर नदी को बड़ी खुशी हो रही थी।

0: और हाँ, एक बात और है, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वो रुकी नहीं, अपने लक्ष्य की ओर बहना जारी रखा। कई बार रास्ते में या पहाड़ों पर वर्षा हुई तो उसका जल प्रवाह और भी बढ़ गया।
1: फिर क्या था, भला भूमिगत झरने भी क्यों चुप रहते? उन्होंने भी पूरा योगदान दिया और वो भी शामिल हो गए नदी की इस रोमांचक यात्रा में।
0: वो आगे बढ़ती रही। रास्ते में उसने कई गांव देखे जहां लोग और पशु पक्षी प्यासे थे। पेड़ पौधे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सारे खेत सूख गए थे। नदी बोल उठी,
2: अब समझी, सूरज दादा ठीक ही कहते थे, मेरा बहना दूसरों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जहां जहां मैं जाती हूँ वहां हरी हरी घास उगाती है, पेड़ खुशी से झूमने लगते हैं, पशु पक्षी प्रसन्न हो जाते हैं, लोग मुझे माता कहते हैं, मेरी पूजा करते हैं। न जाने कितनी सभ्यताओं को मैंने अपनी गोद में फलते फूलते और पनपते देखा है, लेकिन कई बार मुझे बहुत दुख होता है जब लोग मुझ में कूड़ा फेंकते हैं, शहरों की प्रदूषित नालियां तक मुझ में बहा देते हैं, और मैं बीमार हो जाती हूँ।
1: जब वो सागर तक पहुंची तो सागर ने कहा,
3: पुत्री तू इतनी दूर कैसे आ गई?
2: माँ धरती का गुरुत्वाकर्षण मुझे यहाँ तक बहा कर ले आया।
3: पुत्री तू बहती रही, इसीलिए जीवन चलता रहा।
2: अच्छा,
3: तू रुकती तो हाँ? जीवन चक्र ही रुक जाता। चलती रहो।
2: मैं चलती रहूंगी। हाँ, मैं हमेशा चलती रहूंगी।
1: चरैवेति, यही तो जीवन है।
0: चरैवेति, नदियों का संदेश यही महान। चलते रहना कर्तव्य पथ पर, हो यही बस तुम्हारे जीवन की पहचान।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम नदी का सफर। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विनीत कुमार शर्मा, कलाकार पूनम एस कुदुसिया, सुनील लोहिया, शशांक शर्मा और बबीता त्रिपाठी, आलेख अजीत होरो, संपादन एवं निर्माण कुसुमलता। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

दीक्षा, शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत NCERT शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की एक पहल।

0: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है हेलेन केलर।
1: इस कार्यक्रम में दिव्यांग अमेरिकी महिला हेलेन केलर के जीवन और दिव्यांगता से उनके संघर्ष और विजय की गाथा का सप्रसंग उल्लेख किया गया है और बताया गया है कि किस प्रकार वे विश्व की करोड़ों महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गईं।

0: आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जो पूरे संसार के लिए प्रेरणा स्रोत है, जिनका नाम है हेलन केलर।
1: हेलन केलर का जन्म 27 जून 1880 में अमेरिका में हुआ था। जब ये 2 साल की हुई तो बहुत बीमार पड़ी और
2: डॉक्टर, मेरी बच्ची ठीक तो हो जाएगी ना?
3: मिसेस केलर, मुझे बेहद अफसोस है, पर हेलन अब कभी देख, बोल और सुन नहीं पाएगी। हिम्मत रखिए मिसेस केलर, हिम्मत रखिए।
0: हेलन की शिक्षा उसकी मां के लिए अब एक चुनौती बन गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हेलन की देखरेख और शिक्षा के लिए उन्होंने एक अनुभवी अध्यापिका को चुना, जिनका नाम था मिस सेलिवन।
4: आओ हेलन, मेरे पास आओ। हाँ, इधर। मैं हूँ सेलिवन। आज से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हम दोनों मिलकर खेलेंगे, बहुत सारे काम एक साथ करेंगे। धीरे धीरे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। अच्छा देखो, मेरा हाथ पकड़ो। हाँ, ऐसे। दोस्त हूँ ना तुम्हारी। शाबाश।
1: इस तरह एनी सेलिवन ने हेलन को पढ़ाना शुरू कर दिया। जो भी शब्द हेलन को सिखाना होता वो उसके हाथ पर लिख देती थी। इस तरह पढ़ते हुए हेलन ने सबसे पहले गुड़िया शब्द सीखा।
4: हेलन, आओ, आज तुम्हें एक शब्द लिखना सिखाती हूँ। हेलन है गुड़िया जैसी, तो हम लिखते हैं तुम्हारे हाथ पर गुड़िया। लाओ हाथ दो। गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया।
0: अचानक एक दिन बाग की सैर करते हुए पानी का नल देखकर मिस सेलिवन के मन में एक विचार आया।
4: अरे, ये पानी का नल? हाँ, अगर पानी का स्पर्श कराकर हेलन के दूसरे हाथ पर पानी लिखूं तो कितना अच्छा होगा। अभी देखती हूँ। ये रहा पानी का नल। हेलन, हेलन, अपना हाथ मुझे दो। हाँ, शाबाश। अच्छा, अब अपनी हथेली खोलो। ऐसे। हाँ, अच्छा, अब मैं एक शब्द लिखूंगी तुम्हारी हथेली पर। देखो, मैं लिख रही हूँ पानी, पानी,

0: हाँ हाँ शाबाश। पानी पानी। हाँ नी। हाँ पानी
1: नी।
0: एक बार फिर कोशिश करो।
1: पा
0: हाँ
1: नी।
2: यूं शुरू हुआ हेलेन का पढ़ना। अब तो वो चीजों को छू छू कर इशारे से उनके नाम पूछने लगी।
3: जल्दी ही वो अपनी अध्यापिका के मुंह और गले को छूकर बोलना भी सीख गई, यहां तक कि वो संगीत का भी आनंद लेने लगी।
0: मिसेस केलर
4: जी,
0: हेलेन तो अब बहुत कुछ सीख गई है। संगीत का आनंद भी लेने लगी है। आप तो खुद इतना अच्छा पियानो बजाती हैं, आज हेलेन के लिए मेरे लिए पियानो बजाइए ना।
4: जरूर, मैं अभी बजाती हूँ।

0: तुम अच्छा पिया नो
1: शाबाश हेलेन। मिस सलीमन, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं?
2: अरे नहीं नहीं मिसेस,
1: मेरी बच्ची अब थोड़ा सुन सकती है और बोल भी सकती है। मिस सलीमन,
2: मिसेस केलर,
1: हेलेन बोल सकती है।

0: सिर्फ इतना ही नहीं, हेलेन उभरे अक्षरों यानी ब्रेल लिपि को पढ़ने लगी। वो अंग्रेजी के अलावा लैटिन, फ्रेंच और जर्मन भाषाएं भी सीख गई।
1: यही नहीं, वो तैराकी, घुड़सवारी और नाव चलाने में भी रुचि लेती। हेलेन ने अमेरिका के प्रसिद्ध महाविद्यालय रेड क्लिफ से स्नातक परीक्षा विशेष सम्मान से उत्तीर्ण की। हेलेन ने आत्मकथा लिखी जो एक प्रसिद्ध पत्रिका में छपी। दुनिया की 50 से ज्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है।
0: बाद में उन्होंने 10 किताबें और लिखी। वो अंधेपन, बहरेपन और उनसे जन्मी समस्याओं के बारे में अखबारों में लेख लिखती रही। अमेरिका और विदेशों में अंधेपन के लिए काम करने वाली संस्थाओं से वो जुड़ गईं।
1: उन्होंने दुनिया के कई देशों की यात्राएं की। सभी जगह हेलेन केलर को भारी सम्मान मिला। सन 1955 में वो भारत आईं। दिल्ली में विशाल जनसभा में उन्हें सम्मानित किया गया।
0: ।1964 में हेलेन केलर को अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया।

0: हेलेन केलर की सफलता का रहस्य था तमाम कठिनाइयों के बीच आनंद की तलाश। हेलेन अपने प्रशंसकों के लिए प्रेरणा का एक अमर स्रोत थी, है और हमेशा रहेंगी।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम हेलेन केलर, और श्रोताओं इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
1: जगबंधु और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर के बाद हम शामिल होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में।

0: ये आकाशवाणी डाल्टनगंज है। कुछ ही पलों में सुनेंगे आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार और उसके बाद आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।
1: समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। सरकार ने पाइप से रसोई गैस पीएनजी कनेक्शन घर घर तक पहुंचाने की प्रक्रिया तेज करने की योजना को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये योजना पहली सितंबर से दो चरणों में लागू की जाएगी।
2: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार योजना के माध्यम से मौजूदा पीएनजी कनेक्शनों को अपने रसोई घरों में पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल शुरू कर सकेंगे। वर्तमान में देश भर में करीब 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन है। योजना के अंतर्गत पात्र सीजीडी कंपनियों को प्रदर्शन अवधि के दौरान जोड़े गए हर अतिरिक्त घरेलू पीएनजी कनेक्शन के लिए 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर अतिरिक्त घरेलू स्तर पर उत्पादित कम कीमत वाली गैस आवंटित की जाएगी। आनंद और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4 स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। एनटीए कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान भी तैनात किए जाएंगे। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी कर दी है। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: सरकार ने उन परीक्षाओं के परिणाम भी रद्द कर दिए हैं जिनकी प्रारंभिक प्रक्रिया टीडीपीएल द्वारा कराई गई थी। अधिसूचनाओं के अनुसार कथित अनियमितताओं को लेकर एसआईटी की जांच और जारी सीआईडी जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द की गई है। सरकार ने 6 परीक्षाओं को स्थगित करने और 17 परीक्षाओं की सीआईडी जांच कराने का भी फैसला लिया है। दोनों आयोगों में आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, जबकि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता वाली समिति परीक्षा प्रणाली में सुधार के सुझाव देगी। मैं विश्व रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदित प्रकाश राय और 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को उन्नत बनाने की टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी के मामले में हुई है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वित्त वर्ष 2025-26 में ऋण प्रदान करने में तेज वृद्धि हुई है। इस दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के प्राथमिक क्षेत्र ऋण रूपरेखा के अंतर्गत इन बैंकों का प्रदर्शन मजबूत रहा।

0: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कुल बकाया ऋण में 2024-25 के मुकाबले 10% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो पिछले वित्त वर्ष में 5,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का था। गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु की 2 दिन के दौरे पर आज शाम चेन्नई पहुंचेंगे। श्री शाह कल चेन्नई के पास कोवलम में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा के महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर को दूरदर्शी शासक बताया। संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे को देखते हुए ईरान के साथ सभी प्रकार के व्यापारिक और वाणिज्यिक लेनदेन स्थगित कर दिए हैं। अमीरात के विदेश मंत्रालय की संचार निदेशक अफरा अल हामिली ने बताया कि इस फैसले का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता और वित्तीय व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाए रखना है। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। दोनों टीमों के लिए अगले दौर में जगह बनाने के लिए ये मुकाबला महत्वपूर्ण है। भारत के 2 मैच से 3 अंक हैं और उसे अगले दौर में पहुंचने के लिए आज का मैच ड्रॉ करना आवश्यक है। भारत ने अब तक वेल्स पर जीत दर्ज की है, जबकि उसे इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा है। श्रीलंका में गोल्फ क्रिकेट टेस्ट मैच के 5वें और अंतिम दिन आज श्रीलंका अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट पर 84 रन से आगे खेलेगा। भारत ने श्रीलंका को 372 रन का लक्ष्य दिया है। श्रीलंका को जीत के लिए 288 रन की जरूरत है, जबकि भारत श्रृंखला की जीत से केवल 6 विकेट दूर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. The government has approved an incentive scheme for promotion of domestic PNG connections aimed at bringing clean, safe and affordable piped cooking gas to households across the country. The scheme will be effective from 1st of next month. The Minister of Petroleum and Natural Gas said that the scheme is designed to fast-track the expansion of active PNG connections, ensuring that more families can start using piped natural gas in their kitchens at the earliest. Currently, there are 1.74 crore domestic PNG connections across the country. The ministry added the new scheme directly incentivizes the city gas distribution companies to actively convert unbuilt connections into working gas connections and expand the PNG network to new areas. It said that piped natural gas offers households a safer, cleaner and more convenient alternative to LPG cylinders and traditional cooking fuels. The scheme will be implemented over 2 tranches spanning 6 months. The National Testing Agency, NTA, has revamped its examination team by removing 600 experts and onboarding new experts. In a social media post, Ministry of Education said that a 4-tier question papers checking system will be put in place by NTA to strengthen the scrutiny of examination papers. The NTA will also induct 20 to 25 officials in the next 2 to 3 weeks. Further, NTA offices will be shifted to the new premises where security will be reinforced with CISF teams. Jharkhand government last night released a list of 44 recruitment exams that have been cancelled due to irregularities amid student protest over the issue. Issuing 8 notifications, state government said the cancelled exams include those conducted by Jharkhand Public Service Commission, JPSC, and outsourced agency TSR Data Processing Private Limited since 2014. The exams cancelled include recruitment for drug inspectors, assistant professors, deputy collectors, dental doctors, assistant engineers, civil judges, additional public prosecutors and forest range officers, among others. Among the other major examinations cancelled are recruitment for lecturers in government polytechnics, senior scientific officers, assistant conservators of forest and other administrative and technical posts. The anti-corruption branch of Delhi government has arrested former Delhi minister and AAP leader Satyendra Kumar Jain, former CEO of Delhi Jal Board Udit Prakash Rai and 4 others accused persons. Our correspondent reports that these arrests have been made in connection with alleged irregularities and criminal conspiracy in the tendering process relating to augmentation.

0: ये गाना पिया तो से नैना लागे रे, ये इन्होंने आपके लिए ही मुझे लगता है सुनवाया होगा यशपाल जी। तो मुझे आपसे ही जानना है कि ये प्रतिभा जी ने जिक्र किया कि आपने इनका सामान उठाया, तो ये जो प्रेम का बीज था आप दोनों के बीच, प्रेम का पौधा कैसे
1: बीच
0: रोपा गया?
2: पौधा नहीं था, बहुत भारी बैग था इसका जो जो मैंने उठाया था,
0: जी
2: और तकरीबन 150 मीटर 200 मीटर होगा
1: हाँ,
2: वहाँ इस
1: चल के जाया
2: हॉस्टल से वहाँ तक, तो
1: हाँ।
2: वो

उस मंडी हाउस क्रॉस करके पूरा, तो वहां गए थे। तो प्रेम का बीज ऐसा कोई फिल्मी कहानी की तरह ऐसा नहीं था हमारा, हम मर जाएंगे तुम्हारे बगैर, और या मतलब हाँ, लेकिन एक फिल्मी बात जरूर थी कि 3 साल तो हमने खूब लड़ाइयाँ की, अच्छे काम किए, नाटक

0: एक दिन फिर सीधा इसके घर पहुंच गया जलगांव,
1: अच्छा
0: दिल्ली से जलगांव। सीधा दरवाजा खोला और ये माँ बेटी मेरे सामने खड़ी, और ऐसे हैरान। और फिर मैं चला गया और फिर उसी ट्रेन से वापस आ गया। मैं कहा नहीं, तुम साथ चलो।
1: अच्छा
0: तो भैया ऐसे नहीं जा सकते, शादी वादी करना पड़ेगा, बच्ची बड़ी हो गई है। तो मैंने कहा ठीक है, करवा लो, कल कर लेते हैं।
1: ओ
0: बोले नहीं, अभी तो तारा डूबा हुआ है। मैं कहा तारा तो हम निकाल लेंगे। तो आर्य समाज मंदिर में गए तो वो बोले पंडित जी के, भाई तारा डूबा हुआ हम नहीं मानते। तो मैंने कहा तो फिर करवा डालो आज। तो बस थोड़ी देर बाद शायद दोपहर तक सारी तैयारी करके हमने शादी कर ली। शादी के दौरान, फेरों के दौरान पता लगा कि वो पंडित जो था वो हिसार का था हमारे।
1: अरे तो
0: वो आर्य
1: यशपाल के
0: समाज,
1: वहां से कोई नहीं था तो वो हिसार के थे। अच्छा।
0: तो बड़ा कोइंसिडेंस रहा बाय चांस, और ऐसे शादी हो गई। और फिर पहली बार जिंदगी में मैं और प्रतिभा एसी कोच में सफर करके जलगांव से दिल्ली गए।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो अब यहां पर एक गाना जरूरी लग रहा है, प्रतिभा जी बताइए कौन सा गाना, या यशपाल जी आप बताइए।
0: हुई शाम का
1: ख्याल आ गया है।
0: खयाल आए, हाय हाय।

0: चल पड़ा है। तो इस सफर की आगे की कहानी आप बताइए, फिर जब साथ में रहने लगे, फिर वो नोक झोंक तकरार के दिन, कौन सी ऐसी बात है जो यशपाल जी की पसंद हुई नापसंद हुई वो बताइए।
1: नहीं, हम लोग साथ में काम करते थे रेपेट्री में और साथ में खाना खाते थे, और उस उतना ही हमारा मिलना होता था पूरे दिन में। बाकी पूरा दिन हम दोनों काम में लगे रहते थे रेपेट्री
0: कौन सा काम
1: में।
0: था?
1: रेपेट्री में एज एन एक्टर
2: नाटकों
1: काम
2: की
1: करते थे,
2: रिहर्सल वगैरह।
1: नाटकों की रिहर्सल कंटिन्यू होती रहती है।
0: तो कौन से वो नाटक थे जो उन दिनों रिहर्सल चल रहे थे उन नाटकों के?
1: आइंस्टाइन कर रहे थे हम लोग, मुआवजे कर रहे थे, कर्मावाली थे, ये सारे नाटक वहाँ पे उस वक्त चल रहे थे, उसमें ही हम लोग काम कर रहे थे। हमारे वक्त कुछ नाटक नए शुरू हुए थे आइंस्टाइन जैसे, तो वो नाटकों की रिहर्सल चलती रही।
0: वो दोनों लोग उसमें
1: हाँ,
0: किरदार।
1: यशपाल तो आइंस्टाइन बने हुए थे, मैं उनके जो उनकी वाइफ है उसकी फ्रेंड बनी हुई थी उस नाटक में,
0: जी
1: मारिया।
0: जी यशपाल जी से हम जानना चाहते हैं, अब फिल्मों की ओर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपकी बहुत सारी फिल्में हैं, फिल्मों के नाम क्या गिनाए हैं? गंगा जल, अपहरण, बवंडर, बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लगान फिल्म आपके फिल्मी करियर का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो लगान फिल्म से हम शुरू करते हैं। लगान फिल्म की कहानी बताइए, कैसे आप जुड़े, कैसे आमिर खान से मुलाकात हुई, कैसे आशुतोष गोवारिकर से मिले आप, दोनों कहानी बताइए आप।
2: लगान वाकई में मेरे ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि लगान तक ही मैंने स्ट्रगल किया ऑफिस ऑफिस घूम करके,
0: जी
2: उसके बाद नहीं किया फिर मैंने, क्योंकि अपने आप फोन आते थे, बात होती थी, काम मिल जाते थे। तो लगान जब मिल रहा या मिली थी, उस वक्त हम वनराई कॉलोनी में रहते थे, जहाँ सिर्फ एक कमरा था, बिल्कुल छोटा सा, एक छोटा सा बाथरूम था और छोटी सी बालकनी थी और एक स्लैब था जिसे किचन का नाम दे दिया गया था। तो हम दोनों उसी में रहते थे और वहाँ सारे स्ट्रगलर, राजपाल यादव, विजय राज, ये अनूप सोनी, कुमुद मिश्रा, सब वहीं रहते थे। बहुत सारे, सीमा विश्वास, राजेश तैलंग, सब वहीं रहते थे। बहुत बड़ा एक
1: जी,
2: स्ट्रगलर का अड्डा था
1: हब
2: वो,
1: था वो।
2: स्ट्रगलर सब लोग, स्ट्रगल क्योंकि सस्ता था ना, तो सब लोग वहीं आके रुक जाते थे।
0: जी
2: तो वहाँ रहते थे हम। तो वहाँ हमारे पास पेजर था, पेजर में मैसेज आया कि कॉल आमिर खान प्रोडक्शन और क्लेमेंटिना डैश क्लेमेंटिना। मैंने कहा ये क्लेमेंटिना क्या है भाई, ये जरूर किसी ने प्रैंक खेला है, कोई कान खिंचाई कर रहा है हमारी। तो मैंने सोचा चलो काम तो कुछ था नहीं,
0: जी
2: मैंने कहा फोन तो कर लेते हैं। तो मैंने फोन किया तो आमिर खान प्रोडक्शन में लगा फोन, तो वहां उठाया, लैंडलाइन था उस वक्त, मोबाइल नहीं थे, तो लैंडलाइन था, तो उसमें क्लेमेंटिना ने उठाया, तो वो एक लड़की का नाम था, क्रिश्चियन
0: अच्छा
2: लड़की का।
0: जी
2: तो मैं बोला, तो वो बोले आशुतोष गोवारिकर कल मिलना चाहते हैं आपसे, आप आ जाइए ऑफिस, ये एड्रेस भेज रही हूँ मैं, पेजर पे मैसेज आ गया मुझे। और मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया। उन्होंने 3.5 4 घंटे ऐसे घूम घूम के कमरा बंद किया, बोले नोबडी विल डिस्टर्ब मी, और घूम घूम करके 3.5 4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। ये कमाल की बात है, मैंने उनसे सीखा कि अपने खून में पूरी कहानी होनी चाहिए, जो कि
0: बिल्कुल
2: मैंने फॉलो किया बाद में डायरेक्ट करते हुए। तो उसने सुनाई और रोल जब मैं सुन रहा था, तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल है।
0: और
2: मतलब
0: बहुत
2: इसमें
0: जी
2: वेरिएशन भी है, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी। तो और उसने बोला कि लाखा के लिए हम ढूंढ रहे हैं।
0: क्या बात है।
2: तो मेरी तो ऐसे ही, मैंने कहा भाई थैंक यू भाई, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा। और नहीं, थैंक यू वैंक यू नहीं है, ऑडिशन देना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ ऑडिशन देंगे ना। तो अगले दिन मुझे बुलाया आमिर खान के घर पे और वहां ऑडिशन हुआ। ऑडिशन दे करके मैं निकला और निकलते ऑटो में बैठा ही था, 10 मिनट हुए होंगे मुझे कि मेरे पास मैसेज आ गया कि यू आर सेलेक्टेड।
0: क्या बात है,
2: मैं
0: वाह।
2: स्टेशन जा रहा था ट्रेन पकड़ने, तो मैं तो मतलब मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि इतनी बड़ी फिल्म, इतने बड़े स्टार के साथ मेरा मतलब सिलेक्शन हो रहा है, और इतने बड़े रोल के लिए। तो मैं तो बड़ा खुश था। तो उन्होंने क्या है, आमिर खान को भेजा ऑडिशन। उसी वक्त आमिर खान मद्रास में थे, एआर
0: जी
2: रहमान के पास म्यूजिक के लिए कुछ बैठे हुए थे। तो उसके बाद मैं घर गया, उन्होंने बोल दिया कि सेलेक्ट, मतलब उन्होंने हाँ कर दिया मेरे लिए, तो हो गई बात। अब अगले दिन मुझे आना था प्रोडक्शन पैसे की बात करने, तो रीना दत्ता से,
0: जी जी
2: रीना दत्ता उनकी जो वाइफ थी, प्रोड्यूसर थी उस वक्त, तो उन्होंने बोला कि

0: भाई आप पैसे की बात कर लो तो मैं रास्ते भर ट्रेन में ये सोचता रहा कि साला यशपाल इस बार ना तू सब छोड़ 1 लाख रुपया मांग लो, ये मौका है, बड़ा प्रोडक्शन है और मतलब मिल जाएगा, कोई मना नहीं करेगा। फिर ख्याल आया कि यार अगर उन्होंने नहीं दिए तो मैंने कहा फिर 80 हजार में कर लूंगा, फिर सोचा चलो 40-50 हजार में कर लूंगा, अरे यार मैंने कहा काम तो कुछ है नहीं, 20 हजार मिलेगा तो भी कर लूंगा मैंने
1: क्या
0: कहा।
1: बात है,
0: फिर
1: कितनी
0: मैं गया रीना दत्ता जी के ऑफिस में गया, तो
1: प्यारी
0: रीना दत्ता जी ने पहली बात यही बोली कि यशपाल हमारा बजट बहुत कम है, हम सबको 1.5-1.5 लाख रुपया दे रहे हैं।
1: बात
0: तो मेरे मुंह से निकल गया नहीं नहीं मैडम, इतना लंबे दिन है, इतना बड़ा रोल है, पर दो दो लाख तो होना चाहिए। तो मैडम ने बोला ठीक है साइन कर दो।
1: क्या बात
0: अब
1: है
0: देखो ये होता है, और वो भी फिर 4.5 महीने के लिए था, फिर शेड्यूल बढ़ गया, फिर 1 महीना, फिर 50 हजार और एक्स्ट्रा बढ़ गए और 250 रुपया पर डे एक्स्ट्रा और मिलता था, तो मतलब मौज ही मौज हो गई थी। खैर वो बात अलग है, लेकिन लगान ने जो दिया पूरी दुनिया में घुमाया, पूरी दुनिया में हम फेस्टिवल्स में गए और अमेरिका कनाडा के टूर पे भी गए, दुबई हर जगह बहुत जगह गए हमने, पूरी दुनिया मलेशिया मॉरिशस सब जगह घुमा दिया इस फिल्म ने, और बहुत कुछ दिया, और ऑस्कर में नॉमिनेट हुई, बेस्ट 5 में चली गई थी,
1: जी बिल्कुल
0: बिल्कुल कांटे के टक्कर में बची लास्ट में। तो ये था किस्सा लगान का।
1: जी।

0: राधा कैसे आपने जैसे बताया कि विविधता थी इस कहानी में आपने जब सुना, लेकिन लाखा का किरदार बड़ा ही अलग तरह का था, बड़ा महत्वपूर्ण था। उस किरदार को गढ़ने के लिए आपको किस तरह की तैयारी करनी पड़ी निजी तौर पर?
1: तैयारी उन्होंने एक हफ्ता पहले बुला लिया था आशुतोष गवारीकर ने सबको।
0: जी
1: मुझे याद है मेरा जन्मदिन था 1 जनवरी को, और 1 जनवरी को ही मेरी फ्लाइट थी, तो वो उसी दिन मैं गया था, और 7 तारीख से शायद शूटिंग शुरू थी, 6 या 7 से।
0: जी।
1: तो एक हफ्ता हम वहाँ पूरे गांव में घूमते थे, मीटिंग करते थे, और आशुतोष गवारीकर हर किसी के पास आकर के बताता कि ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारी लकड़ियां पड़ी हैं, तुम वहां से जंगल से लकड़ियां काट के लाते हो, लकड़हारा हो, और यहाँ लकड़ियां इकट्ठी करते हो, और फिर गांव में एक एक जैसे 4-4 लकड़ी या 10-10 लकड़ी ऐसे बेचते हो गांव में। तो मतलब एक करेक्टर मेरा समझ में आ गया था, और यहां से वो सामने गोरी का घर है हीरोइन का, उससे तुम प्यार करते हो इसलिए ज्यादातर तुम यहीं खड़े रहते हो। और क्या है कि उसका बाप जो है हीरोइन का वैद है, तो मैं क्या करता हूँ जानबूझ के ना अपना हाथ वाथ काट लेता हूँ ताकि उसके पास पट्टी बंधाने जा सकूं।
0: अच्छा, क्या बात,
1: गौरी को देखने के बहाने।
0: जी जी जी।
1: तो इस तरीके का करेक्टर मेरा था पूरा, और मैं नफरत करता हूँ सिर्फ एक इंसान से, वो है भुवन जो हीरो है आमिर खान, क्योंकि वो हीरोइन को चाहता है, हीरोइन उसको चाहती है, तो इसलिए मेरा ये जेलसी भी काफी निकल के आई। लेकिन बाद में जब पता चला कि देश प्रेम और ये प्रेम अलग है एक तरफा, तो इसकी कोई मैं क्या कर रहा हूं अब, इसके लिए मैं देश को धोखा दे रहा हूं, वो एक एहसास हुआ, और फिर मैंने पूरी शिद्दत के साथ मैच जितवाया।
0: जी,
1: कुदरती अभी उसके 25 साल पूरे हो रहे हैं।
0: क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक पूरे विविध भारती परिवार की ओर से। आशुतोष जी कैसे हैं बातचीत करने में निजी तौर पर, उनकी कोई खासियत बताना चाहते हैं?
1: बिल्कुल, बहुत क्लैरिटी है उनके अंदर, वो प्री प्रोडक्शन में बहुत सारा काम कर लेते हैं, पूरी फिल्म का मतलब जर्रा जर्रा उनके दिमाग में और खून में बसा हुआ होता है कि क्या करना है मुझे।
0: जी,
1: ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि मैं उसके भी पक्ष में नहीं हूं, सारी चीजें कैलकुलेटेड नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, कुछ चीजें स्पॉन्टेनियसली छोड़ देनी चाहिए, जो कि लगान में उन्होंने किया।
0: बिल्कुल,
1: लगान में किया उन्होंने, काफी कुछ काम करके कुछ चीजें एक्टरों पे छोड़ दी थी, और स्पॉन्टेनियसली जो होता था उस पे उसी हिसाब से किया, क्योंकि कैमरामैन अनिल मेहता थे जो बहुत ही सजे हुए कैमरामैन थे, तो टीम भी बहुत बढ़िया थी, अच्छे सब एक्टर लिए हुए थे, और क्रू भी बहुत कमाल का था सारा। अपूर्व लाखिया उसका चीफ एसोसिएट डायरेक्टर था, जो कि आजकल बहुत बड़ा डायरेक्टर बन चुका है, जिन्होंने बहुत सारी फिल्में डायरेक्ट की हैं अभी, तो बहुत बढ़िया टीम थी। और आशुतोष गवारीकर की क्लैरिटी कमाल की थी, उसको मालूम था कि मुझे क्या चाहिए, और वो उनसे एक्टरों से निकलवा लेता था।
0: जी, और आमिर खान तो परफेक्शनिस्ट हैं।
1: बिल्कुल, आमिर खान के साथ उनकी बहुत सारी मुलाकातें हमारी शूटिंग से पहले ही हो चुकी थी, और सब कुछ तय हो चुका था कि क्या करना है।
0: बिल्कुल, और आप दीजिए एक गाना, आप बताइए कौन सा गाना सुनवाए यहाँ पर,
1: लगान का ही सुनवा दो।
2: हाँ, वो बहुत इंस्पायर,
1: कोई हमसे जीत न पाए,
2: कोई हमसे जीत न पाए।
3: बार बार हाँ बोलो यार, हाँ

0: इस फिल्म से जुड़ा हुआ अनुभव आप साझा करना चाहेंगे प्रतिभा?
1: हाँ बिल्कुल, जैसे ये फिल्म इतनी हिट हुई उसके बाद हमारे बच्चे हुए, तो मेरे बच्चों को मैं रोज लगान दिखाती थी और बच्चे इतने ज्यादा यूज्ड टू हो गए थे उस लगान के, मम्मी लगान लगाओ ना, मम्मी लगान लगाओ, रोज देखना उनको लगान रोज।
0: तो और भी बहुत सारी फिल्में हैं यशपाल जी की और
1: नहीं,
0: आपकी?
1: नहीं वो
0: तो
1: नहीं देखनी, यही देखनी,
0: सिर्फ यही देखते हैं। और जब आप बड़े हो गए हैं बच्चे तो फिल्म देखते हैं तो कोई टीका टिप्पणी करते हैं एक्टिंग के बारे में?
1: अरे उनके फेवरेट एक्टर है उनके पापा।
0: क्या बात है बहुत बढ़िया। कोई आना चाहते हैं फिल्मी दुनिया में?
1: हाँ बड़ा वाला तो कोशिश भी कर रहा है
0: जी, नाम बताएं तो।
1: सौम्य, सौम्य शर्मा।
0: चलिए सौम्य जी के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं।
2: अरे हाँ एक मिनट, सॉरी मैं बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। जब लगान की शूटिंग चल रही थी तो प्रतिभा का फोन आया, अरे बाबा क्या कर रहे हो तुम, कौन सी फिल्म कर रहे हो? धोती बोती वाली? देखो यहाँ पे इतनी सुपर डुपर हिट हो गई है, ऋतिक रोशन की पहली फिल्म थी। कौन सी थी वो? बोली बाप रे, एक ऐसा हीरो आ गया है जिसने सबको फेल कर दिया है, चारों तरफ उसकी चर्चा हो रही है, हाउसफुल जा रहे हैं, और क्या फिल्म बन रही, क्या फिल्म बनी है, मैं भी देख के आई।
1: ऋतिक रोशन की पहली फिल्म जो थी
2: कहो ना प्यार है,
1: कहो ना प्यार है।
2: है तो मैं डर गया भाई, मैंने कहा छोड़ दूं क्या लगान, क्या क्या कर लेकिन देखिए वो फिल्म भी सुपर डुपर हिट हुई, लगान भी, और लगान के साथ गदर भी रिलीज हुई और गदर भी सुपर डुपर हिट हुई।
0: जी जी जी बिल्कुल। प्रतिभा जी हम आपसे जानना चाहते हैं कि एक फिल्म थी राजेंद्र कोठारी की, है ना, याद होगी आपको, दास कैपिटल। तो इसमें आप हीरोइन है और यशपाल जी हीरो, निजी जिंदगी के हीरो भी वही है, तो ये पर्दे पर उनको हीरो के रूप में देखना, खुद को हीरोइन के रूप में देखना, ये कैसा एक्सपीरियंस था आपका, अनुभव कैसा?
1: नहीं हम लोग पहले से मतलब साथ में काम करके आए थे, तो मैं जब गुलजार साहब के साथ और मैं जब श्याम बेनेगल साहब के साथ काम कर रही थी तब मुझे राजेंद्र कोठारी जी ने नोटिस किया था एज एन एक्टर, तो उनके मैं याद में थी, ध्यान में थी। तो उन्होंने हालांकि सीमा विश्वास को कास्ट किया था और यशपाल की जगह कौन और एक्टर थे, रघुवीर यादव,
2: रघुवीर यादव,
1: रघुवीर यादव
0: जी
1: उनके दिमाग में थे, पर जैसे ही उन्होंने मेरे वो वाले काम देखे थे वो, क्योंकि वो ही उसमें कैमरामैन थे, तो उन्होंने वहां से मुझे नोटिस किया था और फिर उन्होंने मुझे घर पे आके बोला कि ये रोल सिर्फ प्रतिभा करेगी, बस दैट्स ऑल।
0: जी जी, तो इस फिल्म की शूटिंग से जुड़ी हुई कोई खास याद साझा कीजिए, दोनों लोग साथ में जाना, अमूमन अलग अलग शूटिंग पे जाते होंगे?
1: नहीं तब हमारे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, तो मम्मी आई थी उनको संभालने के लिए, मम्मी पापा मेरे, और हम दोनों वहीं पे रहते थे जहाँ पे लोकेशन था,
2: मनोर में थी लोकेशन, वहीं होटल ले रखा था हमने।
0: जी जी जी,
2: सब लोगों ने,
0: अच्छा
2: पूरी कास्ट क्रू ने, तो वहीं होटल रहे थे, वहीं बाजू में ही गांव था, तो वहीं करते थे, बच्चे भी साथ में थे।
1: बहुत सुंदर थी वो फिल्म।
0: तो आपने कहा बच्चे छोटे थे और तो बच्चों के साथ एडजस्टमेंट थोड़ा मुश्किल होता है, सामंजस्य जिसको कहेंगे, क्या कैसे आप सामंजस्य बिठाती थी?
1: तो उस वक्त तो मतलब छोटे थे ही ऑफकोर्स, तो करना पड़ता था ना उनके साथ काम, मम्मी उनको भेजती थी स्कूल और फिर मैं यहाँ से और क्या ही कर सकती हूँ, फोन ही कर सकते हैं।
0: बच्चे जब मिलते थे रोते थे तो फिर
1: दिल... नहीं रोते भी थे, नहीं थे वो बड़े उस तरह के बच्चे हैं कि मतलब समझदार है,
0: उनको पता था कि
1: उनको पता था
0: आगे बढ़ना है।
1: पर एक दिन मुझे, मैंने वो जो उस ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी जो मैं अपने मायके के लिए जाने के

0: ले रोती हूँ, तो वो उसको बिल्कुल ही छोटा था मेरा बेटा, तो बिल्कुल ही मेरे ख्याल से 5-6 साल का होएगा, तो मुझे बोल रहा है मम्मी तुम एकदम चमक छल्लो लग रही हो। ये शब्द भी उसको पता नहीं कहाँ से मिला।
1: जी, तो बच्चे देखते रहते हैं तो और बहुत कुछ सीखते हैं, टेलीविजन से सीखते हैं। तो यहाँ पर बात बच्चों की है, बच्चों के लिए कोई गाना सुनवाना चाहेंगे?
0: हाँ बिल्कुल, लकड़ी की काठी बहुत सुंदर गाना है।
2: लकड़ी

0: गुलजार साहब के साथ आपने काम किया है,
1: हाँ उनके साथ मैंने काम किया तहरीर प्रेमचंद की जो
0: जी
1: सीरीज आई थी
0: प्रेमचंद
1: के कहानियों के ऊपर। हाँ
0: जी
1: तो उसमें मैंने एक तो ठाकुर का कुआं की थी और दूसरा गोदान की थी,
2: पंकज कपूर के
1: पंकज
2: साथ
1: कपूर
2: वो
0: जी
1: थे साथ
2: अच्छा काम किया था।
0: और गुलजार साहब का कोई उसमें हस्तक्षेप था एक्सपीरियंस उनके साथ, कोई बात बताइए उनके साथ अनुभव कुछ खास।
1: मतलब वो तो जैसे व्हाइट कपड़े पहन के आते थे ना सुबह और शुरू हो जाते थे यहाँ से ये लकड़ी उठाओ ये करो इसको ये ठीक करो, मतलब तो ऐसे देवदूत जैसे लगते थे वो, मतलब उसमें घूम रहे देवदूत स्टेज पे यहाँ पे वहां पे। और फिर मुझे जब वो बोलते थे तुम हंस दो बस एक बार बस मेरा दिन बन जाता है फिर वो मतलब बहुत सारी चीजें हैं वो उनका वो आलू वहां पे भून के खाना, शकरकंदिया भून के खाना वहां, गांव गांव था ना पूरा,
2: बड़ा बेटा पेट में था उस वक्त।
1: हाँ उस वक्त
0: अच्छा,
1: सौम्य पेट में था।
0: हाँ जी
2: गुलजार साहब का तो ऐसा लगता है जब वो पैदा हुए थे तो भी सफेद कुर्ता पजामा ही था।
0: जी जी
2: पहने हुए ही पैदा हुए क्योंकि कभी और ड्रेस में देखा ही नहीं हमने।
0: जबकि गानों के कितने सारे रंग हैं, उनकी फिल्मों के कितने सारे रंग हैं, लेकिन उन्होंने खुद पर कोई रंग नहीं डाला। तो अब हम यशपाल जी की फिल्मों की ओर बढ़ते हैं। पहले फिल्मों की बात करें या हमें लगता है कि हरियाणा की ओर चलते हैं, हिसार की ओर, बचपन की ओर चलते हैं। यशपाल जी बताइए, बचपन में बड़े शरारती किस्म के थे हमने कहीं सुना है, और वो शरारतें क्या थी?

0: जरा बताइए हमारे श्रोताओं को भी।
1: हमारी शरारतें क्या होती थी, अमरूद चुरा लिए, आम चुरा लिए, बेर
0: मूलियां चुरा
1: चुर,
0: ली,
1: मूलियां चुरा ली, गाजर
0: मूली
1: गाजरें चुरा ली, मतलब खेती बाड़ी में जो चोरियां कर ली, लोहा चुरा लिया
0: अरे
1: है, लकड़ियां काट के ले आए चोरी से। तो ऐसे ऐसी चोरियां थी हमारी, और ऐसी ऐसी शरारतें थी। बकरी को चराने ले गए, गाय को चराने ले गए, तो वहां से लकड़ियां वगैरह इकट्ठी करके, गोबर वगैरह इकट्ठा करके ले आए। हमारा तो इसी में पूरा बचपन बीत गया, खेल पतंगे खेल के, और गेम बहुत खेले हमने बचपन में। आज के बच्चे गेम जानते भी नहीं है, वो लुकम छिपाई, पकड़म पकड़ाई, पतंग खेलना, ये काठ कठम्बर लोहा
0: पिट्ठू
1: लंबर,
0: पिट्ठू गरमा
1: हाँ,
0: गरम।
1: कोकला खिपा खिजे में रात आई जे, जेड़ा आगे पीछे देखे उसकी शामत आई जे। बहुत सारे ऐसे गेम हैं जो, फिर वो डिब्बियां, ढक्कन, ये सब खेलते थे हम। बड़ा खजाना था। आज तो देखो कोई पूछेगा भी नहीं, लेकिन उस वक्त में वो हमारा खजाना था। कंचे बंटे जो होते हैं ये, और इस तरीके की चीजें इकट्ठा
0: गुठलिया आम
1: करना,
0: की
1: गुठलियां, हाँ, इमली की गुठलियां,
0: हाँ
1: वो भी बहुत,
0: आम की
1: हाँ,
0: गुठलिया,
1: बहुत
0: इमली की
1: कीमती
0: गुठलिया।
1: चीजें थी ये हमारे लिए। तो ये सब इसी में बचपन बीता है, जो कि बहुत बेशकीमती, मैं बोलता हूँ कि बहुत अमीर बचपन, मैं बोलता हूँ इसको रिच बचपन, जिसमें एक्सपीरियंस ज्यादा थे। बेशक पैसा नहीं था, लेकिन इतने एक्सपीरियंस थे और इतना बढ़िया बचपन था कि मैं तो तरस गया हूँ अपने बच्चों को वो जिंदगी देने के लिए।
0: जी
1: काश वो भी ले पाते वो सब, लेकिन बॉम्बे में बहुत मुश्किल है, और आज के मोबाइल और इस जमाने में तो और भी मुश्किल है।
0: बिल्कुल
1: हमारा बचपन जो बीता है वो तमस,
0: जी
1: कथा सागर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और ये चीजें देख के कौन सा
0: बड़े
1: था
0: हुए
1: वो
0: हम लोग।
1: है,
0: मालगुड़ी डेज,
1: मालगुड़ी
0: मालगुड़ी,
1: डेज,
0: हाँ
1: यस, गालिब
0: हाँ
1: का एक सीरियल था,
0: हाँ मिर्ज़ा गालिब,
1: मिर्जा
0: मिर्ज़ा
1: गालिब,
0: गालिब
1: फौजी,
0: वो, हाँ
1: शाहरुख खान वाला,
0: हाँ
1: फिर वो एक
0: फौजी
1: दो और थे जो
0: सर्कस,
1: सर्कस,
0: हाँ
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सारी चीजें।
0: हाँ तो ये जो दूरदर्शन वाले धारावाहिक थे ये तो अलग थे। तब उसमें मतलब एक्टर की बजाय लोग किरदार के रूप में जानते थे, जैसे उस
1: हम
0: सीरियल के
1: लोग,
0: नाम से हम लोग, हाँ हम
1: यस
0: लोग से
1: यस,
0: याद आया
1: बुनियाद,
0: कि बड़की बड़की और छुटकी, वो किरदार से हम लोग जानते थे।
1: हाँ,
0: और मुझे लगता है कि आप पे ऐसे एक्टर हैं जिनको आपके नाम से ज्यादा आपका किरदार ज्यादा जाना जाता है। मतलब मैंने अभी जब देख रही थी तो आपकी अनगिनत फिल्मों में लोग किरदार के नाम से जानते हैं, तो आपको कैसा लगता है जब किसी किरदार से खास तौर से आपको बुलाया जाता है, कहा जाता है तो?
1: नहीं बिल्कुल, इसका मतलब हमारी मेहनत सफल हुई है,
0: जी
1: बहुत अच्छा लगता है ये तो। अभी तो खैर नाम से भी जानने लग गए हैं सब लोग। और कोई ये बोलता है कि आपका नाटक देखा वो वाला बहुत अच्छा, तब
0: तो
1: तो और
0: बहुत
1: ज्यादा
0: कमाल।
1: खुशी होती है। या फिर मेरी डायरेक्ट की हुई एक फिल्म है जो कि एक कल्ट फिल्म बन चुकी है हरियाणा में, उसकी बात करता है कोई तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है।
0: जी जी
1: तो ऐसे ऐसे काम जो आपने, आप पब्लिकली ज्यादा नहीं फ्लरिश हुए लेकिन आपके दिल के करीब हैं कुछ काम, या तुगलक नाटक है जैसे, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो वो देखा कोई बोलता है तो मजा आ जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि वाह, किसी एयरपोर्ट पर या कहीं किसी
0: जी जी
1: किसी और
0: जी
1: शहर में कोई ऐसे बोल देता है, तो ऐसा लगता है कि चलो कुछ तो
0: जी
1: बढ़िया हो रहा है।
0: बिल्कुल। नाटक का जिक्र किया आपने तो हमें याद आया कि एक नाटक किया था जो लगभग 3 घंटे चला था, वो कौन सा नाटक था और उस पर आपने दर्शकों को हंसाया, जिसमें मुकेश तिवारी भी है
1: अच्छा, वो बड़े न
0: वो?
1: खेले छोटे खेल,
0: जी।
1: हाँ, वो एक फ्रेंच प्ले है, डरियो फो का लिखा हुआ, आर्कएंजल्स डोंट प्ले पिनबॉल गेम, उसका हिंदी अनुवाद है,
0: जी
1: और उसमें मेन रोल मैंने किया था लॉफ्टी का, और उसमें 2.5 घंटे का नाटक था वो। तो ये समझो कि 2.5 घंटे तक तो लगातार हंसाया, फिर 10 मिनट रुलाया,
0: क्या
1: फिर
0: बात।
1: आखिरी के 5 मिनट फिर हंसाया। तो ऐसा उसका प्रोसेस था, और वो कहानी भी ऐसी थी, तो बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस रहा था वो। मुकेश तिवारी डबल कास्ट में था मेरे साथ,
0: जी
1: मतलब मैं एक दिन मैं करता था एक दिन वो। मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस वाइज अभी तक का मेरा सबसे एनर्जेटिक परफॉर्मेंस रहा है वो।
0: जी
1: वो हुआ आइंस्टाइन हुआ, या
0: परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो परफॉर्मेंस के हिसाब से तो बहुत सारी फिल्में आपके खाते में हैं। गंगा जल जो शुरुआती फिल्म है, और प्रकाश झा जिसके डायरेक्टर हैं, तो गंगा जल की बात आप बताइए हमारे श्रोताओं को, कैसे जुड़े प्रकाश झा से? ये आपके शुरुआती दिन थे और संघर्ष के भी दिन थे।
1: प्रकाश झा का मैसेज आया था मेरे पास, फिल्म करने वाला हूं मैं, तो मेरे बारे में सुना किसी से उन्होंने, एनएसडी के ही कई लोग बता देते हैं ना, तो मैं गया तो बस उनसे बातचीत हुई, और उन्होंने बोला कि ये रोल है एक सुंदर यादव का, ये साधु यादव का बेटा है, साधु यादव जो है मेन विलेन है इसमें, तो हम उनके बेटे हो।
0: जी
1: बिगड़ैल बेटे। तो मैंने बोला कि

0: ठीक है, करता हूँ भी, कर लियो, मैं बात हो गई। तो मैंने बोला स्क्रिप्ट दे दो। तो बोला स्क्रिप्ट तो मैं अजय देवगन को ना दूँ। तो मैं बोला ठीक है भाई। तो फिर मैंने बोला अच्छा मैं यहीं पढ़ लेता हूँ आपके ऑफिस में। बोले हाँ यहीं पढ़ लो। लो तो मैंने वहाँ वह बैठ करके 3 घंटा स्क्रिप्ट पढ़ी मैंने,
1: जी
0: और पढ़ करके मैंने बोला कमाल रोल है जी, मैं करूँगा। हालांकि उसमें डायलॉग नहीं थे कुछ भी ज़्यादा, और वो लिखा हुए में सुंदर यादव कुछ भी नहीं था, लेकिन फिल्म करते करते करते करते मेरे सीन लिखे जाने लगे,
1: क्या
0: और
1: बात है।
0: हाँ, और मेरा रोल बढ़ता गया बढ़ता गया, और वो मेन विलेन में आ गया तकरीबन तकरीबन क्या एक्चुअली में।
1: जी
0: तो वो प्रकाश झा की खासियत है कि उन्होंने देखा कि ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन रही है इसकी, तो उन्होंने मेरे रोल को बहुत अच्छे से उभारा और पूरा फुटेज दिया।
1: जी बिल्कुल।
0: गाना भी था, एक आइटम सॉन्ग था, जो ये संजय दत्त की वाइफ है मान्यता, उन्होंने डांस किया था उस पर।
1: जी अब यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना है सुनवाए हम।
0: यहाँ तो मेरा फिल्म है ना, ये एक सिंग इज किंग का एक गाना बड़ा अच्छा है।

0: सच बताऊं तो विविध भारती में जब मैंने जिक्र किया कि यशपाल जी आ रहे हैं, यशपाल शर्मा जी, बोले गंगा जल वाले, गंगा जल आपके नाम के साथ कैसे जुड़ गया है?
1: तो जुड़ गया है।

0: अरे वो सुनिए, मैं सिक्किम में शूटिंग कर रहा था। सिक्किम में पेलिंग करके एक जगह है जहाँ
1: जी
0: डैनी
1: जी जी
0: डैनी साहब हैं जहाँ के,
1: हाँ
0: तो पेलिंग में शूटिंग कर रहा। जानू बरुआ डायरेक्टर थे, और वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची मिली मुझे और बोल रही, अंकल अंकल आपने गंदे आदमी का रोल बहुत अच्छा करते हो। मैं बोला क्या देखा बेटा तूने, मैंने समझ नहीं आया तारीफ कर रही है कि बेइज्जती कर रही है। तो मैंने बोला बेटा क्या देखा तुमने, अरे वो जो अजय देवगन के साथ किया ना आपने आंख फोड़ने वाला, बहुत अच्छा था। मैं बोला अच्छा गंगा जल की बात कर रही है, ये भी
1: क्या
0: एक
1: बात है
0: तरीका है बच्चों का।
1: जी
0: मेरी वाइफ
1: जी
0: ये प्रतिभा नहीं देखने देती बच्चों को, गंगा जल देखने नहीं देती
1: अच्छा
0: ना, बोल रही है बहुत वायलेंस है, बहुत वायलेंस है।
1: वो छोटे छोटे
0: और
1: बच्चे थे, मैं एक बार
0: वाकई
1: उनको
0: में वो
1: देखा।
0: पिस्तौल लेकर के ठा ठा ठा ठा करते थे ना, जब ऐसी फिल्में देख करके, तो मुझे भी अपने आप पे ना ग्लानि हुई कि यार यशपाल तेरी वजह से बच्चे कितने बिगड़ रहे होंगे ऐसे, तो ये ऐसे रोल मत कर। तो मैंने ना वाकई कॉन्शियसली उस तरीके के रोल करना बंद कर दिया था। अब कई बार नहीं पता होता और करना होता पड़ता है, जैसे रावड़ी राठौड़ है या कोई जिसमें वायलेंस बहुत है तो करना पड़ता है, लेकिन मैंने खुद डिसाइड किया कि मैं खुद नहीं करूंगा ऐसा कुछ
1: जी।
0: जिसमें बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़े।
1: चमेली में आप बने थे केपी सिंह, उसके बारे में बताइए, वो उस भूमिका के बारे में बताइए। करीना कपूर इस फिल्म में थी, बड़ी सुंदर फिल्म थी
0: बहुत
1: हमने
0: प्यारी
1: देखा।
0: फिल्म थी, सुंदर फिल्म थी, और मेरा रोल बहुत बड़ा नहीं था लेकिन बहुत कमाल रोल था मेरा, क्योंकि बहुत लोगों ने चमेली का नाम लिया है। छोटा रोल लेकिन प्रभाव छोड़ने वाला रोल था, क्योंकि वो करीना कपूर की और राहुल बोस की सारी समस्याएं सॉल्व कर देता है आखिर में आकर के। सुधीर मिश्रा मेरे फेवरेट डायरेक्टर रहे हैं,
1: डायरेक्टर।
0: और जब भी उन्होंने कोई भी रोल दिया, मेरे ख्याल पहले हजारों ख्वाहिशें ऐसी, फिर ये था चमेली था, फिर उसके बाद ये साली जिंदगी, इरफान खान भी थे,
1: जी
0: तो इस जो भी रोल दिए उन्होंने मुझे उन पर पूरा आंख बंद करके भरोसा रहता था कि श्याम बेनेगल हुए, प्रकाश झा हुए, सुधीर मिश्रा हुए, ये
1: जी
0: कुछ
1: जी
0: भी रोल देंगे, अनुराग कश्यप हुए, कोई भी रोल देंगे तो मैं आंख बंद करके कर लूंगा, मैंने बिल्कुल नहीं पूछूंगा
1: जी जी
0: जी।
1: क्या बात है। अब यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना है सुनवाए हम।
2: डोली में बिठाई के का
1: आप दोनों गा के सुनाएंगे तो भी

ये थी जाने माने अभिनेता यशपाल शर्मा और उनकी पत्नी प्रतिभा शर्मा से ममता सिंह की बातचीत। आज आपने सुना पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: रंग तरंग प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं। मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अनूप जलोटा के स्वर से।
1: कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर

अनूप जलोटा और अनीता खंडेलवाल के स्वरों में आप ये भक्ति रचना सुन रहे थे। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। दोस्तों, आज जाने माने संगीतकार खयाम की याद का दिन है। आइए सुने ये रचना बेगम अख्तर की आवाज में, सुदर्शन पाकिर के बोल हैं।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

उषा मंगेशकर, भूपेन हजारिका और हेमंती शुक्ला की आवाजें थी। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की आवाजें सुनिए। एल्बम का नाम है ये प्यार का मौसम है।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुझे बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: फिर चांद की पेशानी से उठता है धुआं, आज फिर महकी हुई रात में जलना होगा। आज फिर सीने में उलझी हुई वजनी सांसें फट के बस टूट ही जाएंगी, बिखर जाएंगी। आज फिर जागते गुजरेगी तेरे ख्वाब में रात, आज फिर चांद की पेशानी से उठता है धुआं, आज फिर महकी हुई रात में जलना होगा। कहां छुपा दी है रात तूने, कहां छुपाए हैं तूने अपने गुलाबी हाथों के ठंडे पाए। कहां हैं तेरे लबों के चेहरे, कहां है तू आज, तू कहां है। ये मेरे बिस्तर पे कैसा सन्नाटा सो रहा है।
1: ये था गुलजार का स्वर।

तुलसी कुमार और जुबिन नौटियाल की आवाजों में आप सुन रहे थे ये नॉन फिल्म एल्बम से गीत, कुणाल वर्मा के बोल थे। पेश खिदमत है जगजीत सिंह की आवाज, कैफ भोपाली के बोल हैं। प्रोग्राम है रंग तरंग।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। श्री वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में कहा कि देश 6-8% की विकास दर से आगे बढ़ रहा है।
1: इन्वेस्टमेंट स्टोरी, हमारी विकास यात्रा में निवेश की अहम भूमिका रही है। आज हम हर साल करीब 130 अरब डॉलर का सार्वजनिक निवेश कर रहे हैं। इससे अर्थव्यवस्था में एक डॉलर के निवेश पर करीब 3.6 डॉलर की आर्थिक गतिविधि होती है। इसके साथ ही इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और ये सुनिश्चित करने में भी सहायता मिली है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचे।
2: बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ रीच एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि देश के 99.6% रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण हो चुका है।
1: आज देश का 99.6% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकृत हो चुका है। पिछले एक दशक में 38,000 किलोमीटर नई रेल लाइनें जोड़ी गई हैं और 162 सेमी हाई स्पीड ट्रेनें शुरू की गई हैं।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में करीब 65,000 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया गया है, जबकि हवाई अड्डों की संख्या भी दोगुनी हो गई है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन चौथी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में भाग लेने के लिए आज प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हैं। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी। ये दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय मंच है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में भारतीय वन सेवा के 2025-27 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से संवाद करेंगे और उन्हें संबोधित करेंगे। दिल्ली सरकार इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। सरकार ने बताया है कि पेंशन की राशि अगले महीने की 1 तारीख से सीधे महिलाओं के खातों में जमा होना शुरू हो जाएगी। जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने खराब मौसम के मद्देनजर एहतियात के तौर पर यात्रा के लिए नए पंजीकरण पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। जिन श्रद्धालुओं ने पहले ही पंजीकरण करा लिया है, उन्हें मौसम की स्थिति और प्रशासन के निर्देशों के अनुसार यात्रा की अनुमति दी जा रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज तड़के न्यू मार्केट इलाके में एक होटल में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की सहायता कर रहा है। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के मिक्स डबल स्पर्धा में भारत के ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने मकाओ के लियोन योक चोंग और एनजी वेंग ची को हराया। क्वार्टर फाइनल में ध्रुव और तनिषा का मुकाबला चीन की जोड़ी चेंग फांग हुई और गुआ शिनवा से होगा। भारत के

0: साथ गोल में क्रिकेट टेस्ट मैच के पांचवें दिन श्रीलंका ने दूसरी पारी में 6 विकेट पर 175 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत अपनी दूसरी पारी में 193 रन पर ऑल आउट हो गया और श्रीलंका को 372 रन का लक्ष्य दिया गया। घरेलू शेयर बाजार में आज गिरावट का रुख है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 342 अंक गिरकर 76,893 पर और निफ्टी 104 अंक गिरकर 24,051 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। फिल्म है दिले नादान, लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजें, नक्श लालपुरी के बोल, खयाम का संगीत। आज संगीतकार खयाम की याद का दिन है।

चंबल की कसम, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। साहिल लुधियानवी के बोल थे, खयाम का संगीत था। आइए सुने आहिस्ता आहिस्ता फिल्म का गीत सुलक्षणा पंडित की आवाज में। नक्शलालपुरी के बोल, खयाम का संगीत।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: कभी कभी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। साहिल लुधियानवी के बोल थे खयाम का संगीत था।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सु

0: मुकेश और आशा भोसले की आवाजों में आप सुन रहे थे मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गाना। संगीतकार थे खयाम, फिल्म थी मोहब्बत इसको कहते हैं। आज का ये प्रोग्राम खयाम साहब के नाम।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है।

0: शाम को बारूद में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती।
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, वे सीधे दिल में उतर जाती हैं। वीर जारा, टोरबाज, इंडियाज मोस्ट वांटेड, सीआईडी, अदालत, जाने कितनी फिल्मों और धारावाहिकों में देखा है उनका अभिनय और सुनी है उनकी सशक्त आवाज।
1: अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं जीवन में, आपके मन में वैसी दीवानगी और एकदम पागलपन होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग।
0: अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और डबिंग डायरेक्टर।

पंकज रैना की कश्मीर से लेकर मुंबई तक की सारी यादें करेंगे विशेष मुलाकात 19 अगस्त 2026 को आज के मेहमान कार्यक्रम में शाम 4 बजे सुनिएगा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़।

0: लता मंगेशकर और तलत अजीज की आवाजें थी। मखदूम मोहिउद्दीन के बोल थे खयाम का संगीत था। फिल्म थी बाजार। इसी के साथ आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, वे सीधे दिल में उतर जाती हैं। वीर जारा, तोरबाज, इंडियाज मोस्ट वांटेड, CID, अदालत, जाने कितनी फिल्मों और धारावाहिकों में देखा है उनका अभिनय और सुनी है उनकी सशक्त आवाज।
2: अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं जीवन में, आपके मन में वैसी दीवानगी और एकदम पागलपन होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग।
1: अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और डबिंग डायरेक्टर पंकज रैना की कश्मीर से लेकर मुंबई तक की सारी यादें करेंगे विशेष मुलाकात 19 अगस्त 2026 को आज के मेहमान कार्यक्रम में शाम 4 बजे। सुनिएगा विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। आज नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में कहा कि देश 6-8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत के पास अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। पिछले 10 वर्षों में करीब 65,000 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया गया है, जबकि हवाई अड्डों की संख्या भी दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि देश में रेल नेटवर्क में व्यापक सुधार हुआ है।
1: आज देश का 99.6% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकृत हो चुका है। पिछले एक दशक में 38,000 किलोमीटर नई रेल लाइनें जोड़ी गई हैं और 162 सेमी हाई स्पीड ट्रेनें शुरू की गई हैं।
0: इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है।
2: उत्तर प्रदेश आज भारत की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होते हुए भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। बीते 9 वर्षों में हमने सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के बजट को, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। 96 लाख से अधिक एमएसएमई यूनिट्स, 35,000 से अधिक बड़े उद्योग और 22,000 से अधिक स्टार्टअप आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4थी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में भाग लेने के लिए आज प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर पहुंच गईं। प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हैं। इस दौरान विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन से मुलाकात की। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी कर दी है। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग और आउटसोर्स एजेंसी डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहारनपुर तथा दिल्ली में 10 परिसरों पर छापेमारी की। दिल्ली सरकार इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। सरकार ने बताया है कि पेंशन की राशि अगले महीने की 1 तारीख से सीधे महिलाओं के खातों में जमा होना शुरू हो जाएगी। जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने खराब मौसम के मद्देनजर एहतियाती तौर पर यात्रा के लिए नए पंजीकरण पर अस्थायी रोक लगा दी है। जिन श्रद्धालुओं ने पहले ही पंजीकरण करा लिया है, उन्हें मौसम की स्थिति और प्रशासन के निर्देशों के अनुसार यात्रा की अनुमति दी जा रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज तड़के न्यू मार्केट इलाके में एक होटल में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे को देखते हुए ईरान के साथ सभी प्रकार के व्यापारिक और वाणिज्यिक लेनदेन स्थगित कर दिया है। अमीरात के विदेश मंत्रालय की संचार निदेशक अफरा अल हामेली ने बताया कि इस फैसले का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता तथा वित्तीय व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय कानून और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाए रखना है। बैडमिंटन में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो की भारतीय जोड़ी BWF विश्व चैंपियनशिप के मिक्स डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। अब भारतीय जोड़ी का सामना चीन की जोड़ी से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज लगभग 0.5% गिरावट का रुख है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 315 अंक गिरकर 76,921 पर और निफ्टी 97 अंक गिरकर 24,058 पर था। मौसम विभाग ने आज पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।

झारखंड भाजपा के नेताओं संग करेंगे बैठक, छात्र आंदोलन पर भी होगी चर्चा। झारखंड में नक्सलवाद के कमजोर होने के बाद पुलिस और जनता के बीच बेहतर संवाद से आ रहे सकारात्मक परिणाम, और राज्य में हो रही बारिश से कई नदियां उफान पर, स्वर्णरेखा और खरकई नदी में बाढ़ की स्थिति गंभीर, सैकड़ों घर हुए प्रभावित। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड सरकार ने गंभीर अनियमितताओं के कारण रद्द और सीआईडी जांच वाली कुल 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की है। रद्द परीक्षाओं में जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षाएं, सीडीपीओ, ड्रग इंस्पेक्टर, सिविल जज, सहायक वन संरक्षक, सहायक प्राध्यापक और अन्य भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं। कल देर रात जारी 8 अधिसूचनाओं में कहा गया है कि अनियमितता से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय से फास्ट ट्रैक अदालत गठित करने का अनुरोध किया जाएगा। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता वाली समिति 2 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की विभिन्न परीक्षाओं के रद्द किए जाने के बाद सफल अभ्यर्थियों ने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रोजेक्ट भवन के पास अभ्यर्थी सरकार के निर्णय के खिलाफ नारेबाजी कर रहे और कोर्ट का हवाला देते हुए फैसले को जल्द वापस लेने की

0: की जनता बीजेपी की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है।
1: जिम्मेवारी मेरे कंधों पे दी गई है कि उस जिम्मेवारी का निर्वहन मैं अपनी क्षमता से करूं। इस शासन में इस

गड़बड़ी की जांच की आवश्यकता पर विचार किया और अगली सुनवाई 24 अगस्त को निर्धारित की। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार xhandle@

0: झारखंड में नक्सलवाद के कमजोर होने के बाद पुलिसिंग का तरीका बदल रहा है। पुलिस ग्रामीणों के साथ बेहतर संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान कर रही है। कई दशकों तक नक्सलवाद की चपेट में रहे पलामू जिले के एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि जिले के सभी थाना प्रभारियों की आम लोगों से मुलाकात का समय निर्धारित किया गया है ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके।
1: पलामू जिले के जनता के लिए थाना प्रभारी प्रतिदिन 11 बजे से लेकर 2 बजे तक ऑफिस में बैठेंगे। आम जनता जो ओडी पदाधिकारी से या थाने में किसी प्रकार की समस्या लेने आती है और जिनको थाना प्रभारी से मिलना है, वो इस समय के बीच में थाना में जाकर थाना प्रभारी से मिल सकते हैं। सबसे ज्यादा प्राथमिकता जनता की समस्या सुनने के लिए दें, जिससे कि आम जन की समस्या थाना स्तर पर भी निदान करने की कोशिश हमारे द्वारा की जा रही है।
0: हर साल 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। यह दिन संकट और आपदाओं के बीच मानवीय सहायता के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं के साहस और बलिदान को सम्मान देने के लिए समर्पित है। डाक विभाग की ओर से सिमडेगा के विभिन्न विद्यालयों में राखी बनाने की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। सिमडेगा के जूनियर कैम्ब्रिज स्कूल में विद्यार्थियों ने अपने हाथों से राखियां बनाई, जिन्हें डाक विभाग देश के वीर सैनिकों के पास भेजेंगे। सिमडेगा पोस्ट ऑफिस के डाक सहायक राजू कुमार ने बताया कि डाक विभाग ने रक्षाबंधन को लेकर वाटरप्रूफ लिफाफा उपलब्ध कराया है।
2: राखी बनाओ प्रतियोगिता रखा गया है डाक विभाग से, सैनिक भाइयों के पास भेजा जा रहा है। किसी का बहन नहीं है, राखी नहीं पहुंच पाते हैं, डाक विभाग ने एक स्कूल से कंपटीशन के रूप में शुरू किया है। बच्चे लोग बहुत खुश हैं, हाथ से बना करके भेजा जा रहा है।
0: राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,44,100 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,40,000 रुपए प्रति किलो है। झारखंड में हो रही बारिश से राज्य की नदियों का जल स्तर बढ़ गया है। पूर्वी सिंहभूम जिले के चांडिल डैम, बोकारो जिले के तेनूघाट डैम, धनबाद स्थित मैथन डैम के कई फाटक भी खोले गए हैं। जमशेदपुर में स्वर्णरेखा और खरकई नदी में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। हमारे संवाददाता ने बताया कि नदियों के किनारे बसे घर प्रभावित हुए हैं।
3: जमशेदपुर में स्वर्णरेखा और खरकई नदी के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। दोनों नदियां अब भी अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। खरकई नदी के उफान का सबसे ज्यादा असर किनारे और निचले इलाकों में देखने को मिल रहा है। बागबेड़ा नया बस्ती में 350 से अधिक घरों में पानी घुस गया है, जबकि मानगो के करीब 200 घर प्रभावित हुए हैं। कुमार कुणाल, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर।
0: नीदरलैंड्स में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। भारत ने 2 मैचों में 3 अंक हासिल किए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने JPSC और JSSC में गंभीरता अनियमितताओं को लेकर रद्द और CID जाँच वाली 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की। JPSC और JSSC की विभिन्न परीक्षाओं के रद्द होने के बाद नौकरी कर रहे सफल अभ्यर्थियों में आक्रोश, राज्य सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री खनिज संशोधन बिल पर झामुमो समेत अन्य दलों के विरोध से निपटने की रणनीति पर झारखंड भाजपा के नेताओं संग करेंगे बैठक। छात्र आंदोलन पर भी होगा चर्चा। झारखंड में नक्सलवाद के कमजोर होने के बाद पुलिस और जनता के बीच बेहतर संवाद से आ रहे सकारात्मक परिणाम और राज्य में हो रही बारिश से कई नदियां उफान पर, स्वर्णरेखा और खरकई नदी में बाढ़ की स्थिति गंभीर, सैकड़ों घर हुए प्रभावित। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

चोरी चोरी फिल्म का गाना था और इसमें चांदनी है, मधुर चांदनी है, और बहुत सारे श्रोताओं ने हमारे पहेली का जवाब बिल्कुल सही दिया. हमारी पहेली ये थी कि कौन सा ऐसा गीत है इस गाने के अलावा जिसमें चांदनी रात है, इतराना है, खुद से शर्माना है और देखा है नीला अंबर शब्द है. हमारे श्रोताओं ने बहुत त्वरित जवाब दे डाला है इसका. चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है, फिल्म दिले नादा, और इसमें हीरो हीरोइन जया प्रदा और राजेश खन्ना होते हैं. और बहुत ज़्यादा तादाद में इसका जवाब आया है. बड़ा अच्छा लग रहा है कि बहुत जल्दी आपने पहचान लिया. और हमने आपसे पूछा था कि वो हीरोइन है जो आटा लगा है हाथ में, दरवाज़ा खोलने जाती हैं और वो बालों में लग जाता है, लट में उनके आटा लग जाता है. तो हमारी बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, बॉबी, फिल्म बॉबी में डिम्पल हैं, बेसन से सने हुए हाथ से ऋषि कपूर के लिए दरवाज़ा खोलती हैं. क्या बात है भाई, बहुत सारी फिल्में आपने देख रखी हैं और जानकारियाँ बहुत समृद्ध है. हम भी समृद्ध हो रहे हैं, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है जानकर. और एक श्रोता ने लिखा है कि 1955 में बचपन में जब गर्मियों के दिन बस एक तारे पर सबसे पहले खाट पर सोने जाते थे, वो सबसे चटक चमकने वाला तारा रहता था, उसे हम जरूर बचपन में देखते. और जब कोई तारा भागता यानी चलता था तो हम सब भाई बहन मिलकर कहते, देखो तारा भाग रहा है. कुछ देर बाद वो गायब हो जाता था. और कई श्रोताओं ने ये तारा वो तारा गाने के बोल लिखे हैं और बहुत सारे श्रोताओं ने ये जवाब दिया है, बॉबी, फिल्म बॉबी में डिम्पल होती हैं. और एक श्रोता ने लिखा है, चिट्ठी ने कोई संदेश न जाने कहाँ तुम चले गए. और फिर एक श्रोता ने लिखा है, चांदनी रात में एक बार तुम्हें देखा है, खुद से शर्माते हुए, ये गीत है फिल्म दिले नादा का, राजेश खन्ना और जया प्रदा. और एक श्रोता ने लिखा, थोड़ी सी बेवफाई, चांदनी रात में एक बार तुम्हें देखा है. मतलब हमारे श्रोताओं ने इस पहेली का जवाब बिल्कुल सही दिया. एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में छत पर चारपाई डालकर हम सोते थे, हमारी मम्मी हमें तारों के बारे में बताती थी और बताती थी कि ये सप्तऋषि तारा है, ये ध्रुव तारा है, उनके बारे में मैं एक तारे कैसे बने ये भी बताती थी कि तारे कैसे बने. सुनकर मैं रोमांचित हो जाता था. अब वो दुनिया नहीं रही, अब भी छत है, आंगन है, लेकिन वक्त नहीं है तारों को देखने के लिए, क्योंकि अब एक दुनिया है, वो है स्क्रीन की दुनिया, मोबाइल की दुनिया, कंप्यूटर की दुनिया, उसी में आप सब कुछ देख लेते हैं. तो कुदरत के पास जाने के लिए वक्त ही नहीं है. तो आप ज़रा याद कीजिए और बताइए कि पिछले दिनों आसमान के तारे को आपने कब देखा था, आसमान में निकलते हुए चांद को कब देखा था, कब आप चांद से बतियाए थे. अगर आपको तारीख नहीं आ तो ये बता सकते हैं कि पिछले हफ्ते, पिछले महीने, बताइएगा ईमानदारी से. अब बाजार फिल्म का ये गाना हम आपको सुनवा रहे हैं. आपको बूझना है हीरो हीरोइन का नाम और साथ में संगीतकार का नाम भी.

बाजार फिल्म की ये गजल थी, भूपेंद्र की आवाज, बशर नवाज के बोल थे, खयाम का संगीत था। संगीतकार का नाम हमने पूछा था, सभी श्रोताओं ने सही बताया है और ये भी बताया है हमारे श्रोताओं ने, बाजार में नसरुद्दीन शाह, सुप्रिया पाठक, स्मिता पाटिल और फारूक शेख। और एक श्रोता ने लिखा है कि कल रात ही हमने तारे का नजारा देखा, जब दुकान मंगल कर दी तो मैंने देखा मौसम साफ है। और एक श्रोता ने लिखा है कि 1981 में फिल्म उमरा और जान, 1982 में बाजार और 83 में रजिया सुल्तान, ये तीन ऐसी फिल्में हैं जो फिल्में नहीं बल्कि धुनों का महाकाव्य हैं। और सभी और भी श्रोताओं ने लिखा है फिल्म बाजार का बेहतरीन गीत भूपेंद्र की आवाज़ बहुत अच्छी लग रही है। और बहुत सारे श्रोताओं ने ये भी लिखा है कि इस इबारत से याद शब्द से ही गाना था। और एक श्रोता ने लिखा है कि 16 आने सच्ची बात मैं बता रहा हूँ, मुझे बनारस से अपने गांव आजमगढ़ जाना होता है, तभी मैं निकलते हुए सूरज को देख पाता हूँ और हमें 2 महीने हो गए निकलते हुए सूरज को देखे हुए। क्या बात है, बड़ी ईमानदारी से आपने अपनी बात कह दी, बहुत अच्छा लगा ये जानकर। एक श्रोता ने लिखा है कि करोगी याद तो हर बात याद आएगी, परीक्षा देते समय ये बात क्यों याद नहीं आती है। भाई ठीक से पढ़ेंगे तो याद आएगी ना, तो ध्यान से पढ़िए, जैसे कि गाने ध्यान से सुनते हैं और याद आ जाती है, फिल्म के सीन याद आ जाते हैं, वैसे आपके आपको पाठ्यक्रम की बातें भी याद रहेंगी। एक श्रोता ने लिखा है कि सचमुच ही सावन

0: की बौछार जैसे महसूस कर रहे नजर आ रहे हैं, जो दिल को सुकून पहुंचा रहे हैं। पानी की बूंदें छमछम करती हैं, जो इस कार्यक्रम को रंगारंग बना रही हैं। ये बरसात का मौसम बहुत कुछ बयां करती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जो मेलोडियस सॉन्ग आज हम सुन रहे हैं, वही गीत हम उन दिनों अपने रूफ, अपने छत पर, घर की छत पर सुना करते थे रेडियो ट्रांजिस्टर के साथ। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा लग रहा जानकर। और एक श्रोता ने लिखा है कि चांद तारे तो रोज ही देखते हैं रात को, आकाश में चांद तारे न दिखे तो लगता है कि आज बारिश फिर आएगी। और एक श्रोता ने लिखा है कि आजकल चांद तो कभी कभी दिख जाता है, पर तारे एकदम से नहीं दिखते, बादल बहुत रहते हैं। बचपन वाली बात भी बताइए कि जब तारों को लेकर पहेलियां बुझी जाती थी कि ये कौन सा वाला तारा है, और अगर कोई गलत बताए तो शर्त लगती थी, फिर कुछ पैसों की शर्त लगती थी, या फिर कुछ काम करने की शर्त लगती थी कि अगर गलत जवाब दिया तो वो कल फिर कोई काम सौंप दिया जाता था कि ये हिस्सा, अलमारी का हिस्सा साफ सफाई करोगे या आंगन बुहारोगे, या ये सजा भी होती थी। तो इस तरह की कोई याद आपके जहन में है तो ज़रूर साझा कीजिए। फिलहाल माया फिल्म का गाना सुनिए और बताइए गीतकार और संगीतकार का नाम।
1: तस्वीर तेरे दिल में जिस दिल

0: माया फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें थी, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सलील चौधरी का संगीत था। हमने ये सवाल आपसे पूछा था और एक श्रोता ने लिखा है कि जब छोटे थे तो दीदी के गांव जाया करते थे, छत पर खटिया डालकर तारे गिना करते थे और आपस में चाची की लड़कियां हम सब बहनें मिलकर ये कहती थी कि तूने कितने तारे गिने। आज वो दिन है कि तारे आसमान पर दिखाई नहीं देते, गिने या देख भी ले तो ऐसा लग रहा है कि बरसों बीत गए तारे नजर आए हुए। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि जो पिछला गाना सुनवाया था याद को लेकर और अभी तस्वीर को लेकर ये गाना सुनवाया है। और जब बात तस्वीर की चली है तो तस्वीर से जुड़ा हुआ और कौन सा गाना इस वक्त आपके जहन में गूंज रहा है, हो सकता है आपका वो गाना यहाँ पर हम बजाते हैं अभी तुरंत। और एक श्रोता ने लिखा है कि पहले हमारी नानी जी हमेशा तारा देखकर ही शाम का खाना खाती थी, तारे को पहले दर्शन करके, तारीख को पहले दर्शन करके उसका भोग लगाकर खाती थी। भाई चांद को देखकर खाना खाने की परंपरा के बारे में हमें पता है कि जब कोई व्रत त्यौहार होता है, कोई खास त्यौहार जैसे करवा चौथ का व्रत है, तो महिलाएं चांद देखकर खाना खाती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि छोटे छोटे तारों के साथ चांद बड़ा ही अपना लगता है, हमें बहुत सारी बातें हम याद करते हैं चांद से जुड़ी हुई, पर वो हमारी बातों का जवाब नहीं देता। चांद से बहुत सारी बातें पूछते हैं लेकिन वो जवाब नहीं देता, बस महसूस जरूर होता है कि वो हमें सुन रहा है, पर कभी तो एक छोटा ही सही जवाब देना चाहिए ना। हम रोज देखते हैं कि मगर कई दिनों से हमें चांद दिखा ही नहीं, कल ही हम आसमान में देखकर आसमान से पूछ रहे थे कि हमारे चांद को कहाँ छुपा रखा है। भाई चांद से तो सभी बतियाते हैं, बचपन में तो चांद के जो चांद में परछाई दिखती है, लोग कहते थे कि कोई वो बुढ़िया है जो सूत काटती है, और कई गानों में भी कई कविताओं में भी ये बात आती है। तो चांद से जुड़ी हुई तो बहुत सारी बातें हैं हमारे जहन में, बहुत सारी पहेलियाँ हैं। आपके जहन में कौन सी बात है वो आप साझा कीजिए। हाँ तो आपने तस्वीर वाला गाना याद किया क्या जो हम सुनवाने जा रहे हैं? कहीं यही गाना तो आपने नहीं याद किया या कोई और गाना हो तो वो भी बताइए। और ये गाना सुनते सुनते ज़रूर बताइए कि किन कलाकारों पर फिल्माया गया है ये गाना। फिल्म है सावन को आने दो।
1: ओ थी पढ़ पढ़ जग मुआ

सावन क्वानेदू फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने पूछा था किन कलाकारों पर फिल्माया गया है, अरुण गोविल और जरीना वहाब। हमारे सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और तस्वीर से जुड़े हुए गानों के बोल भी लिखे हैं। तस्वीर बनाता हूं तस्वीर नहीं बनती, ये बोल कई श्रोताओं ने लिखा है, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं। और सावन को आने दो फिल्म का नाम था, हमारे श्रोताओं ने बताया है। और फिर एक श्रोता लिख रहे हैं तस्वीर बनाता हूं, फिर एक श्रोता लिख रहे हैं कि दूर गगन की छांव और खुले आसमान के नीचे रहने वाले को ही पता होता है कि तारों को गिनना और अंधेरी रात में चांद देखने का मजा ही अलग होता है, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि तस्वीर तेरे दिल मेरा बहला न सकेगी, मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे तुम, मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे। और बहुत सारे श्रोताओं ने ये गाने के बोल यही लिखे हैं। और एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा कि सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, और चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है। मतलब इबारत से जुड़े हुए ये गाने लिख रहे हैं। और एक श्रोता की टिप्पणी है कि आज की इबारत में खयाम के संगीत सा ठहराव है, चांदनी रात की खामोशी, खिड़की के बाहर टिमटिमाता तारा, मेज पर रखी पुरानी तस्वीर और बरसों बाद भी धड़कती हुई एक अधूरी कहानी। एक श्रोता ने लिखा है कि खयाम शब्दों की गहराई को समझते थे, खयाम साहब के जो गाने हमने सुनवाए उसके लिए इन्होंने लिखा है कि उनके गाने सिर्फ संगीत नहीं बल्कि बेहतरीन शायरी और साहित्य का एहसास कराते थे। चलिए अब हम अगला गाना आपको सुनवाते हैं महबूब की मेहंदी फिल्म से। आपको पूछना है कौन है हीरो कौन है हीरोइन, और साथ में एक पहेली और शामिल है कि ऐसा ही एक गाना है मुकेश की आवाज में, कौन सा गाना है जिसमें दीवानापन शब्द आता है। और शैलेंद्र के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है, फिल्म का नाम आपको बूझना है। तो एक ये पहली होगी, दूसरी पहली कि कौन है हीरो हीरोइन इस गाने में।

महबूब की मेहंदी फिल्म का गाना था और हीरो हीरोइन का नाम हमने पूछा था, राजेश खन्ना, लीना चंदावरकर। और एक पहेली और पूछी थी जो ये थी कि मुकेश की आवाज़ में एक और ऐसा ही गाना है, ऐसा नहीं मतलब जिसमें दीवानापन शब्द आता है, और उसमें फिल्म का नाम हमने पूछा था और गाने के बोल। मुकेश की आवाज़ में गाना है जिसमें दीवानापन शब्द आता है, गाने के बोल बताइए फिल्म का नाम। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन। हिंट के लिए हमने आपको ये बता दिया। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत दिल को छू लेने वाली है, और ये बात हमारे कई श्रोताओं ने लिखी है। आप सभी से एक गुजारिश है कि आप प्रार्थना करें कि मैं जल्द ही भारत आ सकूं और विविध भारती के स्टूडियो में आकर आपके दर्शन कर सकूं। क्या बात है भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप विदेश से अपने देश में लौटना चाहते हैं, और ये मेरा बहुत बड़ा सपना है, ये लिख रहे हैं। आपका सपना पूरा हो, हम शामिल हैं आपकी इस दुआ में। और हमारे और भी श्रोताओं की बहुत सारी टिप्पणियाँ हैं जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि अब तो जिम्मेदारियों का बोझ है, पहले हम तारे गिनते थे, आसमान साफ होता था। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में जब छोटे भाई बहन एक साथ खेलते थे तो बोलते थे ये हिस्सा तारे का मेरा है, फिर हम आपस में एक दूसरे से कहते थे कि मेरी तरफ के तारे ज़्यादा हैं, फिर करते करते लड़ाई हो जाया करती थी। और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि गर्मियों के दिन में गाँव जाने पर जब छत पर सोते थे तो बीच रात में अजिया माँ काकी को उठाने लगती थी, सात डरिया सप्तऋषि दिखाई दे रहा है, भोर होने वाला है। क्या बात है भाई, तब तारों से चांद से ही समय का अनुमान लगा लिया जाता था। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत में चांदनी रात की खामोशी है, खिड़की के बाहर टिमटिमाता तारा, मेज पर रखी पुरानी तस्वीर बरसों बाद धड़कती है। तो जो मैंने इबारत लिखी है उसकी समीक्षा इन्होंने कर दी है। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रेम में दीवानी प्रेयसी, चांद तारों में प्रियतम की तस्वीर देख उसका इंतजार कर रही है, दिल में उठा दर्द आंखों से बयां हो रहा है। कौन सा गाना आपने सोचा था कि अब बजेगा ये, जिसमें इबारत में कौन सा शब्द आता है ये भी बताइएगा। फिल्म शगुन, आपको पहचाननी है आवाज़ किसकी है, किसकी आवाज़ में ये गाना है, और संगीतकार का नाम भी। संगीतकार और जिनकी आवाज़ है उनसे एक खास रिश्ता भी है, ज़रा बताइएगा।

0: शगुन फिल्म का गाना जगजीत कौर की आवाज, साहिर लुधियानवी के बोल, खयाम का संगीत। सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया है, लेकिन एक सवाल और पूछा था कि जो संगीतकार हैं और गायिका हैं, इनका खास रिश्ता था, इसके बारे में हमारे श्रोताओं ने नहीं बताया। इसके जवाब का भी हमें इंतजार रहेगा। और एक श्रोता ने लिखा है कि मजबूरी से दिल तोड़कर चले जाने वाले उस सपनों के सौदागर का प्रेम धागा इतना पक्का था कि प्रियतमा के रूह में सदा के लिए फंस गया था। और एक श्रोता ने लिखा है कि ममता जी आज की अधूरी इबारत को पूरा नहीं करेंगी क्या? भाई ये तो इबारत को पूरा तो आपको करना था, हमने तो आपसे ही पूछा है शुरुआत में, कार्यक्रम की शुरुआत में, कि अंत क्या चाहते हैं आप, कि वो जो दरवाजे की दस्तक हुई थी वो आ जाए या नहीं। तो आप बताइए कि क्या करना है। वैसे दुख का अंत सुख से होता है तो ज्यादा अच्छा लगता है। सुनिए ये प्यासा फिल्म का गाना, बुझिए हीरो हीरोइन का नाम और आवाज किसकी है ये भी बताइएगा।
1: हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें तो।
0: दो आवाजें हैं, दोनों के नाम बताइए।

गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजें थी। पूछा था हमने, सभी ने सही जवाब दिया है। सायर लुधियानवी के बोलते सचिन देव बर्मन का संगीत था, फिल्म थी प्यासा और माला सिन्हा गुरुदत्त के अभिनय से सजी थी फिल्म। हमारे श्रोताओं ने यह भी सही बताया। और एक पहली हमने आपसे पूछी थी कि मेरे दीवानेपन की कोई दवा नहीं महबूब की मेहंदी, और पूछा था कि एक और गाना है जिसमें दीवानापन शब्द आता है, सभी ने सही जवाब दिया, यहूदी फिल्म ये मेरा दीवानापन है, मुकेश की आवाज। और हमारे कई श्रोता लिख रहे हैं कि आज की इबारत में जो कहानी बुनी बहुत पसंद आई। और एक श्रोता ने लिखा है कि ये जो आज की कहानी थी, अगली बार जब आइएगा तो ऐसी ही कोई कहानी लेकर आइएगा। क्या बात है भाई, लेकिन कहानी का अंत आप सबने बताया नहीं। हमने पिछली दफा भी कहानी का अंत पूछा था, आप सभी ने बताया था, वही अंत हमने किया था, लेकिन आज हमारे श्रोता हम ही से पूछ रहे हैं। तो चलिए अंत, फिर अंत में जो लाइन लिखी है उसी अंत से, उसी लाइन से हमें समापन करना पड़ेगा। एक श्रोता ने लिखा है कि ये रचना केवल बिछड़ने का रोना नहीं है, बल्कि ये एहसास कराती है कि सच्चा प्रेम पाना या खोना नहीं, बल्कि किसी को अपनी रूह में हमेशा के लिए संजो लेना है। प्रेम का पैगाम कबूल हो गया है तो दोबारा भेजने की जरूरत नहीं होती। तो चलिए, अब जब असली प्रेम सच्चा प्रेम होता है तो दुख दर्द कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन इबारत का अंत यही था, तो इसी गाने से अंत करते हैं। फिल्म का नाम जरा बता दीजिए, क्या है फिल्म का नाम, और गीतकार संगीतकार का नाम पता है तो वो भी बताइए।

0: शहनाई फिल्म का गाना था, आशा भोसले की आवाज थी, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, रवि का संगीत था और यही था प्रोग्राम का आखिरी गाना। सुरीला सफर का ये सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब दीजिए इजाजत।
1: The headlines. Union Minister Ashwini Vaishnaw says government investing around

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा, भारत सतत वृद्धि दर को बनाए रखने

0: अब समाचार विस्तार से। सूचना और
1: प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। आज नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में कहा कि देश 6-8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है।
2: इन्वेस्टमेंट स्टोरी हमारी विकास यात्रा में निवेश की अहम भूमिका रही है। आज हम हर साल करीब 130 अरब डॉलर का सार्वजनिक निवेश कर रहे हैं। इससे अर्थव्यवस्था में एक डॉलर के निवेश पर करीब 3.6 डॉलर की आर्थिक गतिविधि होती है। इसके साथ ही इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और ये सुनिश्चित करने में भी सहायता मिली है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचे।
3: बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ रीच एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि भारत के पास अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। पिछले 10 वर्षों में करीब 65,000 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया गया है, जबकि हवाई अड्डों की संख्या भी दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि देश में रेल नेटवर्क में व्यापक सुधार हुआ है।
2: आज
4: देश का 99.6% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकृत हो चुका है। पिछले एक दशक में 38,000 किलोमीटर नई रेल लाइनें जोड़ी गई हैं और 162 सेमी हाई स्पीड ट्रेनें शुरू की गई हैं।
1: इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है।
5: उत्तर प्रदेश आज भारत की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होते हुए भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। बीते 9 वर्षों में हमने सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के बजट को, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। 96 लाख से अधिक MSME यूनिट्स, 35,000 से अधिक बड़े उद्योग और 22,000 से अधिक स्टार्टअप आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत और जापान सहयोग महत्वपूर्ण दिशा में आगे बढ़े हैं।
6: जापान के साथ भारत की पार्टनरशिप केवल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप नहीं है, ये डेवलपमेंट की पार्टनरशिप है, ये डिप्लोमेसी की पार्टनरशिप है और ये डिग्निटी की पार्टनरशिप है। उत्तर प्रदेश आपको केवल इन्वेस्टर नहीं मानेगा, आपको डेवलपमेंट पार्टनर मानेगा, क्योंकि हम मानते हैं इन्वेस्टमेंट का सर्वोत्तम रूप है जो कैपिटल के साथ साथ कैपेबिलिटी भी लाती है, टेक्नोलॉजी के साथ टैलेंट लाता है और प्रॉफिट के साथ प्रॉस्पेरिटी भी लाता है और रेवेन्यू से ज्यादा रिलेशन मजबूत करता है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजोरी कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत करने, रणनीतिक विश्वास और सहयोग बढ़ाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। श्री कोइजुमी ने आज मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमान का दौरा किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4थी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में भाग लेने के लिए आज प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर पहुंच गईं। बैठक कल होगी। प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
7: इस दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्ण से मुलाकात की। दोनों विदेश मंत्रियों ने सिंगापुर में भारतीय उच्चायोग के नए चांसरी परिसर की आधारशिला भी रखी। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी। ये दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय मंच है। इसके अंतर्गत उन्नत विनिर्माण, संपर्क, डिजिटल क्षेत्र, स्वास्थ्य और चिकित्सा, कौशल विकास तथा सतत विकास सहित 6 प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की जाती है और नए अवसर तलाशे जाते हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि बैठक में भारत सिंगापुर आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नए अवसरों पर चर्चा होगी। सकलैन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में प्रश्न पत्र लीक जैसे मामले रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए एक स्थायी तंत्र शामिल हो। NEET UG 2026 पेपर लीक से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सचिव को निर्देश दिया कि वे खलफनामा दाखिल करें जिसमें

0: ये बताया जाए कि राधा कृष्ण समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा नंदन नीलेकणी समिति द्वारा सुझाए गए आवश्यक संशोधनों को भी इसमें शामिल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि देश में एक मजबूत परीक्षा संस्थान हो जो विशेषज्ञता को बनाए रखने और तकनीकी परिवर्तनों के अनुकूल होने में सक्षम हो। नीट यूजी 2024 प्रश्न पत्र लीक विवाद के बाद पूर्व ISRO अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में के राधाकृष्णन समिति का गठन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में लापता और बचाए गए बच्चों की पहचान तथा उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए राष्ट्रीय DNA और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बनाने की मांग की गई है। न्यायालय ने गृह मंत्रालय और आयोग को नोटिस जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहारनपुर तथा दिल्ली में 10 परिसरों पर छापेमारी की है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। सरकार ने बताया है कि पेंशन की राशि अगले महीने की पहली तारीख से सीधे महिलाओं के खातों में जमा होना शुरू हो जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि योजना शुरू होने के मात्र 18 दिनों में ही लगभग 800,000 महिलाओं ने दिल्ली लक्ष्मी योजना पोर्टल पर पंजीकरण कराया, जबकि इसके बाद 500,000 से अधिक आवेदन जमा किए गए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने आज विधानसभा में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि विधानसभा के सभी सदस्यों को नया वाहन चालक और सहायक दिया जाएगा। इसके अलावा ईंधन खर्च के लिए हर महीने 75,000 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने उत्तरी चेन्नई में 300 करोड़ रुपए की लागत से 400 बिस्तरों वाला नया अस्पताल बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत इलाज के लिए बीमा राशि 500,000 रुपए से बढ़ाकर 25,00,000 रुपए करने की भी घोषणा की। पंजाब पुलिस ने नवनियुक्त रक्षा कर्मियों के सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल शुरू किया है। ये पोर्टल रक्षा मंत्रालय से जुड़ा है जो नए भर्ती हुए कर्मियों के दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों का सत्यापन करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तरी छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, विदर्भ, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरलम और माहे में भी इसी तरह का मौसम रह सकता है। भुवनेश्वर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तरी ओडिशा के कई हिस्सों में अब भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
1: उड़ीसा में बाढ़ का संकट अभी भी भारी मुश्किलें पैदा कर रहा है, खासकर भद्रक जिले में जहां बैतरणी और सालंदी नदियों के उफान के कारण बड़े इलाके जलमग्न है। वासुदेवपुर, तिहिड़ी, धामनगर, भंडारी पोखरी और चांदबली ब्लॉक के गांव अभी भी बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर आज 297 स्कूल और 395 आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखे हैं। उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स ODRAF के जवानों ने केंद्रापड़ा जिले के कुलसाही गांव में एक सरकारी आवासीय स्कूल में 4 दिन से फंसे 230 छात्रों को बचाया है। IMD ने शुक्रवार से रविवार तक उड़ीसा में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में कल देर रात हुई तेज वर्षा से धारचूला तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुलागाड़ में बेली ब्रिज ध्वस्त हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: धारचूला क्षेत्र में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण कुलागाड़ में बेली ब्रिज ध्वस्त होने से आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर यात्रा

0: मार्ग के साथ ही चीन सीमा को जोड़ने वाला सड़क संपर्क भी बाधित हो गया है। मार्ग बंद होने से दारमा, चौदास और व्यास घाटी का संपर्क जिला मुख्यालय और धारचूला क्षेत्र से कट गया है। प्रशासन ने पुल को जल्द बहाल करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। बीआरओ के अनुसार आज शाम तक डायवर्जन रूट का कार्य पूरा होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और भूस्खलन के कारण 100 से अधिक ग्रामीण सड़कें बाधित हैं। मौसम विभाग ने देहरादून और बागेश्वर में आज भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी करी है। वहीं टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: जम्मू कश्मीर में खराब मौसम को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एहतियात के तौर पर यात्रा के लिए नए पंजीकरण पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। एक रिपोर्ट।
2: श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए पहले से पंजीकृत और वैध RFID कार्ड वाले श्रद्धालुओं को प्रशासन के निर्देशों के अनुसार यात्रा की अनुमति दी जा रही है। श्रद्धालुओं से श्राइन बोर्ड और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। नए पंजीकरण पर फैसला मौसम और सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए लिया जाएगा। वहीं श्री अमरनाथ यात्रा का 455 श्रद्धालुओं वाला तीसरा जत्था आज तड़के जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से पुंछ के राजपुरा गांव के लिए रवाना हुआ। इस बीच मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मीनाक्षी।
1: भारत ने गोल में दो मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में आज श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की पूरी टीम 206 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में नीदरलैंड्स में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। भारत ने दो मैचों में 3 अंक हासिल किए हैं। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के मिक्स डबल्स स्पर्धा में भारत के ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मकाऊ की जोड़ी को उन्होंने हराया। प्री क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी का सामना चीन की जोड़ी से होगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी वॉकओवर मिलने के बाद प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। कोलकाता पुलिस ने न्यू मार्केट इलाके में मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित एक होटल में लगी आग में 9 लोगों की मौत की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। मृतकों में 2 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। 16 घायल लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता अग्नि दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। घरेलू शेयर बाजार में आज लगभग 0.5% गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 365 अंक गिरकर 76,871 पर और निफ्टी 110 अंक गिरकर 24,045 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत सतत वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 130 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट UG पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता। मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। और FIH हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। ये खानदान फिल्म का गाना है, लता मंगेशकर की आवाज, नक्श लालपुरी के बोल खयाम का संगीत है।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

0: दिल अपना और प्रीत पर आई इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। शब्दकार थे शैलेंद्र और संगीतकार शंकर जयकिशन।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुझे बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपके आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती।

जिस देश में गंगा बहती है, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। शैलेंद्र की रचना थी, शंकर जयकिशन की धुन थी। फिल्म है 11,000 लड़कियां, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, एन दत्ता का संगीत है।

0: 11,000 लड़कियां इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, एन दत्ता का संगीत था। सदाबहार नगमे प्रोग्राम के आखिर में आइए सुनते हैं धूल का फूल फिल्म का गाना सुधा मल्होत्रा की आवाज में। साहिल लुधियानवी के बोल, एन दत्ता का संगीत है। सुनिए ये प्रोग्राम का आखिरी गाना। और
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। राज्य सरकार द्वारा जेपीएससी और जेएसएससी की 22 परीक्षाओं को रद्द किए जाने के खिलाफ सफल अभ्यर्थियों का आंदोलन तेज हो गया है। भारी बारिश के बीच प्रभावित कर्मचारियों ने झारखंड मंत्रालय के समक्ष न्याय दो या फांसी दो के नारों के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार के इस फैसले ने 11वीं से 13वीं जेपीएससी

0: सिविल सेवा और सीजीएल के सफल अभ्यर्थियों को सड़क पर ला दिया है।
1: हम लोग कोर्ट गए, कोर्ट से लड़े, उसके बाद हाई कोर्ट का आदेश आया। हम लोगों के ऊपर कोई मंत्री कोई नेता का एहसान नहीं है, हम लोगों के ऊपर कोर्ट है, कोर्ट के आदेश से आए हैं। समझना चाहिए मुख्यमंत्री को, तानाशाही नहीं चलेगा।
2: मेरा वर्क कोई आज रात में एक उठ के ऑर्डर निकाल देता है और बोलता है कि तुम जेन्युइन नहीं हो, तो आपको कौन अथॉरिटी दिया ये सवाल उठाने वाला? 26 सालों का हिसाब दो, जब से झारखंड बना है तब से एक नियुक्ति प्रक्रिया यहाँ ढंग से नहीं हो पाई है।
0: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने 11वीं, 12वीं और 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने तर्क दिया कि जिस इंटरव्यू बोर्ड में सीआईडी के एडीजी और आईएएस अधिकारी शामिल थे, वहां सीआईडी जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती। मरांडी ने कहा कि पूरी पारदर्शिता के लिए इस मामले को तुरंत सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए।
3: और सबों की एक ही मांग कि भाई पूरे मामले को जांच सीबीआई से करानी। जब सीबीआई से जांच कराना स्वाभाविक है, वो लोग बताते हैं किस प्रकार से वहां जो उनकी लोकल एजेंसी है, चाहे सीआईडी है, चाहे लोकल पुलिस प्रशासन है, चाहे वहां के जो पदाधिकारी जिन लोगों ने मिलजुल करके गड़बड़ किया, पर्दा ढांकने का ही काम किया, अपराधियों को बचाने का ही काम किया।
0: 11वीं, 12वीं और 13वीं जेपीएससी परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग पर राज्य सरकार की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस मामले में केवल राजनीतिक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। तिर्की ने सरकार के कामकाज का बचाव करते हुए विपक्ष के आरोपों को निराधार बताया।
4: जहाँ तक सीबीआई की लगातार बात उठती है, बाबूलाल मरांडी जी का ये जो गड़ा हुआ नरेटिव है, उनको बतलाना चाहिए कि सीबीआई ने कितने सारे केसेस को संपन्न करके रिपोर्ट जमा किया है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने प्रश्न पत्र लीक रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को संस्थागत रूप देने और सुरक्षित बुनियादी ढांचा तथा स्थायी तंत्र बनाने पर जोर दिया है। नीट यूजी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शिक्षा मंत्रालय से राधा कृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने पर हलफनामा मांगा है। केंद्र ने परीक्षा सुरक्षा उपायों की जानकारी दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने लिट्टीपाड़ा प्रखंड के झेनागड़िया उत्क्रमित विद्यालय स्थित बूथ संख्या 95-96 और कमल घाटी पंचायत भवन स्थित बूथ संख्या 75 का जायजा लिया। इसके अलावा हिरणपुर प्रखंड के राजकीयकृत प्लस टू उच्च विद्यालय स्थित बूथ संख्या 127 और 128 का भी निरीक्षण कर एसआईआर कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान श्री कुमार ने नो मैप वाले मतदाताओं के घर घर जाकर उनके दस्तावेजों की जांच की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहे एचएसी को पटरी पर लाने के लिए संसद की औद्योगिक स्थायी समिति की 6 सदस्यीय टीम सांसद तिरुचि शिवा के नेतृत्व में आज 3 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंच रही है। समिति एचएसी प्रबंधन और श्रमिक संगठनों के साथ बैठक करेगी। कल टीम तीनों प्लांटों का स्थलीय निरीक्षण कर मशीनरी और संसाधनों का जायजा लेगी। साथ ही झारखंड की कैबिनेट सचिव वंदना दादेल के साथ भी महत्वपूर्ण बैठक होगी। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव और मॉनसूनी बादलों के कारण राज्य में कल से रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। इससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। राजधानी रांची में सबसे अधिक 56 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 12 घंटों में मॉनसूनी बादल कमजोर होकर आगे बढ़ जाएंगे। बोकारो के मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में दूसरी एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता शुरू हुई, जो 29 अगस्त तक चलेगी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने तीर चलाकर इसका उद्घाटन किया। राज्यपाल ने वर्ष 2014 के बाद देश की बढ़ी खेल संस्कृति की सराहना की।
5: 2014 में जब मोदी जी ने देश की सत्ता संभाली है, उन्होंने खेल के प्रति अपनी विशेष रुचि दिखाई और अब खेलों में व्यापक परिवर्तन भी हो रहा है और खिलाड़ियों में आत्मविश्वास की भी बढ़ोतरी हो रही है। शरीर ने दुनिया में पहचान बनाई है और तीरंदाजी अपने आप में महत्वपूर्ण खेल होता जा रहा है। झारखंड की पहचान तीरंदाजी में हो रही है अच्छे ढंग से और यहाँ की खासतौर से लड़कियों ने अच्छी पहचान बनाई है।
0: प्रतियोगिता में देश भर के 900 से अधिक तीरंदाज भाग ले रहे हैं। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: सखी सहेली
1: नमस्ते सभी सखियों को, सभी सखियाओं को, सभी सखाओं को और सुनने वालों को स्वीकार कीजिए चंचल वर्मा का नमस्कार। और दीपा बैठी है मेरे सामने, कैसी हो दीपा?
2: बिल्कुल ठीक। और हमारे सभी साथियों को यानी हमारे सखियों को
1: हेल्दी नमस्कार।
2: हाँ बिल्कुल, हेल्दी नमस्कार देना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम लगातार ना उस प्रेरणाओं में रहें, इंस्पिरेशन में रहें।
1: हाँ।
2: ये सिर्फ ऐसा नहीं कि हम आपको दे रहे हैं, आप भी हमें देते हैं
1: जी।
2: हमारे साथी देते हैं जो हमें सुनते हैं, उनकी तरफ से भी। और अगर कभी कहीं कोई भूल चूक हो जाए और इन दिनों ये दिन ऐसे चल रहे हैं, अगर कहीं थोड़ा सा भी आलस आ रहा हो ना, तो फिर से ऐसा लगता है कि हाँ हमारे किसी एक दोस्त ने कहा है अपनी सेहत का ध्यान रखना है।
1: बिल्कुल
2: बिल्कुल, लगातार इस बात पर अपना ध्यान रहे कि अपनी सेहत का और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उसके साथ कोई हल्का फुल्का उसे कहीं हल्के में ना ले,
1: कोई समझौता नहीं करना है। और आपके कहने से पहले ही मैं बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि हेल्दी नमस्कार आएगा, इसीलिए बहुत उत्सुकता अवश्य
2: हाँ,
1: मैंने
2: कह दिया। तो एक बार फिर से अपने साथियों को, सखियों को और श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
1: चलिए और बता दें कि आज किस विषय पर हम बात करेंगे। देखो, सुंदर दिखने का शौक अगर सबको होता है तो सुंदर फोटो आए, ये भी शौक सबको होता है।
2: हाँ बिल्कुल।
1: और कई बार ऐसा होता है ना कि हम यूं ही बैठे हैं, किसी ने फोटो खींचने का अंदाज उसका इतना अच्छा था ना, तो वो फोटो देखकर हमें लगता है कि उस दिन तो मैंने कोई तैयार भी नहीं हुए थे, हम बाल भी नहीं बनाए थे, और कई बार हम जिस जगह पर बैठे होते हैं वो भी बहुत खूबसूरत नहीं होती। लेकिन ये फोटोग्राफी का कमाल है कि आपकी जो छवि है वो उभर कर इतनी सुंदर सामने आती है कि लगता है कि तारीफ कर दो जिसने ये फोटो खींची है।
2: ये बात तो बिल्कुल सही है। और वो जो सुनहरे पल कैद हो जाते हैं हमेशा के लिए, और फिर जब कुछ सालों के बाद हम एल्बम खोल के देखते हैं, वो वक्त याद करते हैं, तो भाई ये आविष्कार कितना ऐतिहासिक है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। और बहुत सारे संदेश इस विश्व फोटोग्राफी दिवस के लिए आए हैं।
1: और एक समय था ना कि कई बार जब कैमरे से फोटो क्लिक होती थी तो हम इंतजार करते थे कि कब वो पूरी रील पहले खींची जाएगी, फिर उसे धुलाई पे जाएगी।
2: हाँ।
1: और फोटो जब डेवलप होके आएंगे तब हम उन्हें देखेंगे। लेकिन अभी जिस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट हमारे हाथ में, जिसे हम मोबाइल के नाम से जानते हैं, आपने जैसे ही क्लिक किया आपके हाथ में फोटो होता है
2: जी।
1: अगर आप किसी को दिखाना चाहते हैं तो आपके पास उसे भेजने के यानी कि एक दूसरे के साथ शेयर करने के ऑप्शन भी होते हैं।
2: बिल्कुल,
1: अब धुलाई करवाएंगे इतना इंतजार ही नहीं करना होता, और तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है कि आप तुरंत जाकर प्रिंट भी ले सकते हैं उसका। अगर आपको एक हार्ड कॉपी यानी कि अपने पास में रखनी है, आपको कई बार लगता है कि कहीं कोई डिलीट ना हो जाए, तो उसे हमेशा के लिए अगर सुरक्षित रखना है तो बहुत लंबा समय इंतजार नहीं करना है।
2: बिल्कुल सही कहा। और जो डिलीट वाली बात कही है ना आपने, दिल में कहीं कुछ ऐसी भावनाएं आ जाती हैं कभी कभी चंचल, जो हमें डिलीट कर देनी चाहिए।
1: बिल्कुल
2: है ना,
1: यानी कि जो नफरत की, क्रोध की भावनाएं हैं उन्हें भुलाकर हमेशा अपने दिल में एक इंसानियत की, जो मानवता की भावना है, दूसरों का भला करने की भावना है, उसे हम सहेज कर रख सकते हैं।
2: बिल्कुल सही, ताकि हम आगे जो जीवन में चलें तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ यानी सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ें, और खुशियों को और मन की शांति और सुकून को प्राथमिकता देते हुए आगे निकलते चलें जीवन में। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए

0: कहते हैं कि वेस्टर्न आउटफिट कभी करने का मन करता है, लेकिन जब कोई खास मौका हो, किसी से मिलने जाना है, घर पे कोई उत्सव है, कोई त्योहार है, या कभी मन में लगाना कि नहीं आज कुछ मन में खास बनने का अवसर है, तो उस वक्त सबसे पहला परिधान जो हमारे जहन में आता है वो होता है साड़ी।
1: बिल्कुल।
0: और इतने सारे प्रकार है ना साड़ी के कि कई बार चुनना मुश्किल होता है, लेकिन अलग अलग मौके के हिसाब से साड़ियां चुनी
1: जा सकती है, जैसे कि सावन के महीने में लहरिया साड़ी।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, और लहरिया साड़ी की ही आज हम बात करेंगे। लहरिया साड़ी राजस्थान में तो बहुत ही लोकप्रिय है, लेकिन आजकल हर जगह ये पहुंच चुकी है, तो हमारे जितने भी सुनने वाले हैं इसके बारे में जरूर हमें बताएं कि हमारी सखियां किस तरह से लहरिया पहनती हैं, या उनके वार्डरोब में साड़ी है कि नहीं
1: है या नहीं। और जिस दिन आपको साड़ी पहन के कहीं जाना है, तो फिर घर में एकदम अफरा तफरी होती है ना कि भाई मुझे जाना है, अब हम जल्दी नहीं आ पाएंगे, तो ऐसे में कुछ झटपट बना के रख दें, खिला दें घर में, जो पीछे परिवार में बच्चे रह गए हैं या पतिदेव रह गए हैं या कोई और परिवार के सदस्य, तो क्या झटपट बनाया जा सकता है। कुछ संदेश आए हैं, हम चाहते हैं आप और कुछ रेसिपीज भेजिए।
0: हमारी सखियां बड़ी होशियार हैं, वो इस तैयारी में होती है कि भाई आज जल्दी से कुछ बनाना है, तो उनके पास, उनके पिटारे में झटपट वाले कौन से व्यंजन होते हैं, खासतौर पर जो स्नैक्स के आइटम होते हैं ना, तो वो हमें लिखकर भेजें। तब तक एक गाना सुन लेते हैं सबके साथ में।

0: दीपा, हम भी तो यही कह रहे हैं कि ये जो समय है, ये तन्हा ना बीत जाए, इसमें सबको साथ लेकर हमें चलना है, और कई बार अपनी यादों को भी साथ संजो कर चलना होता है। फोटोज में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, जो हमारी तस्वीरें होती हैं पुरानी, वो
1: जी
0: हमें उन यादों से जोड़े रखती हैं, हमारे जो मिलने जुलने वाले हैं उनसे भी जोड़े रखती हैं। तो कई बार मन में आता है कि फोटोग्राफी क्या चीज़ है, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं कि फोटोग्राफी रोशनी का इस्तेमाल करके चित्र बनाने की एक कला होती है, और 19 अगस्त का दिन होता है, इसे विश्व स्तर पर फोटोग्राफी के रूप में हम मना रहे हैं आज भी, और विविध स्तर और रचनात्मक तरीकों से फोटोग्राफी की कला और शिल्प का इस दिन सम्मान किया जाता है।
1: अगर इसके इतिहास में थोड़ा जाएं हम चंचल, तो शुरुआत में फोटोग्राफिक प्रक्रियाओं में डैगोरियोटिप ये
0: हाँ
1: आविष्कार किया गया था,
0: बिल्कुल,
1: जिसे 19 अगस्त 1839 में फ्रांसीसी सरकार ने दुनिया को उपहार के रूप में ये घोषित किया था।
0: और ये उपहार देखो ना कितना बहुत काम की चीज बन गई
1: बिल्कुल।
0: हमारे।
1: तो ये लुई और जोसेफ निप्स, इन दोनों ने मिलके इस टाइप को, ये
0: ये जो
1: डेकोरेट,
0: आविष्कार है,
1: हाँ
0: हाँ
1: ये जो आविष्कार है, इसको विकसित किया था और इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, जिसने हमारी और आपकी छवियों को कैप्चर करने और उससे सुरक्षित और हमेशा संरक्षित रखने के लिए, आप यूं कहें कि एक क्रांतिकारी बदलाव आ गया है ना
0: बिल्कुल सही
1: हम
0: कहा।
1: सबके ही जीवन में।
0: और इसी की याद में तो आज का दिन हम मना रहे हैं, और ये दिन जो इस आविष्कार का सम्मान करता है, फोटोग्राफी को इस तरह से मतलब पेश करता है, और सदियों में ये विकसित हुआ, जिसने कला, विज्ञान, पत्रकारिता, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति सभी को प्रभावित किया है। फोटोग्राफी की दुनिया से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहां वो जो अपना जुनून है, अपना शौक है, उसे साझा भी करते हैं, और जो उनका काम है इसके माध्यम से सबकी वाहवाही भी बटोरते हैं इसे दिखाकर, है ना।
1: अब अगर कभी पूछा जाए कि एक तस्वीर क्या है, तो एक तस्वीर किसी स्थान या अनुभव या विचार या किसी समय को जब कैद कर लिया जाता है, उस क्षण को,
0: जी
1: उसे एक हम तस्वीर कहते हैं। भाई
0: बिल्कुल
1: अगर कभी पूछ लिया किसी ने ये सवाल, तो हम कम से कम परिभाषा तो दे सकते हैं, है ना।
0: जी सही कहा दीपा
1: और
0: आपने।
1: फोटोग्राफी के रूपों का सम्मान करते हुए हर साल एक वैकल्पिक थीम के साथ इस दिन को मनाया जाता है। तो इस साल का जो थीम है वो है घर, यानी हमारा हाउस होम जो हम कहते हैं। तो ये थीम उस स्थान या उस एहसास को दर्शाती है जिसे हम अपना घर मानते हैं, जहां आप रहते हैं, या आपका कोई, आपका गृह, आपका देश, या वो स्थान जिस जहां आपको अपना सा लगे, एक सुकून भरा महसूस हो,
0: जी
1: तो ये थीम है। तो आप घर को लेकर के तस्वीरें अलग अलग खींच सकते हैं और सोशल मीडिया पर अलग अलग जगह पर आज के दिन उस फोटोग्राफ को शेयर कर सकते
0: और
1: हैं।
0: देखो हमारे सुनने वाले लिख रहे हैं कि ये अद्भुत कला बीते हुए पलों को, भावनाओं को, यादों को हमेशा के लिए सहेज लेती है। अच्छी तस्वीर केवल एक दृश्य नहीं दिखाती, बल्कि अपने भीतर एक पूरी कहानी, एहसास और पूरा समय समेटे हुए रहती है। फोटोग्राफी ने दुनिया को देखने और समझने का नजरिया भी बदला है। तस्वीरें समय को रोक नहीं सकती, लेकिन बीते हुए समय को हमारी यादों में हमेशा के लिए जीवित रख सकती हैं, और ये बहुत अच्छी बात लिखकर भेजी
1: बिल्कुल। और एक संदेश और आया है बड़ा प्यारा सा। ये संदेश में कहती है हमारी सखी कि सच कभी कभी हमारा ऐसे ही खींचा गया फोटो इतना अच्छा होता है कि उसके सामने बहुत ही बन ठन के खींचे गए फोटो बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं। मतलब हम कभी कभी बिल्कुल तैयार होकर के खड़े होते हैं कि हाँ हमारा क्लिक करना चाहिए फोटो, लेकिन एक कैजुअल वाले जो पिक्चर हैं, फोटो खींची हुई, वो बहुत सुंदर लगती है उसके
0: बिल्कुल।
1: सामने।
0: और एक संदेश में बात लिखी गई है कि तस्वीरें बीते हुए कल और इतिहास को सुरक्षित रखती हैं। तस्वीरों की कोई भाषा नहीं होती, ये बिना बोले सब कुछ कह देती हैं, ये बिना बोले सब कुछ कह देती हैं, और अपने नए दिन और पुराने फोटोग्राफरों को अपनी कला दिखाने का मौका देती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक और संदेश कहता है कि पहले के समय में हमारे देश में लोगों के पास कैमरे नहीं होते थे, कैमरा बहुत महंगा हुआ करता था,
0: हाँ
1: उसकी रील भी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी वाली होती थी, और फोटो खिंचवाने के बाद धुलवाने के लिए स्टूडियो में जाना पड़ता था, जैसे अभी हम बात कर रहे थे,
0: जी
1: और तब जाकर के फोटो मिलते थे। अच्छी आई या बुरी वो तो बाद की बात थी, फिर
0: हाँ
1: कलर फोटो खिंचने लगी और पहले स्टूडियो में जाना पड़ता था फोटो खिंचवाने के लिए। आज के समय में मोबाइल से ही फोटो खींचे जा सकते हैं, किसी के पास भेज दो, कोई टाइम नहीं लगता। अब तो लोगों के पास मोबाइल है, कैमरे बहुत कम लोगों के पास, लोग भी बहुत कम रखने लगे
0: जी
1: हैं, और वो भी उन्हें जिन्हें कैमरे का शौक है, या
0: एक
1: वो जो कि इसको प्रोफेशनली इसको
0: हाँ
1: लेते हैं, वो लोगों के पास कैमरे होते हैं।
0: लेकिन

0: उन कैमरों में भी आजकल ये एक सुविधा आने लगी है कि आप तुरंत उसको डेवलप करा सकते हैं। पहले जो कहते ना कि इंतजार करना पड़ता था ना,
1: हाँ
0: वो
1: जी
0: जो इंतजार की घड़ियां हैं वो लोगों की कम हो गई हैं। कई बार हम शादियों में भी देखते हैं ना, फोटोग्राफर जब तस्वीर खींचते हैं तो चार पांच फोटो एक साथ में खींच लेते हैं और फिर आप

0: और आज के दिन क्या क्या होता है? तो आज के दिन के पे फोटोग्राफी की कला और शिल्प का सम्मान किया जाता है चंचल। दुनिया भर के फोटोग्राफर तरह तरह के प्रदर्शनियों में भाग लेकर के अपने काम को चित्रित करते हैं। फिर अलग अलग वर्कशॉप्स होती हैं, कई जगह पर ऐसा होता है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं जिसमें फोटोग्राफी के बारे में जानकारी दी जाती है। फिर फोटो वॉक करने वाले और टूर फोटोग्राफी के शौकीन को पास आसपास के स्थानीय लोगों का पता लगाने और उन्हें कैमरे में कैद करने के लिए भी एक साथ ले जाया जाता है। तो ऐसा भी होता है कि आपको फोटोग्राफ खींचनी, ऐसे छोटे से गांव, कोई ऐसे जगह हो, ट्राइबल एरिया कोई हो,
1: हाँ
0: तो वहां पे लेके जाते हैं और उनको बोला जाता है कि ये विशेष समुदाय, इनके इनका फोटोग्राफ खींचा जाए और फिर इन्हें अलग अलग जगह के लिए इस्तेमाल किया जाता है और साझा की जाती है वो सारी तस्वीरें।
1: हमारे एक श्रोता का संदेश है कि पहले तस्वीरें कैमरे में कैद होती थी, पर आजकल इसकी जगह मोबाइल ने ले ली है और डिजिटल रूप में ये होने लगी हैं। तस्वीर बहुत कुछ बयां कर देती हैं। तस्वीरों का होना हमारे अपनों को हमारे नजदीक रखता है, यादों से जोड़े रखता है। तस्वीर हमारे लिए खास थी और हमेशा खास ही रहेंगी।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि तस्वीरें बीते हुए कल और इतिहास को सुरक्षित रखती हैं। तस्वीरों की कोई भाषा नहीं होती, बिना बोले सब कुछ कह देती हैं। और ये दिन नए और पुराने फोटोग्राफरों को अपनी कला दिखाने का मौका देता है।
1: हमारे एक संदेश में लिखा गया है कि एक समय था जब राजा रजवाड़े या बहुत धनाढ्य परिवार के लोग होते थे, उनके पास कैमरा होता था या फोटो का चलन उस समय ज्यादा था। फिर धीरे धीरे समय गुजरता गया, वैसे वैसे सुविधाएं भी सुलभ होती गईं, जैसे सामान्य मानवीय तक फोटोग्राफी का जमाना था। पर्यटन, धार्मिक स्थल और सभी जगह फोटोग्राफी होने लगी और ये एक व्यवसाय था। जब लोग अपनी तस्वीरों को घर पर पोस्ट के द्वारा भेजा करते थे, ऐसे वक्त ने लोगों के साथ कैमरों को भी रखा और आज मोबाइल के माध्यम से जो चीज़ कभी दुर्लभ थी वो सहज हो गई है। तो चलिए अभी गीत सुन लें।
0: चलिए।

0: साथ ही आना, और मैं भी तुम्हें बुला रही हूँ दीपा सखी, बस आना क्योंकि बहुत सारे संदेश हैं, इन्हें भी पढ़कर सुनाना। तो पहले एक संदेश मैं ही पढ़कर सुना देती हूँ।
1: चलिए
0: और
1: सुनाइए।
0: फोटोग्राफी की हम बात कर रहे थे ना, इस पर अपना एक किस्सा हमारे एक श्रोता ने लेकर भेजा है कि कॉलेज के दिनों की उन्होंने बात लिखी है। कॉलेज में उन्हें एक कार्ड बनवाना था, उन्हें फोटो की जरूरत थी। तो शहर के पास, आगे लिखते हैं कि शहर के पास ही हमारी दुकान थी, उसके पास में एक फोटो स्टूडियो था। उसमें दोनों पिता पुत्र काम किया करते थे, लेकिन उस दिन लड़के के पिता दुकान पर नहीं आए थे। और उसी दिन क्योंकि मुझे फोटो की जरूरत थी और उनके लड़के के साथ मेरी आपस में बनती नहीं थी, लेकिन वो लड़का बोला कि मैं तुम्हारी तस्वीर अच्छी बना दूंगा। लेकिन मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि शायद भूतकाल में उनके साथ ऐसी कुछ घटना हो चुकी थी उसके साथ में। लेकिन उस लड़के ने विश्वास दिलाया कि वो फोटो अच्छी लेगा, तो डरते डरते उसकी बात पर विश्वास करके वो तैयार हो गए फोटो खिंचवाने के लिए। और जब वो तस्वीर ले रहा था लड़का, तो मैं बहुत डरा हुआ था, घबराहट भी चेहरे पर थी, और मुझे यही डर लग रहा था कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। लेकिन कोई अनहोनी नहीं हुई, उसने तस्वीर मेरी बहुत अच्छी बनाकर दे दी। वो तस्वीर मेरे पास आज भी है, जब भी मैं उस तस्वीर को देखता हूँ तो उसमें मेरा चेहरा बहुत डरा हुआ और घबराया हुआ दिखाई देता है।
1: देखिए कितने मजेदार उनकी यादें हैं ना
0: जी
1: तस्वीरों को लेके। और 1962 की एक याद हमारे श्रोता भाई यहाँ पे साझा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया की शादी का फोटो एल्बम बनाने पहली बार फोटोग्राफर को बुलाया गया था साल 1962 में।
0: जी
1: उन दिनों ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था, हर जगह हर एक फोटो खींचने के बाद फ्लैश का लैंप बदलना पड़ता था। और उन दिनों मेरा बचपना था, तो 11 साल की उम्र थी उनकी। मंडप के बीच भाई भाभी के फोटो खींचते वक्त मैं भी हर फोटो में बीच में खड़ा हो जाता था।
0: और पहले ऐसा अक्सर होता था कि छोटे बच्चों को बड़ा शौक होता था कि वो हर तस्वीर में नजर आए,
1: हाँ
0: और
1: बिल्कुल
0: कहीं ना कहीं से वो झांकता हुआ चेहरा उनका नजर आ ही
1: नजर
0: जाता
1: आ
0: था।
1: ही जाता
0: पुराने एल्बम जब भी हम खोलते हैं ना, तो एक ना एक बच्चा ऐसा नजर आएगा जो हर फोटो में कहीं ऊपर से, कहीं नीचे से, अगल बगल से, या और जब तक फोटो उन्हें हटाया जाए वो फोटो क्लिक हो चुकी होती थी, वो एंड टाइम पर इस तरह से तस्वीर में घुस जाते
1: और
0: थे।
1: ये देखो एक और मजेदार संदेश आया है। हमारी सगी कह रही है कि फोटो में तो ऐसी ताकत है कि सिर्फ फोटो देखकर ही 18 साल पहले मेरी शादी हुई थी। वो कैसे? उधर से फोटो कागज में लपेट कर आई और इधर से हमने कागज में लपेट के दे दी फोटो, और बस हो गई शादी। क्या बात है भाई, ये
0: चलिए
1: जमाना कितना सुलभ और सुंदर और एकदम सादा सा था, है ना।
0: बातें आगे बढ़ाएंगे, पहले एक गीत सुन लेते
1: चलिए
0: हैं।

अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं। विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली, और हमने बहुत सारी बातें फोटोग्राफी के बारे में की। और आज एक और दिवस हम मना रहे हैं, 19 अगस्त के दिन मनाया जाता है विश्व मानवतावादी दिवस, और ये उन लोगों की याद में मनाया जाता है दीपा, जिन्होंने विश्व स्तर पर मानवतावादी संकट जो भी आए हैं उनमें या तो अपनी जान गंवा दी या फिर मानवीय उद्देश्यों के कारण और अपने दूसरों की सहायता के कारण

0: उन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया।
1: जी, और इसके पीछे अगर इतिहास जाने तो वो ये था कि 19 अगस्त 2003 को संयुक्त राष्ट्र कार्यालय पर हमला हुआ जिसमें करीब 22 मानवीय सहायता कर्मी मारे गए और जिनमें संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि सर्जियो वियरा डिमेलो भी शामिल थे।
0: जी।
1: तो साल 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस इसके रूप में नामित करने का प्रस्ताव पारित किया गया था और फिर ये प्रस्ताव स्वीडन ने रखा था।
0: और जिस दुर्घटना की या जिस हादसे की आप बात कर रही हैं, ऐसा माना जाता है कि अब तक जितनी भी त्रासदी हुई उनमें ये बहुत खतरनाक थी और करीब 4000 से भी अधिक राहत कर्मी ने इसमें जान गंवाई थी, उनको निशाना बनाया गया था। और कि जो जानलेवा हमले हुए थे इसमें न जाने कितने घायल हुए, कितनों ने अपनी जान दे दी और कुछ गिरफ्तार भी हुए, कुछ का अपहरण भी हुआ। इस तरह की घटनाएं ना हो, मानवता लोगों में बनी रहे, इसीलिए ऐसे दिन मनाए जाते हैं ताकि जो भी अशांति संघर्ष है उससे अलग किया जा सके खुद को और एक शांति की स्थापना की जा सके।
1: बिल्कुल सही कहा। और ये देखिए ना, ये विश्व भर में फैली अशांति और संघर्ष में लाखों लोग अपने सरजमी से भी अलग हो जाते हैं और किसी अन्य जगह पर उन्हें स्थापित किया जाता है, तो ऐसे लोगों की संख्या आज ये अनुमान किया जाता है कि 6.5 करोड़ से भी ज्यादा है। तो ऐसे लोगों को एक जगह दे दी जाए, उनके भी एक ठिकाना उनका हो जाए और उनका जो जीवन यापन है बराबर चलते जाए, तो ये भी एक उद्देश्य है मानवतावादी दिवस का।
0: और इस पर बहुत सारे संदेश भी हमें मिल रहे हैं। मानवता, जो हमने एक शब्द दिया था कि शब्द हमारा है, विचार हमारे श्रोताओं को लेकर भेजने हैं, तो मानवता के बारे में जो विचार उन्होंने लेकर भेजे हैं, मानवता जो मानव से जुड़ी उसकी क्रियाशीलता को दर्शाती है कि वो दूसरों के प्रति कैसा भाव रखता है। मानवता के मूल में क्षमा, सहिष्णुता, दया, प्रेम, ये सभी भाव हैं जो आदमी का आदमी के प्रति उसकी सोच को दिखाता है। जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ हमारे कुछ कर्तव्य हैं, उन सब में मानवता का भाव रखना सबसे महत्वपूर्ण है। हमारी संवेदनाएं, हमारे परोपकार मानवता से जुड़े हुए विषय हैं, ये अलग नहीं है। दूसरों के प्रति दया भाव रखना, प्रेम रखना, अहंकार त्याग कर सरल ढंग से पेश आना, ये सब मानवता के ही स्तंभ हैं।
1: बिल्कुल। और एक और संदेश है, मनुष्य को जीवन में सत्य, प्रेम, करुणा, दया, सहयोग, सद्भावना, आपस में मेल मिलाप की राह पर चलना चाहिए, नहीं तो कैसे मानवता महकेगी और वसुधैव कुटुंब की भावना होगी कैसे। तो विश्व हमारा परिवार है, ऐसी मानवता की महक और सार्थकता की आज हमें बहुत ज्यादा जरूरत है।
0: बिल्कुल सही बात लिखी। इसी तरह से एक छोटा सा संदेश है लेकिन बहुत बड़ी बात कहता है कि मानवता कहने में कोई बात नहीं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान लाने, किसी का हाथ थामने और बिना किसी के स्वार्थ के जब मदद करने में है, वही मानवता है। इंसानियत की सबसे खूबसूरत भाषा वही है जिसे बोलने के लिए शब्दों से ज्यादा एक संवेदनशील दिल की जरूरत है।
1: और एक और संदेश आया है चंचल, ये कहते हैं कि मानवता शब्दों और विचारों का वो सेतु है जो करुणा, सहानुभूति और निस्वार्थ सेवा के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति को एक सूत्र में पिरोता है। ये किसी भी संकुचित दायरे या सीमा से परे जाकर मनुष्यता के वास्तविक स्वरूप को परिभाषित करता है।
0: बड़े अच्छे अच्छे संदेश हमें मानवता के ऊपर मिल रहे हैं। एक अन्य संदेश में हमारे श्रोता द्वारा जो बात कही गई है वो मैं पढ़कर सुनाती हूँ आप सभी को। मानवता और इंसानियत, जिसका अर्थ होता है किसी दूसरे के प्रति दया, प्रेम और भलाई करना, सभी के प्रति प्यार की भावना रखना, अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों का हित सोचना। और वाकई में ये चीजें अभी देखने को नहीं मिलती हैं। आगे लिखते हैं कि ये व्यक्तिगत व्यवहार से जुड़ा हुआ है, यानी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छा बर्ताव, यही मानवता है।
1: बिल्कुल सही। और आज के समाज में देखो मानवता को लेकर बहुत उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। कभी कहीं प्राकृतिक आपदा आ जाती है, कहीं दुर्घटना हो गई, किसी संकट के समय लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आते हैं। रक्तदान करना, गरीब बच्चों की शिक्षा में सहायता करना, बुजुर्गों का सम्मान करना, पशु पक्षियों के प्रति दया रखना और पर्यावरण की रक्षा करना, ये भी मानवता के रूप है।
0: बिल्कुल। आज जब विज्ञान और तकनीक ने हमारे जीवन को दीपा बहुत आसान बना दिया है, लेकिन जो कहते हैं ना कि मानवता, इसे तकनीक से हम जोड़ के देख ही नहीं सकते ना। कोई व्यक्ति कितना भी उसके पास धन है, लेकिन वो उसके धन का वो सिर्फ अपने लिए ही सहेज कर रखता है, किसी की सहायता नहीं करता, तो कहते हैं कि उसके धनी होने का भी कोई महत्व नहीं है। अगर आप किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं, भले आपने बहुत सारा धन खर्च नहीं किया, आपने कोई छोटी सी ऐसी काम कर दी, छोटी सी ऐसी कोई बात कह दी जो किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आती है। अगर मान लीजिए किसी दुखी को, दुखी दिल है, उसको सहारा दे दिया, सांत्वना के दो शब्द कह दिए, तो

0: ये भी मानवता का परिचय देता है। हमारे समाज में मानवता के बहुत सारे उदाहरण हैं दीपा, जिसमें प्राकृतिक आपदा के समय या किसी दुर्घटना के समय जब लोग आगे आकर एक दूसरे की मदद करते हैं, रक्तदान करते हैं, बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, तो ये चीजें हैं ना, यही असली मानवता होती है।
1: हमारे एक सखी ने चार शब्द लिखा है मानवता के लिए, जियो और जीने दो।
0: क्या बात है, तो चलिए अब गाना सुन लेते हैं।

0: करता।
1: और भाई एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना होनी ही चाहिए। जब कोई उत्सव होते हैं ना, तो ये भावना हमारे देश में सब जगह देखने को मिलती है। सब मिलजुल कर उस त्योहार को मनाते हैं। और महिलाओं में सावन के महीने का एक खास आकर्षण होता है। सब मिलकर सखियां साथ झूला झूलने जाती हैं।
2: बिल्कुल।
1: और तीज के दिन खास तौर पर लहरिया पहना जाता है। अभी हाल ही में तीज का त्योहार गया है, जिसे राजस्थान में बहुत धूमधाम से मनाया गया।
2: बिल्कुल।
1: तो जो राजस्थान की हमारी सखियां ना, जो इस वक्त सखी सहेली कार्यक्रम सुन रही हैं, उससे जुड़ी हुई हैं, तो वो हमारी बात से जरूर सरोकार रखती होंगी कि उन्होंने भी लहरिया पहना होगा, नहीं पहन पाई किसी कारणवश, तो मन में मलाल जरूर रह गया होगी लहरिया नहीं पहन पाई।
2: तो कोई बात नहीं, इस दफा लहरिया साड़ी ले आए, क्योंकि सावन अभी बाकी है। तो और उसे पहन के खूब सुंदर सजे धजे और ढेर सारे तस्वीरें खींचे, और फिर अब तो कई सारे सोशल प्लेटफॉर्म से आप साझा कर सकती हैं।
1: और जब आपने सजने धजने की बात कही ना, तो साड़ियों के बहुत अलग अलग प्रकार होते हैं। हर परिधान के साथ में एक अलग तरह का श्रृंगार किया जाता है। जो ज्वेलरी हम पहनते हैं ना, जो जेवरात हम पहनते हैं, तो हर परिधान के साथ अलग तरह के जेवर पहनते हैं। अगर आपने बनारसी साड़ी पहनी है तो जेवर अलग तरह के
2: अलग
1: होंगे। आपने सूती कोई साड़ी पहनी है तो अलग तरह के होंगे। जॉर्जेट की पहनी है, लहरिया पहना है, अब लहरिए में भी आपने भारी भरकम पहना है या हल्का फुल्का पहना है, तो आपके जो श्रृंगार की चीजें होती हैं वो उस तरह से हो जाती हैं। बहरहाल हम बताते हैं कि लहरिया राजस्थान की एक पारंपरिक और बहुत खूबसूरत साड़ियों में से एक होती है, और इसकी खास पहचान होती है इसके जो लहरदार और तिरछे पैटर्न बने होते हैं,
2: जो बने होते हैं जी।
1: और खास तौर पे राजस्थान की जो रंग बिरंगी संस्कृति उत्सव है, वहां की जो संस्कृति है उससे जुड़ी हुए ये परिधान होते हैं।
2: अब देखो ना चंचल, ये लहरिया, ये शब्द ही लहर से आया है।
1: हाँ।
2: इसमें कपड़े को विशेष तरीके से मोड़ कर या बांध कर रंगाई की जाती है, जिससे कपड़े पर लगातार लहरों जैसी धारियां बन जाती हैं। और ये खास तौर पे टाई और डाई, यानी वो तकनीक, बंदेज या रंगाई, इसकी तकनीक का ही एक रूप है। और इस साड़ी के लहरदार धारियां इसकी खासियत के साथ इसकी सबसे प्रमुख पहचान भी है। लहरिया साड़ी ज्यादातर आप देखो तो एकदम चटक कलरों में होगी, है ना, पीली, गुलाबी, लाल, हरा, नीला, नारंगी, सारे जो चटक कलर होते हैं हमारे, वो इनमें इन साड़ियों को आप देख सकते हो। हालांकि आजकल अब थोड़े से इंग्लिश कलर, इंग्लिश टोन्स भी लेने लगे हैं, लेकिन फिर भी
1: जो
2: पारंपरिक कलर जो इस साड़ी के साथ जाता है ना, गुलाबी पहन लीजिए आप, हरा पहन लीजिए, आहा,
1: जैसे आपने
2: लाल कलर की सुर्ख साड़ी हो तो क्या बात है।
1: आपने पीले कलर का अगर बेस है तो उसपे कुछ नारंगी या हरे रंग की धारियां होंगी, अगर गुलाबी बेस है साड़ी का तो कुछ ज्यादा गहरे रानी रंग की या हरी सी कुछ धारियां, तो जो बीच में धारियों का रंग अलग होता है ना, वो इसे और खूबसूरत बना देता है।
2: बिल्कुल खूबसूरत बना देता है। और शादी ब्याह में तो आप देखिए थीम रखने लग जाते हैं आजकल तो, कि एक किसी फंक्शन पे हम ये वाली साड़ी या इसका लहंगा बना करके पहनेंगे। और फिर देखिए जब चटक कलर में पारंपरिक नृत्य होता है तो उसका तो जो नजारा ही कुछ एक अलग आनंद देता है।
1: हमारे बहुत सारे श्रोताओं के संदेश हमें मिल रहे हैं। एक संदेश में कहा गया है कि लहरदार यानी लहरिया साड़ी मूल रूप से राजस्थान, विशेषकर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, यहाँ की पारंपरिक पहचान है। अपने खूबसूरत लहरनुमा डिजाइन के कारण राजस्थान के अलावा अन्य जो राज्य हैं, जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, मुंबई, सभी जगह सावन, तीज और मेलों के अवसर पर ये बहुत पसंद की जाती है। राजस्थान की इस कला का ये मुख्य केंद्र है। यहाँ के स्थानीय त्योहारों में और रोजमर्रा के पहनावे में लहरिया का विशेष स्थान है। उत्तर भारत में सावन मास, हरियाली तीज, रक्षाबंधन के मौकों पर इन लहरिया साड़ियों का बहुत भारी क्रेज देखने को मिलता है। और गुजरात, महाराष्ट्र के पारंपरिक बाजारों में शादी ब्याह के उत्सव पर भी इनकी बहुत मांग रहती है। सावन और मानसून के मौसम में हरी, पीली, लाल और मल्टी कलर की लहरिया साड़ी पहनी जाती है, जो जॉर्जेट, कॉटन
2: फैशन में है ये मल्टी कलर वाली
1: जी। और अलग अलग फैब्रिक में लोग इन्हें पसंद करते हैं।
2: और हम अगला संदेश सुनाए चंचल, तब तक हम अपनी सखियों से भी पूछते हैं कि लहरिया साड़ी आपने इन दिनों में पहनी या नहीं पहनी, हमें जरूर बताइएगा। और सुनिए ये संदेश, ये भी यही बता रहा है संदेश कि टाई एंड डाई ये वाले कला से इसको बनाया जाता है, जिसमें पानी की लहरों की तरह तिरछे और सुंदर धारियों वाले पैटर्न बनते हैं। और राजस्थान का ये पारंपरिक पहनावा है। साथ में कह रहे हैं कि इसमें कपड़े को तिरछा मोड़ कर धागे से बांधा जाता है, फिर चमकीले रंगों से रंगा जाता है। पचरंगा लहरिया जो है उसमें 5 रंगों वाली विशेष डिजाइन होती है। यहाँ की सबसे पुरानी और लोकप्रिय शान है ये वाली स्टाइल। और प्रमुख प्रकार और रंग है लाल, पीला, हरा, गुलाबी, बहुरंगी शेड सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। अगर कपड़े की बात

0: हैं, तो ये संदेश कहता है कि जॉर्जेट, क्रेप, शिफॉन, सिल्क जैसे, इन जैसे हल्के और जो हाँ. लहरदार, जो एकदम बिल्कुल आराम से जो जिसे पहना जा सके, ऐसे वाले फैब्रिक इस्तेमाल करते हैं. गोटा पत्ती का वर्क होता है फिर तो, त्योहारों और शादियों के लिए इस तरह महीन गोटा पत्ती या जरदोसी का काम इस पर किया जाता है. राजस्थानी सावन और उत्सवों के माहौल में सजी खूबसूरत लहरिया साड़ियाँ, ये ताज़ा डिज़ाइन आजकल खूब वहाँ के मार्केट में आप देख सकते हैं.
1: सिर्फ साड़ियाँ ही नहीं, जो पुरुष हैं वो दुपट्टे डालते हैं लहरिया कि जो दुपट्टे बनने लगे हैं, वो कुर्ता पायजामा पहनकर उस पर लहरिया पहनना. सिर्फ हम कहते हैं ना कि महिलाएं शौकीन होती हैं, तो लहरिया के जो दुपट्टे हैं जहां महिलाएं उनको शौक से पहनती हैं, तो पुरुष भी इसे बहुत चाव से अपने कुसल कुर्ते पजामे पर सजाते हैं.
0: और सिर्फ दुपट्टा ही नहीं, पुरुष तो उसके कुर्ते बनते हैं, शॉर्ट कुर्ता जींस के ऊपर आप पहनिए, देखिए क्या खूबसूरत लगता है.
1: इसके अलावा पगड़ियां भी पहनी जाती हैं, पगड़ियों में भी लहरिया होता है. जो पगड़ी जिस कपड़े की आप बांध कर पहनते हैं उसमें भी लहरिया का इस्तेमाल किया जाता है. एक अन्य संदेश में कहा गया है कि लहरिया, इसके ब्राइट कलर कॉम्बिनेशन और लाइट वेट होना, ये हर उम्र की महिलाओं पर बहुत फबता है. हाथ से बनी असली लहरिया साड़ी रंग की शुरुआत, इसमें रंग जो है वो धुलाई में थोड़ा सा निकल सकता है क्योंकि ये टाई डाई से बनाई जाती है.
0: और लहरिया का एक प्रकार, एक संदेश में हमारी सहेली ने लिख भेजा है, एक दली यानी इसमें केवल एक ही रंग की लहरदार धारियां होंगी और इसमें 5 अलग अलग रंगों का इस्तेमाल होगा जो बेहद शुभ माना जाता है, जैसे कि लाल, पीला, हरा, नीला, गुलाबी. और एक होता है, एक और प्रकार है मोठड़ा. तो जब लहरिया की धारियां एक दूसरे को काटती हुई चेक्स वाला पैटर्न बनाती हैं, मतलब एक तरफ से और दूसरे तरफ से जब आती है तो उसे मोठड़ा कहते हैं.
1: तो चलो वे गाना सुन लेते हैं, सुंदर साड़ियों की बात हो रही है, सुंदर गीत.

0: और देखो जब हम तुम दोनों मिल जाते हैं ना तो बहुत सारे संदेश लेकर आते हैं। और अब कुछ आगे संदेश की तरफ बढ़ते हैं, और हमने बात की थी ना कि कुछ छटपट बनने वाली जो चीजें होती हैं ना उनकी बात की जाए, क्योंकि कई बार हमारे पास समय की कमी होती है या अचानक से मेहमान आ जाते हैं, हमें कहीं जाना होता है, और हम ऐसे ही किसी चीज की तलाश में रहते हैं कि झटपट ऐसी कोई चीज बना दी जाए जो स्वादिष्ट भी हो और जिसे आहार बना रहे पेट में। तो
1: बिल्कुल सही।
0: सूजी के अप्पे ऐसे होते हैं जिन्हें झटपट बनाया जा सकता है। इसके लिए सामग्री क्या चाहिए, हमारे श्रोता ने हमें लिखकर भेजी है। 1 कप सूजी में आधा कप दही और आधा कप पानी डालकर एक गाढ़ा घोल बना लीजिए। इसमें आधा कप बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, घिसा हुआ गाजर मिलाएं, 2 हरी मिर्च और हरा धनिया भी काट कर डाल दें। अब ये जो सब्जियों की सामग्री बनाई गई है, इसमें आप जो चीजें नहीं खाते हैं उन्हें आप ना डालें, और कुछ स्वाद के लिए और चीजें डालना चाहते हैं तो उन्हें आप जोड़ भी सकते हैं। आगे इसे बनाने के लिए रेसिपी है कुछ इस तरह से है कि एक छोटे पैन में 1 चम्मच गर्म तेल करके डालें, राई, जीरा, नीम की छोटी पत्तियों का तड़का लगाकर इसमें एक गाढ़ा घोल तैयार कर दें। इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख दें। अब आधा चम्मच इसमें कुछ भी आप या तो बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, इस तरह का कुछ भी डाल सकते हैं, और तुरंत अप्पे के सांचे में डालकर गर्मा गर्म फूले फूले अप्पे तैयार कर लीजिए। नारियल की चटनी या फिर हरे धनिया की चटनी के साथ में इसे परोस कर खाया जा सकता है।
1: बिल्कुल। और एक और ये रेसिपी भेजी है हमारी सखी ने, भुट्टे की टिकिया बनाना बताया है कि कटोरी, 1 कटोरी उबले हुए भुट्टे आप ले लें, मिक्सी में पीस लें। 1 कटोरी उबला हुआ आधा आलू ले सकते हैं, आधा कटोरी पनीर, और इन सबको मिक्स कर लें। हरा धनिया, हरी मिर्ची, अदरक वगैरह डाल लें, और थोड़ा सा चाहे तो शिमला मिर्ची डाल लें। सब कुछ मिक्स करके अपने हिसाब से मसाले डाल लें, टिकिया बनाकर इसे सेक लें।
0: और अभी गाना सुन लेते हैं।
1: चलिए।

0: अच्छा, अगर झटपट से आपको बनाना है, कोई अचानक आ जाए, तो आप ऐसा करिए कि थोड़े से पोहे को पानी के में अंदर से धो के उसको निचो लीजिए, और फिर जो उबले हुए अगर आलू पड़े हैं फ्रिज में, तो उसको भी आप इसके साथ में मिक्स कर लीजिए, और फिर देखिएगा जब आप पोहा निचोड़ेंगे ना, तो अच्छे से वो फूल जाते हैं थोड़ी से देर के बाद। इसमें उबले हुए आप आलू डालिए, भुनी हुई अगर मूंगफली घर में है तो उसको दरदरा पीस के वो भी डाल लीजिए, एक ब्रेड का टुकड़ा पानी में भिगो कर उसे भी निचोड़ कर मसल कर अच्छे से डाल दीजिए। अब बारीक कटे हुए प्याज डालकर आप अगर खाते हैं तो बारीक धनिया पत्ती प्याज अगर खाते हैं तो वो डाल लीजिए, हरी मिर्ची डाल लीजिए, और इसका एक थोड़ा सा डो जैसा, मतलब आटे जैसा तैयार
1: हाँ,
0: कर
1: मतलब
0: लीजिए।
1: ये एक साथ में इकट्ठा हो जाए।
0: हाँ, टिकिया का, टिकिया जैसा बनना है, और बस आप टिकिया का उसका शेप लेकर के झटपट से आप चाहें तो फ्राई कर लीजिए या शैलो फ्राई कीजिए, और देखिए बन गई आपकी बढ़िया सी टिकिया।
1: और बस हमारी सखियां ये टिकिया बनाकर खाएंगी, क्योंकि समय हो चला है पूरा। हम लेते हैं इजाजत, दीजिए चंचल वर्मा
0: और दीपा माहेश्वरी को इजाजत, नमस्कार।
1: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।

0: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं डायरेक्टर, एक्टर और डबिंग डायरेक्टर पंकज रैना से विधि जैन की बातचीत।
1: हमारे सामने है एक बहुत बेहतरीन कलाकार जिनके हाथ में सब कुछ है, सारी रेखाएं हैं कला की, और उन्हीं रेखाओं में से रेखाएं चुनने की बारी आई तो हम भी थोड़ा परेशान हो गए किस विषय पे बात की जाए। तो हम आपसे ही पूछ लेते हैं पंकज।

0: कि आप क्या ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि आप एक एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, वॉइस ओवर डायरेक्टर भी हैं, और आपकी आवाज में भी बड़ा दम है जो अभी लोग सुनने वाले हैं। इसलिए विविध भारती में आपका स्वागत करते हैं बहुत हृदय से, बहुत प्यार से। और पहला प्रश्न हम आपसे पूछ चुके हैं, स्वागत है आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विविध भारती के सारे दर्शकों को और विविध भारती से जुड़े हुए सारे लोगों को मैं मेरा आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यहां बुलाया, याद किया और कहा कि हम कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे।
0: जी
1: और जैसे आपने कहा कि मैं एक्टर भी हूं, सिंगर भी हूं, डायरेक्टर भी हूं, प्रोड्यूसर भी हूं, वॉइस ओवर डायरेक्टर, हाँ,
0: जी
1: एज ए डबिंग डायरेक्टर मैंने तकरीबन 18-20 फिल्में की हैं
0: जी
1: और अलग अलग विषय पे झुकी हैं। तो आपने मुझे पूछा कि आपको कौन सा वाला सब्जेक्ट इसमें से पसंद है, तो मुझे सारे ही पसंद हैं। जब जब जो मेरे पास सामने जो प्रोजेक्ट होता है
0: जी
1: मैं उसको बहुत आनंद से, बहुत अंतरात्मा से करता हूँ,
0: जी
1: बहुत सिंसेरिटी से करता हूँ, ताकि इसमें मेरी जितनी भी कैपेबिलिटी जो भी है,
0: जी
1: वॉट एवर आई एम कैपेबल ऑफ, मैं उसको अच्छी तरह से कोशिश करके बहुत अच्छी तरह उसको प्रस्तुत करूं।
0: तो चलिए हम इसको और सरल बना देते हैं पंकज जी। छोटे वाले पंकज ने जो बहुत छोटा सा था उम्र में, वहां पे उस पंकज ने सबसे पहले क्या किया था?
1: ये बात जाती है, बहुत पीछे जाती है। व्हेन आई वाज इन कश्मीर,
0: जी
1: असल में मैं कश्मीरी पंडित हूँ,
0: जी
1: पंकज रैना। रैना से नाम तो समझ ही आया होगा आपको कि हम कश्मीरी पंडित हैं।
0: जी
1: कश्मीर में रहते थे, जवाहर नगर हमारा अपना घर था, और हमारा जो घर था वो एक कल्चरल हब जैसा था।
0: अच्छा
1: ये पूरा श्रेय मेरे पिताजी को जाता है,
0: जी
1: पंडित महेंद्र नाथ रैना, जो आत्मा से अंदर से बहुत अच्छे लेखक और शायर थे।
0: जी
1: वैसे वो जे एंड के असेंबली में काम करते थे, कार्यरत थे, लेकिन उनके अंदर की जो आत्मा थी वो एक कवि की थी और लेखक की थी।
0: जी
1: तो उनकी वजह से जो मेरे जो बाकी भाई बहन थे वो भी कला क्षेत्र से जुड़ गए थे। पिताजी
0: अच्छा
1: वैसे बहुत सारे पेपर्स के भी एडिटर रहे हैं जो हमारे जे एंड के में हुआ करते थे। लेकिन हमारे घर में जैसे मेरे एक भाई, बड़े भाई थे भुवनेश, वो पेंटर स्कल्प्टर थे, पेंटिंग में स्कल्पचर का काम था उनका,
0: क्या बात है
1: उनको स्कल्पचर और पेंटिंग का शौक था। तो हमारा नीचे एक कमरा था जो नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर वाला डेडिकेटेड था, उसमें पत्थर पे भी स्कल्प्टर बनते थे, लकड़ी पे भी बनते थे, ऑयल पेंट भी होता था, ये सब चीज़। हम बहुत छोटे छोटे थे,
0: अच्छा
1: तो हमारे बड़े भाई थे, उनसे बड़े भाई थे जो फिजिक्स के डीन प्रोफेसर हुए हैं, वो मेरे पहले गुरु थे, जो प्रोफेसर तेज रायना, जिन्होंने कभी किसी संगीत सीखा नहीं, जिन्होंने उस तरह को कुछ किया नहीं, लेकिन मैं जब 10 साल की उम्र में था तो उन्होंने मुझे पहली एक गजल सिखाई थी इसकी, फैज अहमद फैज की, तो मैंने वो बच्चों के कंपटीशन में गा के मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। वहां से
0: आपको
1: मेरी यात्रा शुरू हुई। तो दूरदर्शन नया नया आया था
0: जी
1: 1972 में कश्मीर में, तो फिर वहां से मैं बच्चों के प्रोग्राम में मुझे बुलाया जाने लगा।
0: मैं आपको यहां रोक रही हूं। आपको फैज अहमद फैज की एक गजल गाने पर फर्स्ट प्राइज मिला था, तो हमारा अधिकार बनता है कि वो गजल हम भी सुने जिस पे आपको प्रथम पुरस्कार मिला था, और वो हमारा हमारे श्रोताओं का अधिकार तो बनता है, तो अगर आप कुछ गुनगुना दें उसके कुछ हिस्से
1: वो तो
0: तो
1: मेरी, लेकिन बच्चों जैसी आवाज कैसे आएगी?
0: अब इस उम्र की उसी आवाज में सुना दीजिए, हम सुनना चाहते हैं।

0: क्या बात है।
1: के दोनों जहान तेरी।
0: क्या खूबसूरत आवाज है, इतना तो विश्वास है कि हमारे श्रोता तालियां जरूर बजा रहे होंगे सुनते सुनते। अब हम आगे बढ़ेंगे कि वो जो बच्चा है वो रेडियो पे जा रहा है ना गाने के लिए, या
1: टेलीविजन पे और रेडियो पे। फिर टेलीविजन में बच्चों का प्रोग्राम होता था
0: जी
1: 1972 में, तो मैं वहां जाने लगा। तो वो मुझे बहुत प्यार करते थे क्योंकि मैं छोटा सा था, तो मैं गाता भी था। उससे पहले भी मैंने एक, जो हमारे प्रोफेसर साहब थे, तो उनका एक एनुअल फंक्शन में मैंने ऑन द स्पॉट कहा था कि मैं भी गाऊंगा। उनका वो 15 अगस्त का प्रोग्राम था,
0: जी
1: तो मैंने वो बच्चों की आवाज में ही 8 साल की उम्र में ऐ मेरे वतन के लोगों गाया था। और मैंने कहा था मैं भी गाऊं, जिद की मैंने।
0: जी जी
1: और चारों तरफ लोग खड़े थे, बहुत पुरानी बात है, इट इज आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर 70 की
0: हाँ
1: बात कर रहा हूं मैं। और लोग उस वक्त, उस तरह का स्टेडियम बना भी नहीं था, तो उस तरह के लोग आसपास खड़े थे, सब सबकी आंखों में आंसू थे। मैं, मेरी आवाज एकदम लता जी जैसी थी, बच्चों की आवाज थी, ऐ मेरे
0: हाँ।

0: के लोगों को गा रहा था, तो यहां से एक तरह से जैसे बोलते हैं ना, वो समझ आने लगा कि हाँ इसकी आवाज बहुत अच्छी है, तो मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलने लगा।
1: जी
0: फिर वो होते होते फिर वो बच्चों का प्रोग्राम आ गया दूरदर्शन का, फिर रेडियो में सुनने लगे। आकाशवाणी और विविध भारती का मेरे
1: जी
0: जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि बचपन से, जो कि तब तो टेलीविजन था नहीं, नया नया आया था, घर में एक रेडियो होता था, चाहे मर्फी का या फिलिप्स का, लेकिन वो तार से जुड़ा होता था, इलेक्ट्रिसिटी, वो चलता था, और गीत और तरह तरह के प्रोग्राम आते रहते थे, हम सब सुनते थे।
1: जी
0: भाषा उच्चारण सीखने में तो काफी योगदान रहा है विविध भारती का और आकाशवाणी का, तो हम इनके हमेशा से शुक्रगुजार रहे हैं, हम भाव भी रहते हैं। आज भी बहुत सौभाग्य है कि आकाशवाणी में आके हम कुछ चर्चा कर पा रहे हैं आकाशवाणी और विविध भारती के बारे में,
1: जी
0: तो इनका बड़ा योगदान रहा है मेरे जीवन में। जबकि कहते हैं कि देखिए, हर प्रांत, हर राज्य का एक अलग भाषा होती है, हर राज्य की एक अलग डायलेक्ट होता है, हम जाते हैं तो वो दिखता है जब कोई बात करता है, लेकिन इन सब चीजों पे हमने जब वर्क किया तो हमें, क्योंकि अगर आप कश्मीरी, नॉर्मल एक कश्मीरी से बात करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कश्मीर
1: कश्मीर का
0: का
1: है।
0: रहने
1: जी
0: वाला है,
1: जी
0: या ये चेन्नई का रहने वाला है,
1: जी
0: या ये कलकत्ता का रहने वाला है।
1: जी
0: हमने लेकिन भाषा और उच्चारण पे बहुत काम किया कि ताकि हमें एक नॉर्मल, एक जनरलाइज्ड, एक हमारी भाषा हो, ताकि हम एक, जिसको देवनागरी हिंदी में जब बात करें तो लगे कि हिंदी बोल रहे हैं, कश्मीरी हिंदी नहीं बोल रहे हैं,
1: जी
0: बंगाली हिंदी नहीं बोल रहे हैं।
1: जी
0: तो इसमें हमारा आकाशवाणी और विविध भारती का बहुत बड़ा हमारे जीवन में योगदान रहा है, मैं हमेशा आभार व्यक्त करता हूँ।
1: विविध भारती के और आकाशवाणी के पुराने उद्घोषक जो रहे हैं, उनकी बात बहुत निराली है और उनसे सीखकर हम भी
0: हमारे
1: बने हैं।
0: शिक्षक रहे हैं,
1: और
0: बिल्कुल
1: जी बिल्कुल, तो उन सबको हम सविनय प्रणाम करते हैं और
0: बिल्कुल करते
1: धन्यवाद
0: हैं,
1: देते हैं कि ये बात सुनने को मिल रही है और हमें भी बहुत अच्छा लग
0: बिल्कुल,
1: रहा है।
0: मैं हमेशा इस बात को एक्सेप्ट करता हूं, और मैं आज भी आकाशवाणी और विविध भारती का एक, मतलब ये श्रोता हूं, मैं
1: जी
0: सुनता हूं जब भी ड्राइव करते करते कहीं जाते हैं लंबे सफर में, तो आई विल ऑलवेज प्रेफर कि मैं 102.8
1: एट जी जी
0: सुनूं,
1: जी
0: या एक और है 107 पॉइंट, जो जैसे आकाशवाणी
1: आप
0: गोल्ड
1: जहां
0: है।
1: जहां शहर
0: हाँ
1: बदलेंगे, हमारे नंबर्स
0: जी
1: बदल
0: जी
1: जाते हैं
0: नंबर्स
1: कि
0: बदल
1: आपको
0: जाते
1: अलग
0: हैं,
1: अलग शहर में अलग अलग दिखाई
0: लेकिन
1: देता
0: मुझे
1: है।
0: इनके ही प्रोग्राम सुनना अच्छा लगता है, बिकॉज
1: जी
0: एक तो मर्यादा में बोलते हैं, भाषा रेस्पेक्टेबल भाषा में बात करते हैं,
1: जी
0: और कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है, बहुत ही सुंदर एकदम, मतलब प्रसारण होता है।
1: जी
0: मैं माफी चाहता हूं उस बात के लिए, लेकिन मैं FM सुनता नहीं आजकल के, क्योंकि वहां ना उच्चारण है, ना भाषा है, ना कोई उसका अंदाज है, लेकिन आकाशवाणी ने और विविध भारती ने हमेशा से वो कंटिन्यू रखा है कि किस तरह से एक भाषा को एक रेस्पेक्टेबल वे में प्रस्तुत किया जाए।
1: जी हम हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता और हमारे इतिहास को संभालने का विविध भारती प्रयास कर रहा है, और आप सब लोगों जैसे लोगों का साथ रहता है तो
0: हम
1: अच्छा
0: हमेशा
1: चलता
0: साथ
1: जाता है।
0: हैं, हम
1: जी
0: हमेशा साथ,
1: तो अब हम वापस आपके
0: मेरे
1: जीवन
0: बचपन
1: पे
0: में
1: आ
0: चलते थे। फिर
1: जाते
0: मेरे
1: हैं।
0: एक ब्रदर है चंद्रशेखर,
1: जी
0: वो हमारे थिएटर भी हमारे यहाँ होता था, हमारे कश्मीर में एक हॉल होता था जहाँ एक ही हॉल था, टैगोर हॉल,
1: जी
0: अब भी है वो, जहाँ
1: जी
0: पे प्लेज होते थे, म्यूजिकल प्रोग्राम्स होते थे, तो हमारे घर में चूंकि इस तरह का वातावरण था ही, तो हम बच्चों छोटे थे, हम भी फॉलो अप करते थे, तो इस तरह से ये क्रिएट हुआ।
1: जी
0: घर से हमारे उस वक्त चीजें ले जाते थे जो सेट डेकोरेशन
1: सेट
0: करने के
1: लगाने
0: लिए,
1: के लिए।
0: लगाने
1: जी
0: के लिए, और आकाशवाणी का भी, विविध भारती का भी योगदान था, ऑल इंडिया रेडियो कश्मीर का भी बहुत योगदान था, वो वक्त वक्त पे बड़े बड़े पंडित और उस्ताद लोगों को वहां, उनके प्रोग्राम्स होते थे, जैसे शिव कुमार शर्मा जी का, उनके हरिप्रसाद जी का, और बहुत अच्छे अच्छे प्रवीण सुल्ताना, ये बड़े बड़े जितने भी दिग्गज संगीत के जो मार्तंड हुए हैं, उन लोगों का प्रोग्राम आकाशवाणी प्रस्तुत करवाती थी, और कभी आकाशवाणी में होता था, कभी हॉल में होता था, तो हम लोग देखते जाते थे, क्योंकि हमें बड़ा शौक था, हम लोग इस तरफ इंक्लाइंड थे, झुकाव
1: जी
0: था हमारा,
1: जी
0: तो हमने वहां से ही शुरुआत की है, वहीं से शुरुआत हुई है, उस तरह के ही वहां से असर पड़ा है, तो फिर धीरे धीरे हम लोग, फिर मैं और मेरी बहन प्रेरणा, हम लोग अपना म्यूजिक एंड इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स था
1: हाँ
0: J&K एकेडमी का, वहां जाके हमने सारे गामा सीखना शुरू किया, छोटे
1: जी
0: छोटे थे
1: जी
0: तब, तो फिर हमें थिएटर में उतना मिलता नहीं था मौका,
1: जी
0: लेकिन गीत संगीत की तरफ पूरा ध्यान जाता था,
1: जी
0: फिर धीरे धीरे वहां थिएटर करना शुरू किया हमारे, क्योंकि घर में ही था, जितने भी अच्छे अच्छे कलाकार, इतने बड़े बड़े जिन्होंने नाम किया बाद में, तो वो हमारे थिएटर ग्रुप में भी थे कश्मीर में, और उनकी वजह से हमें बड़ा आनंद होता था कि इन्होंने बॉम्बे जाकर और दिल्ली जाकर इतना नाम कमाया, इतनी ख्याति पाई, तो देखा जाए तो बचपन से ही इसकी नींव पड़ी थी जो आज तक चली जा रही है। नाउ आई एम ए सीनियर सिटीजन, इट्स बीन लॉट ऑफ टाइम आई हैव बीन विद म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट ऑलवेज।
1: ये जो बीज सही पड़ा था, ये बीज आगे बढ़ता गया बढ़ते बढ़ते एक होता है ना

0: कि अभी तक तो आप सीख रहे हो या मजाक मस्ती में कर रहे हो या शौक के लिए कर रहे हो, प्रोफेशनली या कहा जाए जैसा शायद पूछा भी जाता है सामान्यतया, ये हालांकि मजाक का विषय लिया जाता है, एक व्यक्ति ने कहा कि मैं गायक हूं तो उससे उसका होने वाला ससुर पूछता है पर खाने के लिए क्या खाता तो इसी विषय के नाते मैं आपसे पूछूंगी कि आपने इसको अपने दाना पानी का विषय यानी अपने प्रोफेशन का विषय कब बनाया और कैसे बनाया?
1: वो थोड़ा बाद में बनाना पड़ा, बिकॉज जब मैं बहुत ही अर्ली एज से, क्योंकि बच्चों के प्रोग्राम में जाता था, फिर हमारे रेडियो कश्मीर में युववाणी की स्थापना हुई
0: जी।
1: और युववाणी में जब हम टीनेजर थे, 16-17-18 साल के थे, 15-16-17 साल के ही थे, तो तब हमें वहां पे हमें मौका मिला कि हम प्रसारण कैसे करें, उन्होंने थोड़ा बहुत समझाया सिखाया, तो फिर वो शामे गजल और आपकी फरमाइश, इस तरह के प्रोग्राम हम युवानी में प्रस्तुत करने लग गए।
0: अच्छा।
1: फिर हमारे वहाँ ड्रामा प्रोड्यूसर थे प्राण किशोर कौल साहब, तो फिर उन्होंने बोला तुम्हारी आवाज अच्छी है, तुम आओ, तुम ड्रामा का भी ऑडिशन दो, मैं प्लेस करते रहता हूँ, रेडियो प्लेस जो होते थे, तो हमारा फिर ड्रामा के लिए ऑडिशन हुआ रेडियो का, तो उसमें हम अच्छी ग्रेड में हुए, तो फिर हम उसमें प्लेस करते थे, तो वहां से कुछ न कुछ, शुरू शुरू में कभी 15 रुपए का चेक मिलता था, फिर बाद में धीरे धीरे 50 रुपए का हुआ, ऐसी शुरुआत हुई, तो यहां से तो आना शुरू हुआ ही था एकदम कोई ना कुछ, लेकिन पिताजी की वजह से हमें इस तरह का वो नहीं था, उनका हम आज भी धन्यवाद करते हैं, बहुत करते हैं कि उन्होंने कभी हमें सप्रेस नहीं किया, दबाया नहीं
0: जी,
1: कि उन्होंने हमें खेलने दिया जैसे हम खेलना चाहते थे
0: जी।
1: तो उन्होंने हमेशा कहा कि बेटा, उन्होंने सिखाया कि हाँ ये अब चेक मिला है तो कहाँ रखे, 15 रुपए का चेक मिला है, छोटे छोटे थे तो पिताजी अपने साथ बैंक ले गए, उन्होंने बोला कि ये अकाउंट खुलवाया तो इसमें चेक डाल दो, फिर जब वो पैसे जमा होते थे तो हम कभी वो हमारे लिए कभी कभी शूज लेके आते थे, जाते थे, कभी वो लाते थे, तो उस तरह का उन्होंने सिखाया शुरू से बचपन से कि कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इकोनॉमिक जब से कुछ पैसे कमाए हैं तो उनको कैसा उपयोग होना चाहिए। फिर होते होते मैं घर से निकल पड़ा था, एक्चुअली सच बताएं तो
0: निकल पड़े थे, मतलब
1: ऐसा था
0: भाग
1: कि
0: पड़े थे या निकल पड़े थे?
1: नहीं, घर वालों की सहमति से ही आया था, ऐसा नहीं भाग के नहीं आया
0: जी।
1: तो मैं 1980 में दिल्ली आया और दिल्ली में मैंने भारतीय कला केंद्र में एडमिशन लिया, और मैं थिएटर भी करता था और मैं पंडित अमरनाथ जी से म्यूजिक भी सीख रहा था, और वो भारतीय कला केंद्र दिल्ली मंडी हाउस में बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है जो श्री राम लोगों का है, तो वहां हमने म्यूजिक क्लास में मुझे एडमिशन मिला अमरनाथ जी के यहाँ, तो पीछे हॉस्टल में रहने की व्यवस्था भी थी, और बाकी टाइम सब हर वक्त क्लास नहीं होता था, लेकिन बाकी टाइम 1-2 घंटे निकाल के मैं और हम लोग, मेरे कुछ साथी थे उनके साथ हम थिएटर वगैरह, प्लेज पढ़ना, प्लेज की रीडिंग करना और प्ले करना, तो वहाँ पे श्रीराम सेंटर, कमानी ऑडिटोरियम, फिक्की ऑडिटोरियम, बहुत सारे ऑडिटोरियम मंडी हाउस में थे, तो वहाँ हम कभी कभी फिर नाटक करते थे, और कभी कभी यहाँ, छोटे ही थे, आई थिंक ऑलमोस्ट वो टीनेज की एंड ही था मेरा कुछ ऐसा, जब मैं दिल्ली
0: 19-20 साल
1: की उम्र थी, तो वहाँ मैं 5 साल दिल्ली में रहा, वहाँ पे उस दौरान फिर मैंने कुछ वहां भी रेडियो में मैंने म्यूजिक में ऑडिशन दिया, तो मैं मुझे पास हुआ था दिल्ली रेडियो से, मैं सिंगिंग में बी हाई ग्रेड में,
0: मतलब
1: पास
0: रेडियो
1: हुआ।
0: का साथ छोड़ा नहीं,
1: रेडियो मेरे साथ में हमेशा रहा है
0: जी।
1: और मेरी बहन का तो ये था कि हमारे एग्जाम्स होते थे ना, तो उसका रेडियो चलता रहता था, गीत भी चलते रहते थे, वो प्रिपेयर भी करती रहती थी, मुझसे ऐसा नहीं होता था, उससे हो जाता था,
0: लड़कियां मल्टी टैलेंटेड होती हैं।
1: तो मेरी ट्रेनिंग ही इस तरह की रही है
0: जी।
1: लेकिन कभी उस तरह की वो रही नहीं डेस्परेशन कि हाँ मुझे कुछ करना है, मुझे कहीं नौकरी करनी है, ऐसा नहीं रहा, लेकिन मुझे लगता है ट्रेनिंग ऐसी होती रही, उसके साथ में इंडल्जेंस वैसी होती रही, जैसे कि जैसे म्यूजिक भी था, थिएटर भी था, और अपनी भाषा पे और उच्चारण पे तो शुरू से ही ध्यान देते थे, तो आवाज का भी कुछ एक समझ आया कि आवाज को कैसे इस्तेमाल करना है
0: जी।
1: कुछ वहां दिल्ली में प्रोग्राम करने का मौका मिलता तो एंकरिंग करने का मौका मिला
0: जी,
1: तो इस तरह की सारी चीजें होती रही अपने आप ही, सच बताएं तो,
0: मतलब आपके लिए अपने आप ही सब हो रहा था, और उसी अपने आप में आपने ना आवाज की बात के बारे में कई बार बोला
1: जी,
0: उच्चारण के बारे में कई बार बोला, तो मैं आपके जीवन की जो परिधि पे हम चल रहे थे उस परिधि पे एक मिनट के लिए रुक के एक बात पूछना चाहती हूँ। आप वॉइस ओवर डायरेक्टर हैं, हमारे श्रोताओं में कई सारे बच्चे हैं जिनकी आवाज बहुत अच्छी है, शायद उनको मॉड्यूलेशन भी आता है खुद से अपने आप से, और वो ऐसा सोशल मीडिया पे कई चीजें करके भी डालते होंगे, पर वो चाहते हैं कि वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन जाएं, तो उसके लिए वो क्या करें, अगर आप थोड़ा सा बीच में कुछ सिखा दें फिर हम आपकी यात्रा पे वापस आ जाएंगे।
1: मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर कोई वॉइस ओवर या

0: डबिंग करना चाहता हो या
1: जी
0: वॉइस एक्टर बनना चाहता हो,
1: जी
0: उसे सबसे पहले तो अपनी भाषा पे और उच्चारण, जो मैं बार बार कह रहा हूँ,
1: जी
0: क्योंकि ये आजकल सबसे ज्यादा कमी अगर मुझे कहीं महसूस होती है, कहीं ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट सुनने में, तो ये बहुत तकलीफ होती है।

0: कैसे होगी।
1: हाँ।
0: लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हर एक व्यक्ति की, हर एक शख्स की एक आवाज, एक अपनी क्वालिटेटिव आवाज, वो नेचर से मिलती है।
1: जी
0: उसमें थोड़ा सा हम लोग एनहांसमेंट कर सकते हैं अगर हम उसका थोड़ा रियाज करें, जैसे हम खरज का रियाज करें मॉर्निंग में उठ के, वो संगीत
1: खरज
0: के
1: का रियाज
0: जैसे
1: कैसे कर सकते हैं थोड़ा सा?
0: वॉइस को थोड़ा सा नीचे के टोन, जैसे ऑक्टेव्स हैं, जैसे सप्तक है,
1: हाँ।
0: मंद्र सप्तक है, मध्य सप्तक है और तार सप्तक है, तीनों ऑक्टेव्स जो है उसमें मध्य सप्तक से आपको मॉर्निंग में, चूंकि आप नींद से उठते हैं तो उसके बाद आपके पास थोड़ी सी बैठी होती है,
1: बेस
0: मतलब
1: काफी
0: बेस
1: अच्छा
0: मांगती है,
1: होता
0: तो
1: है।
0: उसमें आप
1: हाँ,
0: नीचे की तरफ
1: सा
0: सा
1: के
0: नी
1: बाद
0: हा
1: नी।
0: नीचे आए
1: जी जी
0: आ नीचे की तरफ जितना जाएंगे,
1: जी
0: और कहते हैं कि जितना नीचे जाएंगे उतना आप ऊपर छू सकते हैं। हमारे
1: अच्छा।
0: बड़े बुजुर्गों ने ये कहा है कि वेन यू आप जब खरज का रियाज करते हैं तो तार सप्तक में आपकी आवाज और भी आगे
1: खुलती
0: जब
1: है
0: खुलती है।
1: जी।
0: तो इस तरह का मुझे लगता है वॉइस क्वालिटी में अगर थोड़ा बदलाव लाना है तो थोड़ा आपको खरज का रियाज करना पड़ेगा, चाहे आप संगीत का करें या
1: जी
0: आ करके ही कर सकते हैं।
1: जी
0: लेकिन हर एक व्यक्ति की, हर एक शख्स की, हर एक स्त्री की अपनी अपनी एक वॉइस क्वालिटी है जो नेचुरली होती है, तो उसको ही कैसे अच्छा इस्तेमाल करना है वो आपको ढूंढना है। अगर आपका उच्चारण सही है, अगर आपकी आवाज अच्छी है, तो आपको उच्चारण पे पढ़ के आपको पढ़ाई बहुत करनी है,
1: जी
0: किताबें बहुत पढ़नी चाहिए आपको, और थोड़ा सा लाउडली पढ़नी चाहिए। जैसे आप अकेले अगर हो तो किताबें पढ़ना चाहिए उसको,
1: किस तरह की किताबें पढ़नी
0: कोई भी,
1: चाहिए?
0: जैसे उपन्यास हो, कोई भी हो,
1: अच्छा
0: जिसमें अगर आपको, क्योंकि भाव की भी जरूरत होती है,
1: जी
0: आवाज के साथ में उच्चारण के साथ में भाव भी चाहिए,
1: जी
0: तभी आप अच्छे आर्टिस्ट, डबिंग आर्टिस्ट या वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं।
1: जी
0: जब आपको मालूम, क्योंकि मेरे संगीत के योगदान ने मुझे उसमें एक अलग तरह का, एक मेरे जीवन में योगदान किया है, कि क्योंकि मैंने बेसिकली थोड़ा म्यूजिक भी सीखा है, बहुत ज्यादा मैं उस्तादी म्यूजिक नहीं सीखा, मैंने
1: जी
0: बेसिक म्यूजिक सीखा है, जो
1: जी
0: मैंने संगीत सीखा है उस वजह से मेरे डायलॉग डिलीवरी में, या मैं जब डबिंग करवाता हूं किसी से, तो मैं उनको वो गाइड कर सकता हूं कि इस सेंटेंस का भाव ऐसा है और किस शब्द को आपको कितना पुश करना है, कितना सॉफ्ट करना है, और उसको कैसे साथ में लेके चलना है,
1: जी
0: तो वो मैं इसलिए बता पाता हूं क्योंकि मेरा संगीत से मेरा जुड़ाव है, संगीत की मेरी सोल है,
1: जी
0: मेरी म्यूजिक की सोल, मुझे वो जो सुरों की जान पहचान की वजह से मुझे लगता है कि जो डायलॉग को हम किस तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं
1: जी
0: वाइल एक्टिंग, या रेडियो एक्टिंग, या फिल्म की एक्टिंग, या टेलीविजन की एक्टिंग करते हैं, तो वो भाव उसमें आना बहुत अनिवार्य होता है, आवश्यक है,
1: ठीक है
0: तभी तो आपके सेंटेंस में वो एक वो कन्वे होगा कि आप क्या कहना चाहते हैं।
1: जी।
0: तो उसमें उच्चारण के साथ साथ, वॉइस के साथ साथ, आपको भाव पे भी ध्यान देना पड़ेगा, उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी।
1: जी
0: और जैसे आजकल तो बहुत सारे एपरेटस हैं, सबके हाथ में मोबाइल है, उसमें रिकॉर्डर होता है, उसमें कुछ चीजें रिकॉर्ड करके आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, दो एक छोटा पैसेज रिकॉर्ड कर लिया, फिर आपने उसको सुन लिया, तो अगर आप जेन्युइनली एनालिटिकली अपने उसको, जो आपने रिकॉर्ड किया उसको सुनेंगे और समझेंगे कि कहीं त्रुटि है, कहीं गलती तो नहीं हुई है, कहीं कुछ ऐसा हुआ तो नहीं, तो आप उसको दोबारा से कर
1: खुद
0: सकते
1: खुद
0: हैं
1: के गुरु भी बन सकते
0: खुद
1: हैं।
0: क्या। और वैसे भी बहुत सारी, कुछ लोगों की क्लासेस चलती हैं जो वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस एक्टिंग, ये सब चीजें और ब्रॉडकास्टिंग के बारे में सिखाते हैं, काफी लोग इंस्टीट्यूशन हैं, वो वहां पे भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा उसका मंत्र जो है कुछ करने के लिए, दीवानापन और दीवानगी होनी चाहिए। अगर
1: जी
0: आप कुछ अचीव करना चाहते हैं जीवन में, आपके मन में वैसी दीवानगी और एकदम पागलपन होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है,
1: जी
0: इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग।
1: जी तो वो पागलपन चाहिए, अगर पागलपन है तो
0: हाँ, वो
1: आप पहुंच
0: दीवानापन
1: सकते हैं।
0: चाहिए।
1: और कुछ शिक्षाएं तो इसमें दी गई हैं, तो आप उन शिक्षाओं का भी ध्यान
0: जी
1: रखें,
0: जी बिल्कुल, बिना
1: उच्चारण
0: गुरु के
1: और
0: ज्ञान तो मिलता
1: जी
0: नहीं है,
1: जी
0: और
1: जी
0: गुरु आपको बनाना पड़ेगा किसी को गुरु, कि हाँ ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं,
1: हाँ
0: मैं इनसे सीखूं,
1: जी
0: तो आपको सीखना तो पड़ेगा ही।
1: जी
0: तो हम बचपन में गए ना वापस।
1: नहीं, अभी बचपन में नहीं जाते
0: हाँ
1: एक काम करते हैं, हम वापस आते हैं, और वापस आके जब आपने इतनी अच्छी शिक्षा दी और आपने कहा कि संगीत ने आपका बहुत साथ दिया,
0: जी जी
1: आपने बहुत अच्छे से दिल्ली में सीखा भी संगीत, तो अगर आप हमें कोई गीत गाकर सुना दे ताकि वही गीत हम हमारे श्रोताओं को सुना पाएं।
0: ठीक है, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, पता
1: जी
0: नहीं आपका दिल चाहे तो मतलब
1: नहीं, स्वागत है, स्वीकार है जी
0: मैं चूंकि संगीत से मेरा बहुत पुराना साथ है, मेरा इट
1: जी
0: हैज बीन माय फ्रेंड ऑलवेज, मेरा साथी हमेशा संगीत रहा है, अकेलेपन का भी बहुत साथी रहा है।
1: जी
0: बीच में तो काफी साल मैं एक्टिंग करता रहा, 1987 में पहली बार मैंने बॉम्बे में सीरियल किया था, एक्टिंग करते करते करते मैं डबिंग करता रहा, वॉइसिंग करता रहा, फिर डबिंग डायरेक्टर बना, करते करते उसके बारे में बाद में तो

0: बात करूंगा आपसे। तो उसके साथ साथ मैं अभी एक प्रोग्राम करने वाला हूं, मैं एक ट्रिब्यूट दे रहा हूं हमारे बहुत बड़े आइकॉन फिल्म इंडस्ट्री के रहे हैं धर्म जी, धर्मेंद्र,
1: जी
0: उनको ट्रिब्यूट देने का मेरा बड़ा दिल किया, तो मैं उनको एक ट्रिब्यूट दे रहा हूं। प्यार ही प्यार बेशुमार
1: क्या
0: टाइटल
1: बात है,
0: रखा है मैंने प्रोग्राम का, और आई थिंक अगले अगस्त के फर्स्ट वीक के आसपास में सेंट एंड्रयूज ऑडिटोरियम में वो शो कर रहा हूँ। उसमें एक गीत मुझे बहुत पसंद है, धर्म जी को मैंने डेडिकेट किया। उसमें
1: जी
0: गाने तो बहुत सारे हैं, हमने तकरीबन बहुत सारी लिस्ट बनाई है। उसमें एक गाना है जो मुझे बहुत बेहद पसंद है, उसकी दो लाइनें आपको सुनाता हूँ,
1: जी
0: क्योंकि
1: स्वागत है।
0: आपने मुझे कहा है कि दो लाइनें सुना दीजिए।

0: ये खूबसूरत गीत आपने गाया और हमने हमारे श्रोताओं को सुनाया, मतलब हमारे श्रोताओं की भूख बढ़ गई है कि अब जो भी गीत आप चुनेंगे उस गीत को आप गाकर सुनाएंगे और फिर हम आगे सुना देंगे।
1: वाह वाह, मेरा सौभाग्य
0: है ना, ये होता रहेगा। पर अब आपने बताया कि 1987 में आप मुंबई आए थे और पहला
1: 1986 में आया था,
0: 1986 में
1: जनवरी 20-40 साल हो गए तकरीबन मुंबई में।
0: ऐसा बताने से उम्र पता चल जाती है,
1: मुझे कोई गम नहीं उसका।
0: पर आप 1986 में मुंबई आए और यहाँ पर आके आपने अपना एक नया कदम, एक नया पायदान चढ़ा, एक नई सीढ़ी चढ़ी यहाँ से आपने, तो अब जरा उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करें। थोड़ा
1: ऐसा सुनने में आया था कि

0: बॉम्बे में बिना गॉडफादर के कुछ होता नहीं है। तो
1: अच्छा
0: ये बात एक तरह से वाजिब भी है, अच्छी भी है, सही भी है। लेकिन अब जब मेरा कोई था ही नहीं बॉम्बे में, तो मुझे तो खुद ही अपनी पगडंडी बनानी थी, अपने रास्ते खुद बनाने थे। तो मैं उससे पहले भी कई बार, एक बार ऐसे छुट्टियां होती थी मेरे कॉलेज में, तो वो सब दिल्ली में भाग भाग के आता था, क्योंकि बम्बई अपनी तरफ खींचता था मुझे हमेशा शुरू से। फिर फाइनली मुझे बॉम्बे आना ही पड़ा। मुझे बहुत लोगों ने वहां दिल्ली में कहा कि आप दिल्ली में क्यों रहते हैं, आप बॉम्बे जाना चाहिए, आपको बॉम्बे में इतना अच्छा, आपके टैलेंट का विकास होगा, आपको बहुत सारे अच्छे मौके मिलेंगे। तो मैं बॉम्बे आया, तो उसके बाद फिर मैंने इधर उधर कुछ, मैंने एक फोटो सेशन करवाया था। उस वक्त के बेस्ट फोटोग्राफर जो थे, स्टिल फोटोग्राफर, उनका नाम था गौतम राजाध्यक्ष।
1: जी जी
0: अब वो
1: जी
0: है
1: जी
0: नहीं,
1: जी जी
0: लेकिन मैंने बड़ी बहुत जद्दोजहद करी, बहुत मेहनत करी, तो मैंने उनका पता ढूंढा। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे फोटो सेशन कराना है तो सिर्फ आपसे करवाना है।
1: बड़े महंगे हुआ करते थे उस समय.
0: लेकिन बहुत प्यारे थे, बहुत प्यारे
1: जी
0: थे वो,
1: जी
0: बहुत ही
1: बिल्कुल.
0: अच्छे। एंड ही वॉज द बेस्ट पोर्ट्रेट फोटोग्राफर, बहुत बड़े
1: यस
0: बड़े लोगों का करते थे। एंड ही अग्रीड टू डू माई फोटो सेशन फॉर दैट टाइम। एंड तो फिर उनके घर पे उन्होंने मुझे, बाबुलनाथ मंदिर के पास में उनका घर था, ह्यूज रोड पे, तो वहां उन्होंने मुझे घर पे बुलाया, बोला यू कम ऑन सैटरडे, वी विल शूट। तो उन्होंने खट खट खट खट मेरी तस्वीरें लेते गए वो, और कुछ फोटोग्राफ्स उन्होंने दी। तो फिर मेरे पास जब वो उस जमाना वो था, तो कुछ फोटोग्राफ्स दी थी, तो मैंने बहुत सारी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में मैंने
1: अप्लाई
0: वो
1: कर दिया.
0: दिया उनका अपना पीछे। अच्छा, उस वक्त ऐसा जमाना था कि फोन भी नहीं होता था सबके पास में, सबके मतलब केयर ऑफ नंबर होते थे। मेरे भी एक अंकल रहते थे बैंड्रा में, तो पीछे उनका केयर ऑफ नंबर देके हम लोग रखते थे नाम और केयर ऑफ नंबर। कभी कभी वो फोन करते भी थे और मैसेज मिस भी हो जाते थे। और
1: हाँ
0: मेरी आंटी घर पर रहती थी, वो बोलती थी अरे बेटा किसी का फोन आया था, वो कोई अच्छा सा था, नाम भी अच्छा सा था, कुछ क्या कुछ बताती नहीं, कोई कोई
1: भूल
0: मैसेज मिलता नहीं
1: गई
0: था,
1: भूल गई.
0: लेकिन हाँ वो भूल जाती थी। तो इस तरह का भी वक्त देखा है। तो फिर बहुत सारे लोगों से मिलना होता था। उस वक्त मुझे एक एड फिल्म मिली थी ब्रूक बॉन्ड की, थ्री रोजेस चाय,
1: अच्छा
0: आई थिंक दैट वॉज फॉर कुछ साउथ के लिए था।
1: हाँ.
0: उसमें एक मॉडल थी राधा, और मुझे उन्होंने लिया था। ज्योति ठाकुर डायरेक्टर थे उस एड के,
1: जी
0: बहुत
1: जी
0: बड़े
1: जी जी जी
0: एड फिल्म मेकर थे ज्योति
1: जी
0: ठाकुर।
1: जी
0: तो उस एड में मुझे काम करने का मौका मिला था, ब्रूक बॉन्ड की थ्री रोजेस चाय। फिर मैंने जिंगल गाया, एक बन फूल आयुर्वेदिक तेल का जिंगल मुझे गाने का मौका मिला। मैं बहुत मतलब मैं जितनी मुझसे कोशिश खुद से हो सकती थी मैं करता था, क्योंकि मेरा कोई गॉडफादर था नहीं, मुझे कोई लॉन्च करने वाला था नहीं, तो आई हैड टू डू माई ओन थिंग्स। तो आई यूज टू बी इन टच, मैं पृथ्वी थिएटर में अक्सर जाता था, वहां लोगों से मिलना होता था, वहां बहुत लोग मिलते थे। कुछ मैंने उस पहले आके इप्टा के साथ में भी एक उनके साथ फंक्शन किया था इप्टा डे का, तभी वो बहुत अच्छे अच्छे लोग हुआ करते थे। इकबाल कुरैशी साहब म्यूजिक डायरेक्टर थे, कुलदीप सिंह जी थे, तो एम एस सत्यू साहब, ये लोग बहुत पुराने इप्टा के
1: बड़े
0: लोग थे।
1: लोग थे.
0: तो इन लोगों के साथ में भी इप्टा डे में भी मैंने गाया भी था, एक्टिंग भी किया था। तो इस तरह से मुझे जितने जितने मुझे जो भी मौका मिलता था मैं कर लेता था। आई थिंक आई यूज टू, मुझे लगता है अपने आपको मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, ब्रश कर रहा हूँ, शायद रिफाइन कर रहा हूँ। तो इनिशियली वैसे ही काम चलता रहा। फिर ये 1987 में दूरदर्शन में एक सीरियल आता था अधिकार, उसमें मेरा उसमें हुआ था, तो मैंने उसमें एक्टिंग की। फिर उनका ही नेटवर्क 7 का ही मंजू सिंह, जोत सिंह का एक कहानी, उसमें मैंने एक्टिंग की। फिर उसके बाद तरह तरह के करता रहा। फिर मेरे साथ एक किस्सा हुआ था, मैं आपको बताऊं, मैं जो मैंने शायद बहुत लोगों को पता भी नहीं है, मैंने प्यार किया फिल्म की कास्टिंग हो रही थी, तो मैंने प्यार किया कास्टिंग के लिए मुझे किसी ने मुझे मुझे भेजा था, बोला उनको जरूरत थी उस वक्त एक्टर्स की। तो उन्होंने शायद सलमान खान और भाग्यश्री का सिलेक्शन हो चुका था, उसमें किरदार था जीवन का, उसके लिए मुझे उन्होंने स्क्रीन टेस्ट किया। सूरज जी से मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया था, और उस स्क्रीन टेस्ट में सलमान खान भी मौजूद थे और भाग्यश्री भी। वो एक प्रॉपर सीन शूट हुआ राजश्री प्रोडक्शंस की सीढ़ियों में, जहां पे वो लिफ्ट है, और वहां सीढ़ियों से उतरते मैं एकदम सूटेड बूटेड आता हूँ, और नीचे आके सलमान और भाग्यश्री खड़े हैं, उनके साथ मेरा स्क्रीन टेस्ट हुआ था उस फिल्म के लिए। वो एक डायलॉग था, वाह सुमन वाह, पराए अजनबी घर में पराए लोगों से इतना दोस्ताना, ये सब डायलॉग्स थे। तो सलमान आके मेरा कॉलर पकड़ते हैं, सूट पकड़ते हैं, तो मैं ऐसे, वो डायलॉग बाजी थी, वो मेरा स्क्रीन टेस्ट हुआ था उसमें। और हमारे दो लोगों का, मेरा हुआ था और एक और लड़का था, मेरा सिलेक्शन मुझे मालूम पड़ा हुआ था। लेकिन फिर वो फाइनली दैट रोल वेंट टू अप टू टू मोहनीश बहल। तो वहां से थोड़ा मेरा लगा था कि हाँ सचमुच जो लोग कहते हैं कि गॉडफादर होता है तो गॉडफादर होना चाहिए। लेकिन मेरी कोशिशें एकदम बरकरार थी, चालू थी, मैं हमेशा कोशिशें करता रहा, करते करते करते फिर टेलीविजन में करते रहे बहुत सारे।

0: सीरियल्स मैंने किए, महाराणा प्रताप मेरा एक तरह से लास्ट सीरियल, उसके बाद मैंने फिर टेलीविजन नहीं किया।
1: जी
0: महाराणा प्रताप था, अदालत, बहुत सारी सीरियल्स मैंने किए, कागज की कश्ती,
1: जी
0: तो अब तो नाम भी याद नहीं रहते कितने उस
1: इतने
0: जमाने में,
1: सारे
0: एटीज।
1: सीरियल्स कर
0: हाँ
1: लिए, गाने तो याद रहते हैं ना।
0: हाँ
1: अब आपने अपनी जिंदगी के बारे में बताया कि जिंदगी में जो कुछ आता जा रहा है वैसे ही चलता जा रहा है,
0: जी
1: तो एक गाना अगर आप हमारे श्रोताओं को कुछ सुना दें और उनको एक डेडिकेट कर दें तो बड़ी खुशी होगी, श्रोताओं को भी और हमको भी।
0: लेकिन मैं दो ही लाइनें गाऊंगा, उसके बाद आप ओरिजिनल गाना
1: जी,
0: चलाइएगा।
1: ओरिजिनल जो गाए हैं वो गा देंगे। आप दो पंक्तियां।
0: मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिर

0: चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला
1: क्या
0: गया।
1: बात है, मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये गीत बहुत खूबसूरती से आपने गाया, और अब सुनते हैं यही गीत।
2: मैं जिंदगी

0: तो ये गाना तो आपने सुना दिया और आप सोच रहे होंगे कि यहाँ हमसे बात करने के लिए बुलाया है या गाना गाने के लिए। तो विविध भारती की एक बात है कि यहाँ पर अगर कोई हुनरबाज आता है तो हम सारे हुनर का आनंद उठाते हैं और सब में बांटते हैं, तो ये
1: नहीं,
0: प्रेम
1: मुझे
0: हम
1: भी
0: बांट
1: खुशी
0: रहे
1: है
0: हैं आपका।
1: बिल्कुल आपके साथ जिस तरह हम जो वार्ता कर रहे हैं, जो भी एक चर्चा कर रहे हैं,
0: जी
1: मेरे बारे में चर्चा हो रही है, मेरे सफर के बारे में चर्चा हो रही है, उसमें मेरा साथी तो आकाशवाणी विविध भारती है ही, और विविध
0: जी
1: भारती के श्रोताओं को
0: जी
1: खासकर, उनको भी तो गीतों का आनंद मिलना चाहिए, उनको भी हमारी बातों
0: जी
1: का आनंद आना चाहिए।
0: जी बिल्कुल। तो अब जब बातों का आनंद चल रहा है, तो अभी तक तो आप मुंबई आए, फिर से दूरदर्शन यानी प्रसार भारती ने आपका हाथ पकड़ लिया, आपको बहुत सारे नाटकों का, धारावाहिकों का हिस्सा बनने का मौका मिल
1: जी
0: गया।
1: जी
0: अब आपने धारावाहिक कर लिए, उन्हें छोड़ दिया, लेकिन साथ साथ में कुछ फिल्में भी आपके हाथ में आ रही हैं और आप उन फिल्मों में भी काम कर

0: रहे हैं, एक एज ए एक्टर काम कर रहे हैं, तो वो जमाना कैसा था? आप काम करते थे तो कैसा लगता था, और आपने किन किन जगहों पर क्या क्या किरदार किए? ये बड़े प्यारे से प्रश्न है जिनका उत्तर हम जानना चाहते हैं।
1: असल में शुरुआती दौर में बेसिकली मेरे जहन में ऐसा बैठा था कि एज मैटर्स अ लॉट। जैसे मैं 20s में था तो मुझे ऐसा लगता था कि अभी मुझे अगर लीडिंग कैरेक्टर्स मिल जाएं फिर मुझे वो लीडिंग कैरेक्टर ही चाहिए थे। उसके बदले में मैंने बहुत सारी चीजें छोड़ भी दी उस वक्त, क्योंकि शायद मेरा गाइड या मेंटोर या गॉडफादर कोई था नहीं या जो मुझे मतलब समझा सकते थे। मैं खुद ही अपनी एनालाइज करके अपनी डिसीजंस लेता था।
0: जी,
1: जैसे मुझे मैंने प्यार किया नहीं मिली तो मेरा दिल थोड़ा सा दुख
0: टूटा
1: गया था।
0: होगा।
1: तो
0: हाँ
1: देवानंद साहब से मैं बहुत मुतासिर था, बहुत उनसे प्रभावित था। तो उनसे मुझे मेरे मित्र ने मिलवाया था देव साहब से, वो उनके असिस्टेंट चीफ असिस्टेंट थे। तो देव साहब बहुत प्यार करते थे, मुझे कश्मीरी करके बुलाते थे, ए
0: जी,
1: कश्मीरी कम हियर, कम कम व्हेन हैव यू कम, उस तरह से बहुत स्टाइल से बात
0: आप थोड़ा
1: करते
0: और इसको क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे बात करते
1: थे
0: समय देव साहब यहां पर आए थे, तो देवानंद को सुनना हम चाहते हैं, अगर थोड़ा और सुना
1: मैं
0: दें।
1: उनके अंदाज में बताऊंगा जो उन्होंने मुझे जवाब
0: जी जी
1: दिया था।
0: बिल्कुल
1: क्योंकि एक फिल्म बन रही थी उस वक्त अव्वल नंबर,
0: जी
1: देव साहब का ऑफिस खीरा नगर सेंटाक्रूज में भी था
0: जी
1: जहां मैं कई बार उनसे मिला भी था।
0: जी
1: उनका आनंद डबिंग भी था
0: जी
1: और महबूब स्टूडियो में वहां भी एक उनका कमरा था जहां पे वो अक्सर बैठते थे बैंड्रा में। मुझे उन्होंने सूचना मिली तो मुझे उन्होंने वहां बुलाया था। वो शायद उसके बाद वो कहीं लंदन जाने वाले थे, लेकिन
0: जी
1: उससे पहले उन्होंने अव्वल नंबर फिल्म की उन्होंने बातचीत चल रही थी तो मुझे भी उन्होंने वहां मिलने के लिए बुलाया। तो मैं वहां गया था तो मुझे उन्होंने एक रोल ऑफर किया जो एक पुलिस वाले का रोल था।
0: अच्छा
1: तो वो मैंने उनसे बहुत ही रिस्पेक्टफुली कहा, मैंने कहा देव साहब मुझे पुलिस वाले का रोल नहीं करना है, इट्स द बिगिनिंग ऑफ माय करियर, तो मैं एक पुलिस वाले का रोल करके मतलब
0: उसी
1: इट इज
0: लूप
1: नॉट
0: में
1: मुझे
0: फंस
1: मुझे हाँ ऐसा लग रहा था।
0: जाएंगे।
1: उस फिल्म में आमिर खान साहब कास्ट हुए थे और उन्होंने मुझे कहा रायना आई एम रोल रियली सॉरी आई कांट गिव यू दैट। मैंने उनको कहा था कि वो जो सेकंड लीड रोल है जो नेगेटिव रोल था, तो मैंने कहा था वो मुझे आप दे दीजिए ना इस फिल्म के लिए, तो मुझे वो पुलिस वाला रोल नहीं करना है। कहता आई एम सो सॉरी रायना आई हैव ऑलरेडी प्रॉमिस आदित्य अबाउट दैट रोल एंड आई हैव टू गिव इट टू हिम, आई कैन नॉट गो बैक ऑन माई प्रॉमिस, सो वी विल यू बेटर डू दैट वन, दैट्स अ गुड रोल ऑफ अ पुलिसमैन। तो मैं बहुत उनका फैन था, बहुत जबरदस्त फैन रहा हूँ उनकी फिल्मों का भी। तो इस तरह से उन्होंने मुझे जवाब दिया तो मैं फिर थोड़ा सा मेरा मैंने कहा ये पुलिस वाला रोल मुझे नहीं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं देव साहब, मैं आपके साथ में नेक्स्ट फिल्म में ही काम करूंगा। इस फिल्म में पता नहीं ये क्या था मुझे मालूम नहीं, ये
0: जी
1: मेरी अब मैं अगर को कहूँ गलतियां थी, लेकिन उस वक्त मुझे सही लगता था। मुझे लगता था कि मेरा करियर का बिगिनिंग है, मेरा कोई है नहीं, मुझे वन ऑफ द लीडिंग रोल करना चाहिए चाहे नेगेटिव रोल में। नेगेटिव के लिए मेरा बहुत अच्छा एक शौक था कि मैं नेगेटिव रोल्स करूं, मेरी
0: जी
1: आवाज और मेरे पर्सनालिटी और मेरी आंखों की वजह से मुझे ऐसा लगता था कि नेगेटिव
0: कर
1: रोल विल
0: सकते हैं।
1: सूट मी। तो उन्होंने जब वो कहा कि मुझे आदित्य को प्रॉमिस किया है तो मेरा फिर दिल थोड़ा सा वो हो गया,
0: फिर से टूट
1: फिर थोड़ा सा वो हो गया कि
0: गया
1: हाँ मतलब कहना तो नहीं चाहिए लेकिन हाँ आपका कोई होना चाहिए,
0: जी।
1: देर हैज टू बी सम सपोर्ट। जैसे आप तो जानती हैं, इतिहास भी जानती हैं कि बहुत सारे लोगों को लॉन्च उनके घर वालों ने ही किया हुआ है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन किया तो है ना हमारा, मेरा ऐसा कोई था नहीं। कुछ लोगों को लेकिन भाग्य के अंतर्गत मिला भी है, जिनका कोई गॉडफादर नहीं था उनको भी मिला है, लेकिन मेरे साथ में ऐसा हुआ। फिर उसके बाद देव साहब से अक्सर मिलना होता था, मुझे कश्मीरी बुलाते थे, ए कश्मीरी, जो कि म्यूजिक से भी मेरा रिलेशन था तो इसलिए मैं म्यूजिक के प्रोग्राम भी करता रहता था, मैं शोज भी करता रहता था जैसा आपने अंदाजा लगाया एक्टिंग। और किशोर कुमार साहब हमारे वन ऑफ द गुरुज हैं तो इसलिए जैसे वो एक्टिंग और सिंगिंग दोनों
0: सिंगिंग
1: करते
0: दोनों
1: थे तो ऐसा ही हमारा भी
0: करते
1: कुछ वैसा ही था।
0: थे जी
1: लेकिन अब अच्छी अच्छी फिल्में कुछ मैंने वीर ज़ारा मुझे
0: जी
1: यश चोपड़ा जी के साथ में काम करने का मौका मिला और उस कव्वाली में उन्होंने अपने किसी मित्र से कहा था कि मुझे एक ऐसा एक्टर चाहिए जो जिसको म्यूजिक का नॉलेज हो। तो मेरे साथ में यश जी के साथ मेरी एक मीटिंग फिक्स की गई फिल्म सिटी में, तो वहाँ उन्होंने मुझे आई वॉज कॉल्ड 10 बजे मुझे उन्होंने फिल्म सिटी बुलाया था। तो मैं वहाँ ड्राइव करके आया तो वो भी आए मेरे साथ में। तो यश जी से उन्होंने मुलाकात कराई तो उन्होंने मुझे पूछा अच्छा कश्मीर के हो, अच्छा अच्छा म्यूजिक आता है वो ये। तो फिर उन्होंने मुझे वो उस वीर ज़ारा में उन्होंने मुझे कास्ट किया, उस कव्वाली है बहुत अच्छी अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की गाई हुई, आया तेरे दर पे दीवाना, ये सुना
0: वो
1: सकती हैं
0: थोड़ा
1: आप
0: सा आप
1: श्रोताओं
0: गा
1: को?
0: के, नहीं आप थोड़ा, वही मैं कहने आई थी, आप
1: हाँ
0: थोड़ा गा के सुना दें तो आगे वो कव्वाली हम हमारे श्रोताओं
1: हाँ
0: तक पहुंचा देंगे।
1: जो

0: तो इस पे मैंने एक्टिंग की है, तो मुझे खुशी तो इस बात की थी कि यश चोपड़ा जी मेरा नाम लेके मुझे एड्रेस करते थे, रैना चलो अब तुम्हारा ही शॉर्ट्स होने हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। सरोज जी वहां से कोरियोग्राफ कर रही थी, तो हाँ पंकज जी रैना जी चलिए अब आपकी शॉर्ट्स लेने, तो इस तरह से नहीं ये लोग जब मुझे एड्रेस करते थे आई यूज टू फील रियली गुड अबाउट इट। एंड तो वो कवाली हुई उसमें, उस पर मैंने एक्टिंग की। उसके बाद कई और फिल्में, अभी मेरी एक फिल्म आने वाली है आमिर खान प्रोडक्शंस की, बंटवारा 1947, जिसका
1: अच्छा
0: नाम पहले लाहौर 1947 था,
1: अच्छा
0: अब उसमें सनी देओल और शबाना जी हैं, राजकुमार संतोषी डायरेक्टर हैं,
1: जी
0: आमिर खान प्रोड्यूसर है, मेरा भी बहुत अच्छा है उसमें किरदार है।
1: जी
0: सनी के साथ बहुत सारे अच्छे हमारे साथ के रोल्स हैं। वो 14 अगस्त को रिलीज हो रही है, वो देखिएगा। और एक मेरी वेब सीरीज ऑन एयर है जियो हॉटस्टार पे, लुटेरे,
1: अच्छा
0: और तनाव भी एक वेब सीरीज जो सुधीर मिश्रा ने की है, वो हंसल मेहता की प्रोडक्शन है।
1: जी
0: तो इस तरह की इस गेटअप में मेरे कुछ चीजें
1: आपको
0: हैं
1: आने
0: अवेलेबल।
1: वाली फिल्म और सीरीज के लिए हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई।
0: बहुत बहुत
1: और
0: शुक्रिया।
1: जी अभी है ना, हमारे बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं और आपके जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जो अब तक हम पढ़ चुके हैं, गढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। अब वक्त आ गया है कि हमारे सामने जो इतना बड़ा आर्टिस्ट बैठा है, जिसके पास में संगीत का भी ज्ञान है, आवाज का भी ज्ञान है, जिनके पास दिग्दर्शन का भी ज्ञान है तो निर्देशन का भी ज्ञान है,
0: जी
1: जिनको पता है कि किस तरह से किस अभिनय को करना है, जो नेगेटिव किरदार भी कर सकते हैं, जो मस्ती भरे माहौल में भी जी सकते हैं, इस सब का निचोड़ एक कुछ ऐसा हमारे श्रोताओं

0: के लिए मिल जाए आपकी बातों से, आपके जज्बात से, ताकि हमारे जो श्रोता हैं, जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, वो आपकी उन बातों का सहारा लेकर आगे बढ़ सकें। तो एक कोई संदेश, एक कोई बात, एक कोई सीख हमारे आगामी पीढ़ी के लिए, या जो श्रोता भी इस राह में संघर्षरत हैं, वो भी ये काम कर सकें।
1: मैंने जैसे पहले भी आपसे जिक्र किया कि ये जो कला क्षेत्र है, इसमें ये तो एक तपस्या की तरह है।
0: जी,
1: कला क्षेत्र में जब तक इंसान तपस्या भाव से इस फील्ड में नहीं आता, तो वो भाग्य के द्वारा हो भी सकता है, बन भी सकता है, लेकिन है तो तपस्या। आपकी चीजों का सराह तभी जाएगा जब आप उस तरह का एक्ट करेंगे, उस तरह का गाएंगे, उस तरह का संगीत निर्देशन करेंगे। और उन सब चीजों के लिए तो स्टडी और दीवानगी की जरूरत तो होती है। आपको मीडियम का कितना ज्ञान है, उसमें आपकी कितनी दीवानगी है, आपने अपने आप को उसमें कितना
0: ढाला है,
1: एनग्रॉस किया हुआ, उसमें ढाला है, तो वो सब तो नए लोगों के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए तो ऐसा ही है कि वो दीवानगी की तरह से ही करेंगे, तब जाके होता है, तब जाके आपको सराहा जाएगा। अदरवाइज
0: अगर वो हारते हैं, टूटते हैं, तो क्या करें?
1: नहीं, हारना टूटना नहीं होता। देखिए, अगर आप सोच लेते हैं कि दीवानगी मतलब एक चीज ये करनी है तो करनी ही है
0: जी,
1: अब उसका निष्कर्ष कुछ भी निकले, उसको जैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये एक श्लोक है, इसका एक्चुअल अर्थ ये है कि मेरा काम है कर्म करना, फल की इच्छा भी नहीं करना
0: जी।
1: तो हमको कर्म लगातार करने हैं, बिकॉज ये एक इट्स नॉट ए क्वेश्चन ऑफ वन जन्म। मुझे लगता है जन्म जन्मों की तपस्या के बाद अमिताभ बच्चन बनते हैं, जन्मों जन्मों की तपस्या के बाद इतने बड़े बड़े महान कलाकार बलराज सहनी जैसे होते हैं
0: जी,
1: जो मतलब अपनी छाप छोड़ जाते हैं सदियों तक
0: जी।
1: तो वो एक इट्स नॉट, अगर 13 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर को इंडियन कैप मिलेगी तो वो जन्म जन्मों के कर्म होते हैं
0: जी।
1: ऐसा कौन सा चीज उन्होंने सीख लिया कि वो सचिन तेंदुलकर बन गए? लता जी 11 साल की उम्र में उनको सक्सेस मतलब गाने का मौका मिला और वो आगे बढ़ी और सारा जीवन 94-95 की एज तक गाती रही। मुझे लगता है कि इट्स ए कर्मा, इट इज द डेडिकेशन विच मैटर्स अ लॉट। आप अपने आप को निखार सकते हैं, कुछ चीजें बना सकते हैं, कुछ चीजों की त्रुटियों को खत्म कर सकते हैं, बट बेसिकली वो डेडिकेशन और वो जुनून जब तक नहीं होगा आप में तो, और आपने उसके लिए कुछ वैसा सेक्रीफाइस नहीं किया होगा ना, तो होता नहीं है। सो इट हैज टू बी डन विद द डेडिकेशन, टोटल डेडिकेशन,
0: बहुत मेहनत करनी पड़ेगी,
1: टूटना नहीं होता है,
0: टूटना नहीं है। जी, तो जब आपका इतना अच्छा विचार हमारे श्रोताओं तक जा रहा है, तो एक कोई बात, एक कोई बड़ा सुंदर सा किस्सा और एक गीत, इतनी अपेक्षा तो हम आपसे कर सकते हैं।
1: चलिए मैं आपको बताऊं, मैं बचपन से, जैसे मैंने बताया कि मेरे घर का माहौल बिल्कुल कल्चरल हब जैसा था, पेंटिंग भी थी, म्यूजिक भी था, शायरी भी थी, ये सब था
0: जी।
1: मैं जब रफी साहब और किशोर कुमार और मुकेश जी, जो तीन बड़े जो स्टॉलवॉर्ट्स हैं, मतलब इतने बड़े दिग्गज जो मेल सिंगर्स हुए हैं, उन तीनों का मेरे जीवन पे बहुत असर रहा है, बिकॉज आई हैव बीन फॉलोइंग देयर म्यूजिक और मैंने उनकी सिंगिंग की स्टाइल्स और अदायगी पे, जो लटके खटके झटके सब सबको मैंने शुरू से मैंने शोध किया, उस पर रिसर्च किया कि उनका क्या क्या कैसे कैसा स्टाइल है। फिर इस दौरान एक बीच में, ये तो गुरु हैं ही हमारे तीनों, और मेहदी हसन साहब भी बहुत अच्छा है उनका भी, वो भी हमारे वन ऑफ द गुरुज हैं। एक और शख्स बीच में आए जिनका नाम था भूपेंद्र। तो भूपेंद्र पहले वो भी आकाशवाणी में कार्यरत
0: अच्छा,
1: थे, दिल्ली रेडियो में काम करते थे ये, और 12 स्ट्रिंग एकॉस्टिक गिटार बजाते थे
0: अच्छा।
1: और मदन मोहन जी एक बार दिल्ली गए थे तो उन्होंने उनसे मुलाकात करके उन्होंने बंबई बुला लिया भूपेंद्र को
0: अच्छा।
1: तो चेतन आनंद साहब की फिल्म थी हकीकत, उसमें भूपेंद्र को उन्होंने एज ए म्यूजिशियन उन्होंने गाया भी है
0: जी।
1: वो होके मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा,
0: उसमें
1: पहला अंतरा भूपेंद्र ने गाया
0: अच्छा।
1: मैं बड़ा प्रभावित हुआ था भूपेंद्र की आवाज से, बहुत ही अलग तरह की आवाज थी, बहुत ही अलग तरह का उनका एक टोनल क्वालिटी थी
0: जी।
1: और एकदम बेस वाली और कमाल की आवाज थी। तो मैं पता नहीं क्यों शुरू से जब छोटा ही था तो बहुत प्रभावित हुआ उनकी आवाज से, उनके गीत गाता था उन दिनों, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, मौसम फिल्म का गाना उनका आया, गरौंधा का एक अकेला इस शहर में, इस तरह के कई गाने उनके भूपेंद्र जी के उन दिनों आते थे। तो मैं सब पिकअप करता था, सब सुनता था, गाता भी था। एक बार बड़ी चाहत हुई, मैं बॉम्बे आया तो मैं भूपेंद्र से मिलूं
0: जी।
1: तो वो उस वक्त पाली हिल बैंड्रा में रहते थे
0: जी,
1: हाईलैंड बिल्डिंग का नाम था
0: जी।
1: तो मैं उनसे मिलने एक बार आ गया, तो मिलने आया तो मैं लिफ्ट के बाहर खड़ा हूं तो लिफ्ट खुली तो अंदर से भूपेंद्र बाहर आ रहे हैं। तो मैंने कहा मैं तो आपसे ही मिलने आया हूँ। बोले कहाँ से आए? मैं बोला कश्मीर से।

0: तो बोला चलो चलो चलो ऊपर, फिर
1: मिलने की
0: ऊपर
1: चाहत ने मिला
0: नहीं, मैं
1: दिया,
0: मिलने गया ही था उनसे, तो देखा तो वो अंदर से
1: लिफ्ट
0: हाथ,
1: में ही मिल
0: लेकिन वो
1: गए।
0: नीचे ही मिल गए।
1: जी,
0: तो फिर उनके साथ ऊपर उनके घर पे गए, तो वहां पे फिर बोला अच्छा बताओ क्या क्या है वो, ये बातें बातें हुई। फिर उन्होंने गिटार उठा ली, तो साथ में हम लोग, मैं और भूपेंद्र जी, मैं उनको सुनाता रहा उनके गाने, तो बहुत खुश हुए। बाद में वो बहुत मिलते थे, अक्सर उनसे मिलना होता था। राम लक्ष्मण जी ने से भी, उनसे भी मिलना होता था। राम लक्ष्मण जी ने भी कहा मेरे पास नया भूपेंद्र आ गया है, इस तरह की बातें। तो मेरे जीवन में इस तरह के कुछ अच्छे किस्से हैं जो महान महान लोगों से मिले भी हैं। तो बॉम्बे जब आए थे शुरू शुरू में, तो हमारी कश्मीरी पंडित एसोसिएशन है यहाँ पे,
1: जी,
0: तो उनका फंक्शन था, तो मुझे उन्होंने कहा कि एक गाना सुनाओ जैसे आप कह रही हैं। तो
1: हाँ,
0: मैंने पहला गीत यही गाया था,
1: तो
0: जो मैं
1: जरा
0: दो लाइन आपको सुना के, एक अकेला इस

0: श्री पंकज रैना जी हमारे समक्ष हैं और उनके जीवन की बहुत सारी बातें हमने सुनी, संघर्ष को भी सुना और जीत को भी सुना, बहाव के साथ बहने को भी सुना और जीतने को भी सुना, और जहां नहीं जीते वहां अडिग खड़े रहने को भी सुना। ये सब सुनने के बाद जब पंकज जी हमारे सामने आए हैं, विविध भारती तक आए हैं, तो बहुत बड़ा परिवार है पंकज जी विविध भारती का।
1: जी
0: इसमें केवल उद्घोषक नहीं है, उद्घोषकों के साथ में बहुत सारे इंजीनियर

0: भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो पीछे से परोक्ष में रहकर बहुत सारा काम करते
1: जी जी
0: हैं,
1: जी मैं
0: और
1: अंडरस्टैंड करता
0: इन
1: हूँ।
0: सब के साथ बहुत सारे श्रोता हैं जिन्हें हम गिन नहीं
1: वाह,
0: सकते। तो उस बड़े से परिवार की तरफ से हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप यहां तक आए, इतना साथ दिया, और बहुत आभार व्यक्त करते
1: मैं
0: हैं।
1: अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने मुझे याद किया और मैं यहां चला आया, और मुझे अपनी जड़ों से, अपने रूट से, अपने कश्मीर से, अपने दिल्ली की यात्रा से और बम्बई की यात्रा से मुझे कुछ कहने का, मुझे साझा करने का मुझे मौका मिला। मैं बहुत दिल से, हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने मुझे आज इस जगह पे मुझे बुला के बहुत ही एकदम आत्मविभोर कर दिया। मैं
0: बहुत
1: बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं।
0: धन्यवाद।
2: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डायरेक्टर, एक्टर और डबिंग डायरेक्टर पंकज रैना से विधि जैन की ये बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग काजल भदरगे का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
3: आज के मेहमान।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: मैं पूनम केरकेट्टा। रांची में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के खिलाफ अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा है। आज बड़ी संख्या में नाराज प्रदर्शनकारी सुरक्षा घेरा और बैरिकेडिंग तोड़कर सीधे सचिवालय परिसर में घुस गए। इस दौरान पुलिस के साथ तीखी बहस और धक्का मुक्की हुई, जिससे मौके पर तनाव व्याप्त हो गया। अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने के सरकार के फैसले को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहा छात्रों का आंदोलन आगामी 2 महीनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा जेएसएससी और जेपीएससी परीक्षाओं को रद्द करने के बड़े फैसले के बाद छात्र संगठनों ने यह निर्णय लिया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 को लेकर फैल रहे भ्रम को खारिज किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कानून से झारखंड का खनन राजस्व समाप्त नहीं होगा। इसका उद्देश्य निवेश और उत्पादन बढ़ाकर राज्यों के राजस्व आधार को मजबूत, स्थिर और प्रतिस्पर्धी बनाना है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने लिट्टीपाड़ा, पाकुड़ और महेशपुर विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने ड्राफ्ट मतदाता सूची की जांच करते हुए अधिकारियों को पात्र लोगों के नाम जोड़ने और अपात्रों के नाम हटाने के निर्देश दिए। साथ ही 24 अगस्त से होने वाली सुनवाई की तैयारियों की समीक्षा की। मौसम विभाग के अनुसार अगले 12 घंटों में मॉनसूनी बादल कमजोर होकर आगे बढ़ जाएंगे, जिससे कल से राज्य के कई इलाकों में मौसम साफ होने की संभावना है। और बोकारो के मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में दूसरी एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता शुरू हुई, जो 29 अगस्त तक चलेगी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने तीर चलाकर इसका उद्घाटन किया। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: मोहब्बत का लफ्ज बन गया, न जाने क्या हुआ दिल को कि वो एक जिद्दी बच्चा बन गया। जमीन से आसमान की सैर करने पर

कोयल ने जब बागों में गाया गीत, जब पहाड़ों पर गिरी बर्फ, जब सर्दी में ओस की बूंदें सुबह के सूरज की किरणों का साथ पाकर मुस्कुराई, जब क्यारियों में नए अंकुर फूटे, जब खिला गुलाबी फूल, तब तब उसकी यादों की आमद हुई, तब तब उसके मुस्कुराते होठ गुनगुनाए मोहब्बत के नगमे, तब तब नदी के दो किनारे एक साथ चलने को आतुर हो उठे।

0: उसकी हर अदा पर दिल कुर्बान हुआ। उसकी दिल फरेब नजरों ने जो जादू फेरा तो उस जादू का असर जिंदगी के हर लम्हे में तारी रहा। कौन कहे कि चुपके चुपके यूं दिल पर जादू चलाना ठीक नहीं।
1: हुस्न वाले

दोस्तों विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। उसकी मीठी मोहक बातों ने दिल पर कब्जा कर लिया, छोटा सा दिल, भला उसे क्या पता कि मोहब्बत की राहों में फूल संग कांटे भी होते हैं। मासूम दिल भला कांटों में उलझने से कहां डरता है।

0: जादू भरी नजर ने ऐसे इशारे किए कि दिल चल पड़ा उस राह पर जहां से जुड़ती थी उसकी राहें। उसकी मोहब्बत की पुकार पर दिल को रोकना मुश्किल हो गया। उसका साथ जिंदगी का गीत बन गया।
1: हाय

भूलती नहीं वो आंखें जिनमें खुद के लिए प्यार का सागर था। उसने पलकें उठाई तो मोती झरे ऐसे समंदर की लहरों ने कई सीपियां एक साथ सौंप दी हों जैसे। उसकी पलकें झपकाने से नदी ने ठिठक कर देखा, झरने अपने रवाने में गुनगुना उठे। उससे मुलाकात क्या हुई, जीने का मकसद मिल गया।

ख्वाबों में तब्दील हसीन लम्हों को खोजता है दिल, शिकवे शिकायतों से लवरेज वो लम्हे गुम हो गए जिंदगी की जद्दोजहद में। वक्त उंगली छुड़ाकर दूर भागता रहा, हम वक्त का पीछा करते रहे, हसरतों की डोर पकड़कर दिल तेज रफ्तार गाड़ी की तरह भागता रहा, भागता रहा जिंदगी की राहों पर।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती की प्रसारण सेवा आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर।

सायंकालीन सभा में हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी ही देर में यानी शाम 5:35 पर आप सुनेंगे महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम घर आंगन। शाम 6:00 प्रादेशिक मुख्य समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। शाम 6:02 पर ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम होगा खेती बारी। चर्चा होगी खेतों को परती ना छोड़ें किसान, साथ ही चर्चा में सुनिएगा कम पूंजी में सागों की खेती। वार्ता भेंट वार्ता आप सुनेंगे केचुआ पालक से भेंट, केचुआ पालन एवं औषधीय पौधों की खेती पर। भेंट वार्ताकार हैं सुरेश प्रसाद प्रजापति जोरकट पलामू से, भेंट करता हैं संतोष कुमार। कृषक महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम होगा ग्रामीण सभा शाम 6:30 से। चर्चा होगी महिलाओं के लिए उन्नत कृषि यंत्र, आज के बाद में दीदी बाड़ी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य। भेंट वार्ता आप सुनेंगे मृदा अपरदन से बचाव एवं जल संरक्षण। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर विनोद कुमार पांडे कृषि विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र छिया के पलामू से, भेंट करता हैं संतोष कुमार। आज का मौसम, आज का बाजार भाव और आज की नसीहत में आप सुनेंगे प्राकृतिक खेती।

शाम 7 बजे प्रादेशिक समाचार 7:10 पर जिले में आजकल प्रसारित करेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। शाम 7:15 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग का आनंद आप लेंगे। शाम 7:45 पर स्वास्थ्य कार्यक्रम कल्याणी के अंतर्गत आज आप सुनेंगे भेंट वार्ता सफ़ेद दाग घबराए नहीं। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा रांची से, भेंट करता हैं श्री संजीव कुमार लाल। शाम 8 बजे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से हम प्रस्तुत करेंगे। 8:45 पर हिंदी में समाचार, 9 बजे अंग्रेजी में समाचार, 9:15 पर उर्दू खबरें आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

रात 9:30 पर हम पुनः शामिल होंगे विविध भारती की प्रसारण सेवा में आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे छाया गीत। रात 10 बजे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा को हम पेश करेंगे। रात 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हमारी ये सभा समाप्त होगी हमेशा की तरह रात 11:10 पर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। प्रस्तुत है महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम घर आंगन।

घर आंगन सुनने वाली तमाम श्रोता बहनों को प्रतिमा वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज विश्व फोटोग्राफी दिवस है और फोटोग्राफी के क्षेत्र में महिलाओं के कई अवसर हैं, ये आप भी जानती हैं। तो आज हम कुछ और बातें करें। आज फोटोग्राफी केवल शौक तक सीमित नहीं है बहनों, बल्कि यह महिलाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार का एक अच्छा क्षेत्र बन चुका है। मोबाइल कैमरा और डिजिटल तकनीक ने फोटोग्राफी को पहले से कहीं अधिक आसान और सुलभ बना दिया है। महिलाएं वेडिंग फोटोग्राफी, फैशन फोटोग्राफी, प्रोडक्ट फोटोग्राफी, फूड फोटोग्राफी, नेचर फोटोग्राफी और पोर्ट्रेट फोटोग्राफी जैसे क्षेत्रों में अपना करियर बना सकती हैं। घर से भी छोटे स्तर पर फोटो और वीडियो का काम शुरू किया जा सकता है। सोशल मीडिया और ऑनलाइन व्यवसाय के बढ़ते प्रभाव के कारण अच्छे फोटो और वीडियो की मांग लगातार बनी रहती है। महिलाएं फोटोग्राफी के साथ साथ फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग और डिजिटल कंटेंट निर्माण सीखकर अपनी आय के नए स्रोत बना सकती हैं। इस क्षेत्र में सफलता के लिए महंगे कैमरे होना भी ज़रूरी नहीं है। शुरुआत आप स्मार्टफोन कैमरे से भी कर सकती हैं बहनों। अभ्यास, रचनात्मकता और तकनीकी ज्ञान के साथ महिलाएं धीरे धीरे अपने काम को व्यवसाय का रूप दे सकती हैं।

महिलाएं अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार कई क्षेत्रों में आगे बढ़ सकती हैं, जैसे शादी एवं समारोह की फोटोग्राफी, बच्चों और परिवार की फोटोग्राफी, फैशन एवं मॉडलिंग फोटोग्राफी, खाने और उत्पादों की फोटोग्राफी, प्रकृति एवं वन्यजीव फोटोग्राफी, पर्यटन एवं यात्रा फोटोग्राफी, ऑनलाइन व्यवसायों के लिए प्रोडक्ट फोटो, सोशल मीडिया के लिए फोटो एवं वीडियो बनाना, फोटो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग, स्थानीय हस्तशिल्प और ग्रामीण उत्पादों की फोटोग्राफी। विशेष रूप से ग्रामीण महिलाएं स्वयं सहायता समूहों, छोटे घरेलू व्यवसायों और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए फोटोग्राफी का उपयोग कर सकती हैं। अपने उत्पादों की आकर्षक तस्वीरें लेकर वे उन्हें सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रचारित कर सकती हैं। फोटोग्राफी सीखने के लिए आज अनेक ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रशिक्षण उपलब्ध हैं। शुरुआत मोबाइल फ़ोन से की जा सकती है और अनुभव बढ़ने के साथ कैमरा और अन्य उपकरणों का उपयोग सीखा जा सकता है। बहनों, याद रखें कि हुनर को अवसर दीजिए, अपने नज़रियों को तस्वीरों में उतारिए और फोटोग्राफी को आत्मनिर्भरता की राह बनाइए। फोटोग्राफी में आगे बढ़ने के लिए प्रकाश, कैमरा, एंगल, फ्रेमिंग, रंगों और फोटो एडिटिंग की बुनियादी जानकारी ज़रूरी है। शुरुआत महंगे कैमरे से आवश्यक नहीं है, जैसा कि हमने बताया। सबसे महत्वपूर्ण बात कि महिलाएं अपने काम का पोर्टफोलियो तैयार करें, सोशल मीडिया पर अपना काम प्रदर्शित करें और धीरे धीरे ग्राहक बनाएं। इस प्रकार फोटोग्राफी उनकी रचनात्मकता, सम्मान और आर्थिक स्वतंत्रता का माध्यम बन सकती है। याद रखिए कि तस्वीरें सिर्फ पल नहीं संजोती बहनों, वे हुनर और पहचान भी बनाती हैं। अपनी प्रतिभा को पहचानिए और फोटोग्राफी के माध्यम से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाइए। और आइए सुनते हैं इसके बाद एक प्यारा सा गीत।

0: हिंदी साहित्य के महान संत गोस्वामी तुलसीदास, वार्ताकार है माया पंडित।
1: भारत अनादिकाल से साहित्य एवं संगीत की भूमि रहा है। यहाँ अनेक विश्व प्रसिद्ध कवि हुए हैं। उनमें से सर्वाधिक लोकप्रिय कवि का नाम गोस्वामी तुलसीदास है। कवियों के संबंध में यह कथन सुप्रसिद्ध है। सूर सूर तुलसी शशि उड़गन के सवदास, सूर सूर तुलसी शशि उड़गन के सवदास। अब के कवि खदयोत समा जह तह करते प्रकाश। अर्थात सूरदास यदि साहित्य आकाश के सूर्य हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास चंद्रमा के समान शीतल प्रकाश प्रदान करने वाले हैं। भारतीय साहित्य के विकास में लोकप्रिय कवि गोस्वामी तुलसीदास की महत्वपूर्ण भूमिका है। गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी साहित्य में भक्ति काल से कवि माने जाते हैं। प्रभु श्री राम की भक्ति के कारण उन्हें सगुण भक्ति धारा का प्रमुख कवि माना जाता है। वे एक महान भक्त, कवि, समाज सुधारक और सफल दार्शनिक थे। उन्होंने अपनी रचनाओं से राम भक्ति को जन जन तक पहुंचाया तथा हिंदी साहित्य को अमर तत्व प्रदान किया। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में सावन शुक्ल पक्ष सप्तमी को मूल नक्षत्र में हुआ था। जनश्रुति के अनुसार इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बंदा जिले के राजपुर नामक गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम फुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। बचपन में इन्हें राम बोला कहा जाता था। बचपन में ही माता पिता का देहांत होने के कारण ये अनाथ हो गए थे। उनके गुरु का नाम बाबा नरहरि दास था। युवा अवस्था में इनका विवाह रत्नावली से हुआ। इनकी पत्नी प्रेम भी लोक प्रसिद्ध है। एक बार अपनी पत्नी के वियोग में उफनती बरसाती नदी को पार कर ससुराल पहुँचे थे। तब उनकी पत्नी रत्नावली ने दुखित होकर कहा था, अस्थि चर्म में देह पर तामे ऐसी प्रीत, अस्थि चर्म में देह पर तामे ऐसी प्रीत, होती जो रघुनाथ से मिट जाती भव भीत। पत्नी रत्नावली के इस वाक्य ने गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन की दशा एवं दिशा दोनों बदल दी। उन्होंने गृहस्थ जीवन को पूर्णतः त्याग दिया एवं वैराग्य से राम भक्ति में लीन हो गए। इसी घटना को उनके राम भक्त होने का प्रमुख कारण माना जाता है। इसके बाद उन्होंने अवधि में श्री रामचरितमानस जैसे लोकप्रिय ग्रंथ की रचना की, जो आज भी मानस प्रेमियों के लिए कंठाहार बना हुआ है। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन वाराणसी, अयोध्या एवं चित्रकूट में बिताया। गंगा किनारे तुलसी घाट के नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा है। अब मैं उनकी रचनाओं पर संक्षिप्त प्रकाश डालती हूँ। गोस्वामी तुलसीदास की प्रमुख रचना रामचरित्र मानस है। यह उनकी विश्व प्रसिद्ध कृति है। अवधी भाषा में रचित इस महाकाल में प्रमुख 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड एवं उत्तर कांड। हनुमान चालीसा 40 चौपाइयों में रचित श्री हनुमान जी की स्तुति है, जिसे करोड़ों लोग प्रतिदिन पढ़ते हैं। इनके द्वारा विनय पत्रिका की भक्ति को प्रिय ग्रंथ माना जाता है। कवितावली में राम कथा को इन्होंने कवित छंद में लिखा है।

गीतावली रामलीला पर आधारित पद एवं गुत हैं। दोहावली में नीति एवं भक्ति में भरे दोहे हैं। कृष्ण गीतावली में श्री कृष्ण की भक्ति से संबंधित रचनाएं हैं। इनके अतिरिक्त पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नहछु मंगल, गीता भैरवे, रामायण एवं वैराग्य संदीपनी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं में रस एवं अलंकार को बरसाती नदी बहती प्रतीत होती है। इनकी रचनाओं में भक्ति, नीति, समाज सुधार एवं दर्शन का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इन्होंने श्री राम की सगुण भक्ति की है। इनकी भाषा शैली में अवधी एवं ब्रज का सुमित्रण है। इन्होंने छंदों में दोहा, चौपाई, सोरठा एवं कवित का प्रयोग किया है। भाव पक्ष में भक्ति मर्यादा, कर्तव्य, परिवार एवं समाज के आदर्श को प्रस्तुत किया गया है। वहीं दूसरी ओर पाखंड, अंधविश्वास एवं अन्याय पर भी प्रहार किया गया है। कला पक्ष में उपमा, रूपक एवं अनुप्रास को अद्भुत छटा है। सामाजिक एवं दार्शनिक दृष्टि से भी गोस्वामी तुलसीदास की रचना प्रेरक एवं पठनीय है। उनकी वाणी हमें आज भी निरंतर प्रेरणा दे रही है।

सी, अर्थात भक्तिमय में भावना ही प्रधान है। उन्होंने पाप एवं पुण्य के संबंध में लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्थात दूसरों की भलाई से पुण्य प्राप्त होता है तथा कष्ट देने से पाप बढ़ता है। उन्होंने मित्रों की परीक्षा के संबंध में लिखा है, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत काल परिखहुँ चारी। अर्थात धर्ज धर्म मित्र एवं नारी की परीक्षा संकट के समय होती है। कर्म एवं संस्कार के संबंध में

जो जस करहिं सो तस फल चाखा। अंत में मैं कहना चाहूँगी कि उनके दोहे चौपाइयाँ जीवन में सत्य धर्म कर्म दया विनम्रता सत्य संग प्रेम एवं सदाचार का संदेश देती है। माँ ऐसे सिद्ध कवि गोस्वामी तुलसीदास को बारंबार प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद।

अभी हमारी बहनें सुन रही थी वार्ता, विषय था हिंदी साहित्य के महान संत गोस्वामी तुलसीदास, वार्ताकार थे माया पंडित। और अब बात करते हैं मानवता का अर्थ, दया, करुणा और प्रेम। आज विश्व मानवता दिवस पर यह खास कार्यक्रम। बहनों, परिवार और समाज में महिलाओं की भूमिका केवल घर संभालने तक सीमित नहीं है, वे संस्कारों की पहली शिक्षक होती हैं। जी हाँ, आज विश्व मानवता दिवस के अवसर पर हम बात करेंगे मानवता की एक ऐसा मूल्य जो दया, करुणा, प्रेम और एक दूसरे के प्रति सम्मान का संदेश देता है। बच्चों को प्रेम, बड़ों का सम्मान, जरूरतमंदों की सहायता और सभी के प्रति संवेदनशील।

मिल रहने की सीख सबसे पहले घर से ही मिलती है। यही मानवता की सबसे मजबूत नींव है। आज के समय में मानवता का अर्थ है कि हम अपने आसपास रहने वाले लोगों की परेशानियों को समझें, किसी ज़रूरतमंद की यथासंभव मदद करें, बीमार या अकेले लोगों का हालचाल पूछें और अपने व्यवहार में प्रेम व अपनापन बनाए रखें। छोटी छोटी मदद भी किसी के जीवन में बड़ी खुशी ला सकती है। बहनों, महिलाएं स्वयं सहायता समूहों, सामाजिक संगठनों और सामुदायिक गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा, स्वच्छता, पोषण, पर्यावरण संरक्षण और ज़रूरतमंद परिवारों की सहायता जैसे कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। ऐसे प्रयास समाज को अधिक संवेदनशील और मजबूत बनाते हैं। विश्व मानवता दिवस हमें यह याद दिलाता है कि मानवता किसी बड़े अवसर की नहीं बल्कि रोज़मर्रा के छोटे छोटे अच्छे कार्यों की पहचान है। एक मधुर मुस्कान, किसी दुखी व्यक्ति को ढांढस बंधाना, भूखे को भोजन देना और किसी ज़रूरतमंद का हाथ थाम लेना, यही सच्ची मानवता है। आइए हम सभी संकल्प लें कि अपने घर, परिवार और समाज में दया, करुणा, प्रेम और सहयोग की भावना को मजबूत करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इन्हीं मूल्यों के साथ आगे बढ़ें। विश्व मानवता दिवस भी हम यही संदेश देता है कि इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसका धन या पद नहीं बल्कि उसका व्यवहार और उसके अच्छे कर्म है। महिलाएं एक दूसरे का सहयोग करती हैं जब तो परिवार मजबूत होता है, समाज आगे बढ़ता है और देश की प्रगति का रास्ता भी आसान होता है। स्वयं सहायता समूहों, महिला मंडलों और सामाजिक कार्यों से जुड़कर हम सेवा और सहयोग की भावना को और व्यापक बना सकते हैं। आइए आज हम सभी यह संकल्प लें कि हर दिन एक ऐसा कार्य अवश्य करेंगे बहनों जिससे किसी के चेहरे पर मुस्कान आए, क्योंकि मानवता का सबसे सुंदर रूप है दूसरों के जीवन में आशा और खुशी का दीप जलाना। इसी सकारात्मक संदेश के साथ दीजिए प्रतिमा वर्मा को कार्यक्रम घर आंगन से विदा। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

0: अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने रांची में पिछले 26 दिनों से जारी अपने आंदोलन को फिलहाल 2 महीने के लिए स्थगित करने का ऐलान किया है। छात्र संगठनों ने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को 2 महीने का समय दिया है। रांची में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के खिलाफ अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा है। आज बड़ी संख्या में नाराज प्रदर्शनकारी सुरक्षा घेरा और बैरिकेडिंग तोड़कर सीधे सचिवालय परिसर में घुस गए। अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने के सरकार के फैसले को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। झारखंड भाजपा के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में हुई इस बैठक में नेताओं ने झारखंड से जुड़े विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर शीर्ष नेतृत्व से मार्गदर्शन प्राप्त किया। पाकुड़ की विधायक निशात आलम ने आज 4,96,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले पलाश मार्ट भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि पलाश मार्ट महिलाओं के सशक्तिकरण और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। विधायक ने सखी मंडलों के बीच 62,60,000 रुपए का ग्रांट और 63,00,000 रुपए की ऋण राशि का चेक वितरित किया। गिरिडीह की बगोदर पुलिस ने राजनीतिक दल से जुड़े मिथिलेश यादव उर्फ छोटू यादव की हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस अधीक्षक डॉ. विमल कुमार ने बताया कि मामले में एक होटल के मालिक महेश रजक और उसके स्टाफ सीमा ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है। और पंजाब के लुधियाना में आगामी 1 से 3 सितंबर तक आयोजित होने वाली राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए लातेहार के जयदीप उरांव और आकाश उरांव का चयन हुआ है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। प्रस्तुत है ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम खेती बारी।

खेतीबाड़ी सुनने वाले तमाम श्रोताओं को प्रतिमा वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। किसान भाइयों, सबसे पहले बातें करते हैं एक खेतीबाड़ी कार्यक्रम में, खेतों को परती ना छोड़ें। किसान भाइयों, हमारी भूमि हमारे लिए अनमोल संपत्ति है। यदि खेतों को लंबे समय तक खाली छोड़ दिया जाए तो ना केवल भूमि की उत्पादकता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता बल्कि किसान की संभावित आमदनी भी प्रभावित होती है। और खरीफ और रबी की फसलों के बीच उपलब्ध समय में किसान दलहन, तिलहन, सब्जियों या कम अवधि वाली फसलों की खेती कर सकते हैं। इससे खेत का बेहतर उपयोग होता है और अतिरिक्त आय का अवसर भी मिलता है। मिट्टी की सेहत बनाए रखने के लिए फसल चक्र और हरी खाद को अपनाना भी लाभदायक है। ढैचा जैसी हरी खाद वाली फसलों को खेत में मिलाने से मिट्टी में जैविक पदार्थ बढ़ाने में मदद मिलती है। जहाँ पानी की कमी हो वहाँ स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कम पानी में तैयार होने वाली फसलों का चुनाव किया जा सकता है। कृषि विशेषज्ञ या कृषि विभाग से सलाह लेकर सही फसल का चयन करना अधिक लाभदायक होगा। कुछ खास बातों को जरूर ध्यान रखें, जैसे परती भूमि से होने वाले नुकसान, खेत की मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के उपाय, रबी और खरीफ के बीच कम अवधि वाली फसलों की खेती, दलहनी फसलों से मिट्टी में नाइट्रोजन की वृद्धि, फसल चक्र अपनाने के लाभ, कम पानी में होने वाली फसलों की खेती, परती खेत में हरी खाद और ढांचा की खेती, खेत की मेड़ों पर

किसान भाइयों, दलहन और तिलहन फसलों को फसल चक्र में शामिल करने से खेत में विविधता आती है। वहीं हरी खाद वाली फसलें मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने में सहायक हो सकती हैं। खेत को परती छोड़ने के बजाय फसल चक्र, मिश्रित खेती, अंतर्वर्ती खेती और कम अवधि वाली फसलों जैसे विकल्पों पर विचार करें। इससे उपलब्ध भूमि और समय का बेहतर उपयोग किया जा सकता है। याद रखिए, खेत की हर इंच जमीन किसान की मेहनत की पहचान, सही योजना से बढ़े उत्पादन, बढ़े किसान की आमदनी। किसान भाइयों, हमारा खेत केवल फसल उगाने का माध्यम नहीं है, बल्कि हमारे परिवार की खुशहाली का आधार है। इसलिए मौसम और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार खेत का अधिकतम उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। कई बार एक फसल की कटाई के बाद अगली फसल बोने में काफ़ी समय लग सकता है। इस बीच यदि खेत की स्थिति अनुकूल हो तो मूंग, उड़द, मसूर, सरसों, चना या कम अवधि वाली सब्जियों जैसे फसलों के विकल्पों पर विचार किया जा सकता है। इससे अतिरिक्त उत्पादन और आय का अवसर मिल सकता है। साथ ही किसान भाई फसल चक्र अपनाएं, एक ही फसल बार बार लेने की बजाय अलग अलग फसलों को क्रम से उगाने से मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में मदद मिलती है। यदि पानी की कमी हो तो खेत को जबरन किसी फसल के लिए इस्तेमाल करने के बजाय स्थानीय कृषि विशेषज्ञ की सलाह से कम पानी में होने वाली उपयुक्त फसल चुनें। प्रति खेत का मतलब ये नहीं होता कि खाली जमीन नहीं, बल्कि संभावित उत्पादन का एक अवसर भी है। सही योजना, सही समय और वैज्ञानिक कृषि पद्धति अपनाकर इस अवसर का लाभ उठाया जा सकता है।

0: यदि आपके खेत में सिंचाई की सुविधा सीमित है तो ऐसी फसलों का चुनाव करें जिसमें पानी की आवश्यकता कम हो, जहां पर्याप्त नमी उपलब्ध हो, वहां कम अवधि वाली दलहनी तिलहनी या सब्जी फसलों पर विचार किया जा सकता है। कुछ विशेष सलाह हमारे किसान भाइयों के लिए, खेत की मिट्टी की जांच जरूर कराएं, फसल का चयन स्थानीय जलवायु के अनुसार करें, फसल चक्र अपनाएं, खेत में जैविक खाद और हरी खाद का प्रयोग करें, बीज और उर्वरक की मात्रा कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार रखें, अनावश्यक खर्च से बचने के लिए पहले बाजार की मांग और संभावित कीमत की जानकारी ले लें। याद रखिए, खेती केवल मेहनत का नहीं सही योजना का भी काम है। समय पर लिया गया सही निर्णय खेत की उत्पादकता और किसान की आमदनी दोनों को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। किसान भाई, हम बातें कर रहे थे खेतों को परती ना छोड़ें, और अब आपको एक वार्ता सुनवाते हैं, एक केंचुआ पालक से भेंट, जो है सुरेश प्रसाद प्रजापति, जो जोरकट पलामू के रहने वाले हैं। विषय है केंचुआ पालन एवं औषधीय पौधों की खेती। बातचीत कर रहे हैं संतोष कुमार।
1: सभी किसान भाई बहन को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। ग्रामीण भाइयों, आज हम बातें करेंगे केंचुआ खाद उत्पादन की। किस प्रकार हम केंचुआ खाद उत्पादन करें, नई नई तकनीकियां उतारी जा रही हैं केंचुआ खाद उत्पादन के लिए, और अगर केंचुआ खाद हम उत्पादित करते हैं तो ये एक स्वरोजगार का माध्यम बनता है, हम बेहतर मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं इससे। और इससे संबंधित जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हैं पलामू जिला के जोरकट गाँव के एक कृषक सुरेश प्रजापति। स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार।
2: नमस्कार। केंचुआ खाद अपनाया हूँ, उससे संबंधित जानकारी दे रहा हूँ, ताकि आप लोग भी मेरे जैसा अच्छे ढंग से खाद का उत्पादन करेंगे।
1: कैसे जैविक खेती आप करते हैं, मैंने कैसे केंचुआ खाद का उत्पादन कैसे आप करते हैं, पहले ये बताएं।
2: केंचुआ खाद का उत्पादन हमने पक्का का टंकी बनवा लिया है, ऐसे तो प्लास्टिक का भी बनता है, एक तरफ ढाल होता है और उसमें नीचे आपको बिछाया जाता है पत्ता, जिसके पत्ता पर होता का है कि जब ऊपर में गोबर पता सब मिक्स डाला जाता है, केचुआ रहता है, तो अंडा देने के समय केचुआ जो है सो नीचे चला जाता है।
1: अच्छा।
2: और ऊपर में खाने पीने के लिए घूमने के लिए आता है, और ऊपर से आपका जूट का बोरा से ढक दिया जाता है। इस तरह से हम लोग लेयर पर लेयर बाय करके,
1: मैंने कितने कितने फीट का लेयर बनाते हैं
2: उसमें जो है सो आपका 1.5 फीट तक हम लोग ऊंचाइया तक भरते हैं, और उसमें लंबा 10 फीट 15 फीट का भी टंकी हो सकता है, 5 फीट का हो सकता है। अगर छोटा किसान है, पहले शुरू स्तर पर जब करना चाह रहे हैं, तो प्लास्टिक पर भी कर सकते हैं, जमीन को

0: एक तरफ से ऊंचा कर देंगे, एक तरफ से नीचा ढाल बना देंगे, ताकि उसे पानी जो निकलता है वो बर्मी वास कहलाता है। और उसमें देखना है कि इतना ही पानी देना है कि उसमें गर्मी पैदा न हो, एकदम नमी होना चाहिए ताकि केचुआ चल सके, और नहीं तो अगर कम पानी पड़ा तो आपके केचुआ भाप से मर सकता है। और उससे जो बूंद बूंद करके जो पानी निकलेगा वो बर्मी वास हो जाएगा। उसको हम लोग फसल पर भी, जैसे मीरा कुलान जो छिड़काव करते हैं ना, तो उस तरह से उसको हम लोग छिड़काव भी कर सकते हैं, पौधा के जड़ में भी दे सकते हैं। और इससे पौधा के जो गुणवत्ता है ना फसल में, वो हमको बहुत अच्छा मिलता है। जैसे अगर हम लोग धान लगाए हैं तो उसका भात जो है सो आपका स्वादिष्ट लगेगा, वो जल्दी सड़ेगा नहीं, खराब नहीं होगा।
1: अच्छा, एक लेयर जो बिछाते हैं, पहले पहले क्या बिछाते हैं, सबसे पहले क्या बिछाते हैं, फिर क्या बिछाते हैं, वो कितने फीट का होना चाहिए, ऐसे समझाइए।
0: देखिए 6 इंची मोटा जो है सो पुराना पत्ता डाल देते हैं, ये कोई नई पत्ता नहीं, पुराना। उसके बाद उस पर 6 इंची मोटा हम गोबर का तह डालते हैं, जो अधसड़ा है उसी को डालते हैं, कोई नया गोबर को नहीं डालते हैं, इसलिए कि उसमें गर्मी होता है। और उसी में और केचुआ को जो है सो छोड़ा जाता है, फिर इसी तरह से फिर उसके बाद पत्ता को डालेंगे।
1: अच्छा,
0: है ना, फिर पत्ता को डालेंगे, फिर 6 इंची आपका जो है सो गोबर अधसड़ा डालेंगे, और लास्ट इस तरह से 2-3 लेयर करने के बाद जब 1.5 फीट तक आ जाता है ना, तो हम लोग जूट के बोरा से ऊपर ढक देते हैं, ढक देते हैं, ऊपर से आपका छाया भी रहता है, ताकि उसमें ऊपर से ज़्यादा बारिश हो तो बर्बाद ना हो, पानी बाहर निकल जाता है। जैसे कि उसमें आप छाया प्लास्टिक का भी कर सकते हैं।
1: अच्छा,
0: और नहीं तो आपके पास अगर टीना का शेड हो चाहे करकट का हो, तो वही हिसाब से किया जाता है, जितना लागत जिसको हो उतना हिसाब से कर लेता है आदमी।
1: और ये कब से कर रहे हैं आप?
0: ये 2006 से कर रहे हैं।
1: अच्छा,
0: और आज तक भी मेरा चालू है सो चालू है।
1: इसलिए कितना उत्पादित कर लेते हैं?
0: देखिए पिछले साल तो जो है सो 70 क्विंटल सेल हुआ था।
1: अच्छा,
0: अभी मैंने खाद पड़ा हुआ है और अब जो है सो धीरे धीरे सेल हो रहा है।
1: अब कैसे किलो बेचते हैं इसको?
0: केचुआ खाद के रेट मैंने 10 रुपए किलो है।
1: अच्छा,
0: और अगर कभी मार्केट में टान होने लगा तो लोग बेसी भी पैसा देते हैं, लेकिन 10 रुपये रेट है।
1: अच्छा,
0: वैसा कभी देखते हैं कि किसान अगर जो जागरूक नहीं है तो उन्हें मैंने कम पैसा में भी हम देना शुरू करते हैं, कि ताकि लोग किसान इससे लाभ प्राप्त कर सके और अपना इस कार्यक्रम को आगे सीख भी सके, कि अपने यहाँ बना भी सके और अपना मुनाफा भी कमा सके।
1: अच्छा, वर्मी वास्प जो बात आती है उसको कैसे निकालते हैं आप?
0: वर्मी वास एक तरह जो ढलान रहता है ना, वहाँ पाइप नीचे लगाया हुआ रहता है। अगर प्लास्टिक का है तो नीचे पाइप लगाया हुआ है।
1: अच्छा,
0: और उसी पाइप से मैंने टप टप करके जो पानी निकलता है, अगर छोटा स्तर पर है तो
1: उसमें पानी देते होंगे तब ना निकलेगा।
0: हाँ, ऊपर से पानी जैसे कि हम लोग छींटते हैं, आपका जो पानी ये फसल को जो है सो हम लोग छोटा स्तर पर जैसे कि दवा जो छींटते हैं ना, तो उसी तरह से एक झरना होता है, और उसी से हम लोग धीरे धीरे पानी देते हैं ताकि सगर पानी मिल जाए, यही हिसाब है।
1: अच्छा,
0: और वही पानी जो है सो धीरे धीरे निकलना शुरू होता है, तो वही मेरा बर्मी वास हो गया। उसमें हम लोग देखते हैं कि कहीं फसल अगर ज़्यादा कमज़ोर है तो 2 भाग पानी, 1 हिस्सा बर्मी कंपोस्ट, और कहीं देखते हैं कि अच्छा फसल है तो उसमें 4 गुना पानी देते हैं। देखते हैं कि किस हिसाब से खेत में ताकत है वही हिसाब से देना शुरू करते हैं, एक बार पहले ट्राई कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं कि खेत में ज़्यादा ताकत है, ज़्यादा और हम दे देंगे तो पौधा जल भी सकता है, तो वही हिसाब से दिया जाता है।
1: अच्छा,
0: और नहीं तो ज़्यादा अगर दे दीजिएगा तो पौधा को तो जला भी देगा, तो वही हिसाब से ट्राई करने के बाद ही देते हैं। पहले कमें देते हैं मात्रा में, कि पौधा अगर नहीं चला तो 8 दिन के बाद फिर उसमें देना शुरू करते हैं, यही हिसाब है।

0: जैविक से ज़्यादा मुनाफा आपको शुद्ध प्राप्ति जो होता है ना आपका फसल, तो वो सबसे अच्छा है कि आपको शरीर आपका मजबूत रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा और आपका दिमाग सही संतुलन में रहेगा।
1: इसको किस किस फसलों में डालना उचित होता है?
0: इसमें जो है सो केचुआ खाद जितना दुनिया का वनस्पति है, जो भी साग सब्जी फसल है, पेड़ पौधा है, सब में डाल सकते हैं। इसलिए कि केचुआ जो है ना जमीन को भुरभुरा बनाए रखता है और जो भी पानी होता है उसको रिचार्ज करता है, पहला नंबर की जल बचा देता है। इस तरह से मेरा जल का बचाव पहला नंबर में होता है। और दूसरा नंबर कि पौधा का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है।
1: अच्छा,
0: किसी भी पौधा लगाए हुए हैं
1: उसका मात्रा कितना है, मतलब ज़्यादा देने से भी हानिकारक हो जाता है?
0: हाँ, हानिकारक हो जाता है। मात्रा है कि आप जैसे कि एक मीटर लंबा चौड़ा है तो उसमें आप एक किलो डेढ़ किलो दे के देखिए कि आपका फसल अगर उसमें अच्छा ढंग से चल गया तो ठीक है, और नहीं तो फिर मात्रा को बढ़ाइए। ये बात है,
1: मतलब सोच समझ कर इसका इस्तेमाल।
0: हाँ हाँ, सोच समझ कर।
1: और इसकी बिक्री भी अच्छी खासी हो जाती?
0: हाँ, बिक्री तो मैंने जो हमारा टाउन के किसान लोग इधर नज़दीक में हैं, जैसे कि खामडी एरिया के लोग ले जाया करते हैं, अभी जो है सो कोकोपीट ये भरेंगे, उसमें पौधा का उपार्जन करेंगे, उसमें लेने वाले हैं, और ऐसे टाउन में भी मेरा सेल होते रहता है। और जो किसान आए अपना देखे कि नया है तो उनको कुछ प्राथमिकता दे देते हैं कि ये 10 रुपये नहीं, कुछ कमों में ले जाइए, आप पहले सीख तो लीजिए कि इसे सूधी है कि नहीं।
1: अच्छा, और अगर हमारे ग्रामीण बंधु स्वरोजगार के रूप में इसे अपनाते हैं तो निश्चित रूप से ये एक लाभदायक व्यवसाय है, क्योंकि कम से कम तो आपने कैसे बताया, कैसे किलो बताया?
0: 10 रुपये किलो।
1: 10 रुपये किलो, कम से कम तो 10 रुपये किलो बिक्री आप करते हैं?
0: जी हाँ, मिलता नहीं है यहाँ पर खाद, बहुत कम मिलता है।
1: इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि आप लाते कहाँ से हैं केचुआ?
0: केचुआ तो हम रामकृष्ण मिशन रांची से लाए हुए हैं।
1: अच्छा,
0: और वही मेरा केचुआ चल रहा है, आइसिना फोर्टिडा है, जो गुलाबी कलर का होता है, 3 इंच तक लंबा होता है।
1: उसी से?
0: हाँ, वही मेरा चल रहा है।
1: आप थे पलामू जिला के जोरकट गांव के एक सफल कृषक जो केचुआ खाद उत्पादन वर्षों से कर रहे हैं आप, और आप बिक्री भी करते हैं केचुआ खाद। आपको बहुत अच्छी जानकारी है केचुआ खाद के बारे में। आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और केचुआ खाद उत्पादन से संबंधित जानकारियां साझा की, इसके लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: हमारे किसान भाई अभी एक वार्ता सुन रहे थे, विषय था केचुआ पालन एवं औषधीय पौधों की खेती। केचुआ पालक सुरेश कुमार, सुरेश प्रसाद प्रजापति, जो जोरकट पलामू के रहने वाले, उनसे बातचीत कर रहे

कम अवधि में तैयार हो जाते हैं। इनकी खेती के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं होती और स्थानीय बाजार में इनकी मांग बनी रहती है। लेकिन कम लागत में अच्छी पैदावार के लिए कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखें हमारे किसान भाई। जैसे सबसे पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीज का चयन करें। खेत की मिट्टी को भुरभुरा बनाकर उचित मात्रा में सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट डालें। उपलब्ध पानी के अनुसार फसल का चुनाव करें और खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था रखें। साग वाली फसलों में समय पर सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण और कीटों की निगरानी बहुत ज़रूरी है। रासायनिक दवाओं का प्रयोग आवश्यकता और कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार ही करें। कम जमीन वाले किसान भी घर के आसपास खेत की मेड़ या उपलब्ध छोटी जगह में मौसम के अनुसार साग उगाकर अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए साथ साथ स्थानीय बाज़ार में बेचकर अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। कम पूंजी में शुरू होने वाली सागों की खेती को अपनी कृषि योजना का हिस्सा बनाइए। कम लागत, कम समय और स्थानीय मांग, इन तीनों का सही तालमेल आपकी आमदनी बढ़ाने में मदद कर सकता है।

किसान भाइयों, शुरुआत छोटी ज़मीन से की जा सकती है। खेत तैयार करने के लिए उपलब्ध गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट का इस्तेमाल करें। प्रमाणित और अच्छी गुणवत्ता वाले बीज लें। बीज की मात्रा आवश्यकता से अधिक ना रखें ताकि लागत कम रहे। सागों की खेती में समय पर सिंचाई और निराई गुड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। खेत में पानी जमा ना होने दें। फसल को कीटों से बचाने के लिए नियमित रूप से पौधों की निगरानी करें और समस्या दिखाई देने पर कृषि विशेषज्ञ की सलाह लें। एक और महत्वपूर्ण बात है बाजार की जानकारी। बुआई से पहले ये पता कर लें कि आपके आसपास किस साग की मांग अधिक है और उसे बेचने के लिए स्थानीय बाजार, हाट या सीधे ग्राहकों तक पहुंच बनाई जा सकती है। साग जल्दी खराब होने वाली उपज है, इसलिए कटाई के बाद उसे साफ करके जल्द बाजार तक पहुँचाना चाहिए। इससे अच्छी कीमत मिलने की संभावना बढ़ती है। याद रखिए किसान भाइयों, बड़ी खेती के लिए हमेशा बड़ी पूंजी ज़रूरी नहीं होती। सही फसल का चुनाव, कम लागत वाली तकनीक और बाजार की समझ से छोटी शुरुआत भी आमदनी का अच्छा साधन बन सकती है। अगर आपके पास कम ज़मीन और सीमित पूंजी है तो भी आप मौसम के अनुसार विभिन्न प्रकार के सागों की खेती कर सकते हैं। पालक, मेथी, धनिया, चलाई और सरसों जैसे हमने कहा, इसकी साग खेती कम क्षेत्र में भी की जा सकती है। साग की खेती में लागत कम रखने के लिए आप किन बातों का ध्यान रखें, आइए सबसे पहले बात करते हैं। खेत की अच्छी तैयारी करें और मिट्टी में पर्याप्त जैविक खाद मिलाएं। बीज हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाले और विश्वसनीय स्रोत से ले लें। ज़रूरत से ज़्यादा बीज या उर्वरक का इस्तेमाल ना करें। सागों की फसल जल्दी तैयार हो जाती है, इसलिए बुआई का सही समय और बाज़ार की मांग समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसी फसल चुनें जिसकी आपके आसपास मांग हो। छोटे किसान चाहें तो क्रमिक बुआई भी कर सकते हैं। एक साथ पूरी ज़मीन में बुआई करने के बजाय कुछ अंतराल पर थोड़ी थोड़ी बुआई करने से अलग अलग समय पर साग तैयार किया जा सकता है। इससे लगातार बाज़ार में ताज़ा साग उपलब्ध कराने का अवसर मिलता है। यदि घर के पास थोड़ी जगह उपलब्ध है तो वहाँ भी साग उगाया जा सकता है। इससे परिवार के लिए ताज़ी हरी सब्जी मिलती है और अतिरिक्त उपज को बेचकर कुछ आमदनी भी प्राप्त की जा सकती है। ध्यान रखें, फसल में पानी की सही मात्रा, खरपतवार नियंत्रण और कीटों की नियमित निगरानी ज़रूरी है। किसी भी कीटनाशक का प्रयोग कृषि विशेषज्ञ की सलाह से ही करें।

छोटी ज़मीन में भी क्यारी बनाकर साग उगाया सकते हैं। घर के आसपास उपलब्ध स्थान का भी उपयोग किया जा सकता है। विशेष बात यह है कि सागों की कई फसलें अपेक्षाकृत कम समय में तैयार हो जाती हैं, इसलिए किसान को जल्दी उपज प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है। हम बात कर रहे हैं उन किसान भाइयों के लिए जिनके पास ज़मीन कम है और वो साग की खेती करना चाहते हैं। सागों की खेती में बाज़ार की मांग को ध्यान में रखना भी कुछ बहुत ज़रूरी है। जिस साग की स्थानीय बाज़ार में मांग हो, जैसा कि हमने बताया, उसी साग को आप उगाएं। कम लागत, सही समय और अच्छी बिक्री से मिलती है आपको सफलता। इसके बाद हम बात करेंगे अगस्त माह में कुछ खास कृषि कार्य की। किसान भाइयों, अगस्त का महीना खरीफ फसलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। इस समय फसलें खेत में बढ़वार की अवस्था में होती हैं, इसलिए नियमित निगरानी और समय पर कृषि कार्य करना बहुत ज़रूरी है। धान की फसल में खेत में पानी की स्थिति का नज़र रखें, अत्यधिक पानी जमा होने से बचाएँ और आवश्यकता के अनुसार जल निकासी की व्यवस्था भी रखें। खरपतवार दिखाई देने पर समय पर निराई गुड़ाई करें।

मक्का, अरहर, सोयाबीन, उड़द और अन्य खरीफ फसलों में कीट एवं रोगों की नियमित निगरानी करें। केवल समस्या दिखाई देने पर ही कृषि विशेषज्ञ की सलाह से उचित उपचार करें। अगस्त में लगातार बारिश के कारण खेतों में जल भराव की समस्या हो सकती है, इसलिए नालियों की सफाई और जल निकासी पर विशेष ध्यान दें। खेत की मेड़ों को मजबूत रखें ताकि मिट्टी का कटाव कम हो। जहाँ फसल की बुआई अभी बाकी है, वहाँ स्थानीय मौसम, मिट्टी और उपलब्ध नमी को ध्यान में रखते हुए कृषि विशेषज्ञ की सलाह से उपयुक्त फसल का चुनाव करें। किसान भाइयों, याद रखें, अगस्त में की गई थोड़ी ही सावधानी आपकी फसल को बड़े नुकसान से बचा सकती है।

अगस्त में मानसून अपने चरम पर होता है। खेतों में पर्याप्त नमी रहती है, लेकिन लगातार बारिश से जलभराव, खरपतवार, कीट और रोग का खतरा ही बढ़ जाता है। इसलिए इस महीने खेत की नियमित निगरानी बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले खेत में जल निकास की उचित व्यवस्था करें। खेत में अधिक समय तक पानी जमा रहने से पौधों की जड़ों को नुकसान हो सकता है। खेत की मेड़ और नालियों की समय समय पर सफाई करते रहें। धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण पर विशेष ध्यान दें। मक्का, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली और अन्य खरीफ फसलों में पौधों की बढ़वार और कीट रोगों की नियमित निगरानी करें। अगस्त का महीना फसल में आवश्यक पोषक तत्वों के प्रबंधन के लिए भी महत्वपूर्ण है। मिट्टी की जांच और कृषि विशेषज्ञ की सलाह के आधार पर ही उर्वरकों का प्रयोग करें। बारिश के तुरंत पहले या बहुत अधिक बारिश के दौरान उर्वरक डालने से बचें, ताकि पोषक तत्व बह न जाए। किसान भाइयों, इस महीने खेत में अनावश्यक पानी और खरपतवार दोनों को नियंत्रित रखें। साथ ही मौसम के पूर्वानुमान पर नज़र रखें और तेज़ बारिश या आंधी की संभावना होने पर आवश्यक सावधानी बरतें। जहां संभव हो, फसल अवशेषों और जैविक सामग्री का उचित उपयोग करें और खेत की मिट्टी को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जैविक खाद का प्रयोग बढ़ाएं। अगस्त में खेत की रखी निगरानी, समय पर करें हर कृषि कार्य, स्वस्थ फसल, अच्छी पैदावार, यही किसान की सच्ची कमाई। लेकिन कुछ और बातें भी आपको हम बता दें। अगस्त में खरीफ फसलें तेजी से बढ़ रही होती हैं, ऐसे समय में खेत को केवल बारिश के भरोसे छोड़ देना उचित नहीं है। किसान भाई नियमित रूप से फसल का निरीक्षण करें, पौधों की बढ़वार, पत्तियों के रंग और कीट रोग के लक्षणों पर नजर रखें। बारिश अधिक होने पर खेत में जल भराव ना होने दें। इसमें खरपतवार नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। धान की फसल में पौधों की स्थिति देखें और आवश्यकता के अनुसार कृषि विशेषज्ञ की सलाह लें। दलहन और तिलहन फसलों में फूल आने से पहले और फूल आने के समय विशेष निगरानी करें। अगर फसल में कीड़ा दिखाई दे तो किस दवा का छिड़काव करें या क्या करें, इस पर आप बात करते हैं। पहले कीट की सही पहचान करें किसान भाइयों, और देखें कि उनकी संख्या आर्थिक जति स्तर पर तक पहुँची है या नहीं। इसके बाद ही कृषि विशेषज्ञ की सलाह से उचित उपाय करें। अनावश्यक कीटनाशक का प्रयोग खर्च बढ़ाने के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। किसान भाइयों, अगस्त में मौसम की जानकारी लेते रहना बहुत उपयोगी है। तेज बारिश की संभावना हो तो खेत में जल निकासी की तैयारी रखें और उर्वरक या कीटनाशक का प्रयोग मौसम देखकर ही करें।

किसान भाइयों, अगस्त महीने में बारिश और नमी के कारण फसलों की बढ़वार तेजी से होती है। यही समय है कि जब किसान जैविक तरीकों को अपनाकर मिट्टी की सेहत और फसल की गुणवत्ता पर ध्यान दे सकते हैं। जैविक खेती में गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और हरी खाद का उपयोग किया जा सकता है। खेत में उपलब्ध जैविक अवशेषों को जलाने के बजाय उनका उचित प्रबंधन करके खाद तैयार करना भी उपयोगी है। इस महीने लगातार बारिश के कारण खेत में जल भराव की समस्या हो सकती है, इसलिए नालियों की सफाई और जल निकासी पर विशेष ध्यान दें। अत्यधिक नमी फसलों में कई रोगों का कारण बन सकती है। कीटों की निगरानी के लिए खेत में नियमित निरीक्षण करें। आवश्यकता होने पर जैविक खेती में स्वीकृत उपायों जैसे नीम आधारित उत्पाद, फेरोमोन ट्रैप या पीले चिपचिपे ट्रैप का उपयोग स्थानीय कृषि विशेषज्ञ की सलाह से किया सकता है। अब बात है कि जैविक खेती में फसल की पैदावार कम हो सकती है क्या? तो नहीं, जैविक खेत में केवल उत्पादन ही नहीं बल्कि मिट्टी की दीर्घकालीन सेहत, लागत और उत्पाद की गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जाता है। जैविक खेती की ओर बढ़ते समय किसान धीरे धीरे अपने खेत की परिस्थितियों के अनुसार पद्धतियाँ अपना सकते हैं। अगस्त में किसान भाई हरी खाद वाली फसलों और जैविक खाद का उचित उपयोग करें और फसल अवशेषों को खेत के लिए उपयोगी संसाधन के रूप में देखें। सबसे पहले किसान भाई खेत में सड़ी गोबर की खाद, कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करें। खेत में उपलब्ध फसल अवशेषों को जलाने के लिए जाए उन्हें खाद बनाने में उपयोग करें।

इससे खेत में जैविक पदार्थ बढ़ाने में मदद मिलती है। बारिश के मौसम में खरपतवार तेजी से बढ़ते हैं, इसलिए खेत की नियमित निगरानी करें और आवश्यकता के अनुसार निराई गुड़ाई करें। बारिश के मौसम में कीटों से फसल को कैसे बचाएं? तो सबसे पहले फसल को नियमित जांच करें। कीटों की पहचान होने पर नीम आधारित जैविक उपाय, फेरोमोन ट्रैप और पीले चिपचिपे ट्रैप आदि विकल्पों का प्रयोग आप कर सकते हैं। हमारा समय भी कार्यक्रम को समाप्त करने का हो चला है, तो इसी जानकारी के साथ इस कार्यक्रम से प्रतिमा वर्मा को दीजिए अनुमति। फिर मिलेंगे। नमस्कार।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम खेतीबाड़ी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कृषक महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम ग्रामीण सभा।

ग्रामीण सभा सुनने वाली तमाम कृषक महिलाओं को प्रतिमा वर्मा का नमस्कार। बहनों आइए सबसे पहले बात करें इस ग्रामीण सभा में महिलाओं के लिए उन्नत कृषि यंत्र की। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं खेती के अनेक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बुआई, निराई, गुड़ाई, कटाई, सब्जियों की खेती और फसल की देखभाल जैसे कई कामों में उनका योगदान रहता है। आधुनिक कृषि यंत्र इन कार्यों को कम समय और कम शारीरिक मेहनत में पूरा करने में मदद कर सकते हैं। आज बाजार में महिलाओं के उपयोग को ध्यान में रखकर हल्के और सुविधाजनक कृषि उपकरण उपलब्ध हैं, जैसे हैंड वीडर, सीड ड्रिल, कोनोवीडर, दराती, स्प्रेयर और छोटे कृषि उपकरण। इनका सही तरीके से उपयोग करने से श्रम और समय की बचत हो सकती है। महिला बहनों, तो इन यंत्रों को चलाना या सीखना क्या मुश्किल है? नहीं, बिल्कुल नहीं बहनों। उचित प्रशिक्षण के साथ इनका संचालन आसानी से सीखा जा सकता है। कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग और किसान प्रशिक्षण केंद्र द्वारा समय समय पर कृषि यंत्रों के उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाता है। आधुनिक कृषि यंत्रों का चयन करते समय महिला किसान की शारीरिक सुविधा, खेत का आकार, फसल का प्रकार और यंत्र की लागत को ध्यान में रखना चाहिए। ज़रूरत के अनुसार किसान समूह या स्वयं सहायता समूह मिलकर भी कुछ यंत्र खरीद सकते हैं और उनका सामूहिक उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कृषि यंत्रों पर उपलब्ध सरकारी योजनाओं और अनुदान की जानकारी अपने ज़िले के कृषि विभाग या संबंधित आधिकारिक पोर्टल से आप ज़रूर लें, क्योंकि पात्रता और सहायता राज्य और योजना के अनुसार अलग हो जाती है।

कृषक बहनों, खेती के कई काम अधिक मेहनत और समय मांगते हैं। निराई गुड़ाई, बीज की बुआई, फसल की कटाई, मड़ाई और सब्जियों की खेती जैसे कार्यों में उपयुक्त कृषि यंत्रों का उपयोग करके मेहनत कम की जा सकती है। कुछ बात हम कर लें किसी कृषि यंत्र की, तो खरपतवार निकालने के लिए हैंड वीडर और कोनोवीडर, बीज बोने के लिए उपयुक्त सीड ड्रिल या प्लांटर, और फसल सुरक्षा के लिए सुविधाजनक स्प्रेयर उपयोगी हो सकते हैं। छोटे खेतों के लिए हल्के और आसानी संचालित होने वाले उपकरण विशेष रूप से सुविधाजनक रहते हैं। अधिक यंत्र खरीदना संभव ना हो तो हमारी महिला बहनें क्या करें? बहनों, हर यंत्र खरीदना ज़रूरी नहीं।

0: है। आप अपने स्वयं सहायता समूह या किसान समूह के माध्यम से आवश्यक उपकरण साझा रूप से खरीद सकती हैं। इससे लागत का बोझ भी कम हो जाता है और कई महिलाएं एक ही यंत्र का लाभ उठा सकती हैं। कृषि यंत्र खरीदने से पहले जरूर देख लें कि वह आपके खेत, फसल और काम के अनुकूल है भी या नहीं। यंत्र का वजन, पकड़, संचालन की सरलता, रखरखाव और सुरक्षा भी ध्यान में रखें। साथ ही यंत्र चलाने से पहले उसका सही प्रशिक्षण लें और सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। कृषि विज्ञान विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र से उपलब्ध प्रशिक्षण और सरकारी सहायता की जानकारी प्राप्त करना भी उपयोगी रहेगा। याद रखिए बहनों, आधुनिक कृषि यंत्र केवल मेहनत कम करने का साधन नहीं है बल्कि समय बचाकर खेती को अधिक कुशल और लाभकारी बनाने का माध्यम भी है। ग्रामीण महिलाएं खेत से लेकर फसल की कटाई और उपज की सफाई तक अनेक कार्य करती हैं। यदि इन कार्यों में सही कृषि यंत्रों का इस्तेमाल किया जाए तो समय और शारीरिक मेहनत दोनों की बचत हो सकती है। यंत्र खरीदने से पहले आप किन बातों का खास ध्यान रखें? सबसे पहले ये देखें कि यंत्र आपके खेत और फसल के लिए उपयुक्त है भी या नहीं। उसके वजन, संचालन में आसानी, ईंधन या बिजली की ज़रूरत, रखरखाव और सुरक्षा की जानकारी ज़रूर लें। केवल सस्ता यंत्र खरीदने के बजाय ऐसा यंत्र चुनें जो लंबे समय तक उपयोगी रहे। यदि व्यक्तिगत रूप से यंत्र खरीदना महंगा लग रहा है तो स्वयं सहायता समूह, किसान समूह या कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से कृषि मशीनरी किराए पर लेने का विकल्प भी आप कर सकती हैं। महिला किसान बहनों, तकनीक से डरने की जरूरत नहीं है। प्रशिक्षण लेकर आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग सीखें और अपनी मेहनत को अधिक उत्पादक बनाएं। हम बात कर रहे थे महिलाओं के लिए उन्नत कृषि यंत्र की और अब आपको एक वार्ता सुनवाते हैं। मृदा अपरदन से बचाव एवं जल संरक्षण भेंट वार्ताकार हैं कृषि विज्ञान केंद्र चियांकी पलामू के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद कुमार पांडे जी। बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी संतोष कुमार।
1: अपने खेतों से घर वापस आए, गांव घर के कार्य में लगे, चौपाल में उपस्थित सभी किसान भाई बहन, बालकों, बुजुर्गों को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान वाणी में। ग्रामीण भाइयों, कार्यक्रम में आज बातें मृदा संरक्षण की। जी हाँ, हम किस प्रकार अपनी मृदा का नमूना एकत्र करें, किस प्रकार तैयारी करके उसे जांच के लिए भेजें, बहुत सारी बातें हैं मृदा पर। और इन सारी बातों पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हैं पलामू जिला के कृषि विज्ञान केंद्र चियांकी के वरीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विनोद कुमार पांडे। स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में, नमस्कार
2: जी। जोहार सभी झारखंड वासियों को मेरा जो है। और आज हम लोग मृदा परीक्षण और उसके महत्व के विषय में जो है आज चर्चा करने के लिए हम लोग जुटे हुए हैं। किसान भाइयों, मृदा का परीक्षण जो है कराना जो है बहुत आवश्यक है। इससे किसान जो है पहले जो है काफ़ी अनभिज्ञ थे, लेकिन जो है 2014-15 से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान रहा और इस पे उन्होंने जो है इसके लिए अलग से बजट का प्रावधान किया मृदा स्वास्थ्य के लिए जो है। तब से जो है 2014-15 से जो है मृदा के स्वास्थ्य के बारे में जो है किसान को हम लोग ज़्यादा जागरूक कर पा रहे हैं, किसानों को ज़्यादा इसको बता रहे हैं और जो है इसके महत्व के बारे में जो है हमेशा हम लोग अपने प्रशिक्षण में जो है चर्चा करते हैं। और हमारे यहाँ मिट्टी जाँच भी होता है और बिना मिट्टी जांच किए यदि हम फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं तो उससे जो है हमारे उपज पे उसका जो है बहुत
1: गहरा
2: असर पड़ता है और हमारे मृदा के स्वास्थ्य पर भी उसका असर पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कि यदि आपका मृदा का यदि नाइट्रोजन की आवश्यकता उसमें जो है जितनी चाहिए उतना आप नहीं दे रहे हैं तो हमारे उपज पर असर पड़ेगा। यदि आप ज़्यादा दे रहे हैं तो हमारे मिट्टी के स्वास्थ्य पर भी उसका असर पड़ेगा। ज़्यादा फर्टिलाइज़र देना भी मिट्टी के लिए ठीक नहीं है। इसलिए जो है जो जांच के उपरांत जो रिजल्ट आता है वो जो है किसानों को देना जो है आवश्यक होता है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि सबसे पहले जो है कि मृदा का नमूना जो है कैसे लिया जाए,
1: जी हाँ,
2: क्योंकि जब तक मिट्टी का नमूना सही ढंग से नहीं

0: किया जाएगा तब तक जो है उसकी जांच जो है सही तरीके से नहीं होगी। जैसे
1: जी
0: कि आप जो है जाते हैं डॉक्टर के यहाँ और अपने ब्लड का सैंपल देते हैं, तो ब्लड का सैंपल हर चीज़ के लिए अलग अलग तरह से निकालने का तरीका होता है
1: जी
0: और उसके बाद उसकी जांच होती है। तो सैंपल सही तरीके से जब लिया जाएगा तो जांच भी सही तरीके से होगी। यदि सैंपल जो है उसका नहीं सही तरीके से लिया जाएगा तो
1: तो
0: जांच
1: परिणाम
0: पे
1: गलत आएगा
0: परिणाम गलत आ सकता है।
1: जी।
0: इसलिए किसान भाइयों को इस पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि नमूना लेते कैसे हैं।
1: जी हाँ
0: सबसे पहले हम चर्चा करें कि नमूना कब लिया जाए। ऐसे तो नमूना आप किसी भी मौसम में ले सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है उचित मौसम जो होता है वो आपका मार्च से लेकर के और जून तक
1: यानी
0: रहता
1: रबी
0: है।
1: कटाई के बाद
0: हाँ, ताकि जो है खेत जो है खाली रहता है
1: जी
0: और जो है किसान को किसी तरह की दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि फसल लगी रहेगी तो थोड़ा सा निकालने में दिक्कत आएगी। हालांकि उसका भी तरीका है निकालने का, फसल लगी है उसमें भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका समय होता है आपका मार्च से लेकर के और
1: जून तक
0: जून तक जो है आप
1: जी
0: मिट्टी का नमूना जो है ले सकते हैं। इसके लिए जो है सबसे पहले जो है हम लोग निर्धारित करते हैं कि कम से कम जो है आप जो है 1 एकड़ से जो है नमूना लें। एक
1: अच्छा
0: एकड़ खेत है
1: जी।
0: तो वहाँ से नमूना आप ज़्यादा से लेने से जो है मिट्टी के नमूना सही ढंग से नहीं ले पाएंगे हम, क्योंकि जो है खेत की जो मिट्टी होती है वो बहुत बहुत जल्दी मतलब कि उसका जो है उसका जो पोषक तत्व है वो बदल जाता है।
1: अच्छा
0: जैसे कि आपका इस जमीन का यदि आपका पोषक तत्व तो कुछ है और थोड़ा सा भी यदि उसमें दूरी हुआ तो उसका पोषक तत्व तो जो
1: अलग
0: है
1: हो जाएगा
0: अलग हो जाएगा।
1: जी
0: इसलिए जो है कम से कम जो है 1 एकड़ आप रखिए एरिया जो है, और उस 1 एकड़ एरिया में जहाँ से भी सैंपल लेना है कम से कम जो है 4 या 5 जगह से सैंपल हम लोग लेते हैं।
1: जी
0: जैसे कि जहाँ से भी सैंपल लेना है उसको निर्धारित करते हैं हम लोग कि कि जहाँ से मिट्टी हम ले रहे हैं वो पूरे खेत का प्रतिनिधित्व
1: करता
0: करे।
1: हो जी हाँ
0: हाँ, और सैंपल वहाँ से नहीं लेना है जहाँ पर हम खाद वगैरह रखते हैं, जैसे कि
1: अच्छा अच्छा
0: गोबर की खाद वगैरह जो कहीं खेत में एक जगह जमा कर देते हैं,
1: जी
0: तो वहाँ से सैंपल नहीं लेना है।
1: चाहे हाल में रासायनिक खाद वगैरह का प्रयोग किया हो।
0: हाँ, तो बहुत ज़्यादा जहाँ पर मतलब खाद रखा हुआ है क्योंकि वहाँ से जो सैंपल लेंगे तो वहाँ पर सब कुछ अच्छा आ जाएगा या ज़्यादा आ जाएगा
1: अच्छा
0: कि यहाँ पर पोषक तत्व तो अच्छे हैं,
1: अच्छा
0: लेकिन जो है इसलिए जो है वहाँ से सैंपल नहीं लेना है। आपको 4 से 5 जगह निर्धारित करना है खेत में। एक जैसे कि मान लीजिए कि आप वहाँ से सैंपल ले सकते हैं, जैसे कि पानी जहाँ पे लगता हो
1: जी
0: वहाँ से ले सकते हैं, खेत में जहाँ
1: अच्छा
0: पानी नहीं लगता है वहाँ से ले सकते हैं,
1: जी
0: बीच से ले सकते हैं।
1: अच्छा
0: तो इसलिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि मतलब कि चारों कोने से थोड़ा सा हट करके 4 जगह से और एक बीच से यदि आप सैंपल लिए हैं तो वो जो है ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब लेने का तरीका कैसे होता है, जहाँ से सैंपल लेना है वहाँ से मिट्टी को साफ कर देते हैं
1: अच्छा
0: और उसके लिए जो है एक कुदाल और एक खुरपी की ज़रूरत पड़ती है, और उसमें जो है कुदाल से जो है भी आकार का शेप बनाते हैं।
1: अच्छा
0: जैसे कि एक किनारे जो है कट किए फिर दूसरे किनारे जो है हम कट किए भी के आकार का,
1: अच्छा
0: अंग्रेजी
1: अच्छा
0: का जो भी होता है
1: उस आकार का
0: उस आकार का कट करके और 15 सेंटीमीटर गहरा करेंगे
1: अच्छा।
0: और उस मिट्टी को नहीं लेंगे, उस मिट्टी को निकाल देंगे हटा
1: अच्छा
0: देंगे,
1: जी
0: और उसके बाद जो कोर जो
1: मिट
0: बना हुआ है 15 सेंटीमीटर दोनों तरफ काटने के बाद जो है वहाँ से 1 सेंटीमीटर ऊपर से लेकर के नीचे तक जो है 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर लेते हुए मिट्टी ऊपर
1: अच्छा
0: से नीचे की तरफ जो है खुरच
1: अच्छा
0: देंगे
1: अच्छा
0: दोनों तरफ से, और उस मिट्टी को हम लेंगे और इसी तरह से हम चारों 4 या 5 जगह जो भी निर्धारित आप
1: एकत्रित
0: किए हुए
1: करेंगे
0: हैं उसे एकत्रित करेंगे। एकत्रित करने के बाद जो है उसको जो है सूखी हुई मिट्टी रहेगी, चूंकि गर्मी का दिन है इसलिए सूखी रहेगी, तो उसको थोड़ा सा हम पीस लेंगे और पीस करके जो है और जो उसको जो है 4 भाग में बांट देंगे।
1: अच्छा।
0: घर पर ले ला करके उसको 4 भाग में बांट लेंगे, बांटने के बाद जो है 2 भाग को उसमें से हटा देंगे
1: अच्छा
0: और फिर उसको मिला देंगे
1: वाह
0: और फिर जो है उसको 4 भाग में बांटेंगे और फिर 2 भाग को निकाल देंगे।
1: वाह
0: तो इस तरह से जो है हम लोग जो है जैसे कि मान लेते हैं कि यदि आप 1 kg मिट्टी लिए हुए हैं तो 200 से 250 ग्राम मिट्टी आपको जो है सैंपल के रूप में तैयार
1: फिर
0: होगी।
1: ला अंत में तैयार
0: हाँ, अंत में
1: करेंगे।
0: तैयार होगी। सरकार के द्वारा जो है

0: अब जो सैंपल लिया जा रहा है सरकार के
1: जी
0: कृषि विभाग से सैंपल लिया जाता है,
1: जी
0: तो उसमें अब जीपीएस लोकेशन से लिया जा रहा है,
1: अच्छा,
0: उसमें जिसमें जो है अक्षांश और देशांतर जो है
1: देखते हुए
0: हाँ रहता है, और वहाँ से जो है कि हमारा जो मिट्टी का सैंपल ले रहे हैं उस कहाँ उस जगह कौन सी है वो
1: अच्छा
0: अक्षांश और देशांतर से पता चल जाता है,
1: देखने पर।
0: मोबाइल से ही पता हो जाता है, या जीपीएस इसकी मशीन भी आती है उससे भी कर सकते हैं। तो उसमें किसान का नाम, उसका पता पूरी तरह से, मोबाइल नंबर, और मिट्टी जो है सैंपल कहाँ से लिया है, मैंने अब ऊपरी ज़मीन से लिया गया है,
1: कि
0: मध्यम
1: नीचे ले
0: ज़मीन
1: गए
0: से
1: थे
0: लिया गया है कि
1: जी
0: नीचे की
1: जी
0: ज़मीन से लिया गया है, उसका उसमें जो है
1: ब्यौरा देना।
0: हाँ ब्यौरा देना होगा, और जो है किस तारीख को लिया गया है।
1: अच्छा
0: फिर जो है आप उसमें और अच्छे से यदि जांच कराना चाहते हैं तो उसमें आप लिख सकते हैं कि ये खेत जो है हमारा सिंचित है क्या सिंचित है।
1: अच्छा
0: फिर जो है उर्वरक आप किस तरह का खेत में डालते हैं,
1: जी,
0: जितनी जानकारी आप देंगे उतना ही जांच करने वाले को लिए आसान
1: सुविधा
0: रहेगा।
1: होगी।
0: जैसे कि डॉक्टर पूछता है ना कि भाई आपको बुखार आता है तो ठंडा दे करके बुखार आता है कि ऐसे बुखार आता है, तो उससे उसको आइडिया लगती है कि मैंने ये बुखार किस वजह से आ रहा है, जिस
1: जी
0: हिसाब से जो टेस्ट हुआ है ब्लड का और जो जो मरीज बता रहा है दोनों में मिलान करता है कि दोनों का एक तरह से है कि नहीं है,
1: जी हाँ
0: दोबारा फिर टेस्ट होता है। उसी तरह से जितनी जानकारी आप देंगे उतना ही अच्छा है, और कितनी गहराई से आप मिट्टी ले से, तो जनरली जो है 15 सेंटीमीटर तक की गहराई से मिट्टी लिया
1: मिट्टी
0: जाता
1: लेने की
0: है,
1: आवश्यकता
0: क्योंकि
1: है जी।
0: हमारा जो हल जो चलता है जो भी कल्टीवेटर है जिस भी हल से खेती करते हैं वो 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा या 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं जाता
1: नहीं
0: है,
1: जाता
0: अब
1: जी, हाँ
0: फसल भी हमारी जो है वो
1: उतनी
0: पंद्रह
1: गहराई
0: से
1: पे
0: बीस
1: जी
0: सेंटीमीटर तक की गहराई में रहती है। बागवानी के फसलों को छोड़ दिया जाए तो जितनी भी हमारी फसलें हैं वो जो है 15 से 20 सेंटीमीटर गहरी होती
1: जी।
0: है।
1: अच्छा, सब्जी वाली जो फसलें होती है उसकी जड़ कहाँ तक जाती है?
0: हाँ उसकी भी आप उसकी तो और कम जाती है,
1: अच्छा
0: 10-15 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं जाता
1: लगभग,
0: है।
1: अच्छा
0: हाँ जो जैसे कि अब आपका अरहर है तो इस सब की जड़ें जो है थोड़ा गहरी जाती है, 25 से 30 सेंटीमीटर तक चली जाती है, लेकिन और सब फसल जितनी है वो करीब 15 से 20 सेंटीमीटर
1: सेंटीमीटर
0: के अंदर जो है।
1: बराबर।
0: तो ये सब सारी जानकारी जो है यदि आप देते हैं तो उसको जो है प्रयोगशाला में कृषि विज्ञान केंद्र में या कृषि विभाग में भी इसकी जांच होती है आत्मा के द्वारा जो है,
1: वहाँ दे सकते हैं।
0: और आपका 15 दिन में जो है इसका रिपोर्ट जो है आ जाता है।
1: अच्छा, मिट्टी परीक्षण कार्यशाला भी कहीं पर?
0: मिट्टी प्रयोगशाला है हमारे यहाँ, हमारे
1: अच्छा,
0: कृषि विज्ञान केंद्र में है, वो आत्मा में है।
1: मतलब जो भी है आपका आत्मा
0: हाँ
1: या फिर कृषि विज्ञान केंद्र या
0: हाँ
1: जिला कृषि कार्यालय, इन्हीं लोग के पास है?
0: इन्हीं लोगों के पास है, या यदि जैसे कि पलामू में हमारे तो इसी के पास है, लेकिन रांची जाते हैं तो भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र आपका ये वहाँ है,
1: कहाँ
0: ये
1: के? पलांडू
0: नहीं कांकेर में नहीं है, ये है आपका पलांडू में है,
1: जी,
0: वहाँ जांच करा सकते हैं।
1: अच्छा
0: जहाँ पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जहाँ पे भी होंगे वहाँ भी जांच
1: जांच
0: होता
1: करा
0: है,
1: सकते हैं जी।
0: हमारे बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी होता
1: जी,
0: है,
1: तो जांच कराने के लिए हमारे किसान भाई स्वतंत्र हैं, वो कहीं
0: स्वतंत्र
1: भी?
0: है, कहीं भी जांच करा सकते हैं।
1: अच्छा
0: इस
1: अच्छा
0: जिले के मिट्टी दूसरे जिले में भी दे सकते हैं, यदि इस जिले में व्यवस्था नहीं है दूसरे जिले में आप दे सकते हैं।
1: जी
0: तो इस तरह से करके जो है आप जो है आप उसका जब रिजल्ट आ जाएगा तो उसमें जो 12 तरह के तत्वों की हम लोग जो है रिपोर्ट देते हैं, जिसमें जो है नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटास हो गया, फिर जो है पीएच हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीज हो गया, फिर जो है सल्फर हो गया, बोरान हो गया, इसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव होता है ये हो गया, इस तरह से करके हम लोग 12 तत्वों की जो है जांच करते हैं, और उसमें जो है उस हिसाब से जो है फिर फर्टिलाइजर का रिकमेंडेशन होता है। फर्टिलाइजर
1: जी
0: का रिकमेंडेशन जो है आजकल जो है ऑनलाइन ही हो गया है, जैसे जैसे ही हम उसमें रिजल्ट डालते हैं कि इसमें नाइट्रोजन इस मिट्टी में इतना है, फास्फोरस इतना है, पोटास इतना है, तो उस हिसाब से जो है रिकमेंडेशन आ जाता है कि नाइट्रोजन चूंकि इतना है तो इसमें यूरिया का इतना देना है,
1: जी
0: फास्फोरस इतना है तो
1: तो इस
0: इसमें
1: इतना
0: डीएपी
1: मात्रा
0: डीएपी इतनी देनी
1: इतनी
0: है,
1: जी।
0: तो वो ऑटोमेटिक जो है ऐसा सॉफ्टवेयर बना हुआ है कि उसमें ले लेता है, और जो है सॉयल हेल्थ कार्ड जो है वो इश्यू हो जाता है, निकल जाता है,
1: अच्छा
0: और उसको फिर हम लोग किसान के यहाँ जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं,
1: अच्छा
0: उस हिसाब से किसान जो है फर्टिलाइजर जो है डालने का प्रयास करता है
1: जी। अच्छा, भूमि की जो परीक्षण हम करवाते हैं कब कब करवाने की जरूरत पड़ती है? जैसे एक बार हम इस वर्ष
0: तो करवाते हैं, तीन साल तक, तीन साल के बाद ही आपको अच्छा। फिर जरूरत पड़ेगी, उसके बीच में जरूरत नहीं पड़ेगी।
1: और मृदा परीक्षण से छूटी हुई और कोई बात है?
0: मृदा परीक्षण से अब किसान जो है इसके इसमें बहुत अब धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं जी। अब किसान इसमें अपनी भागीदारी दे रहे हैं। पहले इसमें ये संस्थान तक ही सीमित था, जैसे कि जो भी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जहाँ है, या कृषि केवीके है, कृषि विज्ञान केंद्र है, या कृषि विश्वविद्यालय है, वहीं तक सीमित रहता था। वैज्ञानिक लोग जो है अपने जो है जो रिसर्च होते हैं उसमें इसका प्रयोग करते हैं, किसानों तक पहुंच कम थी।
1: लेकिन
0: जो है 2015 से जो है इसमें किसानों के तक पहुंच जो है हम लोग ज़्यादा किए हैं, और आज के समय में हमें लगता है कि मैंने काफ़ी किसानों का, हमको लगता है कि 40% से ज़्यादा किसानों की मिट्टी का परीक्षण जो है
1: हो चुका,
0: मैंने जिले में जो है हो चुका है।
1: जी हाँ, ग्रामीण भाइयों, हम बातें कर रहे थे मृदा परीक्षण की, और संक्षिप्त में हम बातें चाहेंगे इसके महत्व के बारे में।
0: इसका महत्व इसलिए है कि ये है कि आप जो है यदि आप जांच करा ले रहे हैं
1: जी,
0: तो जांच कराने के बाद जो है जो भी रिकमेंडेशन आ रहा है उससे जो है एक तो मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और दूसरा इसका उपयोग होगा कि इसमें जो है आपका उपज जो है अच्छी मिलेगी। उपज जो है यदि मिट्टी का में यदि नाइट्रोजन की आवश्यकता यदि मान लेते हैं कि 200 केजी यूरिया उसमें डालना है और हम 150 ही डाल रहे हैं, तो हमारी उपज के ऊपर उसका असर आएगा। यदि मान लीजिए कि 200 केजी की जरूरत है यूरिया की, हम 300 केजी डाल रहे हैं तो ज़्यादा डाल रहे हैं,
1: लागत भी है,
0: तो उससे हमारी लागत भी बढ़ जा रही है, तो इससे लागत भी आपकी कम आएगी और जो है आपका मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है
1: बढ़ेगी
0: आपका। यदि लंबे समय तक किसान जो है अपनी मिट्टी से जो है उपज लेना चाहते हैं
1: तो
0: मृदा परीक्षण जो है बिल्कुल ही आवश्यक है, और बिना इसके जो है यदि आप फर्टिलाइजर डाल रहे हैं तो आपका जो है पैसा भी खर्च हो रहा है और मिट्टी का स्वास्थ्य भी जो है वो खराब होता जा रहा है, उत्पादन भी कम होगा, और आने वाले जो हमारी जनरेशन है, हमारी जो पीढ़ियां हैं, उसके लिए जो है हमारा स्वस्थ मिट्टी जो है वो नहीं रह पाएगा।
1: आप थे पलामू जिला के कृषि विज्ञान केंद्र चियाकी के वरीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विनोद कुमार पांडे। आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और हमारे ग्रामीण भाइयों को मृदा परीक्षण, उसके महत्व के बारे में जानकारियाँ साझा की। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार।
0: धन्यवाद, नमस्कार।

अभी हमारे कृषक महिलाएं बहनें सुन रही थी भेंट वार्ताकार डॉक्टर विनोद कुमार पांडे कृषि विज्ञान केंद्र चिया की पलामू के कृषि विशेषज्ञ से बातचीत कर रहे थे संतोष कुमार। बात वार्ता का विषय था मृदा अपरदन से बचाव एवं जल संरक्षण। और अब बात करते हैं आज की बात में दीदी बाड़ी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य। दीदी बाड़ी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों विशेषकर महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को अपने घर या आसपास की छोटी सी जमीन पर पोषण वाटिका बाड़ी विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं परिवार को ताजी और पौष्टिक हरी सब्जियां उपलब्ध कराना, महिलाओं को पोषण एवं खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूक करना, छोटी भूमि का उपयोग करके घरेलू जरूरत की सब्जियां उगाना, परिवार के खाद्य खर्च को कम करने में मदद करना, जैविक एवं प्राकृतिक तरीकों से सब्जियों की खेती को बढ़ावा देना, ग्रामीण महिलाओं को खेती से जोड़कर आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना, अतिरिक्त उत्पादन को बेचकर अतिरिक्त आय का अवसर पैदा करना, कुपोषण को कम करने और परिवार के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार करना। क्या बहनों, क्या आपके घर के आसपास थोड़ी सी ज़मीन उपलब्ध है? अगर हाँ तो छोटी जगह को आप पोषण और अतिरिक्त आय के साधन के बदल सकती हैं। इसी सोच को आगे बढ़ाने में दीदी बाड़ी जैसी पहल महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दीदी बाड़ी का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों विशेषकर महिलाओं को अपने आसपास की ज़मीन पर सब्जियां और अन्य उपयोगी पौधे उगाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे परिवार को मौसम के अनुसार ताजी और पौष्टिक सब्जियां उपलब्ध हो सकती हैं। इसमें क्या क्या लाभ मिल सकते हैं बहनों, तो आपको बता दें कि सबसे बड़ा लाभ है पोषण में सुधार। घर में उगी पालक, मेथी, सहजन, लौकी, भिंडी, टमाटर जैसी सब्जियां परिवार के भोजन में शामिल की जा सकती हैं। इससे बाजार से सब्जियां खरीदने पर होने वाले खर्च भी कम हो सकते हैं। दीदी बाड़ी महिलाओं

वो छोटी जगह में खेत की तकनीक सीखने, परिवार की खाद्य ज़रूरतों को पूरा करने और अतिरिक्त उत्पादन होने पर उसे बेचकर आमदनी बढ़ाने का अवसर भी दे सकती है। इसमें स्थानीय और मौसम के अनुकूल फसलों का चयन, जैविक खाद का उपयोग, पानी की बचत और नियमित देखभाल पर ध्यान देना ज़रूरी है। तो बहनों, आइए छोटी सी जगह को खाली न छोड़े, उसे हरियाली, पोषण और आत्मनिर्भरता का आधार बनाएं। हर घर में बाड़ी, हर थाली में पोषण, दीदी बाड़ी से बढ़े महिलाओं का सशक्तिकरण, यही हमारा संकल्प होना चाहिए। और अब आपको बाजार मौसम की जानकारी दे दें। आज पलामू में आज का तापमान रहा

अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बारिश की भी संभावना है। और अब बातें आज के नसीहत की। आज की नसीहत में हम बातें करेंगे प्राकृतिक खेती की। प्राकृतिक खेती ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें खेत की मिट्टी, फसल, पानी और पर्यावरण के बीच प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया जाता है। इसमें स्थानीय स्तर पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने का प्रयास किया जाता है। प्राकृतिक खेती में किसान रासायनिक इनपुट पर निर्भरता कम करने के लिए गोबर, गौमूत्र, जैविक अवशेष, मल्चिंग और अन्य प्राकृतिक कृषि पद्धतियों का उपयोग कर सकते हैं। इसका उद्देश्य मिट्टी की जैविक गतिविधि और दीर्घकालीन उर्वरता को बेहतर बनाए रखना है। अब बात यह है कि प्राकृतिक खेती अपनाने से हमें लाभ क्या हो सकता है। तो प्राकृतिक खेती से किसान स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके बाहरी कृषि इनपुट पर होने वाले खर्च को कम करने का प्रयास कर सकते हैं। खेत में जैविक पदार्थ बढ़ाने, पानी की बचत करने और मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने में विभिन्न प्राकृतिक उपाय सहायक हो सकते हैं। इसके साथ ही किसान भाई किसी भी नई पद्धति को अपनाने से पहले अपने क्षेत्र की मिट्टी, जलवायु और फसल के अनुसार कृषि विशेषज्ञ या कृषि विज्ञान केंद्र की सलाह भी ले सकते हैं। याद रखिए कृषक बहनों कि प्राकृतिक खेती केवल एक तकनीक नहीं बल्कि मिट्टी और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर खेती करने की सोच भी है। तो इसी जानकारी के साथ कार्यक्रम ग्रामीण सभा से हमें दीजिए विदा। नमस्कार।

0: लक्स सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: जन जन तक पहुँचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
2: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आँखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
3: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
2: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत तारावत, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूं। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ।
5: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में परीक्षा रद्द होने पर जेएसएससी सीजीएल अभ्यर्थियों का सचिवालय में भारी हंगामा, तो दूसरी ओर रिफॉर्म मंच ने 26 दिनों से जारी आंदोलन 2 महीने के लिए किया स्थगित। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिला झारखंड भाजपा का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल। राज्य के राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर प्राप्त किया मार्गदर्शन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने पाकुड़ के मतदान केंद्रों का किया औचक निरीक्षण। मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यों की समीक्षा की। राज्य में लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर, पतरातू डैम का भी जलस्तर बढ़ा। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में मौसम साफ होने की जताई संभावना। और बोकारो में दूसरी एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ। राज्यपाल ने वर्ष 2014 के बाद देश में बढ़ी खेल संस्कृति को सराहा। और अब समाचार विस्तार से। रांची में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के खिलाफ अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा है। आज बड़ी संख्या में नाराज प्रदर्शनकारी सुरक्षा घेरा और बैरिकेडिंग तोड़कर सीधे सचिवालय परिसर में घुस गए। इस दौरान पुलिस के साथ तीखी बहस और धक्का मुक्की हुई, जिससे मौके पर तनाव व्याप्त हो गया। अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने के सरकार के फैसले को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं।
6: उनके पास भीड़ इकट्ठा हुई और उन्होंने मामला को टिल्ड कर दिया है सीजीएल रद्द। उनको मैं भी संदेश देना चाहता हूँ, आप न्यायालय में हारे और भीड़ तंत्र के द्वारा दबाव बनाकर उसमें जो भी लोग थे परीक्षार्थी, लेकिन उसमें कुछ गिने चुने लोग घुस गए और उनके आंदोलन को भ्रमित कर सरकार पर दबाव बनाकर उन्होंने हमारे नियुक्ति को रद्द कराया है। इसको हम लोग लेकर वापस रहेंगे।
5: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने रांची में पिछले 26 दिनों से जारी अपने आंदोलन को फिलहाल 2 महीनों के लिए स्थगित करने का ऐलान किया है। छात्र संगठनों ने परीक्षाओं में सुधार और रिफॉर्म से जुड़ी अपनी मांगों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को 2 महीने का समय दिया है। प्रेस वार्ता में छात्रों ने स्पष्ट किया कि यदि 2 महीने के भीतर उनकी अन्य सभी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो वे पहले से भी बड़ा आंदोलन दोबारा

0: शुरू करेंगे।
1: जब पीएससी जेएसएससी अभ्यर्थी न्याय मंच के अध्यक्ष होने के नाते मैं तमाम छात्र छात्राओं को भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय अपने आंदोलन को सफल करने में लगाए, और मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इतना कम समय में इतना बड़ा निर्णय ले लिए जिससे पूरा देश देख रहा है और हमको लगता है आज पूरे भारत में इतना बड़ा फैसला कोई नहीं लिया होगा।
0: झारखंड भाजपा के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में हुई इस बैठक में नेताओं ने झारखंड से जुड़े विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर शीर्ष नेतृत्व से मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस उच्च स्तरीय मुलाकात के दौरान राज्य के तीन पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, रघुवर दास और चंपाई सोरेन भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इनके अलावा प्रदेश महामंत्री संगठन कर्मवीर सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और रविंद्र राय सहित भाजपा के कई अन्य वरिष्ठ नेता भी बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी बोकारो स्थित चिन्मय विद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुईं। इस ऐतिहासिक और खास अवसर पर उन्होंने गहरी प्रसन्नता व्यक्त की। केंद्रीय मंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय के योगदान को सराहते हुए कहा कि संस्थान ने युवा मस्तिष्कों को सही दिशा देने और उन्हें संवारने के 50 प्रेरणादायक साल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं।
2: आज चिन्मय विद्यालय बोकारो की स्वर्ण जयंती 50 वर्ष पहले बोकारो चिन्मय विद्यालय के नाम से छोटे से कमरे का पौधारोपण हुआ। किसी संस्था का प्रभाव इस बात से तय होता है उसने राष्ट्र को कितने विजनरी और जिम्मेदार नागरिक दिए, और इस कसौटी पर चिन्मय विद्यालय देश का गौरव बढ़ा रहा है।
0: रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 को लेकर फैल रहे भ्रम को खारिज किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कानून से झारखंड का खनन राजस्व समाप्त नहीं होगा। इसका उद्देश्य निवेश और उत्पादन बढ़ाकर राज्यों के राजस्व आधार को मजबूत, स्थिर और प्रतिस्पर्धी बनाना है, जिससे देश की खनिज क्षमता बढ़ेगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने पाकुड़ जिले में लिट्टीपाड़ा, पाकुड़ और महेशपुर विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बीएलओ को निर्देश दिया कि सभी पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल हों। श्री कुमार ने मतदाताओं से संवाद कर उनकी समस्याओं को जाना और 24 अगस्त से होने वाली जन सुनवाई की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
3: अभी मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्यक्रम सभी जगह पर चल रहा है, उसका लेकर वो नो मैपिंग का हियरिंग सुनवाई होगा अभी 24 अगस्त से। उसका लेकर हम लोग कितना नो मैपिंग केसेस है वो डिस्क्रिपेंसी है, उनके पास कागज अवेलेबल नहीं है, उसके बाद उनका क्या प्रिपरेशन है उसका लेकर एक बार एक सैंपल सर्वे में आया, अभी उसी के नाम हो गई।
0: गिरिडीह जिले की बगोदर थाना पुलिस ने राजनीतिक दल से जुड़े मिथिलेश यादव उर्फ छोटू यादव की हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस अधीक्षक डॉ. विमल कुमार ने आज प्रेस वार्ता में बताया कि इस मामले में घाघरा स्थित एक होटल के मालिक महेश रजक और उसकी स्टाफ सीमा ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है। वारदात में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया गया है। मौसम। राज्य में पिछले कुछ दिनों से लगातार भारी बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियां उफान पर हैं, जिससे तटीय इलाकों में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। इस मॉनसूनी वर्षा के कारण रामगढ़ स्थित प्रसिद्ध पतरातु डैम का जलस्तर भी काफी तेजी से बढ़ गया है, जिसे देखते हुए स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इस बीच मौसम विभाग ने राहत की खबर दी है कि अगले 12 घंटों में झारखंड के ऊपर से मॉनसूनी बादल धीरे धीरे कमजोर होने लगेंगे, जिससे कल से राज्य के

0: कई इलाकों में मौसम साफ होने की संभावना है। बोकारो के मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में दूसरी एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता शुरू हुई जो 29 अगस्त तक चलेगी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने तीर चलाकर इसका उद्घाटन किया। राज्यपाल ने वर्ष 2014 के बाद देश में बढ़ी खेल संस्कृति की सराहना की।
1: 2014 में जब मोदी जी ने देश की सत्ता संभाली है, उन्होंने खेल के प्रति अपनी विशेष रुचि दिखाई और अब खेलों में व्यापक परिवर्तन भी हो रहा है और खिलाड़ियों में आत्मविश्वास की भी बढ़ोतरी हो रही है। शरीर ने दुनिया में पहचान बनाई है और तीरंदाजी अपने आप में महत्वपूर्ण खेल होता जा रहा है। झारखंड की पहचान तीरंदाजी में हो रही है अच्छे ढंग से और यहाँ की खासतौर से लड़कियों ने अच्छी पहचान बनाई है।
0: पंजाब के लुधियाना में आगामी 1 से 3 सितंबर तक आयोजित होने वाली राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए लातेहार के जयदीप उराव और आकाश उराव का चयन हुआ है। जयदीप व्यक्तिगत स्पर्धाओं और आकाश मिश्रित रिले दौड़ में भाग लेंगे। जिला खेल पदाधिकारी अविनाश कुमार त्रिपाठी और खेल संघों ने इसे जिले के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। राज्य में परीक्षा रद्द होने पर जेएसएससी सीजीएल अभ्यर्थियों का सचिवालय में भारी हंगामा, तो दूसरी ओर रिफॉर्म मंच ने 26 दिनों से जारी आंदोलन 2 महीने के लिए किया स्थगित। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिला झारखंड भाजपा का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल, राज्य के राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर प्राप्त किया मार्गदर्शन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने पाकुड़ के मतदान केंद्रों का किया औचक निरीक्षण, मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यों की समीक्षा की। राज्य में लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर, पतरातू डैम का भी जलस्तर बढ़ा। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में मौसम साफ होने की जताई संभावना। और बोकारो में दूसरी एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ, राज्यपाल ने वर्ष 2014 के बाद देश में बढ़ी खेल संस्कृति को सराहा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे लातेहार जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे लातेहार संवाददाता।
1: खान खनिज संशोधन विधेयक के विरोध में लातेहार जिले में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है। जिला कमेटी की बैठक में पार्टी नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ शहर से लेकर गांव तक आंदोलन खड़ा करने की रणनीति तैयार की है। मौके पर उपस्थित राज्यसभा सांसद बैजनाथ राम ने कहा कि
2: भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की जो सरकार है उसकी मंशा साफ नहीं है और उसकी सोच ये है कि गैर भाजपा शासित राज्यों को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया जाए ताकि वो सरकार डिफेम हो जाए, उसकी जो लोकप्रियता बढ़ रही है वो कम हो जाए और एक तरह से कहें तो राज्य की जनता को जमीन हमारी, पर्यावरण का मार हम लोग झेल रहे हैं, धूल हमारे लोग खाएं, पानी हमारा खर्चा हो, जमीन हमारी बर्बाद हो और उसका लाभ भारत सरकार को मिले ये कहते उचित नहीं है। गांव से लेकर शहर तक, शहर से लेकर सदन तक इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे।
1: आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष लाल मोतीनाथ साहदेव ने कहा कि
3: केंद्र सरकार के द्वारा खान एवं खनिज संशोधन विधेयक जो लाया गया 2026, उसके जरिए राज्य सरकार को अपंगू बना दिया गया है। जो रॉयल्टी शेष के रूप में, अंशदान के रूप में राज्यों को मिलता था, उसको आप पूर्ण रूपेण केंद्र सरकार अपने अधीन कर लिया है और यह काला कानून जो थोपने का काम किया है, झारखंड के लोग और झारखंड की सरकार, झारखंड की जनता इस काले कानून को कतई स्वीकार नहीं करेगी और यहां से एक छटाक भी खनिज संपदा हम लोग दूसरे प्रदेशों में नहीं जाने देंगे।
1: भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले लातेहार जिले के मजदूर आंदोलन की राह पर हैं। समाहरणालय परिसर में आयोजित धरना प्रदर्शन में मजदूरों ने सरकार के मजदूर विरोधी नीति पर चर्चा की। विभिन्न मांगों के समर्थन में आयोजित धरना को संबोधित करते हुए संघ के जिला अध्यक्ष प्रदीप

0: कुमार ने कहा कि
1: न्यूनतम मजदूरी कम से कम 30,000 होना चाहिए। सभी कर्मचारियों के लिए समान काम के लिए समान वेतन लागू किया जाए। जीवन यापन की बढ़ती लागत के अनुसार न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी किया जाए।
0: लातेहार जिला मुख्यालय स्थित खेल स्टेडियम में 80वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान लातेहार जिले के उपायुक्त संदीप कुमार एवं पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने उपलब्धियों और सरकार की योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने कहा कि
2: तांबा तिलका मांझी की धरती झारखंड भी आजादी की लड़ाई में सबसे आगे रही। आज मैं उन वीर शहीदों को और उन पुलिस व अर्धसैनिक बलों के जवानों को नमन करता हूं, जिन्होंने सीमा पर और आंतरिक सुरक्षा में अपने सर्वोच्च बलिदान दिया। आजादी का मतलब केवल तिरंगा फहराना नहीं है, आजादी का असली मतलब है कानून का राज्य, सबों को बराबर का न्याय एवं हर नागरिक का सुरक्षित जीवन हो। और इस संकल्प को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी लातेहार पुलिस पूरे जिला के लिए कर रही है।
0: भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के साई रेड्डी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष के साई रेड्डी ने केंद्र की पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण की नीति किसानों के लिए नए अवसर लेकर आई है। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार।
3: अभी आप सुन रहे थे लातेहार जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल का प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। पेश खिदमत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मौसम के मिजाज को समझते हुए आइए सुनते हैं कुछ रोमांटिक सॉन्ग्स।

हम भी इंसान हैं, फिल्म का नगमा अभी आपने सुना। आवाज़ें थी अलीशा चिन्नई और अमित कुमार की, शब्द रचना अनजान की थी और इसकी तर्ज बनाई थी बप्पी लाहिरी ने। अगला गीत आई सुनते हैं मजबूर फिल्म से। आवाज़ें हैं मोहम्मद अजीज़ और अनुराधा पौडवाल की, आनंद बख्शी के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

शेषनाग फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें थी अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडिकर की। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ रोमांटिक सॉन्ग्स, ड्यूएट्स। अगला गीत आइए सुनते हैं रखवाला फिल्म से। आवाज़ें हैं मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की। समीर ने इस गीत को लिखा है और संगीत से सवारा है आनंद मिलन ने।

0: कानून अपना अपना फिल्म से भी आपने ये नगमा सुना। आवाजें थी आशा भोसले और अमित कुमार की, शब्द रचना इंदिवर की थी और तर्ज बप्पी लहरी की। इसी नगमे के साथ ही अब आज का एक रंग कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103 MHz पर प्रस्तुत है स्वास्थ्य कार्यक्रम कल्याणी के अंतर्गत भेंट वार्ता सफ़ेद दाग घबराए नहीं। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा रांची, भेंट करता हैं श्री संजीव कुमार लाल।
1: मित्रों, जब शरीर व्याधि मुक्त होता है तो हम बड़े

0: प्रसन्न होते हैं, लेकिन इसी शरीर पे कुछ दाग धब्बे निकल आते हैं तो फिर हम चिंता का शिकार हो जाते हैं, मन कुंठित होने लगता है। तो शरीर के जो धब्बे हैं, हमारा इशारा सफ़ेद दाग की ओर है। यदि हो जाता है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, कोई मन में भ्रांतियाँ नहीं पाले। तो इसी विषय पर आज हम बात करेंगे कि सफ़ेद दाग क्यों हो जाता है, लोगों में जो गलत अवधारणा है इसे मन से निकालने की ज़रूरत है और चिंता मुक्त रहना है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज आमंत्रित हैं रिम्स रांची के हेड ऑफ डिपार्टमेंट स्किन और वरिष्ठ चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्र। सर स्वागत है।
1: जी धन्यवाद।
0: इस बीमारी के प्रति लोगों में गलत धारणा है, यदि इस बीमारी से वो ग्रसित हो जाते हैं तो वो हीन भावना का शिकार हो जाते हैं, ऐसा होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है।
1: हम जानते हैं कि त्वचा हमारे शरीर का सबसे बाहरी आवरण है, अंदर में कोई पीड़ा है, लीवर खराब है, किडनी खराब है, सामने दिखाई तो नहीं पड़ता, लेकिन त्वचा पर अगर कुछ धब्बे आ जाएँ, चाहे कालिमा आ जाए या सफ़ेद धब्बे आ जाएँ, किसी तरह के विकृति, तो साफ साफ वो दिखने लगते हैं धब्बे, और इस जिसके चलते वो व्यक्ति घबरा जाता है कि लोग हमको देखकर क्या सोच रहे होंगे, चिंता का विषय यही हो जाता है। तो अब जैसे सफ़ेद दाग की एक बीमारी होती है, उसमें क्या है कि त्वचा पर बिल्कुल ही सफ़ेद धब्बे आ जाते हैं, पूरा सफ़ेद, कोई उसमें संशय नहीं कि ये उजला है, सफ़ेद है, बिल्कुल सफ़ेद धब्बे आ जाते हैं। हो सकता है वो चेहरे पर भी आ जाए, यानी दिखाई पड़ने वाले स्थलों पर आ जाए जो कि सामने से दिख रहा हो, तो इसमें व्यक्ति घबरा जाता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, हम कैसे इस गोष्ठी में जाएं, कैसे लोगों के बीच में जाएं, जहां 10 लोग बैठे हैं बात कर रहे हों हम कैसे जाएंगे, चिंता का सबब यही हो जाता है, जिसको हम लोग सफ़ेद दाग कहते हैं हिंदी में और मेडिकल भाषा में विटिलाइगो बोलते हैं। आप माइकल जैक्सन का नाम सुने होंगे कि बहुत बड़ा पॉप स्टार थे, डांसर थे, सिंगर थे, तो उनको सफ़ेद दाग था, सोच लेना है। और सफ़ेद दाग के रहते हुए वो किस ऊंचाई तक जीवन में पहुंचे अपने कारनामों से, अपने कला कौशल के बल पर, बिना प्रभावित हुए, बिना मानसिक कुंठा लिए हुए वे आगे बढ़ते रहे, तो इससे ये संदेश गया कि सफ़ेद दाग कोई ऐसी बीमारी नहीं जिससे घबराने की ज़रूरत है, बल्कि अपना मनोबल और हौसला कायम रखें और वो हर काम आप कर सकते हैं जो दूसरे लोग कर सकते हैं। इसीलिए 25 जून चूंकि माइकल जैक्सन के निधन का दिन है, उसी दिन उनका निधन हुआ था, तो उनकी स्मृति में एक रख दिया गया है पूरे विश्व में कि हम लोग हर वर्ष 25 जून को सफ़ेद दाग के बारे में जागरण करेंगे, लोगों को बताएंगे कि इससे घबराना नहीं है, कैसे होती है बीमारी, कैसे चिकित्सा होती है, और मानसिक कुंठा में नहीं जाना है। इसीलिए 25 जून को विश्व सफ़ेद दिवस मनाया जाता है।
0: ऐसे लोग जिनको ये बीमारी हो गई है उन्हें कुंठा से ग्रसित नहीं होना है, समाज में गलत भ्रांतियाँ पैदा हो जाती हैं, लोग कुंठा का शिकार हो जाता है जैसे आपने बताया, तो ये बीमारियाँ का इलाज किस प्रकार किया जाए, यदि किसी व्यक्ति को हो जाता है तो क्या सावधानियाँ रखें, और दूसरी बात कि ये बीमारियाँ जब आपको हो जाती है तो घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ना कोई आपको परहेज करना है, ना आपकी जान जानी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये तो इसको सच पूछिए तो बीमारी में हम लोग नहीं गिने तो ज़्यादा अच्छा। आप तो बताते हैं मरीजों को कि इसको बीमारी समझिए ही नहीं, कुछ नहीं, बस एक सफ़ेद हो गया है, रंग सफ़ेद हो गया ना, वहाँ जो जिस रंग का निर्माण होता है, सामान्य रूप से त्वचा में जो रंग मौजूद रहता है जिसे मेलानिन कहते हैं, उसका बनना थोड़ा कम हो जाता है, उसमें उसकी जो कोशिकाएँ हैं जो रंग बनाती हैं थोड़ी क्षति कोशिकाओं को पहुँचती है अंदरूनी कारणों से। कोई फैलने वाली भी बीमारी ये नहीं है कि किसी को हो गया उसके संसर्ग में कोई आ रहा है तो एक से दूसरे में फैल रही है बीमारी, संक्रामक बीमारी भी नहीं है, छूत से फैलने वाली बीमारी नहीं है। तो रंग बनना केवल वहाँ कम हो जाता है या कुछ कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होती हैं जिसके चलते ये होता है। तो आनन फानन में कहीं इधर उधर इलाज नहीं कराना चाहिए, कोई हर्बल दवा या देहाती दवा या कुछ और भी नुकसान करने वाली दवा का लेप नहीं लगाना चाहिए, किसी नीम हकीम के पास नहीं जाना चाहिए घबरा कर, नहीं तो जो नहीं है और भी वहाँ बीमारी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि मन में ये धारणा कभी न लाया जाए कि हमको लोग देख रहे हैं तो देख कर क्या सोचेंगे, इसको तो भयंकर कुष्ठ रोग हो गया है, इसको तो बहिष्कार करना चाहिए, इसके पास नहीं जाना चाहिए। तो यही तो समझने की बात है, ये फैलने वाली बीमारी नहीं है और ये कोई कुष्ठ रोग भी नहीं है, कुष्ठ रोग तो एक जीवाणु से होती है, बैक्टीरिया से होता है वो कुष्ठ रोग, और वो भी कुष्ठ रोग रहता है तो उसका भी इलाज संभव है।

0: इसलिए कुष्ठ रोग का नाम देकर के घबराने की जरूरत नहीं है। ये सफ़ेद दाग सिर्फ है जहाँ पर रंग केवल कम हो गया है और ये इलाज से ठीक होता है, ऐसा भी नहीं है कि लाइलाज है। हाँ, ये बात सही है कि कई कई रूप में यह बीमारी आ सकती है, अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग रूप लेती है। किसी को एक दो धब्बा होकर रह गया, किसी को बहुत सारे धब्बे हो गए, कोई चिकित्सा से जल्दी ठीक हो जाता है, कोई देर से ठीक होता है, किसी किसी का कभी कभी क्या होता है कि पूरा ठीक हो जाता है लेकिन दोबारा फिर 6 महीने बाद, साल भर बाद होने लगता है। तो हर दशा में घबराने की ज़रूरत नहीं है, चिकित्सक के पास जाइए, वही बताएंगे क्या उपाय करना है। और अगर एक दवा चलाने से ठीक हो गया फिर आ रही है बीमारी, तो हम लोग फिर दूसरी तरह की दवाएं देते हैं उसमें, और साथ ही साथ सतर्क रहते हैं कि इसका जो साइड इफ़ेक्ट दवाई का हो सकता है उससे भी कैसे हम मरीज़ को बचाएं। तो समाज में हम यही देखते हैं कि जिसको भी सफ़ेद दाग हो गया लोग उससे मिलने से कतराने लगते हैं, संपर्क बनाने से कतराने लगते हैं, यहाँ तक कि उसके घर के किसी व्यक्ति से, लड़के लड़की से शादी वाला संबंध रखने में भी लोग कतराते हैं, हिचकते हैं। तो यही गड़बड़ बात है। हमें तो वैसे मरीजों को और भी सहानुभूति देना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए और उन्हें सही चिकित्सा के लिए सही चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं ये भी बता दूं कि ये शादी विवाह जो सोचते हैं लोग कि ना करें, हाँ वो भी गलत बात है, ये भी भ्रांति एक है। कभी कभी ऐसा होता है कि शायद एकाध व्यक्ति को उस परिवार में होने लगे, वरना किसी को भी हो सकती है ये बीमारी। और सचमुच तो बीमारी ये तो है नहीं, बस केवल धब्बा दिखता है और उसका भी इलाज संभव है।
1: कोई भी सफ़ेद दाग क्या सफ़ेद दाग ही है?
0: बिल्कुल सही सवाल आपका है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि सफ़ेद दाग के नाम से जो बीमारी जानी जाती है ना, वो बिल्कुल ही सफ़ेद, बिल्कुल ही वाइट दिखता है, लेकिन अन्य बीमारियाँ भी हैं जो सफ़ेद दाग के रूप में हल्का सफ़ेदी लिए हुए वो तो उत्पन्न होती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आम भाषा में जिसको आप सिहुली की बीमारी कहते हैं, वो फंगस से होता है। तो छोटे छोटे छोटे छोटे धब्बे हल्का हल्का सफ़ेद रंग के लिए हुए वो आते हैं, उनका पूर्ण इलाज संभव उनका भी है। छोटे छोटे बच्चों को देखेंगे कि गाल पे सफ़ेद दाग आ जाते हैं, जिनको कि रुस्सी भी रहता है सिर में, ज़्यादा डैंड्रफ रहता है, ऐसे बच्चों को गाल पर सफ़ेद धब्बे आ जाते हैं। तो ये आम बीमारियां हैं शिशुओं की, बच्चों की, जो धीरे धीरे चली जाती हैं, केवल उस पर कुछ मॉइस्चराइज़र फेस पर लगाने के लिए हम लोग देते हैं। तो ये हो गया। और ऐसे तो एक कालाजार की बीमारी है जो आप देखेंगे उत्तर बिहार में कालाजार बहुत ज़्यादा होता है, एक प्रकार के मच्छर काटने से होता है। तो कालाजार की जब चिकित्सा ठीक से नहीं हो पाती है तो उसमें भी सफ़ेद दाग उत्पन्न हो जाते हैं त्वचा पर। तो ऐसी कई बीमारियां हैं जिनसे ये संदेह होता है कि सफ़ेद दाग वाली ही बीमारी है। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि अपने से इलाज नहीं करना है, फैसला नहीं लेना है, उचित चिकित्सक के पास ले जाएं, वो बताएंगे सफ़ेद दाग है या नहीं है और उसका भी इलाज संभव है।
1: बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये कोई बीमारी इसको हम नहीं मानते,
0: बिल्कुल
1: और बिल्कुल ठीक होने वाली बीमारी है। और जो मन में गलत धारणा निकल कर सामने आती है उससे दूरियां बनाइए, खुश रहिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए, जिंदा दिल बनिए और जिंदगी को हंसते मुस्कुराते हुए निकालिए।
0: बस आपने सही कहा, घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई जानमारू बीमारी तो यह है नहीं, बीमारी तो है ही नहीं। अगर है भी तो चलिए धब्बा है, जानमारू बीमारी है नहीं ना, तो इसमें आपका लीवर खराब हो रहा है, ना किडनी खराब हुआ है, ना कोई हार्ट की बीमारी है, कोई सीरियसनेस, कोई गंभीरता की बात बिल्कुल नहीं है, ना कोई परहेज करना है। और जैसा कि हमने नाम गिनाया कि सफ़ेद दाग है, तो एक और मैं मॉडल का नाम गिनाऊँगा, वो कनाडा की मॉडल है व्हिटनी ब्राउन। वो देखिए फैशन वाले काम में पूरा आगे बढ़ रही है, वो जो मॉडल बोलते हैं मॉडल काम करी और पूरा वो शख्सियत बन गई है, पूरी मशहूर हो गई है। तो बस मनोबल कायम रखें कि मुझे कुछ भी नहीं है, कोई खतरा इस बीमारी से नहीं है और आप किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं, जीवन में किसी भी सफलता की चोटी तक पहुँच सकते हैं, यही मेरा संदेश है।
1: और दाग तो चांद पे भी है लेकिन चांद हमेशा अपनी रोशनी बिखेरता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्र साहब, आज आप ऐसे कार्यक्रम में आए। और मित्रों, रोज की तरह हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा और अपने दोस्तों का भी ख्याल रखिएगा। नमस्कार
0: जी, धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य कार्यक्रम कल्याणी के अंतर्गत भेंट वार्ता, सफेद दाग घबराए नहीं। भेंट वार्ता का अर्थ है डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा, रांची। भेंट करता थे श्री संजीव कुमार लाल।

आकाशवाणी के ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। पेश खिदमत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है।

आशिकी फिल्म का नगमा भी आपने सुना। आवाज़ें थी अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की, शब्द रचना समीर की थी और तर्ज नदीम श्रवण की। अगला गीत आई सुनते हैं अग्निसाक्षी फिल्म से, आवाज़ कविता कृष्णमूर्ति की है, गीत के बोल समीर के हैं और इसकी धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

लिए तुम लीजिए, सुनिए इस फिल्म से अगला गीत, आवाज़ें कुमार सानू और अलका याग्निक की। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार अनु मलिक।

दिल परदेसी हो गया फिल्म से भी आपने ये गीत सुना। आवाज़ें थी उदित नारायण और अलका याग्निक की, सावन कुमार के बोल थे और उषा खन्ना का संगीत था। त्रिदेव फिल्म से आइए सुनते हैं अगला गीत। आवाज़ें हैं मनहर उदास और अलका याग्निक की। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और इसकी तर्ज बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

दिल जले फिल्म का नगमा अभी आपने सुना, आवाज़ कुमार सानू की थी। गीतकार थे जावेद अख्तर और संगीतकार अन्नू मलिक। इसी नगमे के साथ ही अब आज का चित्रपट से कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103 MHz पर। समाचारों के लिए अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। कृपया बने रहें हमारे साथ।

0: जागृति शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की 5 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी। 4 राज्यों में 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के चौड़ीकरण को स्वीकृति। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, उच्च गुणवत्ता और लागत प्रभावी अवसंरचना सर्वोच्च प्राथमिकता। केंद्र सरकार उप ठेकेदारी मानदंडों की समीक्षा करेगी। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के युग में सटीक, विश्वसनीय और नागरिक केंद्रित सरकारी संचार का आह्वान किया। ईरान ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य अभियानों में सहयोग न करने की चेतावनी दी। नीदरलैंड्स में पुरुष FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत ने गोल टेस्ट में मेजबान श्रीलंका को 165 रन से हराया। मानव सुथार ने पहली बार 10 विकेट झटके। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का थर्ड एंड फोर्थ लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसाई तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की चौथी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की चौथी लाइन, गुमेड़ी पुंडी गुदुर की तीसरी और चौथी लाइन तथा कटक पारादीप की तीसरी तथा चौथी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है। श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है।
1: बिहार में बहुत इम्पोर्टेंट आज हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4 लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट इसमें हो। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना विकास की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित सुरंग और पुल सम्मेलन 2026 के चौथे संस्करण को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय राजमार्ग निर्माण कार्यों के उप ठेकेदारी संबंधी मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करेगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि संविदात्मक आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन किया जाए और गुणवत्ता तथा समय पर निष्पादन की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से मुख्य ठेकेदार की ही रहे। श्री गडकरी ने बेहतर अवसंरचना सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए विस्तृत और मजबूत परियोजना रिपोर्ट DPR की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि खराब गुणवत्ता वाली DPR और अपर्याप्त भूवैज्ञानिक डेटा अक्सर लागत में वृद्धि, देरी और सुरक्षा संबंधी

0: चिंताओं का कारण बनते हैं।
1: कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए उसके लिए प्लानिंग इन एडवांस, प्लानिंग इन डिटेल बनाकर वी नीड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर दैट। ये हमारे लिए अनप्रेडिक्टेबल जियोलॉजी एंड ग्राउंड कंडीशन ये बहुत बड़ी समस्या है, इसका बहुत अध्ययन होना चाहिए। अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने इसके ऊपर कुछ किया तो उसका उपयोग ओवरऑल देश को होगा। बाद में एक्सट्रीम वेदर कंडीशन एंड नेचुरल हजार्ड्स, लैंडस्लाइड, फ्लड्स, अर्थक्वेक, हेवी स्नोफॉल, अभी बहुत कठिन है, ये जो जिला में काम कर रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि प्रौद्योगिकी, मीडिया, अर्थशास्त्र और लोकनीति की दुनिया तेजी से बदल रही है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भारतीय सूचना सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि सोशल मीडिया ने सूचना प्राप्त करने, साझा करने और उस पर प्रतिक्रिया देने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है।
2: Social media has fundamentally transformed the way citizens receive, share and respond to information. You should use social media platforms not only to inform the engaged, but also to listen, understand and respond to concerns of the people.
0: राष्ट्रपति ने कहा कि जब सूचना तेजी से फैलती है तो आधिकारिक संचार में सटीकता, विश्वसनीयता और जनहित का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में वन अधिकारियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वन, वन्य जीव, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ विकास को आगे बढ़ाना होगा। उपराष्ट्रपति ने आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में वर्ष 2025-27 बैच के भारतीय वन सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित किया। झारखंड में 26 दिन से चल रहा विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन, राज्य सरकार द्वारा कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने और कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश देने के बाद समाप्त कर दिया गया है। एक रिपोर्ट।
3: आंदोलनरत छात्रों ने राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। सरकार ने 22 परीक्षाएं रद्द करने और 45 परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच कराने का फैसला लिया है, जिसमें जेपीएससी सिविल सर्विस और जेएसएससी सीजीएल भी शामिल हैं। छात्रों ने सरकार को जांच पूरी करने के लिए 60 दिनों का समय दिया है और चेतावनी दी है कि जांच निष्पक्ष या संतोषजनक नहीं होने पर वे फिर आंदोलन शुरू करेंगे। छात्रों ने आज शाम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक आभार यात्रा भी निकाली, जिसमें प्रमुख छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो भी शामिल हुए। देवेंद्रनाथ महतो ने 16 दिनों तक आमरण अनशन किया था। वहीं सरकार के फैसले से 2628 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां प्रभावित हुई हैं। इसके विरोध में जेएसएससी सीजीएल से नियुक्त अभ्यर्थियों ने झारखंड सचिवालय और प्रोजेक्ट भवन के बाहर प्रदर्शन कर अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर चिंता जताई। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया के तहत परीक्षा पास कर नियुक्ति हासिल की है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग दोहराई है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। श्री जोशी ने इस बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने की प्रधानमंत्री की पहल के कार्यान्वयन की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में लापता और बचाए गए बच्चों की पहचान और उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए राष्ट्रीय डीएनए और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बनाने की मांग की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कृष्णानगर अदालत ने निर्देश दिया है कि वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 28 अगस्त तक प्रस्तुत की जाएगी।

0: निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के अनुसार मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्था का कार्य अब 24 अगस्त तक किया जाएगा। वहीं मतदाता सूची का प्रारूप 31 अगस्त को प्रकाशित होगा। आयोग के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 31 अगस्त से 30 सितंबर तक होगी। दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 31 अगस्त से 29 अक्टूबर तक चलेगी। अंतिम मतदाता सूची अब 4 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली के मुनिरका इलाके में मणिपुर के दो लोगों पर कथित हमले की मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दो व्यक्तियों ने मणिपुर के इन दोनों लोगों पर हमला किया। हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
1: केंद्र और स्थानीय सरकार ने इस क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ये एक बहुत सुंदर क्षेत्र है। मेरा मानना है कि बहुत से अमरीकी पर्यटक यहाँ आकर इसकी सुंदरता को देखना पसंद करेंगे।
0: श्री गोर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमेरिका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ कोई वार्ता नहीं चल रही है और न ही निर्धारित है। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 312 हो गई है। 4611 लोग घायल हैं और 290 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति अबिलाडो डे ला एस्प्रियला ने आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। भारत ने कोलंबिया को समर्थन देते हुए पिछले सप्ताह राहत सामग्री की पहली खेप के रूप में 20 मीट्रिक टन सामग्री भेजी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल के लिए तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। नीदरलैंड्स के एम्स्टलफेन में एफआईएच हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त को मजबूत किया। भारत ने गोल में 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। मानव सुथार ने इस मुकाबले में कुल 131 रन देकर 10 विकेट हासिल किए हैं। मानव ने पहली पारी में 76 रन देकर 4 विकेट झटके। दूसरी पारी में उन्होंने 55 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 326 अंक यानी 0.42% लुढ़क कर 76,910 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 77 अंक यानी 0.32% नीचे आकर 24,078 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 8 पैसे कमजोर हुआ और 95.76 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की 5 अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी। 4 राज्यों में 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के चौड़ीकरण को स्वीकृति। अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर

उन्होंने कहा कि वजारत शाहराहों के कामों की सब कॉन्ट्रैक्टिंग के जरिए मौजूदा जब्तों का जायजा लेगी ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कॉन्ट्रैक्ट से मुतालिक जरूरतों की सख्ती से तामील हो। उन्होंने कहा कि इसका मकसद इस बात को भी यकीनी बनाना है कि मयार और

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी ने।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

0: श्रोताओं नमस्ते। आज बात एक ऐसे अभिनेता की जो चरित्र भूमिकाएं निभाते हुए भी अपने हर किरदार को यादगार बनाने का हुनर रखते हैं। अपनी भावपूर्ण आँखों और संवाद अदायगी के अंदाज से चेहरे पर मुस्कान खिला देते हैं। आज के फनकार हैं अभिनेता, निर्देशक, लेखक और नाटककार उत्पल दत्त।
1: गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है।

0: गोलमाल है।
1: उत्पल दत्त, ये नाम सुनते ही हमारी आँखों के सामने वो सारे किरदार तैर जाते हैं जो उनके अभिनय से अमर हो गए हैं। फिर चाहे वो मूछों के दीवाने गोलमाल के भवानी शंकर हों, या पढ़ी लिखी बहू लाने के सख्त खिलाफ किसी से न कहना के कैलाशपति, इन अतिशयोक्ति पूर्ण किरदारों में उत्पल दत्त के अलावा किसी और की कल्पना हम कर ही नहीं सकते।

तरह उत्पल दत्त के अभिनय और हाव भाव को भूलना मुश्किल है, उसी तरह मुश्किल है उनके अनोखे अंदाज में कहे कुछ शब्द, जैसे अच्छा हैं या चौंक कर उनका ई कहना। वो इन कुछ शब्दों में ही अपने अलग अलग भाव बड़ी आसानी से प्रकट कर देते और दर्शक उनके इन भावाभिव्यक्ति पर लोट

0: उत्पल दत्त का अभिनय इतना स्वाभाविक लगता कि दर्शकों को वो अपने आसपास रहने वाले किसी व्यक्ति की याद दिला जाते। अपने मजाहिया अंदाज वाले किरदारों के लिए लोकप्रिय हुए उत्पल दत्त कभी बेवजह हंसाने की कोशिश करते नजर नहीं आते, बल्कि वो अपने सहज अभिनय से ही लोगों को पेट दुखते तक हंसने पर मजबूर कर देते और उनके चेहरे पर ऐसी किसी कोशिश का निशान तक नहीं दिखता।
1: सिर्फ आलू का पराठा क्यों बेटा, मैं तुम्हें कलकत्ते का राजभोग खिलाऊंगा, दिल्ली का सोन हलवा, मथुरा का पेड़ा, बनारस का कलाकंद खिलाऊंगा।
2: मगर सर इतनी सारी मिठाई।
1: अरे बेटा नहीं खाओगे तो ताकत कैसे आएगी, और ताकत नहीं होगी तो पुलिस की मार कैसे सहोगे बेटा।
2: पुलिस की मार?
1: पुलिस की मार।
0: उत्पल दत्त के सहज अभिनय के पीछे उनकी रंगमंच में की गई सालों की मेहनत चमकती है। 29 मार्च 1929 को उस वक्त पश्चिम बंगाल और अब बांग्लादेश में स्थित बारिसल में उनका जन्म हुआ। उनकी शिक्षा कलकत्ता में पूरी हुई। इस दौरान ही अपनी युवावस्था में उनका रुझान अंग्रेजी थिएटर की ओर होने लगा। 1947 में वो थिएटर ग्रुप से जुड़ गए और अभिनय करने लगे। उनके पहले ही किरदार ने मशहूर रंगमंच निर्देशक जेफ्री कैंडल का ध्यान आकर्षित किया। उत्पल दत्त उनकी थिएटर कंपनी के साथ 2 सालों की भारत पाकिस्तान के अलग अलग क्षेत्रों की लंबी यात्रा में शामिल हो गए।

तरह की दुनिया ने उत्पल दत्त के लिए विचारों की एक नई राह खोल दी। उन्होंने अपने थिएटर ग्रुप की स्थापना की, जिसका नाम रखा लिटिल थिएटर ग्रुप। शेक्सपियर, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, गोर्की, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे देश विदेश के बड़े बड़े दार्शनिक, लेखक और समाज सुधारकों की कहानियों पर वो नाटक रचने लगे। एक वक्त के बाद उत्पल दत्त को ये एहसास हुआ कि वो अपने नाटकों से जो संदेश आम जनता तक पहुँचाना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें भारतीय पृष्ठभूमि के नाटक रचने होंगे। यहाँ से वो एक नाटककार और लेखक की भूमिका में ढल गए। उनके लिखे कई नाटक आज भी बदलाव लाने वाले नाटकों के तौर पर पहचाने जाते हैं।

0: नशे में क्यों न झूम झूम जाए।
1: उत्पल दत्त इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे। उनको रंगमंच पर एक ऐसी शख्सियत के तौर पर पहचाना जाता है जो कला के माध्यम से समाज सुधार की बात करते हैं। उनके कुछ प्रसिद्ध नाटकों में शामिल हैं ओंगार, टीने तलवार, फेरारी फौजी, आज केर शाहजहां, मानुषेर अधिकार, लोहा।

मानोप, बैरिकेट, दूस्वप्नार नगरी, एबार राजार पाला और कल्लोल। अपने कुछ नाटकों में उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों पर चोट करने का साहस किया। कल्लोल के लिए उन्हें जेल में कुछ महीने भी बिताने पड़े, लेकिन वो अपने विचारों से टस से मस ना हुए और सामाजिक जागरण तथा बदलाव की बातें करते रहे।

यशपाल दत्त का फिल्मों में आना भी रंगमंच के कारण ही संभव हुआ। रंगमंच में उनको ओथेलो की भूमिका में देख बांग्ला फिल्मकार मधु बोस ने अपने फिल्म माइकल मधुसूदन में मुख्य भूमिका के लिए चुना। ये फिल्म क्रांतिकारी भारतीय कवि माइकल मधुसूदन दत्त के जीवन पर आधारित थी। इसके बाद उत्पल दत्त कई बांग्ला फिल्मों में नजर आए। इनमें शामिल है मृणाल सेन द्वारा निर्देशित फिल्म भुवन शोम। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया।

बांग्ला फिल्मों की बातें करें तो उत्पल दत्त वहाँ अलग अलग भूमिकाओं में अपनी छाप छोड़ते रहे। 3 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित फिल्मकार सत्यजीत रे की आखिरी फिल्म आगंतुक में उत्पल दत्त के किरदार मनमोहन मित्रा को सराहना मिली। सत्यजीत रे की ही फिल्म जॉय बाबा फेलूनाथ में मगनलाल मेघराज के किरदार में उत्पल दत्त एक विलेन की भूमिका में दिखे। उनकी कुछ उल्लेखनीय बांग्ला फिल्मों में भुवन शोम, आगंतुक, जॉय बाबा फेलूनाथ के साथ ही नाम शामिल है पद्म नादिर माझी का।

सात हिंदुस्तानी फिल्म से हिंदी फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाले उत्पल दत्त जिस भूमिका में होते उसमें इस तरह ढल जाते कि बस वो किरदार के रूप में ही नजर आते। जैसे द गुरु फिल्म में सितार वादक जाफर खान के किरदार को वो बड़ी ही सहजता से निभाते नजर आते हैं। उन्हें देखकर लगता है जैसे कि वो एक अभिनेता नहीं बल्कि एक सितार वादक ही हों। वहीं बासु चटर्जी की फिल्म शौकीन में उनके किरदार जगदीश भाई अपने दोस्तों के साथ वाकई शौकीन और शातिर नजर आते हैं।

गोपाल दत्त 1950 में कलकत्ता के एक स्कूल में इंग्लिश टीचर थे और अपने विद्यार्थियों के प्रिय हुआ करते थे। कुछ ऐसा ही वास्तविक किरदार उन्होंने निभाया फिल्म गुड्डी में। गुड्डी में प्रोफेसर गुप्ता उर्फ मामा जी के किरदार में ढलकर फिल्मी दुनिया को असली मानने वाली

फिल्म की हीरोइन गुड्डी को फिल्मी दुनिया की वास्तविकता दिखाने का वो प्रयास करते हैं। इस फिल्म के जरिए न जाने कितने लोगों के लिए वो एक टीचर बनकर उनका दिल जीतने में कामयाब हुए होंगे। हाँ।

जहाँ एक और गुड्डी में उनका किरदार फिल्मी दुनिया की असलियत बताता है, वहीं फिल्म रंग बिरंगी में वो नजर आते हैं पुलिस इंस्पेक्टर धुरंधर भाटावड़ेकर के रूप में। धुरंधर भाटावड़ेकर जो फिल्मों और फिल्मी दुनिया के सभी लोगों से नफरत करता है। फिल्म रंग बिरंगी में उनकी एंट्री तकरीबन फिल्म के अंतिम चरण में ही होती है, लेकिन उनके आते ही जैसे फिल्म की पूरी कहानी उनके इर्द गिर्द ही घूमने लगती है। कुछ सीन्स में ही नजर आने के बावजूद धुरंधर भाटावड़ेकर हमें याद रह जाते हैं और फिल्म में अपने अभिनय का एक अलग ही रंग भर देते हैं।

अभिनय में माहिर उत्पल दत्त फिल्मों में नहीं आना चाहते थे, ये जानकर शायद आपको आश्चर्य हो, क्योंकि उनका पूरा ध्यान रंगमंच की ओर ही था। वो अपनी कला का उपयोग समाज को बदलने में करना चाहते थे, लेकिन उनका कहना था कि फिल्मों में वो सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। कई बार तो वो फिल्म करके भूल भी जाते कि उन्होंने कौन से किरदार निभाए और फिल्म की कहानी क्या थी, लेकिन ये उनका सहज अभिनय ही था जो दर्शकों को यूं बांध लेता कि वो कभी उन किरदारों को भूल ही नहीं पाते थे।

0: उत्पल दत्त ने कई किरदार निभाए हैं। बांग्ला और हिंदी फिल्मों को मिलाकर तकरीबन 100 फिल्मों में काम किया। इसके अलावा उनके नाटकों की अलग ही गिनती है, जिसमें से कुछ उन्होंने खुद लिखे। उत्पल दत्त अपने चेहरे, हाव भाव और चश्मे के भीतर से झांकती आंखों से कुछ यूं अभिनय करते कि मानो उनका पूरा व्यक्तित्व ही किरदारों के अनुसार बदल जाता। उस पर संवाद अदायगी के दौरान आवाज का उतार चढ़ाव देखने वाले को बांध लिया करता। कभी उनके किरदार बेहद सुलझे हुए होते तो कभी बिल्कुल अनोखे।
1: नहीं पूरा।

0: दत्त के निभाए किरदारों की बात आती है तो जहां हम उन्हें कॉमेडी किरदारों में ज्यादा याद करते हैं, वहीं जब जब उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई बिल्कुल अलग नजर आए। उन्हें खलनायक वाले किरदार में देखकर हम कभी ये सोच ही नहीं सकते कि ये वही अभिनेता हैं जो कॉमेडी करते नजर आते हैं। उन्हें खलनायक बने हमने देखा फिल्म अमानुष में मुनीम घोषाल के रूप में, वो साहू जी बने नजर आए फिल्म थी बरसात की एक रात, द ग्रेट गैम्बलर में डॉन सक्सेना, तो इंकलाब में सीताराम का किरदार उन्होंने निभाया।
1: Dovai sai tu, distorcer cando,

भगत के सहज अभिनय को कई बार सराहा गया। यूं तो दर्शक हमेशा ही उनके किरदारों को पसंद करते रहे, लेकिन उन्हें कई बार पुरस्कारों के जरिए भी प्रोत्साहन मिला। उन्हें कई पुरस्कार मिले, लेकिन उनमें से कुछ महत्वपूर्ण सम्मान हैं: संगीत नाट्य अकादमी फेलोशिप, बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड।

अभिनय के साथ ही उत्पल दत्त ने कुछ फिल्मों का निर्देशन भी किया। इनमें शामिल हैं मेघ, घूम भांगर गान, झार, बैसाखी मेघ, माँ और इंकलाब के बाद। साल 1960 में उन्होंने रंगमंच और फिल्म अदाकारा शोभा सेन से शादी की। दोनों की इकलौती संतान विष्णु प्रिया दत्त भी आगे चलकर रंगमंच से जुड़ी और उससे संबंधित काम करती हैं।

10 अगस्त 1993 को कलकत्ता के एक निजी अस्पताल में उत्पल दत्त का हृदय आघात से निधन हो गया। अंतिम दिनों तक वो अभिनय में सक्रिय रहे। टीवी शो व्योमकेश बख्शी में उनका किरदार और आखिरी फिल्म मेरा दामाद रही। ये फिल्म उनकी मृत्यु के 2 साल बाद रिलीज हुई। उत्पल दत्त भले ही इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन वो अपने पीछे अनगिनत किरदारों की वो दुनिया छोड़ गए।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था सहज अभिनय, भावपूर्ण अदायगी और आँखों से अपने भाव जाहिर करने वाले अभिनेता, निर्देशक, लेखक और नाटककार उत्पल दत्त पर।
1: गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है।

0: शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, तो मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: वाह।
4: कभी इस पग में

0: अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुझे बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपके आंख।
4: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती की प्रसारण सेवा आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। पेश खिदमत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों को मोहम्मद फखरुल हसन का नमस्कार।

हत्या फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें थी किशोर कुमार और आशा भोसले की। गीत लिखा था इंदिवर ने और इसकी तर्ज बनाई थी बप्पी लहरी ने। अगला गीत आइए सुनते हैं सच्चे का बोलबाला फिल्म से। आवाज़ें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की, अमित खन्ना के बोल हैं और बप्पी लहरी का संगीत है।

पत्थर के सनम फिल्म से नगमा सुना भी आपने। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा था और संगीत से संवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम की अगली पेशकश है हम दोनों फिल्म से। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, साहिर लुधियानवी के बोल हैं और जयदेव का संगीत है।

हम दोनों अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना, आवाज मोहम्मद रफी की थी। गीतकार थे साहिल लुधियानवी और संगीतकार जयदेव। अगला गीत आइए सुनते हैं क्रांति फिल्म से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की, संतोष आनंद की शब्द रचना है और इसकी तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारे।

नाम फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ें थी मोहम्मद अजीज़ और साथियों की, आनंद बख्शी के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। कार्यक्रम की अगली पेशकश है कर्मा फिल्म से। आवाज़ें हैं अनुराधा पौडवाल, मनर उदास और

गोपी फिल्म से अभी आपने ये भजन सुना। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी, राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा था और संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। और ये है रजनीगंधा कार्यक्रम की आखिरी पेशकश फिल्म बॉर्डर से। आवाज़ रूप कुमार राठौर की है, शब्द रचना जावेद अख्तर की है और तर्ज अनु मलिक की।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज पर। आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिसमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो

0: हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है। इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं, और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का थर्ड एंड फोर्थ लाइन। और पांचवा प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा एक तक, ये फोर लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की चार मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की चौथी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की चौथी लाइन, गुमीडी पुंडी गुदूर की तीसरी और चौथी लाइन, कटक पारादेव की तीसरी और चौथी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से दो वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना विकास की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित सुरंग और पुल सम्मेलन 2026 के चौथे संस्करण को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय राजमार्ग निर्माण कार्यों की उप ठेकेदारी संबंधी मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करेगा, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि संविदात्मक आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन किया जाए और गुणवत्ता तथा समय पर निष्पादन की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से मुख्य ठेकेदार की ही रहे। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कृष्णानगर अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 28 अगस्त तक प्रस्तुत की जाए। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गौर जम्मू कश्मीर में अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमेरिका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। नीदरलैंड्स के अम्स्टेल्फेन में एफआईएच हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त मजबूत की। भारत ने गोल में 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रनों से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की पूरी टीम आज 206 रन पर आउट हो गई। मानव सुथार ने इस मुकाबले में कुल 131 रन देकर 10 विकेट हासिल किए। मानव ने पहली पारी में 76 रन देकर 4 विकेट छटके थे। वहीं दूसरी पारी में उन्होंने 55 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। The Union Cabinet today approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees, including 4 railway and 1 highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the Union Cabinet under the leadership of Prime Minister Narendra Modi has cleared 4 multi-tracking projects of railway covering 8 districts across 4 states of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu एंड

सभा कल प्रातःकालीन सभा में 5:55 पर हम पुनः उपस्थित होंगे अपने कार्यक्रमों के प्रसारण के साथ आपकी सेवा में। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। जय हिंद।